0: क्या तुम लोगों की तख्लीक ज्यादा सख्त काम है या आसमान की? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाजुन कायम किया और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। उसके बाद जमीन को उसने बिछाया, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ उसमें गाड़ दिए सामान जीस्त के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। फिर जब वो हंगामा अजीम बरपा होगा जिस रोज इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा और हर देखने वाले के सामने दोजख खोल कर रख दी जाएगी, तो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी थी दोजख ही उसका ठिकाना होगी। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था जन्नत उसका ठिकाना होगी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब ठहरेगी? तुम्हारा क्या काम कि उसका वक्त बताओ? उसका इल्म तो अल्लाह पर खत्म है, तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उसका खौफ करे। जिस रोज ये लोग उसे देख लेंगे तो इन्हें यूं महसूस होगा कि दुनिया में या हालत मौत में ये बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फज्र की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك يا

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
0: साइबर क्राइम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम से निपटने के लिए गल्फ स्ट्रेटेजी की तश्कील के उन्वान से दोहा में एक वर्कशॉप का आगाज किया गया। वजारत दाखला की मेजबानी में मुनक्किद इस वर्कशॉप का इंतजाम कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ के जनरल सेक्रेटरेट ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स या UNODC के तावन से किया। वर्कशॉप में GCC ममालिक के नुमाइंदों के अलावा साइबर क्राइम के मैदान के मुतअद्दिद माहिरीन और मुतखस्सिसीन ने शिरकत की। इफ्तिताही इजलास में डायरेक्टर जनरल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मेजर जनरल मोहम्मद इब्राहिम अल जुफैरी, GCC जनरल सेक्रेटरेट के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर सिक्योरिटी अफेयर्स ब्रिगेडियर हमद अजलान अल उतैबी और UNODC रीजनल ऑफिस फॉर GCC कंट्रीज के गल्फ रीजन के रीजनल रिप्रेजेंटेटिव जज हेतम फुआद अली ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक जराइम के मुकाबले में गल्फ ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी तावुन और हम आहंगी को मजबूत बनाना, इस शोबे में मुश्तरका कोशिशों को फरोग देने और उभरते हुए साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए GCC की सलाहियतों को बेहतर बनाना है, जो तेजी से तब्दील होती टेक्नोलॉजी के तनाजुर में इलाकाई साइबर सिक्योरिटी निजाम को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होगा। 3 रोजा जारी रहने वाली इस वर्कशॉप में साइबर क्राइम के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, साइबर क्राइम से निमटने के लिए GCC के मुश्तरका फ्रेमवर्क की तश्कील और उसकी तरक्की, साइबर तहकीकात के निजाम को बेहतर बनाने और सरहदी सतह पर डिजिटल शवाहिद के तबादले के मैकेनिज्म को मजबूत बनाने जैसे मौजूदात पर बातचीत की गई। समय दूसरों की प्राइवेसी और हकूक का एहतराम करना हर फर्द की जिम्मेदारी है। किसी शख्स की रजामंदी के बगैर प्राइवेट जगहों पर उसकी तस्वीर या वीडियो बनाना कानूनन ममनू है। इसी तरह अवामी मकामात पर भी किसी की तस्वीर इस नीयत से लेना या शेयर करना कि उसकी तोहीन या बदनामी हो, जुर्म के जुमरे में आता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान भी एहतियात जरूरी है। किसी की तस्वीर, वीडियो या जाती मालूमात बिना इजाजत पब्लिश करना न सिर्फ प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है बल्कि कानूनी कार्रवाई का सबब भी बन सकता है। टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करें, दूसरों की हुरमत और प्राइवेसी का ख्याल रखें और कवानीन की पाबंदी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वजारत दाखला का कहना है कि प्राइवेसी का तहफ्फुज एक बुनियादी हक है। आपका इखलाकी और कानूनी है कि दूसरों की जाती जिंदगी का एहतराम करें और किसी की भी तस्वीर या वीडियो को रिकॉर्ड या शेयर करने से पहले मुतालिका शख्स की रजामंदी हासिल करें। वजारत दाखला के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन खलीफा बिन हत्ताब अल काबी ने रियासत कतर में कुवैत के सफीर अहमद अब्दुर्रहमान अल शरीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी के मैदानों में तआवुन पर गुफ्तगू की गई और इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों का जायजा लिया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, आग से बचाव के लिए एग्जॉस्ट फैंस की बाकायदा सफाई और देखभाल नहायत जरूरी है। किचन या दूसरी दीगर जगहों का एग्जॉस्ट फैन पर वक्त के साथ गर्दो गुबार और चिकनाई जमा हो जाती है, जो उसकी कारकर्दगी को मुतासिर करने के साथ साथ आग लगने के खतरे में भी इजाफा कर सकती है। इसलिए एग्जॉस्ट फैन की सफाई को नजरअंदाज ना करें और उनकी बाकायदा मेंटेनेंस यकीनी बनाएं। जो एग्जॉस्ट फैंस मुद्दत तक साफ नहीं किए जाते, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और गर्म होकर आग लगने का सबब बन सकते हैं। इसके साथ ये भी यकीनी बनाएं कि सफाई से पहले हमेशा बिजली का कनेक्शन ऑफ करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। इसके अलावा एग्जॉस्ट फैंस की बाकायदा जांच और सर्विसिंग किसी माहिर टेक्नीशियन से करवाना जरूरी है ताकि वो महफूज और बेहतर अंदाज में काम करते रहें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखिए, मामूली सी एहतियात भी बड़ा नुकसान रोक सकती है। बाकायदा सफाई और मेंटेनेंस ना सिर्फ एग्जॉस्ट फैन की उम्र बढ़ाती है बल्कि घर, दफ्तर या तिजारती मकाम को आग से मुमकिन खतरों से भी महफूज रखती है। वजारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन खलफ बिन हत्ताब अलकाबी ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यूएस अटर्नी हिज एक्सीलेंसी जेनियन फेरिस पीरो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर गौर-ओ-खौज करने के अलावा दो तरफा सिक्योरिटी के मैदानों में तआवुन के पहलुओं का जायजा लेने के साथ साथ इन्हें मजीद मजबूत और तरक्की देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। सामईन, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना एक संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है जो सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद की जानो सलामती के लिए खतरा बन सकती है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 94 के मुताबिक ऐसी खिलाफ वर्जी पर मुलजिम को कम से कम एक महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद और 10,000 कतरी रियाल से 50,000 कतरी रियाल तक का जुर्माना या इन दोनों में से किसी एक सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। वजारत दाखिला का कहना है कि आइए हम सब ट्रैफिक कानून और हिदायत पर अमल करने का अहद करें और सड़कों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। समझदारी से काम लीजिए और महफूज ड्राइविंग कीजिए। दोहा में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कोर्स का अख्तिताम कर दिया गया है जिसमें वजारत दाखिला के कई अहलकारों के साथ ब्रदर मुल्क सीरियन अरब रिपब्लिक की वजारत दाखिला के अफसरान ने भी शिरकत की। कोर्स के दौरान सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के बुनियादी तसव्वुर, सिक्योरिटी खतरों की निशानदेही, उनकी जांच, तजजिए और उनसे निमटने के मुअस्सर तरीकों पर तफसीली ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का मकसद शिरका की पेशावराना सलाहियतों को फरोग देना, उनकी तैयारी को मजीद बेहतर बनाना और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी में इजाफा करना था। कोर्स के अख्तिताम पर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ब्रिगेडियर राशिद मोहम्मद अल हाजरी ने शिरका में सनदें तकसीम की और कोर्स में उनकी फ़ाल शिरकत को सराहा। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी ने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रेंच रिपब्लिक के मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर लॉरेंट नूनिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के मैदानों में दो तरफा तआवुन और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों का जायजा लिया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, टैक्सी, लिमोजीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चलाने के लिए हर गाड़ी की कैटेगरी के मुताबिक मुकर्रर पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। ट्रैफिक लॉ नंबर 19 ऑफ 2007 के आर्टिकल 30, 31 और 32 के मुताबिक दरकार पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर टैक्सी, लिमोजीन, बस या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून की पाबंदी न सिर्फ आपको खिलाफ वर्जियों से बचाती है बल्कि सड़कों पर अमन और ट्रैफिक सलामती को भी फरोग देती है। कानून पर अमल करें और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाएं। सामईन, टैक्सी, लिमोजीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चलाने के लिए हर व्हीकल कैटेगरी के मुताबिक मुनासिब पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना जरूरी है। ये लाइसेंस मुकर्रर शुदा शराइत और कानूनी कारकर्दगी के मुताबिक जारी किया जाता है। पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अहम शराइत में सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट का होना, कम अज कम 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, 21 साल या उससे ज्यादा उम्र, मेडिकल फिटनेस, मुल्क के अहम मकामात और ज्योग्राफियाई इलाकों का मुनासिब इल्म, इस पेशे से फुल टाइम वाबस्तगी, मुतालिका ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्पॉन्सरशिप और रेसिडेंस परमिट पर ड्राइवर प्रोफेशनल का दर्ज होना शामिल है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून की पाबंदी न सिर्फ आपको खिलाफ वर्जियों से बचाती है बल्कि सड़क पर ट्रैफिक सेफ्टी को भी फरोग देती है। महफूज ड्राइविंग करें और कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाएं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: उन लोगों के लिए तंबीह है जो अपने वालिदैन के साथ सख्ती या बदसलूकी से पेश आते हैं। चूंकि वक्त का पहिया घूमता है और वही शख्स जब बूढ़ा होता है उसके अपने बच्चे उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। तुसवूनहा फी मगादिमकुम व तिलगूनहा फी अवागिबकुम।
1: Maximum music, maximum fun on FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सभी कराम, प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के मेजबान तलहा शफ़ जमान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले अपना मोबाइल फोन न देखता हो, अलार्म बंद किया, फौरन नोटिफिकेशन, मैसेजेस, सोशल मीडिया या खबरों की तरफ तवज्जो चली गई। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी सुबह का पहला लम्हा अल्लाह ताला की हम्द और सना से शुरू हो, तो अगर दिन की पहली आवाज अपने रब की याद से शुरू हो, यही तो सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते तो सबसे पहले ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें मौत जैसी नींद के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई और उसी की तरफ दोबारा उठकर जाना है। समीर कराम, हम हर सुबह जागते हैं, सांस लेते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन कितनी बार हम इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि एक नई सुबह दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नई मोहलत है, एक और दिन, एक और मौका अपने रब को राजी करने का। फिर इस्लाम में नींद को छोटी मौत कहा गया है। जब हम सोते हैं तो हमें कुछ मालूम नहीं होता, हम बेबस हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला हमें दोबारा जगाता है। इसीलिए इस दुआ में फरमाया गया, जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी। ये जुमला इंसान के दिल में आजिज़ी पैदा करता है कि हम चाहे कितने ही मसरूफ, ताकतवर या कामयाब क्यों ना हों, हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह के इख्तियार में है। मजीद सुबह की शुरुआत ही में आखिरत की याद दहानी भी है, वइलैहि नुशूर, और उसी की तरफ दोबारा लौट कर जाना है या उठ कर जाना है। सामने कराम, जरा तसव्वुर कीजिए, अगर इंसान दिन का आगाज ही इस सोच के साथ करे कि मुझे आज ऐसा जीना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो उसके अल्फाज बदल जाएंगे, रवैया बदल जाएगा, उसके फैसले बदल जाएंगे। तो दुआ बहुत छोटी है, मुख्तसर है, लेकिन उसके अंदर अजीम पैगामात छुपे हुए हैं। आइए एक बार फिर ये दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना وَإِلَيْهِ النُّشُورِ। اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں صبح بخیر نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद, जहां हम आपकी सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की राह दिखाते हुए आपके साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फौजिया शफीक। हमारा मानना है कि अच्छी सेहत किसी एक की जागीर नहीं है, बल्कि ये हर इंसान का हक है। हेल्थ फॉर ऑल, चाहे आप जिस्मानी तौर पर एक्टिव रहने के तरीके तलाश कर रहे हों, बेहतर खाने की तजावीज़ चाहते हों, या जहनी दबाव को कम करने के लिए कोई भी मशवरे, हम आपके साथ हैं। आज हम बात करेंगे कि कतर ने किस तरह से सेहत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं वो तरतीब दिए हैं। कतर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च की गई है और उसका स्लोगन है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सेहत सबके लिए है। ये स्ट्रेटजी कतर की तीसरी जो कौमी तरक्की की स्ट्रेटजी है और नेशनल हेल्थ की जो हिकमत अमली है उसके साथ मिलकर काम कर रही है। ये एक पुरजोश वियन लिए हुए है और इस खत्ते में सेहत की देखभाल के लिए एक बहुत ही अहम इदारे के तौर पर एक किरदार निभाने के लिए मजबूत है, जहां हम आला मायार की सेहत की देखभाल की फराहमी पर तवज्जो देते हैं। सेहतमंद अफराद की जो हदफ लिए गए हैं, यानी जो गोल हैं, उसमें सेहतमंद तरक्की पसीर जिंदगियां हासिल करना, प्रिवेंटिव जो बीमारियां हैं उनका इलाज करना, इसी तरह डिसेबिलिटीज़ या माजूरी, कोई चोट लग जाती है या कबल अज़ वक्त मौत से सेहतमंद मुआशरा तश्कील देना है। इसी तरह से आप जो बेहतर है हेल्थ वो अचीव कर सकते हैं और हम सब मिलकर सेहत और बहबूद को बेहतर बनाने की एक जद्दोजहद है। हाल ही में शुरू की गई नेशनल हेल्थ की जो हिकमत अमली है, यानी हेल्थ फॉर ऑल, सब के लिए सेहत का मकसद यही है कि उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए कतर की आबादी की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाया जा सके। और इसी तरह से सेहतमंद जिंदगी की देखभाल के लिए जो सिस्टम है या निज़ाम है उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो अवामिल हैं उनको भी फ़रोग दिया जा सके। सेहत के फ़रोग के लिए जो सबसे अहम बात है वो ये कि मलेरिया हो, तपेदिक हो, यानी टीबी हो, एड्स हो, या ऐसी बीमारियां जो कि वबाओं की शक्ल में हो, हेपेटाइटिस हो, या मुख्तलि बीमारियां जो कि इन्फेक्शियस डिजीज हों, इसकी रोकथाम के लिए, उनके इलाज के लिए ज़रिए भी किस तरह से हम अपनी पूरी सोसाइटी को सेहतमंद रख सकते हैं। अगर कतर की बात की जाए तो इसमें हेल्थ केयर इंडेक्स 73.3 पॉइंट्स के साथ 17वें नंबर पर है, यानी 17 नंबर पर है, और ये यानी पहले टॉप 20 कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है। कतर मुसलसल जो मुख्तलिफ जो नंबर हैं उनमें टॉप 20 ममालिक में शामिल है और ये इस पूरे मिडल ईस्ट यानी खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसने टॉप 20 की फहरिस्त में जगह बना ली है। सेहतमंद अफराद रखने के लिए, यानी सोसाइटी को तश्कील देने के लिए जो मकसद हैं वो इस तरह से हैं, यानी जो उसका बुनियादी मकसद है कि एक नई स्लेट बनाना है, उसमें रिसर्च भी है, डेवलपमेंट भी है, यानी मुख्तलिफ जो डिजीज़ के इलाज में जो डेवलपमेंट हो रही हैं उनमें बेहतर से बेहतर मकासद हासिल करना है। सेहतमंद फ़रोग पज़ीर ज़िंदगी और तंदरुस्ती हासिल करना, काबले जो रोकथाम बीमारियां हैं या इसके अलावा जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें दूर करना है। इसका मकसद यही है कि एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दिया जा सके जिसकी मदद से जो मरबूत हेल्थ सिस्टम है वो हमारे सामने हो। नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी प्रोग्राम का मकसद यही है कि तमाम सर्विसेज में तमाम जो काम हो रहे हैं पेशरफ्त बनाना यकीनी है और इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी स्ट्रेटजिक महफ़िल को शामिल किया जा सके। मुस्तकबिल में सेहत के शोबे के चैलेंजेस

0: Shows. Best of shows on Urdu Radio FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
1: हेलो एवरीबॉडी, हेलो गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग. वो क्या है कि प्रोफेसर साहब अभी भी शाम में जी रहे हैं. एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक्स एंड पेंस एंड पेंसिल एंड व्हाट्सएप ऑल्सो. 666-22107 इज द नंबर. प्लीज़ आप मैसेज करें. एंड जो भी लंच बॉक्स लाएँ वो मेरी टेबल पे रख दीजिए, स्पेशली वो लंच बॉक्स जिसमें पराठे वगैरह हो. प्लीज़ आइए, उड़ जाते हैं.

हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर FM 107 पे। और भाई आली हम भी सुबह अब आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी। कल थोड़ी बैटरी कम थी, आज जो है 85% पे है, तो 15% doesn't really matter. 85 is a very good number. Very good morning. उठ गए आप या अभी तक आंख मल रहे हैं? जो लोग आंख मलते हुए भी जा रहे हैं, हाई फाइव ब्रो, हाई फाइव। आई कैन फेल यू। एक मैसेज है खादी अब्दुल आदि भाई का, वालेकुम सलाम लिखते हैं, एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी, आई एम प्रेजेंट सर। बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार मेरे भाई को। एक मैसेज, कैसे हो भाई, सुबह होगी, हम तो क्या है कुछ लिए ही नहीं, हमें पता है मास्टर जी खा जाते हैं। ये देखिए मेरे पे इल्जाम। मौसिन बजे आप डायरी में लिखवाइए, घर से साइन करा के लेके आइएगा भाई। जी जिसके टिफिन में परांठे हैं जरा रख दो इधर। आज सुबह सुबह पता आने का एक और फायदा और नुकसान दोनों ही है। इसमें क्या है, मेरे को सुबह सुबह मन कर जाता भाई परांठे शरांठे मिल जाए, मजा आ जाएंगे। और आज भाई के मैसेज, वालेकुम सलाम, आपकी बैटरी ऑलवेज 100% रहती है ब्रो। भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से। बहुत प्यार भाई को। जुनैद भाई वालेकुम अस्सलाम, और मैसेज किया सुभाष भाई ने, गुड मॉर्निंग, नींद तो पूरी हो गई ना भाई? एकदम बढ़िया नींद पूरी हुई है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुभाष भाई। और एक मैसेज आया, हाय हाय जी कैसे हैं आप, बढ़िया। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम प्रेजेंट, ये अंसारी जुल्फिकर साहब, वालेकुम सलाम मेरे जान, थैंक यू सो मच। आपके पास भी वो रील्स आ रही है क्या, वो देखा आपने कि उसमें वो जानवरों के AI बनाए हैं और फिर वो कहते हैं टाइगर का सिलेक्शन हो गया है दिल्ली में। फिर टाइगर कहता है कि पापा मुझे दिल्ली से इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। और फिर पापा पूछते हैं, टाइगर बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो बोलता है 10,000 रुपीज। ये अब मेरे फीड पर आने लगा है, मेरा हर रोज एल्गोरिथम अजीब और गरीब चीजें मुझे दिखा रहा है। आई जस्ट डोंट नो क्या हो रहा है। जो भी है एक्सेप्टेड, बट बेहतर है बहुत सारे लोगों के एल्गोरिथम से, इतना मुझे पता है। तो ऑन दैट नोट आउट,

Let's go. Karan Aujla. For a reason. और अब वक्त है स्टोरी सुनाने का आपको, तो मैं जल्दी से बता दूं जो आज की स्टोरी है. ये कहानी में सिर्फ मैंने नाम चेंज किया बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ ऐसी कि उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मगर बाकी चीज़ें विल रिमेन सेम. तो आप ज़रा जो सुन रहे हैं लाइव मुझे बता दीजिए कौन कौन लाइव सुन रहा है अभी, सो दैट आई नो. एंड मैं शुरू कर रहा हूँ, तो सारा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने. सो डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं. कहानी किसी किस्म के जनरे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है. एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है भाई साहब. ठीक है जी, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए. चलो जी. सो मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और जो आज का किस्सा है ना ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ऐसा केस शायद ही सुना होगा. तो मैं आज का किस्सा सुनाने के लिए आपको ले चलता हूं साल 2013 में. ओके, साल 2013 मार्च का महीना. एक आदमी जिसका नाम माइकल वायनेलो. माइकल जो था वो 52 साल का था उस टाइम पे, 52 years old. एंड माइकल कोई आम शख्सियत नहीं थी माइकल की. माइकल वो सुप्रीमली टैलेंटेड. माइकल का एक रेस्टोरेंट भी था जिसे वो ओन करते थे. एंड माइकल थर्ड जनरेशन इटालियन अमेरिकन थे जो फिलाडेल्फिया में रहते थे और वहीं उनका रेस्टोरेंट भी था. एवरीथिंग प्रॉफिटेबल, मतलब दूसरा रेस्टोरेंट अभी खुलने के लिए जा रहा था. एंड ही वाज रियली रियली गुड. उनकी शादी हुई थी एलिना से, एलिना उनकी वाइफ, और 26 साल हो चुके थे इस दौरान शादी को. और इनकी दो बेटियां थी, इजाबेला 23 साल एंड मरिया जो कि 21 साल की थी. हर संडे माइकल का एक बहुत ही एक किस्म का रिचुअल था कि वो पूरी फैमिली के लिए खाना बनाते थे बिकॉज ही लव टू कुक. टाइम नहीं मिलता था मगर संडे को ही मेड श्योर कि फैमिली को उन्हीं के हाथ का खाना मिले. एंड इतना सब्र वाला बंदा, आई विल एक्सप्लेन कि किस तरीके का सब्र था इस बंदे का. उनकी दादी माँ की जो रेसिपी है, जैसे हम सुनते आए कि मेरी दादी ने या नानी ने मुझे सिखाया, तो एक रेड सॉस की रेसिपी थी जिसको मास्टर करने में उन्होंने प्रॉपर 6 साल लगाए. और कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि इसको बनाने में भी 5-6 घंटे लगते थे, मगर फ्लेवर नहीं मरना चाहिए भाई. तो माइकल वॉज फोकस्ड. तो अगर कोई माइकल से संडे को मिल रहा है एंड वो चटनी बना रहा है, ये सॉस बना रहा है स्पेशल, तो माइकल उस टाइम भी किसी से बात नहीं करेगा. ये वैसा है जैसे कोई साइंटिस्ट अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है. इवन पास्ता, बिकॉज ही वॉज एन इटालियन जो इटालियन रूट्स थे, तो पास्ता भी हैंडमेड, मशीन से नहीं, क्योंकि उसका ये मानना था कि ज्यादा अगर मैं वक्त लगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा. मशीन से टेक्सचर खराब हो जाता है और रिजल्ट ये होता था कि माइकल के हाथों का पास्ता और अगर किसी ने खा लिया है वो सॉस, तो फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए आपको वो चीज इससे बेहतर नहीं मिलेगी. और माइकल का जो पूरा सिनेरियो रहता था वो ऐसे रहता था कि दोपहर में वो तैयारी शुरू करता था और अपने घर वालों के लिए 5-6 बजे तक खाना तैयार, 9 बजे लेफ्ट ओवर्स मियाँ बीवी जो थे वो बांट देते थे जो भी उन्हें दिखता था होमलेस, और सारे मेहमानों के जाने के बाद माइकल थक हार के अपनी आम चेयर पर जाके बैठ जाता था, टीवी ऑन करता था और सो जाता था. ये नींद

जो माइकल खींचता था इवन आफ्टर बीइंग अ बिजनेसमैन, ये 8 घंटे की प्रॉपर नींद होती थी, 8 से 8.5 घंटे की। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जिन्होंने मैसेजेस भी किए हैं मुझे कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर नींद आ जाती है, 10 बजे तो मैं एकदम सो जाता हूँ, प्रॉपर उठ जाता हूँ, मुझे किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल वैसा ही सीन माइकल के साथ था। सो माइकल अगर सो गया है तो 8 घंटे की नींद तो प्रॉपर है, इट डजंट नीड अलार्म्स, तो कोई जरूरत नहीं है। और 8 घंटे की नींद करके उठ जाता था, जैसे बॉडी का एक स्विच ऑफ हो गया हो, हम सब के साथ होता है। और एलिना जो माइकल की वाइफ थी, वो हमेशा से कहती थी कि मेरा हस्बैंड तो बस मतलब जलजला भी आ जाए तो इसको कोई जगा नहीं सकता है, एक बार अगर ये सो गया तो फिर सो गया, बस आंख लगने की देर है। और फिर कुछ अलग होने लगा इनकी जिंदगी में साल भर में, क्योंकि अभी तक तो एक ही आदत थी। 26 साल की शादी में एलिना ने अपने हस्बैंड को बिल्कुल फोकस्ड एंड शार्पली फोकस्ड देखा है। लेकिन साल 2014 जून के महीने में उनके नेफ्यू की शादी थी माइकल के, एंड बोलते बोलते एक स्पीच देते देते इस पूरे समारोह में, इस शादी के फंक्शन में, वो अपने ही नेफ्यू का नाम भूल गए। अब दो बातें थी, एक होता है टंग स्लिप हो जाना कि आप नाम बोलते बोलते आपके मुंह से किसी और का नाम निकल गया, या गलती से किसी और का नाम ले लिया सिमिलर नाम। पर यहां पे माइकल कुछ सेकंड्स के लिए एकदम जम सा गया, उसे नाम ही नहीं याद आ रहा था। एंड माइकल 2014 में वाज 53 years old, तो ये वो उम्र नहीं है कि बिल्कुल वो भूल जाए। तो उसने मजाक करके इसको कवर अप कर लिया, सारे हंसने भी लगे। लेकिन माइकल की वाइफ एलिना, जो उनके लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेज के खड़ी हुई थी, उनको ये बड़ा ऑड सा लगा कि माइकल ऐसे तो नहीं कर सकता, मतलब दिस लुक्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर वो जोक भी मारता है माइकल, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो भरी महफिल में एक अजीब सा जोक मारेगा, अपनी नेफ्यू की शादी में नेफ्यू का ही नाम भूल जाएगा। दिस इज वेरी नॉट माइकल टाइप ऑफ सिचुएशन। बहरहाल बात आगे बढ़ी, अलीना ने भी इस खूब बात को श्रग ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं देखी जाएगी, आई थिंक थका हुआ होगा। ये जो रात थी, शादी का फंक्शन वगैरह जल्दी खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद जब ये लोग गए नींद खींचने के लिए, तो माइकल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कई सालों बाद रात में जल्दी नहीं सोया, उसे 2 बजे जाकर नींद आई। और ऐसा कभी एलिना ने देखा नहीं। और एलिना ने पूछा कि आर यू ओके माइकल? बोला हाँ, वो शादी का माहौल है ना, तो चलता है आई थिंक, उस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, बट मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मैं सो जाऊंगा। एंड माइकल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 2 बजे सोया। देखो, जो लोग अगर मेरे जैसे हैं, या बहुत लोग होंगे जो रात में जगने के आदी होते हैं, हम लोगों के साथ उल्टा है। अगर हम लोग 10 बजे सो जाएं तो हमारे घर वाले हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये कैसे सो गया इतनी जल्दी। बिल्कुल वैसा ही माइकल के साथ था। जो बंदा शार्प 10:30-11 मैक्सिमम सो जाता है, वो अगर 2:30 बजे तक जगा हुआ है तो बहुत ही अजीब बात है। इसलिए अलीना को थोड़ा सा अजीब सा लगा। बहरहाल उसने शादी का माहौल और तमाम बातें करके उसे टाल दिया। ये पैटर्न रात के 2 बजे तक जगने का हफ्ते भर चला। हफ्ते भर ये चलते चलते नींद माइकल की घट के, जो 8 घंटे की हुआ करती थी, वो 5 घंटे की हो गई। मगर फिर भी माइकल ने अपने आप को बताया कि यार ये रेस्टोरेंट संभालना कोई आसान काम तो है नहीं, स्टाफ्स की परेशानी है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, नॉर्मल स्ट्रेस है शायद इसी वजह से। लेकिन वीक 2nd, 3rd, 4th नींद वो जो 8 घंटे से 5 घंटे की हुई थी, अब वो 3 से 4 घंटे की हो चुकी थी। नाउ दिस इज सीरियस। और अलीना ने ये जब देखा, जो उन्होंने अपनी शादी के 27 सालों में नहीं देखा था, तो वो डॉक्टर के पास लेकी गई। डॉक्टर ने ब्लड वर्क किया, थायराइड चेक किया, ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक किया, और सब कुछ नॉर्मल आया, एकदम नॉर्मल। देखिए, आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई हम भी तो सोते हैं 5 घंटे 4 घंटे, हमारा चल जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी यूज टू है। मगर जो बंदा जिंदगी भर एक प्रॉपर नींद लेता आ रहा हो, और वो अचानक से 1-2 हफ्ते के अंदर 2-3 घंटे सोने लग जाए, इट्स नॉट नॉर्मल। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई देखो, तुम 50 से ऊपर हो चुके, तुम्हारी उम्र, तुम एक बिजनेस ओनर हो, तो स्ट्रेस होता है, तुम मेलाटोनिन

मेलेटोनिन ट्राई करो, जो कि अक्सर इस केस में दी जाती है, तो मेलेटोनिन ट्राई करो। माइकल ने ट्राई करी मेलेटोनिन, कुछ नहीं हुआ। साथ में मेडिटेशन, वाइट नॉइस का सहारा लिया, फिर उसे एम्बियन जैसी दवाइयाँ, लोनेस्ता जैसी दवाइयाँ, ये सब बताई गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। इनफैक्ट माइकल ने अपने दोस्त डॉक्टर से बात करके वो सेरेटिव्स लिए, वो तक गोलियां खाई जिससे एक घोड़ा तक बेहोश हो जाए और ना उठे घंटों तक। उस तक का असर नहीं हो रहा था माइकल पर, हो ये रहा था कि आंखें तो बंद कर रहा है माइकल, लेकिन नींद नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं है। इट्स लाइक आपने बस आंखें बंद कर ली और अपने आईलिड्स के पीछे को देख रहे हैं, बस नथिंग एल्स, फुली अवेयर। डॉक्टर्स को ये शुरुआत में लग रहा था कि ये क्रॉनिक इंसोम्निया है, मतलब नींद बिल्कुल ना आना, बेचैनी होना, ये सब। पर कुछ नहीं काम कर रहा था। ये प्रॉब्लम मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसी है कि आप समझ रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इशू है, लेकिन ये हार्डवेयर इशू है। मैं बताऊंगा आगे कहानी में कैसे। आठवां जब हफ्ता शुरू हुआ ना, तो इस वक्त माइकल की नींद, वो माइकल जो आठ आठ घंटे सोता था, वो अभी डेढ़ घंटे की नींद ले रहा था। और ये नींद कभी डीप स्लीप नहीं थी, टुकड़ों में थी नींद। कहीं 15 मिनट सो लिए, आंख खुल गई, 5 मिनट सो गया, 10 मिनट सो गया, जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा असर उसके काम पे नजर आ रहा था। वो अपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर्स भूल रहा था, एम्प्लॉयज के नाम गलत बोल रहा था। एक दिन तो हद ही ये हो गई कि उसकी वाइफ एलिना रेस्टोरेंट में खड़ी हुई थी और गेट पे थी और वेट कर रही थी कब वो आएगा, और उसने बोला मैं तैयार होकर आता हूं, मगर वो अपने ही रेस्टोरेंट के सामने से 3 चक्कर लगा चुका था। और चौथी मरतबा एलिना ने जब गाड़ी के सामने खड़े होने का फैसला किया कि ये कर क्या रहा है, तब उसे याद आया कि उसका रेस्टोरेंट यहां पर है जहां वो पिछले 30 सालों से जा रहा था। और ऐसा लगातार होता गया। एलिना ने जिद करी कि अब हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो बहुत कंसर्न थी कि आखिर अचानक क्या हो रहा है। जब एक स्पेशलिस्ट को, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने मॉनिटर से हुक इन किया कि जरा चेक किया जाए, रीड किया जाए कि आखिर क्या चल रहा है। सो ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उनको देखा गया, तो ब्रेन की वेव सारी की सारी नॉर्मल थी। वो उसकी जब भी आंखें भारी होती थी तो दिमाग उसका एक हिस्सा जो हम सब में होता है डीप डाउन, जिसे थैलेमस कहते हैं, मैं आपको इसके एंड में ब्रेन के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है थैलेमस, इस नाम से उसे जाना जाता है। और इस हिस्से का काम क्या होता है, ये एक्टिविटीज में बहुत इफेक्ट करता है, स्पेशली हमें सुलाने में और जगाने में और कुछ चीजों पर नजर रखने में। डॉक्टर्स ने आज तक ऐसा नहीं देखा था, उस दौर के एटलीस्ट, जो थैलेमस का फंक्शन माइकल के साथ हो रहा था। ब्रेन उल्टा उसको जगा रहा था, जब उसकी आंखें बंद हो रही थी तो ब्रेन उसको झटके देके जगा रहा था कि उठो उठो, जैसे एज इफ कोई सोना चाह रहा हो, उसको बार बार आप परेशान करके उठाएं कि उठो उठो उठो उठो उठो उठो। एंड दिस वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने डायग्नोसिस लिखना शुरू कर दिया, क्रॉनिक इंसोम्निया विद प्रोबेबल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एक साइकेट्रिस्ट ने पूछा कि भाई आपकी फैमिली में कुछ ऐसा कुछ है क्या, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रही है, कोई डिजीज, कोई डिमेंशिया, समथिंग। एंड माइकल उस टाइम पे चुप रही है, क्योंकि माइकल को एक चीज याद आई जो उसकी मां ने बताई थी, वो बात जो किसी को नहीं बतानी है, वो बात थी उसके बाप से जुड़ी हुई। माइकल ने ये सबसे छुपा रखा था, इनफैक्ट अपने बीवी बच्चों से, कि उसके जो फादर थे एंटोनियो, वो 1991 में दुनिया से चले गए थे। उनके साथ भी नींद की परेशानी थी, स्ट्रेस, डिप्रेशन था, अर्ली अल्जाइमर था, सब कुछ था, मगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंटोनियो जागते रहे, हार्ट उनका, दिल तेज धड़कने लगा, पसीना होता गया, और वो आंखें खुले खुले दुनिया से चले गए। उस टाइम डॉक्टर्स ने कह दिया कि नर्वस ब्रेकडाउन है, नथिंग एल्स। और ये सेम परेशानी उनके दादा, उनके कजन्स, इन सब में हल्की फुल्की देखी गई है। तो ये जेनेटिक बीमारियों का सिलसिला अलग तरीके से चलता आ रहा था। माइकल ने डॉक्टर्स के सामने ये बयान दिया और उसके बाद अपने कजन मार्कोन को कॉल लगाई, जो कि वेनिस में था, इटली में। और मार्कोन ने कहा कि मैं समझ गया कि तूने क्यों कॉल करी है।

ऐसा था जैसे वो इंतजार कर रहा था कि कब एक दिन आएगा कि माइकल उसे कॉल करेगा। और ये डिटेक्शन, इसको पकड़ने के लिए, दिमाग की इस प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए कुछ काम नहीं आता। पेट स्कैन वगैरह आपको स्पेसिफिकली थैलेमस का करना होता है, वरना एमआरआई में या सीटी स्कैन में ये पकड़ा भी नहीं जाता है। लेकिन डॉक्टर्स अमूमन इसके लिए कहते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब इतना रेयर है कि अगर कोई डॉक्टर इस चीज के लिए देख भी रहे हैं तो वो शायद आपको सीधा ना बोल दें कि पेट स्कैन करा लो, वो एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, नहीं निकला तो हो सकता है बोल देंगे कुछ भी नहीं है। पर एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया, एंड शी वॉज राइट। उन्होंने जब पेट स्कैन कराया थैलेमस का स्पेशली, तो ब्रेन का वो हिस्सा जिसे थैलेमस कहते हैं, वहां पे ऐसा था जैसे बिल्कुल अंधेरा, कोई एक्टिविटी नहीं। माइकल को जो हुआ वो बहुत ही रेयर परेशानी है, इसे कहते हैं फेटल फेमिलियल इंसोमनिया। दिमाग का वो सेंटर, वो डीप डीप हिस्सा थैलेमस, ये हमारे दिमाग का ऑन ऑफ स्विच है। जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो ये सारे साउंड को, जैसे कि हेडफोन्स होते हैं ना, नॉइज कैंसिलेशन, तो ये सारे के सारे साउंड्स को कैंसिल कर देता है। जैसे कि आप सोने से पहले कमरे की बत्ती बुझाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही आपके दिमाग के लिए सारे स्विच ऑफ करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है। नॉइज जाएगी, आंखें भारी होंगी, आप धीरे धीरे नींद में चले जाएंगे। इसके बिना बायोलॉजिकली नींद लेना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। और माइकल का थैलेमस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उसको अटैक करने के लिए कोई वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं था, उसकी खुद की बॉडी के प्रोटीन्स का चेन रिएक्शन था जो उसे उसके बाप दादा से मिले थे। उनके जनरेशन में किसी एक पॉइंट पे कोई म्यूटेशन हुआ और ये चलता आ रहा था। अगर किसी में ये माँ बाप में होता है तो डॉक्टर्स ने कहा ये 50% कैरी फॉरवर्ड होता है, और उनके बच्चों को चांसेस होते हैं 50% होने के। 1986 में तक उस वक्त 70 फैमिलीज को था, और उसके बाद ऐसे 300 केसेस पूरी दुनिया में अभी तक हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है सैडली, और कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। और माइकल इस बीच इन्हीं सारे फैक्ट्स के साथ जी रहा था। 4 महीने हो चुके थे और माइकल अभी एक अलग जोन में था, सोना तो वो छोड़ ही चुका था, उसका ब्रेन रिजेक्ट कर रहा था, थैलेमस वाज डैमेज्ड। जब हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं या जानबूझ के जबरदस्ती अपने आप को जगा के रखते हैं फॉर वट एवर रीजन, तो ब्रेन के टॉक्सिन्स जा नहीं पाते क्योंकि ब्रेन उन्हें साफ नहीं कर पाता, हटा नहीं पाता। और दूसरा इफेक्ट होता है मेमोरी पे। आपके दिमाग में जो एक हार्ड डिस्क है, जैसे आपके फोन में है या आपके लैपटॉप्स और पीसीज में है, वो याददाश्त इधर की उधर हो जाती है। जैसे हम कंप्यूटर में ढूंढते हैं ना कि यार ये मैंने इस ड्राइव में सेव किया था, उस फोल्डर में था, दिमाग वैसे ही जगल करने लग जाता है, एंड आपकी याददाश्त बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। और वही माइकल के साथ हो रहा था। और तीसरा, क्योंकि अब आपकी मेमोरी जगल हो चुकी है तो आपके इमोशंस, गुस्सा, खुशी, बात करना, मूड बनना, किसी के साथ भी बैठ के कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना इज इम्पॉसिबल। माइकल को इसका भी अक्यूट हो चुका था, मतलब और भी बड़े लेवल की परेशानी थी। 3 दिन में हलूसिनेशन उसे चालू हो गया था। हालत ये थी कि माइकल रात को 3 बजे अपने डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता था, और एलिना सोचती थी कि ये क्या करने जा रहा है। एंड जब उसने पीछा किया तो उसने देखा कि वो किचन में डाइनिंग टेबल पे 8 लोगों के लिए खाना लगा के बैठा हुआ है। वहां पे उसने टेबल पे प्लेट्स लगा दी हैं और बोले जा रहा है, कह रहे सब आते होंगे अभी, तुम क्या तैयार हो जाओ जल्दी से, अभी खाना लगा देता हूँ मैं। एलिना वॉज लाइक कि वो रोए कि वो क्या बोले, वो चिल्ला नहीं सकती पर क्या करे। और ऐसा नहीं कि वो जिद कर रहा है किसी चीज की, मगर उससे हो नहीं पा रहा है। वो जब सॉस बनाने की कोशिश कर रहा था, वो सॉस जिसकी रेसिपी को उसने 6 साल में मास्टर किया, जो उसको एक एक चीज याद थी, वो भी खड़ा हुआ सॉस को बनाने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ बर्तनों को देखे जा रहा था। ही कुड नॉट मूव। बच्चे माइकल के उससे दूर होने लगे थे।

0: बस उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। माइकल अपनी बीवी अलीना तक को भूल रहा था। और ये जो बेंडेड प्रोटीन है, जो खराब प्रोटीन हो चुके थे, ये थैलेमस से कॉर्टेक्स में एंटर कर रहे थे। ये बिल्कुल पुरानी पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं बिल्कुल वैसा था। उसके सेंटेंसेस, जो फुल सेंटेंसेस जो बोल रहा था, वो एक दो वर्ड्स में बदल गए थे। फिर उसकी वॉकिंग चली गई, चलना भूल गया, उठना बैठना भूल गया, एंड आंखें उसकी खुली रहती थी। अलीना ने बहुत कोशिश करी, तमाम तरीके की ड्रॉप्स उसकी आंखों में डाल की कि वो जग सके या सो सके, कुछ प्रॉपरली कर सके, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड देन केम द संडे, वो संडे जब डिनर तैयार करता ही करता है माइकल, जो इतने टाइम से नहीं कर पा रहा है। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रेशर दिया अपने आप को, जैसे वो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा है और वापस सुलाने की कोशिश कर रहा है, बट नथिंग रियली हैपेंड। अब बच्चे डरने लगे, क्योंकि इजाबेला और मरिया जो कि बड़ी हो चुकी थी, उन्हें डर था कि उनके फादर में ये चीज़ है तो उनमें भी ये आने वाली है। मरिया ने तो चेक करने से ही मना कर दिया, क्योंकि इट्स लाइक कि आपको पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं किस तरीके से इस दुनिया से जाऊंगा या जाऊंगी। फैमिली के पास ही चॉइस थी कि वो पता कर लें कि वो कैसे इस दुनिया से जाएंगे। एंड दोनों बच्चों ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं जानना। हम लोग जो नींद की कंप्लेंट करते हैं, रात में जब नींद लो तो कितनी सारी शिकायतें होती हैं हमारी। हम तभी कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए इस बात के लिए भी कि आप सुबह उठे हैं, लेकिन इस बात के लिए भी कि आपको नींद आ जाती है, इस बात के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही जरूरी है जितना उठने के बाद बोलना जरूरी है। क्योंकि ये सबूत है इस बात का कि हमारा ब्रेन का, हमारे ब्रेन का, दिमाग का वो हिस्सा जिसे थैलेमस कहते हैं, वो काम कर रहा है। आज की तारीख में 40 नोन फैमिलीज हैं अराउंड यूरोप जो इस चीज से गुजर रही हैं, एंड देयर इज नो क्योर एट ऑल। माइकल कुछ टाइम के बाद सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन माइकल ने अपने ब्रेन को लेबोरेटरीज में दे दिया है, डोनेट कर दिया है, और आज भी इस बात पे काम चल रहा है कि किस तरीके से इस चीज से डील किया जाए, बिकॉज अपेरेंटली देयर इज नथिंग जो इस चीज को ठीक कर सके। तो अगर एक स्लीपिंग पैटर्न है, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत मशहूर मिस्टर गैल्विन, तो मैं उन्होंने जो इस केस पे बताया वो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है एज इन कि आपको नींद नहीं आ रही है, एंड यू आर लाइक यार मुझे तो नींद नहीं आती, मैं जग लेता हूं रात को, एंड आप वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं, ये इनवॉलंटरी हो रहा है। कहने का मतलब ये, एक होता है जानबूझ के जगना, एक होता है कि आपको नींद ही नहीं आ रही है। इन दोनों में जरा सा फर्क है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बॉडी आप कुछ भी खा रहे हैं, पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, लेकिन आपके दिमाग को आप कैसे लेके चल रहे हैं इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो चीज है ना, इसका इलाज नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपकी खुदा ना खासा किसी को ये चीज होती है तो वो क्या होता है, हम बीमारी में रेस्ट करते हैं ना। ये बीमारी ऐसी कि आपको रेस्ट ही नहीं करने दे रही है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ माइकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक पूरी जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए खुद के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो और हम सबको खुश होना चाहिए कि दिमाग रात में नींद के दरवाजे बंद करना भूलता नहीं है, टाइम से बंद कर देता है, दैट इज वो मोर इम्पॉर्टेंट। तो सुबह जगना ऑफकोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, मगर टाइम पर अगर आप सो जा रहे हैं ना, या आप लेट रहे हैं और सो जा रहे हैं, इस बात पे भी उतना ही खुश होने की जरूरत है। सो या, दिस वाज द स्टोरी ऑफ माइकल। आप क्या कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, स्टोरी आपके हवाले। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, और आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं दोहा वाला कबीर। प्लीज प्लीज प्लीज मैसेज जरूर कीजिएगा, इन कहानियों को ढूंढने में बहुत टाइम जाता है, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके रिस्पॉन्स आते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या

0: ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: तो मैं गाने शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? बट इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी लाइव राइट नाउ, आई रियली होप कि आप लाइव सुन रहे हो। आज की कहानी बहुत खास है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी और ये एक स्टडी पे, मतलब एक स्टडी पूरी इस पे बेस्ड है। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। शुरू करूँ मैं? ओके, तो सबसे पहले तो भाई मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ ना, बड़ी ज़रूरी है। ऑलराइट, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। फिर किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। और अब वक्त है आज के किस्से का, जो कि एकदम असली है। इट्स अ वेरी वियर्ड स्टोरी, लेकिन कमाल की कहानी। तो शुरू करें, वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। ये भाई कह रहे हैं ड्यूटी खत्म करवाओगे कि नहीं, शुरू कर रहा हूँ भाई। ऑलराइट, सो मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं कई साल पीछे ले चलता हूं आपको। 1960 में चलते हैं। जगह इंग्लैंड। यहां पर ग्लोरिया और ऑब्रे गिबन्स, ग्लोरिया और ऑब्रे, ये दोनों के दोनों बारबेडोस से शिफ्ट हुए थे, इंग्लैंड आ गए थे 1960 में। और जो ऑब्रे था, हस्बैंड जो था, वो एयरफोर्स में काम करता था। दोनों को इस वजह से काफी मूवमेंट करनी पड़ती थी। एज यू नो कि जो लोग अपने अपने कंट्रीज में एयरफोर्सेज में काम करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है। तो ऑब्रे को भी बार बार फैमिली को कभी इधर कभी उधर शिफ्ट करना पड़ता था। और फिर वो वक्त आया जो जिंदगी में खुशियां भर देता है। अप्रैल 11th 1963, 11 अप्रैल की तारीख, और इनके घर में ट्विंस पैदा हुए। ट्विंस का नाम रखा गया जून एंड जेनिफर गिबन्स। और ये आइडेंटिकल ट्विंस थी, दोनों की दोनों बहनें जून और जेनिफर। मगर एक बड़ी, एक नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी यूनिक बात थी इन दोनों में। ये ऐसा लगता था कि कोई एक सिंगल बंदा है, बस उसके दो अलग अलग वर्जन्स हैं। और एक मसला और था, इन दोनों की जो स्पीच थी, जो बोलने का तरीका था, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। जब इन्होंने बोलना शुरू भी किया, सो ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से बात करती हैं, मगर जब सामने वाले से बात करने की बारी आती है तो कुछ मेड अप लैंग्वेज में बात हो रही है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। इनफैक्ट मां बाप भी नहीं समझ पाते थे। एंड दे ट्राइड कि भाई हम समझे अपने बच्चों को, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। मतलब इन दोनों की बातें ऐसी थी, अगर इन दोनों को, बच्चों को, ट्विंस को कमरे में छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि दो रेडियो साथ में चल रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर अगर इनकी स्पीड को, बोलने की स्पीड को कम कर दिया जाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ ऐसा कह रहे हैं। और ये दोनों बच्चियां पूरे दिन कुछ ना कुछ पढ़ती और देखती रहती थी, और ऐसा लगता था कि दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों अब किसी से बात नहीं करेंगे। और शुरुआत में माँ बाप को लग रहा था कि ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा देर में बोलना शुरू करते हैं, कुछ लोग थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं, तो मे बी शायद इन दोनों के साथ वही होगा। लेकिन ये कहानी अभी देखिएगा 0 to 100 कैसे होती है। इन दोनों ने अपनी ही जैसी कोई लैंग्वेज बना ली थी, और ऐसा होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, और स्पेशली अगर ट्विंस होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो दे क्रिएट सम काइंड ऑफ थिंग जो उनके बीच में ही उन दोनों को ही समझ में आए। तो ये तो ट्विंस हैं, तो ये थोड़ी सी उम्मीद थी इनसे। खैर, 1974 में गिबन्स फैमिली अपने ट्विंस को लेकर शिफ्ट हो गए वेल्स में, और ये भी इन्हें घर इनके

कहना भी अंडरस्टेटमेंट है, फ्रस्ट्रेटेड थे. उन्हें लगता था कि ये स्मार्ट हैं पर ये बच्चे घमंडी तो नहीं है, कि चक्कर क्या है, ये बोलती क्यों नहीं है दोनों. और होता ये था कि बाकी बच्चे जो क्लास के थे वो बुली किया करते थे, बहुत बुली करते थे, बहुत परेशान करते थे जून और जेनिफर को. सबको ये दोनों बहनें बहुत वियर्ड लगती थी. और होता है ना कि बच्चों को अब कहां तक समझाएंगे जब वो साथ में होंगे, रिसेस टाइम होगा, सो यू कांट कंट्रोल देम. और बच्चे मजाक उड़ाते थे. दोनों में से अगर किसी का नाम लिया जाए कि जून, जेनिफर, तो दोनों सुन के ऐसे इग्नोर करती थी जैसे वो खुद वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. ऐसा लगता था कि दोनों ने अपनी एक दुनिया बना ली है जिसमें सिर्फ यही दोनों रहती हैं. और जिस स्कूल में थी ये, वहां पे एक लौती ब्लैक स्टूडेंट भी यही दोनों थी. तो ऑब्वियसली जो आप समझ लीजिए मायार क्या रहा होगा बुलिंग करने का, वो भी उस दौर में. टीचर्स को यहां तक कि ये रूल लाना पड़ा स्कूल के अंदर, जो किसी भी बच्चे के लिए नहीं था, कि जून और जेनिफर की जो छुट्टी होगी स्कूल की वो बाकी बच्चों से एक घंटा पहले की जाएगी. तो बाकी बच्चे एक घंटे बाद जाएंगे और जून और जेनिफर को छुट्टी एक घंटे पहले दे दी जाएगी. जस्ट इमेजिन, एक घंटे में पूरा पीरियड निकल जाता है. वो इसलिए क्योंकि टीचर्स को डर था कि बाकी बच्चे बुली करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे, तो इसलिए रूल्स को बेंड किया गया स्कूल के भी. अभी तो स्कूल वाले थे, लेकिन मेन परेशानी घर वालों को हो रही थी. माँ बाप दोनों बड़े परेशान थे. वो जानना चाहते थे कि ये क्या है जो बचपन में उन्हें सिर्फ लग रहा था कि नॉर्मल सी चीज है, नेचुरल है, वो बड़े होते होते बिकेम समथिंग एल्स. दोनों माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, जून और जेनिफर को लेकर, एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए और उसने कहा कि दोनों को सेलेक्टिव म्यूटिज्म है. इसका मतलब है कि कुछ बच्चों को चाइल्डहुड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा बोल नहीं पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. ऐसे बच्चे तभी बोलते हैं जब उनके दिल में कुछ हो कहने के लिए, उनके हिसाब से सेटिंग हो, मतलब उनके हिसाब से एनवायरनमेंट हो, उनके पसंदीदा लोग हों, जो कि ज्यादा होते नहीं है, इक्का दुक्का होते हैं, तभी ये बच्चे बोल पाते हैं, वरना दे विल नॉट स्पीक एनीथिंग एट ऑल. मुश्किल ये थी कि ये चीज तो पता लग गई है कि क्या है, मगर इसे ठीक कैसे किया जाए. और जब तक ये सोचते, एक और परेशानी आ गई. जून और जेनिफर के स्कूल वालों ने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, ठीक है उनके नंबर आते हैं दोनों के, बट हम दोनों बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकते, वी आर रियली रियली सॉरी. और दोनों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में. यहां एक्चुअली जून और जेनिफर के लिए बेहतरी थी, क्योंकि यहां के टीचर्स जून और जेनिफर को समझती थी. उन्हें पता था कि ये दोनों बच्चियां नॉर्मल हैं, बस बोल नहीं पाती हैं. और यहीं पर एक टीचर ने खुलासा किया, क्योंकि वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों से हमेशा वो डील करती हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चियां कोई अपनी मेडअप लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हैं, ये दोनों बच्चियां बात अंग्रेजी में ही कर रही हैं, मगर इतनी स्पीड से बात कर रही हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा है, बहुत स्पीड से बात कर रही हैं. सो नोबडी कैन कॉम्प्रिहेंड कि ये दोनों क्या क्या रही हैं, और वो किसी तीसरे इंसान को सुनने में लग रहा है जैसे इन दोनों ने अपनी ही कोई भाषा इन्वेंट कर ली है, विच इज नॉट ट्रू. स्कूल इन बच्चों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था. यहां पे टीचर्स, जैसे मैंने कहा, कि इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर अभी भी वैसा ही था. जून और जेनिफर स्कूल से घर जाती थी, दोनों बहनें अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती थी, सोसाइटी से एकदम दूर, एकदम कट ऑफ हो जाती थी. यहां पे एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, इस असली कहानी की एक और कड़ी. जून और जेनिफर, इनकी एक और बहन हुई जिसका नाम था रोजी. रोजी ऑब्वियसली इन दोनों की तरह नहीं थी, मगर रोजी इन दोनों के साथ कमरा शेयर कर रही थी, इनकी छोटी बहन थी. और छोटी बहन की यही दुनिया थी, वो इन दोनों को देखती थी, ये दोनों बड़ी वियर्ड सी लगती थी. अब थी तो बहन, मगर रूम तो शेयर करना पड़ेगा. वो देखती रहती थी कि कैसे जून और जेनिफर डॉल्स के साथ बहुत अलग तरीके से खेलती हैं, ये मम्मा डॉल, ये फादर डॉल. और वहां पे एक टेप रिकॉर्डर था जो उन बच्चियों ने रिक्वेस्ट करके लिया था, उस टेप रिकॉर्डर में अपने आप को रिकॉर्ड

रिकॉर्ड करती थी फॉर सम रीजन, और उसमें रैंडम बातें करती थी, बिल्कुल रैंडम. तो अगर आप उन्हें सुनेंगे उस टेप रिकॉर्डर, उनकी रिकॉर्डिंग हो, विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट बाय द वे, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. ऐसा लगेगा कि किसी ने आपसे कहा कि भाई आप गाड़ी लेके जा रहे थे और आगे साइकिल ने लेफ्ट ले लिया. इट डजंट मेक सेंस, बट वो यही बातें रिकॉर्ड कर रही थी एंड दे यूज टू प्ले इट बैक. बार बार अपनी रिकॉर्डिंग को सुनती थी. फेयर्ड, वो अपनी छोटी बहन रोजी से ये दोनों बात करने की कोशिश करती थी क्योंकि रूम शेयर करना है. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इनकी छोटी बहन रोजी 11 साल की हुई तो माँ बाप ने उसे अलग कमरा दे दिया और दोनों बहनों ने, जून और जेनिफर ने, अपनी ही बहन से बात करना बंद कर दिया. जैसे बात करना मजबूरी थी, तो नाउ दे वर नॉट टॉकिंग एट ऑल. आलम यह था कि दोनों बहनें जून और जेनिफर, इनको खाना खिलाना माँ बाप के लिए एक टास्क था. उन्हें खाना रूम के सामने रखना पड़ता था, नॉक करना पड़ता था और फिर ये खाने को उस प्लेट को अंदर खींचती थी कमरे में और किसी के सामने नहीं खाती थी. मगर मुश्किल ये थी कि स्कूल में तो सब लोग हैं, सारे के सारे बच्चे, यहां पर क्या किया जाए. तो ये दोनों के साथ जो हो रहा था वो टीचर्स ने नोटिस किया. इन दोनों का हाथ एक साथ ऊपर जाता था, एक साथ बैठ के खाती थी और ऐसा लगता था कि दोनों एक टाइम पे निवाला बना के एक टाइम पे खा रही हैं. इट वॉज सो मच इन सिंक, जैसे आपने देखा डांस करते हैं लोग, एक कोऑर्डिनेशन होता है, दैट कोऑर्डिनेशन. और घर पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम बिल्डअप हो रहा था. जून और जेनिफर जब घर पे जाती थी तो बच्चों का भी तो मन होता है कार्टून्स देखने का, और उस टाइम पे जब फोन वगैरह नहीं थे तो ऑब्वियसली उनका भी दिल करता था कि वो भी कुछ देखें टीवी पर, यू नो. सो वो क्या करती थी, वो एक लेटर पे, एक कागज पे अपने माँ बाप को लिख के देती थी. उसमें कुछ डिटेल्स होती थी कि उन्हें टीवी कब देखना है, उन्हें टीवी पर क्या देखना है, कितनी वॉल्यूम पर देखना है, मतलब थोड़ा बढ़ा दो थोड़ा घटा दो. और फिर ये दोनों बच्चियां अपने बेडरूम के मेन डोर को खोलती थी, हॉलवे की तरफ जरा सा सिरकती थी और रूम से ही टीवी देखती थी. एंड इस चीज का कोई इलाज नहीं था, बिकॉज करना ही पड़ेगा, माँ बाप मजबूर थे. और धीरे धीरे एक और चीज जो एक पैटर्न नोटिस किया गया वो ये था कि दोनों जब साथ में चलती थी तो बिल्कुल साथ में इन सिंक, जैसे कदम अगर राइट उसका उठ रहा है तो राइट फिर दोनों का ही उठेगा. ये इतना सिंक में चलती थी और लोग बड़े हैरान होते थे ऑब्वियसली जो देखते थे. और अगर कोई देख लेता था इन्हें और नजरें अगर मिल गई तो ये एकदम रुक जाती थी. और रुकना भी ऐसा था जैसे आप किसी वीडियो को पॉज करते हैं. इट्स लाइक कि आपने किसी को बोल दिया स्टैचू, गेम खेलते थे ना बिल्कुल. सो दे यूज टू पॉज देन एंड देयर, के जैसे पॉज कर दिया सब कुछ, टाइम है स्टॉप्ड. और जब तक वो बंदा पास से ना चला जाए वो वॉक नहीं करती थी. ये दोनों की दोनों कोई रिबेल, कोई एक किस्म की ब्रैडी बच्चियां नहीं थी, बट जस्ट दैट दे हैड नो चॉइस. कमाल की बात ये है. सो द कहानी टेक्स अ टर्न यहां पे. दोनों ने डायरी लिखी, दोनों ने सेपरेट डायरीज लिखी हैं और मैं रीड करता हूं एक फ्रेज जो उन्होंने डायरी में लिखा है. ट्रांसलेशन कुछ इस तरह का है, दोनों बहनों ने अलग अलग तरीके से मेंशन किया कि काश हम दोनों अलग हो सकते और हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग होंगे तभी हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे, खा पी सकेंगे, बात कर पाएंगे. तो आप देख रहे हैं ये दोनों बहनें एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती हैं, मगर दोनों की दोनों डायरी में ये अग्री कर रही थी कि दोनों को अलग होना पड़ेगा टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. बढ़िया कैसे होगा. एंड दिस वॉज द थिंग जहां पे मां बाप को सोचना था कि ये कैसे करना है, क्योंकि डायरी हाथ लग गई थी. दे न्यू कि दोनों बच्चियां ये कह रही हैं, बट ये होगा कैसे. अगर दोनों को अलग करने की कोशिश करते थे तो दोनों की दोनों खाना पीना बंद कर देती थी, एक कैटाटोनिक स्टेट जहां पर ऐसा लगता है कि फंक्शनिंग बॉडी की हो ही नहीं सकती. सम हाउ दे वर लाइक इन अ सिचुएशन, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि आप नींद में, आपको नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इट इज दैट काइंड ऑफ स्टेट. इट्स जस्ट दैट आंखें खुली हैं मगर दे कैन नॉट फंक्शन. उसमें खाना पीना देखना चलना बात करना सब कुछ आ जाता है. जैसे उनकी

बॉडी के फंक्शंस का रिमोट छीन लिया गया हो। मगर अलग करने की कोशिश में हार माननी पड़ती थी माँ बाप को ही, इनफैक्ट जो साइकोलॉजिस्ट थी जो स्कूल में उनके साथ बैठती थी उनको भी हार माननी पड़ती थी, और दोनों को फिर एक साथ लाना पड़ता था। और फिर वही होता था अगेन, वही कमरा, अपने आप को कैद कर लेना, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्शन। इट वॉज वेरी नॉर्मल। और फिर एक टाइम आया जब दोनों ने कागज मांगा और उस पर कुछ लिखा, उन्होंने फिर किताबें मांगी। एंड इंटरेस्टिंगली जो किताबों के नाम थे वो इस तरीके से थे कि हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, हाउ टू टॉक लाइक अ ह्यूमन। और वो ये किताबें मांग रही थी कि हम कैसे बात करें इंसानों से, कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है। मगर इट वॉज ऑफ नो यूज, दोनों किताबें पढ़ तो रही थी और रीड भी कर रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था। जून और जेनिफर जैसे साल आगे बढ़ते रहे, इनकी उम्र बढ़ती गई, दोनों की दोनों डिप्रेस्ड होती गई। अब यहां आता है एक छोटा सा लेकिन एक बहुत जरूरी ट्विस्ट। दोनों ने खुद डिसाइड किया कि दोनों मिलकर एक किताब लिखेंगे जिसके अंदर वो अपना सारा दिल का गुबार निकालेंगे। सो एट द एंड ऑफ 1981, समर सीजन चल रहा था उसके आखिर में, उन्होंने बहुत कुछ लिखा नोटबुक्स में, सब कुछ रैंडम, और उन्हें लग रहा कि पता नहीं उन्होंने क्या लिख दिया। एंड पब्लिश करने की भी कोशिश करी लेकिन एक कौड़ी तक नहीं मिली उसकी। एंड वो डिसहार्टनिंग, बच्चे ऑलरेडी परेशान थे और इससे उनका गम, उनके गम में इजाफा ही हुआ। अब यहां पर इंटरेस्टिंग एक और टर्न आया, जो बड़ी हो चुकी थी जून और जेनिफर, इनसे पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन इनकी मुलाकात एक और ट्विन से हुई। ये अमेरिका के ट्विन बॉयज, लड़के थे दोनों, ऑलमोस्ट सेम एज के थे, और ये दोनों अलग किस्म के बच्चे थे। दोनों पार्टी करने वाले, मौज करने वाले, खुश रहने वाले बच्चे थे, और ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थी। पर इन दोनों को लगा कि पहली मरतबा किसी किस्म का ह्यूमन कनेक्शन है। जब दोनों लड़कों से इन दोनों की बातें होने लगी तो खुशी की जगह कुछ दिक्कत पैदा हो गई। दोनों बहनें आपस में लड़ने लगी। जेनिफर ने अपनी जर्नल में, अपनी डायरी में यह तक कह दिया कि वो जून को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। गर्मियां खत्म होने वाली थी, जैसे अभी छुट्टियां खत्म हुई हैं, और अमेरिका वापस लौट गए वो दोनों ट्विन लड़के। एंड वापस ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गई, वापस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं। अक्टूबर के महीने में जून और जेनिफर, उन्होंने डिसाइड ये किया कि वो अब दुनिया से बदला लेंगे। फॉर सम रीजन उन्होंने ये चीज को डायरी में भी मेंशन किया। उन दोनों ने डायरी में ये तक लिखा कि अब हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा जिससे लोग परेशान हो, ऑलरेडी लोग परेशान थे। एंड इन दोनों ने जाके एक स्टोर में आग लगा दी। जब वो स्टोर पूरी तरह से जल गया, उसके बाद डायरी में जेनिफर और जून ने ये तक लिखा कि ये सबसे बढ़िया दिन था मेरी जिंदगी का, दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड ये डायरी में मेंशन किया, मगर ये डायरी क्योंकि माँ बाप नजर रखे हुए थे तो उन्होंने डायरी पढ़ी एंड दे वर रियली रियली सैड। एंड उन्हें खुद सजा देने के लिए पुलिस को बताना पड़ा। जब इन दोनों को जेल में डाला गया तो उन्हें लगा था कि हमें एक साथ रखेंगे, हम मजे करेंगे, लेकिन प्रिजन तो प्रिजन होता है। दोनों को एक साथ रखा गया मगर दोनों लड़ने लगी, फिर दोबारा अलग किया गया, फिर से साथ में लेकर आए। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को साथ में भी रहना था और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करने लगी थी। डॉक्टर्स जो इन दोनों पे नजर रखे हुए थे और लगातार बातचीत कर रहे थे माँ बाप से, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एवरी ब्रांच ऑफ न्यूरोलॉजी, उनका ये कहना था कि बच्चों का कहीं स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। पर फिर इस बात को नकार दिया गया। जजेस, इनफैक्ट पैनल ऑफ जजेस जो वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों बच्चों को हम देख सकते हैं कि ये बीमार हैं किसी तरीके की, तो उन्हें जेल में नहीं डाल सकते, इन्हें भेज दिया जाए। और उन्हें कहां भेजा जाए? ब्रॉडमोर हॉस्पिटल। ये दोनों बच्चियां जून और जेनिफर इस वक्त 19 साल की थी। मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में इन्हें एडमिट किया गया। ऑब्वियसली दोनों खुश नहीं थी, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी। 2 साल ये वहां रही, 2 साल लगातार
सेपरेट अलग अलग वार्ड में इन दोनों को रखा गया। इस दौरान इनसे कहा गया कि तुम दोनों अलग रहोगी, एक दूसरे को खत लिखोगी और तुम्हें इजाजत है कि तुम माँ बाप को भी खत लिख सको। जेनिफर उसने एक अपने खत में लिखा जून को और उस खत में उसने एक बहुत अजीब बात लिखी। उसने बोला, जून मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नंबर आ चुका है, मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। और ये दोनों क्योंकि अलग थी, काफी टाइम एक दूसरे से अलग थी, तो हलूसिनेशंस चालू हो गए थे, दोनों अजीब सी हो गई थी और जो दवाइयां इनको दी जा रही थी उससे इनका ब्रेन फॉगी हो रहा था। जब ब्रेन फॉगी हो रहा था और आंखों को धुंधलापन दिख रहा था तो ये दोनों खत भी नहीं लिख पा रही थी। अब इनके लिए ये तक लिखना मुश्किल हो रहा था। हर साल कोर्ट में पेशी लगती थी, क्या इन बच्चों के साथ क्या करें, और जज साहब जो थे तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन तारीख बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते 12 साल बीत गए। 12 साल इन दोनों ने इस मेंटल फैसिलिटी में बिताए। जब दोनों की दोनों 30-31 साल की हो चुकी थी लगभग, तो हॉस्पिटल चेंज किया गया और इन्हें ट्रांसफर किया गया। जब ट्रांसफर कर रहे थे तो जेनिफर जो थी वो बोली कि उसे बहुत अजीब फील हो रहा है, बीमार फील हो रहा है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है। एंड उसने जून को फिर से बोला कि जून मेरा टाइम आ गया है। एंड सून आफ्टर लाइक आधे घंटे के बाद उसे अक्यूट माइकार्डियल हुआ, जिसको अगर मैं मेडिकल टर्म्स को आसान करके बताऊं तो इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट में, दिल में। अब मगर ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है किसी की जान चली जाए, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है, और ऊपर से दोनों बहुत यंग हैं। मगर उसके बाद भी जेनिफर कुड नॉट सर्वाइव, जेनिफर नहीं बची। अब आपको लगेगा कहानी खत्म हो गई, अब क्या ही बचा, अभी भी बचा है। जेनिफर की जो टूम्ब थी, जो उसकी कब्र थी, जो ऊपर लिखा जाता है, उस पर लिखा गया, वंस वी वर वी मेड टू बी व्हाट वी वर थ्रू लाइफ वी वर वन रेस्ट इन पीस। ये जो लाइन जेनिफर के लिए लिखी गई थी उसके जाने के बाद, ये लाइन पहले से ही तैयार थी, क्योंकि ये लाइन जून ने, जेनिफर की बहन ने, एक पोयम के तौर पे उसके लिए पहले ही लिख दी थी, एज इफ उसे पता था कि जेनिफर जाने वाली है। जेनिफर के जाने के बाद ऑब्वियसली जून पे बहुत बहुत भार आ गया था, लेकिन एक साल वो और इस फैसिलिटी में रही और यहां से एक बहुत बड़ा राज निकल के सामने आया इन ट्विंस का। जब इंटरव्यू लिया गया तो जून से पूछा गया कि जून हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब जब तुम्हारी बहन नहीं है तुम क्या बात कर पाओगी। और जून जो कि इस वक्त 32 साल के करीब थी, जून ने बोला कि हां मैं बात कर सकती हूं, इनफैक्ट मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे से वजन हट चुका है, आई एम मोर रिलैक्स्ड। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी बहन जेनिफर के साथ कैसा रिश्ता था, क्योंकि हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा है, तो उसने बोला वो रिश्ता बहुत टॉक्सिक था, मुझे फाइनली लग रहा है कि हम आजाद हैं और हम में से एक को जाना ही था ताकि दूसरा जी सके। मार्च के 18 तारीख 1994 ऑफ मार्च 1994 जून फाइनली फैसिलिटी से बाहर आई और उसने ये भी बोला कि मैं जी रही हूं नॉर्मल जिंदगी अपनी बहन जेनिफर की वजह से, बिकॉज उसने जाने का फैसला किया। इन दोनों की जिंदगी पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस बीच एक साइकेट्रिस्ट थी, इनका नाम था इयान ग्रेटा, उन्होंने एक बात कही जो हो सकता है किसी के काम आ जाए जिनके घर में ट्विंस हैं। तो उनका ये कहना है, और मैं एक और कहानी में मेंशन कर चुका हूं कि जब ट्विंस होते हैं, उनकी स्टडी के हिसाब से जब ट्विंस होते हैं तो दोनों को सेपरेटली ट्रीट करना बहुत बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली दोनों दुनिया में एक साथ आए हैं मगर दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होना बहुत जरूरी है। इट्स ऑल फन एंड गेम्स, दोनों को सेम कपड़े पहनाना, दोनों को सेम खाना देना, सेम टाइम में देना, एवरीथिंग इज फाइन, पर उन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होना बेहद बेहद जरूरी है फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, उनके उनके जहन को फंक्शनिंग देने के लिए, आगे आगे बेहतर फंक्शनिंग देने के लिए बहुत जरूरी है। उनकी स्टडी में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जब ट्विंस होते हैं तो आपको शायद दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं, पर दोनों इंटरनली कहीं ना कहीं एक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है।
मगर जो कम भी होता है वो नॉर्मल

उनसे ज्यादा ही होता है. सो इफ यू हैव ट्विंस तो उन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है. दो बहनें, दो भाई, भाई बहन, आइडेंटिकल ट्विंस कैसे भी हो सकते हैं, मगर इफ दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली. ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि खाना अलग अलग दो, अलग अलग बिठाओ, एक दूसरे से दूर कर दो. नो, ट्रीटमेंट का मतलब है उनको सिखाने, पढ़ाने, बताने, उनसे बात करने का तरीका हैज टू बी डिफरेंट. ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक मशहूर साइकेट्रिस्ट का कहना है. और ये कहानी जूनो जेनिफर की बहुत सारी और स्टडीज का बेस बनी है, और काफ़ी सारी बच्चों के लिए जो किताबें लिखी गई हैं, माँ बाप के लिए पेरेंटिंग पे किताबें लिखी गई हैं, उनका उनके कहीं कहीं जगहों पर जो बेस लाइन है वो यही कहानी है जून और जेनिफर की, जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट स्टोरीज जो आज तक मैंने पढ़ी होंगी. बट अब ये कहानी आपके हवाले. ओके, बता दो भाई. आदित्य रिखारे तुल

0: रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। इंसान को जब कोई मकाम मिलता है, इज्जत मिलती है, इल्म दौलत या इख्तियार मिलता है, तो उसके साथ एक इम्तिहान भी शुरू हो जाता है कि क्या यह मकाम उसे लोगों से करीब करेगा या वो अपने आप को लोगों से बुलंद समझने लगेगा। अब्दुल्लाह इब्ने बुसर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा प्याला था जिसे अल-गर्रा कहा जाता था और उसे चार आदमी उठाया करते थे। चाश्त का वक्त हुआ, लोगों ने चाश्त की नमाज पढ़ी, फिर वो बड़ा बर्तन लाया गया जिसमें सरीर तैयार किया गया था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। जब लोगों की तादाद ज्यादा हो गई और जगह तंग पड़ने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठ गए। एक आराबी ने हैरत से पूछा, ये कैसा बैठना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह जालनी अब्दन करीमन वलम यजालनी जब्बारन अनीदा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू मिन हवालीहा वदाउ ज़रवतहा युबारक फीहा, यानी उसके किनारों से खाओ और दरमियान के ऊपरी हिस्से को छोड़ दो, तुम्हारे लिए उसमें बरकत रखी जाएगी। सामईन किराम, जरा मंजर को महसूस कीजिए। लोग एक ही बर्तन के गिर्द बैठे हुए हैं, तादाद बढ़ रही है, जगह कम पड़ रही है और उस मजलिस में सबसे ज्यादा मर्तबे वाला शख्स कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप ये नहीं फरमाते मेरे लिए जगह बनाओ, मेरे लिए अलग नशिस्त रखो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बैठने का अंदाज बदल लेते हैं ताकि दूसरों के लिए जगह बन जाए। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर कीजिए। आपने कहा, अब्दन करीमा, अल्लाह ने मुझे एक बाइज्जत बंदा बनाया है, वलम यजअलनी जब्बारन अनीदा, मुझे जब्बार और सरकश नहीं बनाया। तो ये बहुत खूबसूरत तवाजुन है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान तवाजु के नाम पर अपने इज्जत नफ्स ख़त्म कर दे। आप बावकार भी हो सकते हैं और बेक वक्त मुतवाजे भी। आप बड़े मनसब पर भी फायज हो सकते हैं और नरम मिजाज के हामिल भी। आप आलिम, उस्ताद, अफसर, सरबराह या किसी इदारे के जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मकाम आपके और दूसरे इंसानों के दरमियान दीवार बन जाए। आज के दौर में अक्सर इंसान जब तरक्की करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल बढ़ने लगता है, फिर बाज़ औक़ात प्रोटोकॉल के साथ फासला भी बढ़ जाता है। जो कल सबके साथ बैठता था आज अलग बैठता है, जो कल खुद काम कर लेता था आज छोटी से छोटी चीज के लिए दूसरे को आवाज देता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो पूरी इंसानियत में सबसे बुलंद था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान ऐसे बैठते हैं कि एक आम अराबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतकल्लुफी के साथ सवाल कर सकता है, ये कैसा बैठना है? तो सामईन किराम, यही क़यादत का नबवी अंदाज है कि मकाम बुलंद हो मगर इंसान लोगों से दूर ना हो। सामईन किराम, रूह परवर सुन्नत के हवाले से आज की जिस हदीस का हमने जिक्र किया है, इसका बहुत बड़ा एक अमली पहलू ये है कि अपने लिए जगह लेने के बजाय दूसरों के लिए जगह बनाइए। किसी मजलिस में हैं और कोई नया शख्स आ गया, ज़रा सिमट जाएं। कोई बुजुर्ग आ गए, उनके लिए सहूलत पैदा करें। दस्तरखान पर लोग ज़्यादा हैं, अपनी सहूलत थोड़ी कम कर लें। मैं कितना कंफर्टेबल हूँ इसके बजाय कभी ये भी देखिए कि मेरे साथ बैठा इंसान कितना कंफर्टेबल है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर खाने का एक अदब भी सिखाया, कुलू मिन हवालीहा, किनारों से खा।

0: खाओ। फिर फरमाया दरमियान के बुलंद हिस्से को छोड़ दो ताकि खाने में बरकत हो। सामने क्राम प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज का खुलासा यही है कि दीनी मामलात में अपनी राय से पहले कुरान और सुन्नत की रहनुमाई तलाश करें। जिस मसले का इल्म न हो अहले इल्म से पूछें, दलील सामने आ जाए तो अपनी राय छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस न करें। इख्तिलाफ को आना और दुश्मनी का मसला न बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के जरिए साबित करें।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। बच्चा खाना नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, इसे जो फिश की महक नहीं अच्छी लगती, इसे मीट से चिढ़ है, ऐसी बातें हर दूसरे घर में सुनाई देती हैं। बड़े तो खाना खाते हैं।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, काफी कुछ है जो आज की दुनिया में चल रहा है। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी भी हो रही है और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो AI से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत भारी रकम अदा करनी पड़ रही है अगर वो AI का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग अभी 2026 में इस साल से शुरू करना चाहते हैं अपना कंटेंट जनरेशन, ऑनलाइन जाके कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूं आपको जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। यू वांट टू ट्रीट देम एज योर एप्स या फिर वेबसाइट, विच एवर वे यू वांट टू, पर ये बहुत मेन रहने वाली। तो शुरू करते हैं बहुत ही मेजर अपडेट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट है आपके लिए वो वेबसाइट जो आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स देगी। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं, क्योंकि वो मैच करने के लिए, एल्गोरिथम में बिठाने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। और कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स, कुछ BGM ऐसे होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर, जो आप कहीं भी सुनते हैं और आपको लगता है यार ये मैं कैसे निकालूं, फिर आप अगड़म चिगड़म इधर उधर जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, चाहे वो इंट्रो साउंड हो, चाहे वो बीच में आपको ट्रांजिशन देना हो, या फिर ये तो नॉर्मल बताया मैंने, कैसे भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए हो आपके कंटेंट जनरेशन के लिए वो या आपको मिलेगा। अब वेबसाइट का नाम बता देता हूं, तो myinstance.com, myinstance.com, myinstance, तो उस पर जाइएगा। एंड दूसरी एक और वेबसाइट है इससे जुड़ी हुई जिसका नाम है soundbible.com, soundbible.com, soundbible.com और myinstance.com। अब यहां जो है हमने साउंड को मैनेज कर लिया, साउंड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो लोग अक्सर वीडियोस में देखते हैं और काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि यार ये कैसे किया होगा, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। वो आपने देखा है जो लाइक और फॉलो के बटन्स आते हैं बड़े क्रिएटिवली सामने आते हैं किसी वीडियो में, आप देखते हैं भाई ये बड़ा क्रिएटिव था। तो लाइक और फॉलो वाले जो बटन्स हैं अगर आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट एनिमेशंस के साथ, तो उसके लिए भी दो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन इज Jitter, Jitter Video, यहां पे भी आप जा सकते हैं। और दूसरी है videoeffects.com। अब यहां पे जाइए, सुकून से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां से। और तीसरी बात, अगर आपको स्टॉक इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस जिन पे कोई कॉपीराइट ना लगाए, कोई आपको टोके टाके नहीं और आपके कंटेंट जनरेशन में मदद मिले, तो इसके लिए भी दो वेबसाइट है। पहली है pixels.com, pixels.com, और दूसरी है pixabay.com, pixabay.com, pixabay.com। तो कॉपीराइट फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर वेबसाइट जो मैंने आज आपको बताई है। तो कंटेंट जनरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड ये सब आप यूज करेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द न्यूज दिस वीक। देखिए, पूरे हफ्ते आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कोई गैजेट खरीदने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर सामने से, तो आपने देखा है जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, स्पेशली वो हार्डवेयर जो AI के साथ साथ चल रहा होता है। रिपोर्टेडली अभी बताया गया है, NVIDIA की अगर बात करूं तो उन्होंने भी देखा कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है और उन्होंने भी नहीं बढ़ा दी है, 15% प्राइस इंक्रीज देखा गया है। जो AI सर्वर्स हैं, लार्जली उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो है मेमोरी कॉस्ट। मेमोरी जो कॉस्ट जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी प्रेशर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल क्यों ना हो। एंड ये इंक्रीजिंगली नीड, जो इंक्रीज नीड है, बढ़ती हुई जरूरत है जो मेमोरी की, मेमोरी की, इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स की शिपिंग में भी फर्क पड़ रहा है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग और प्राइस रेंज आप देख के सोच रहे हैं यार थोड़ा रुक जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है, वो प्राइस और बढ़ जाएगा। इफ यू हैव सीन अभी रिसेंटली प्लेस्टेशन भी थोड़े से महंगे हुए हैं, सो ये आप बस हम उस एरा में जी रहे हैं, मान के रखिए, जहां पर आपको हार्डवेयर जो कि AI से जुड़ा हुआ है वो महंगा पड़ने वाला है। सो अभी मौका है भाई, ये गोल्ड वाला सिस्टम होना है, अभी ले लो। हाँ ठीक है, एक और खबर आपको बता देता हूँ, वो है एप्पल से जुड़ी हुई। तो एप्पल एज अ कंपनी, उन्होंने काफी इनोवेशन तो नहीं किए रिसेंटली, बस थोड़ा डिजाइन इस बार बदला, विच इज गुड। अभी वो M6 जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेडलाइन में बार बार आ रहे हैं। रिपोर्ट से कहती है कि एप्पल ने जो है अनवील कर दिया है अपना M6 2mm चिप और साथ में M5 अल्ट्रा भी। पर M5 Ultra जो है वो एम्फेसाइज करता है AI परफॉर्मेंस पर. सो व्हाटएवर एप्पल इज डूइंग, आई कैन ओनली विश ऑल द बेस्ट. बाकी एप्पल के जब फोन्स पूरी तरह से सामने आ जाएंगे फॉर द रिव्यू तो आपको उसका रिव्यू भी मिल ही जाएगा. मगर आपके पास कोई अपडेट है सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर हमें भी जरूर बताएगा. दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक अपडेट, दिल से देसी.
1: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM107, दिल से देसी.

0: 107. Dil se desi.
1: Scam alert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका इस फ्रॉड अवेयरनेस के नए एपिसोड में. दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में, नए स्कैम के बारे में हर रोज हम बात करते हैं और आज भी एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे साथ हो जाता है. हमारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है लेकिन ये स्कैमर्स नए तरीके ढूंढते हैं और इस नए जमाने में उनसे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है. और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में जो एक्चुअली में हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारे साथ ये फ्रॉड हो ही जाता है, लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है. ये है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड. एक ऐसी चालाकी है जहां स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एड्स के जरिए बड़े आम से भोले भाले बायर्स को फंसाते हैं. आजकल लोग इंटरनेट पर शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं, खास तौर पे घर की फीमेल्स, और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके निकालते हैं. इस फ्रॉड से बचने के लिए इसके तरीके और इसके बड़े सॉल्यूशन को समझना बेहद जरूरी है. सबसे पहले लेकिन हमको समझना होगा कि ये फ्रॉड काम कैसे करता है. दोस्तों स्कैमर्स अक्सर बिल्कुल असली दिखने वाली नकली शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं. ये साइट्स फेमस ब्रांड्स के होते हैं, कॉपी होते हैं ताकि आपको शक ना हो. इम्पॉसिबल लो प्राइसेस इन वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं. मुझे याद है एक बार मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट देखी थी और ये वेबसाइट वो थी जो हमारे घरों पे खाना डिलीवर करती है और ये वेबसाइट इतनी ज्यादा असली लग रही थी कि लोग अगर इस पर क्लिक करें तो समझ में साफ आता था कि ये बिल्कुल असली है. आप उसमें ऑर्डर डिटेल डालते हैं, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होता है, फिर आप पेमेंट अपनी डालते हैं, सारी डिटेल डालते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा हो जाता है और आपके घर खाना नहीं पहुंचता है. फिर आप सोचते हैं कि ये खाना मेरे घर पहुंचा क्यों नहीं, जरा कॉल करें. और जब कॉल पर जाते हैं, उस वेबसाइट की डिटेल्स जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में कोई फोन नंबर, कोई हेल्पलाइन इस वेबसाइट में तो है ही नहीं, तो आप कॉल किसको करेंगे. तब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है. तो नए जमाने के नए जो स्कैमर्स हैं, नए जो थीव्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको पता भी ना चले. ये वेबसाइट्स जो फेक होती हैं इनको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी हो तो इनको पकड़ना आसान भी होता है. और इसी तरह के सॉल्यूशंस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्रॉड होते कैसे हैं. इम्पॉसिबल दिखने वाले कम या कहें लो प्राइसेस में गुड्स का अवेलेबल होना, ये लोग पॉपुलर आइटम्स पर इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं जो सच होना नामुमकिन होता है. उसके अलावा सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अट्रैक्टिव एड्स दिखाना, उसके अलावा फेक वेबसाइट पर ऐसे डिटेल्स डालना कि आपको लगे कि ये सच है, उसके अलावा फिर होता है ट्रैप. जब आप ऐसी जगह से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये स्कैमर्स आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं बेचते आपको, या फिर आपको एक बेहद सस्ता नकली प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं. इसके साथ ही वो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी चुरा लेते हैं ताकि बाद में आपके अकाउंट से पैसे निकाल सके. लेकिन इससे बचे कैसे, इनके पांच तरीके हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के, आसान. सबसे पहले पैडलॉक आइकॉन को चेक करें. हमेशा वेबसाइट के URL यानी कि एड्रेस बार में चेक करें कि वहां एक पैडलॉक यानी कि ताला का जो आइकन होता है ना, वो छोटे से लॉक का जो आइकन होता है, वो अवेलेबल है या नहीं है. इसका मतलब होता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है. अगर ताला लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है. उसके अलावा HTTPS ये शुरू होना जरूरी है. उसके अलावा वेबसाइट का URL इसको भी जरूर चेक करें. फिर रिसर्च अनफेमिलियर स्टोर्स फर्स्ट. अगर आप किसी बिल्कुल नए या अनजान ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें. सोशल मीडिया पर रिसर्च करें, सर्च इंजन पर रिव्यूज पढ़ें. अगर बाकी लोगों ने उस साइट को फ्रॉड बताया तो वहां से दूर रहें. टू गुड टू बी ट्रू डील्स, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का. अगर कोई नया या अनवेरिफाइड स्टोर किसी 50,000 के फोन को सिर्फ 5,000 में दे रहा है तो लालच में बिल्कुल ना आए. ऐसे बड़े और अजीब डिस्काउंट हमेशा एक फ्रॉड ट्रैप होते हैं. उसके अलावा COD, नए या कम भरोसेमंद स्टोर्स पर कभी भी एडवांस ऑनलाइन पेमेंट ना करें. हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें. उसके अलावा एक और

0: तरीका है बचने का वो है, अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा हुआ तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं, ताकि आगे होने वाले स्कैम से भी आप बच सकें। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जो बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड पर। उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा और आपके साथ इस तरह का स्कैम कभी नहीं होगा। सुनते रहें FM 107, मुलाकात होगी नए एपिसोड में जल्द ही। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station FM 107, FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। एनबीए की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये रिकॉर्ड्स किसी प्लेयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, कंसिस्टेंसी और लॉन्गेविटी की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड बास्केटबॉल लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार के नाम रहा। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड। 5 अप्रैल 1984, ये तारीख NBA की स्कोरिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन करीम अब्दुल जब्बार ने NBA में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनका करियर टोटल था 38,387 पॉइंट्स, एक ऐसा नंबर जो उस वक्त बास्केटबॉल की दुनिया में एक नया बेंचमार्क बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ स्कोरिंग एबिलिटी नहीं थी, इसके पीछे थी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर। थोड़ा पीछे चलते हैं और मालूम करते हैं कि करीम अब्दुल जब्बार ने अपना सफर कब शुरू किया था। करीम अब्दुल जब्बार का NBA करियर 1969 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने मिलवाकी बक्स के साथ प्रोफेशनल बास्केटबॉल में कदम रखा। अपने पहले सीजन में करीम अब्दुल जब्बार ने सबको बता दिया कि वो आम प्लेयर नहीं हैं, यानी देयर वाज समथिंग इन हिम, द स्पार्क वाज देयर इन हिम। उनकी हाइट, एथलेटिक एबिलिटी, बास्केटबॉल इंटेलिजेंस और स्कोरिंग स्किल ने उन्हें NBA के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। और फिर उनका सिग्नेचर मूव, जी हाँ, स्काई हुक। स्काई हुक करीम अब्दुल जब्बार की पहचान बन गया। ये शॉट देखने में सिंपल लगता था, लेकिन डिफेंडर्स के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल था। करीम अपनी हाइट और रीच का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बास्केट के करीब से एक हाई आर्किंग हुक शॉट लगाते थे। साल गुजरते गए, लेकिन करीम की स्कोरिंग कंसिस्टेंसी कम नहीं हुई। वो हर सीजन अपनी टीम के लिए रिलायबल स्कोरिंग ऑप्शन रहे, और यही उनके रिकॉर्ड की सबसे खास बात थी। 38,387 पॉइंट्स एक या दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन्स का नतीजा नहीं थे दोस्तों, ये पॉइंट्स एक लंबी और कंसिस्टेंसी ब्रिलियंट करियर का नतीजा थे। करीम ने मिलवॉकी बक्स के साथ भी सक्सेस हासिल की और बाद में लॉस एंजलिस लेकर्स का हिस्सा बने। लेकर्स के साथ उनका करियर और भी लेजेंडरी बन गया। मैजिक जॉनसन के साथ उनकी पार्टनरशिप NBA हिस्ट्री की सबसे मशहूर जोड़ी में शुमार होती है। करीम ने अपने करियर में 6 NBA चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 6 NBA मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड्स भी हासिल किए, जो NBA हिस्ट्री में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इसके अलावा वो 19 मरतबा NBA ऑल स्टार सेलेक्ट हुए। ये नंबर्स बताते हैं कि करीम सिर्फ एक ग्रेट स्कोरर नहीं थे, वो अपने दौर के सबसे कंप्लीट और डोमिनेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक थे। दोस्तों, यहाँ पे बताना जरूरी होता है कि उनका ये स्कोरिंग रिकॉर्ड तकरीबन 29 साल तक कायम रहा, यानी 39 years। इस दौरान NBA में कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोरर्स आए, लेकिन करीम अब्दुल जब्बार के रिकॉर्ड तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था। फिर 2023 में एक और बास्केटबॉल लेजेंड ने करीम अब्दुल जब्बार का ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेब्रॉन जेम्स। मॉडर्न बास्केटबॉल में अगर कोई स्टार खिलाड़ी है तो लेब्रॉन जेम्स के बारे में लोग एग्जांपल देते हैं। तो लेब्रॉन जेम्स ने करीम अब्दुल जब्बार के 38,387 करियर पॉइंट्स के रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिया। 3 साल पहले की बात है ये। लेकिन रिकॉर्ड टूटने का मतलब ये नहीं कि करीम की अचीवमेंट की अहमियत कम हो गई, बल्कि इससे ये और साबित हुआ कि करीम का रिकॉर्ड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था दैट इट स्टूड फॉर 39 years, तकरीबन 4 decades तक NBA का स्कोरिंग बेंचमार्क रहना अपने आप में एक फेनोमिनल अचीवमेंट है। सो फाइनली, करीम अब्दुल जब्बार एक लेजेंडरी स्कोरर, एक 6-time NBA चैंपियन, 6-time MVP और एक आइकॉनिक स्काई हुक आर्टिस्ट, और एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने NBA की तारीख में 38,387 पॉइंट्स के साथ अपनी पहचान हमेशा के लिए अमर कर दी।
उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में मजलिस को बहुत अहम मकाम हासिल है। मजलिस सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती, बल्कि मुलाकात, गुफ्तगु, माशरे और अपनाइयत का एक खूबसूरत जरिया होती है। ये वो जगह है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खैरियत पूछते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। पुराने वक्तों में मजलिस घर का ऐसा हिस्सा होता था जहाँ मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था। आज भी कई घरों में मजलिस के लिए खास जगह होती है। इसका अंदाज जदीद हो सकता है, लेकिन इसकी असल रूप वही है, मेहमान को इज्जत देना और लोगों को करीब लाना। मजलिस में दाखिल होते वक्त सलाम करना और वहां मौजूद लोगों से अदब के साथ मिलना रिवायती रवैया है। पहले बुजुर्गों को सलाम किया जाता है, फिर दूसरे अफराद से मुलाकात होती है। बैठने के लिए जगह पेश की जाती है और मेहमान की राहत का ख्याल रखा जाता है। मजलिस की सबसे खूबसूरत बात गुफ्तगू का सलीका है। यहाँ लोग एक दूसरे की बात तवज्जो से सुनते हैं। अल्फाज का लहजा, मोहब्बत और अल्फाज मोहतरम होते हैं। हर मुलाकात में जरूरी नहीं कि कोई रस्मी बात हो, कभी रोजमर्रा के हालात, मौसम, खानदानी खबरें या खुशगवार यादें भी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाती हैं। कतरी मजलिस में सुनने की आदत को भी बहुत अहमियत दी जाती है। जब एक शख्स दूसरे की बात तवज्जो से सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी राय और तजुर्बा कीमती है। ये रवैया खास तौर पे बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल बनता है। बुजुर्ग मजलिस का एक अहम हिस्सा होते हैं। वो अपने तजुर्बे, यादें और रिवायतें, कहानियां नई नस्ल तक पहुँचाते हैं। उनकी बात से बच्चों को अपने माशरे, शहर और विरसे के बारे में सीखने का मौका मिलता है। इस तरह मजलिस सिर्फ खूबसूरत मुलाकात की जगह नहीं रहती, बल्कि तालीम और तरबियत का जरिया भी बन जाती है। कहवा और खजूर का जिक्र मजलिस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मेहमान को कहवा पेश करना मेजबान की खुलूस भरी पेशकश होती है। छोटे प्याले को अदब और मोहब्बत के साथ दिया जाता है। मेहमान की पसंद और राहत का ख्याल रखना भी अच्छे मेजबान की अलामत है। मजलिस का ताल्लुक सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, कदरी समाजी जिंदगी में लोग मुख्तलिफ जगहों पर भी जमा होते हैं, जहां मोहतरम गुफ्तगु और मिल बैठने का रिवाज नजर आता है। अहम ये होता है कि लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और रابطے को मजबूत करें। जदीद जिंदगी में लोग मसरूफ जरूर हो गए हैं, मगर इंसानी मुलाकात की अहमियत कम नहीं हुई। फोन और पैगाम रابطہ रखने में मदद देते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर बात करने का सुकून अपनी जगह रखता है। मजलिस इसी इंसानी रابطے की याद दिलाता है। मजलिस में बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो देखते हैं कि मेहमान कैसे आते हैं, किस तरह सलाम किया जाता है और बड़े लोगों से किस अदब के साथ बात की जाती है। मुशक्कत, सबर, नरमी और इज्जत जैसे अखलाकी उसूल अक्सर जबानी तालीम के बजाय अमल से ज्यादा अच्छी तरह समझ आते हैं। मजलिस की सजावट में भी सकाफती रंग नजर आ सकता है। फर्श, बैठक, खूबसूरत नक्शोनिगार और साफ सुथरा इंतजाम मेहमान के लिए सुकून का माहौल पैदा करता है। साथ ही सजावट का असल मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि आराम और मुनासबत भी होता है। मजलिस हमें एक अहम बात सिखाती है, बेहतर गुफ्तगु के लिए दिल में इज्जत और अल्फाज में नरमी होनी चाहिए। किसी की बात को बगैर वजह काटने के बजाय उसे पूरा सुनना, इख्तलाफ की सूरत में एहतराम का लहजा रखना और मुस्कुराहट के साथ पेश आना अच्छी सोहबती आदतों में शामिल है। कतर की मजलिस एक ऐसी रिवायत है जो माजी को हाल से और बुजुर्गों को नई नस्ल से जोड़ती है। इसमें कहवे की खुशबू, अच्छे अल्फाज की मिठास और मुलाकात की गर्माहट शामिल होती है। तो आज के कल्चर मूवमेंट में हमें ये सीखने को मिला कि मजलिस की खूबसूरती उसके फर्श या कमरे में नहीं बल्कि उन लोगों में होती है जो वहाँ मोहब्बत, अदब और अपनायत के साथ बैठे होते हैं। मजलिस एक जगह ही नहीं बल्कि राब्ते और एहतराम की जिंदा रिवायत है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मूवमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: जी, तो वो उसको क्लीन करने के बाद आप दोबारा अपने मुंह के अंदर रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा बाइट करके रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आता है टाइमिंग का। फॉर एग्जांपल आपका कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है, उसके बाद एक एक मिनट बहुत जरूरी होता है। असूलन जो है आइडली जो है 20-30 मिनट्स के अंदर आपको अपने डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना है। कोई भी इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक हो, आपने वहाँ पर लाजमी तौर पर विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर पहुँचना है, ताकि वो सारी चीज़ को असेस कर सकें और उस कंडीशन को चेक करके उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जा सके। क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आप अर्ली जाते हैं और कोशिश करें कि अगर आपका जो दांत है वो अगर टूटा है या उसका कोई भी हिस्सा है उसको संभाल के रखें, उसको साथ अपने लेके। ये जो मैंने 2-3 सॉल्यूशंस बताए, एक सलाइवा हो गया, एक इसके अलावा दूध हो गया, इसके अलावा सलाइन या पानी में आप रख के उसको जा सकते हैं डेंटिस्ट के पास। तो ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी जाते हैं, जितना जल्दी जाएंगे उतना जो उसका ट्रीटमेंट है वो अच्छा हो सकेगा।
1: ठीक ठीक। और स्पेशली ये से आपने बताया कि सॉल्यूशन जो है वो उसमें रखना बहुत ज़रूरी है, एक तो सलाइवा है और ठंडा दूध आपने बताया था। बिल्कुल, ये नई मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है। जाहिर है आप डेंटिस्ट हैं, आपका फील्ड है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम जैसे कि दांत निकल गया या दांत टूट गया तो हम उसी पे परेशान हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे सुनने वाले हैं वो थोड़ा सा उनको टेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये खासतौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि जैसे ही वो 2-3 साल के होते हैं चलना स्टार्ट करते हैं तो वो
1: कभी गिरते हैं
0: कोई चीज़ लग जाती है, क्योंकि वो बेफिक्र होकर भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं।
1: जी,
0: तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ये इंजरी हो सकती है, दांत टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके दांतों के साथ।
1: ठीक, ये बहुत अहम पॉइंट है लिसनर्स, और ये मेरे ख्याल हम सब के लिए भी कि बच्चों के तो अक्सर कुछ ना कुछ जो है ना वो कोई ना कोई जो छोटा सा पार्ट है वो भी बाजू का टूट जाता है, तो उसे भी आपने
0: जी बिल्कुल भी रखना है। मैंने जैसे पहले फरमाया कि कुछ अगर पार्ट टूट जाए दांतों का तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉर्नर टूट गया है, कोई पार्ट टूट गया है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कॉम्पोजिट फिलिंग कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: वो एक आप समझे सिंपल सी इंजरी है जो कि मोस्ट कॉमन है, ये इमरजेंसी में नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई शार्प एज है वहाँ पे उसको आपको स्मूथ आउट करवाना है, क्योंकि वो जो शार्प एज है वो आपकी जुबान को भी इंजर करेगा, आपके होंठों को कर सकता है और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी कर सकता है। इसलिए इसके अलावा भी अगर आपको कभी भी शार्प एज आपके दांतों में फील हो रहा है जुबान से या गाल से किसी भी चीज के साथ, उसको आपने जाके स्मूथ आउट करवाना है। इंजरी किसी किस्म की भी हो, आपने फौरी तौर पे अपने डेंटिस्ट के पास जाना है या जो भी करीब आपको हॉस्पिटल पड़ता है लाजमी आपने जाके चेक करवाना है।
1: ठीक ठीक। इस तरह से आपने डॉक्टर साहब बताया कि दांत जो है टूट गया या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और उसमें यह कि पहले थोड़ा सा उसको मैनेज करना है, मगर अगर नहीं हो रहा खासतौर पर ब्लीडिंग की बात है तो फिर इमरजेंसी में जाना बहुत ज़रूरी
0: है। जी बिल्कुल, अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो आपने कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा आइस अप्लाई करें। ठीक है, और बस ये कोशिश करनी है कि जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो डायरेक्टली स्किन के साथ अटैच ना हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई लिप इंजरी हो जाती है या कोई भी दांत पे होता है तो आपको उसको थोड़ा सा जो है आइस के साथ उसको थोड़ा सा मसाज करना है 10-15 मिनट के लिए। अच्छा। उससे जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी सी कम होगी।
1: ठीक ठीक बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि दांत निकल गया चोट से या ट्रामा से कुछ भी, तो उसका हल जैसे है डॉक्टर के पास यानी आप लोगों के पास पहुंचने से पहले पहले हमें क्या करना है, तो उसके बाद जो आप इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वो रूट कैनाल कराई है और इसी तरह से अगर वो चोट लग जाए उसमें तो फिर क्या हम कर सकते हैं उसमें, बाजू का तो उस पर जो क्राउन लगा होता है वो भी टूट जाता है या फिर बहुत मुश्किल आ जाती है।
0: जैसे आपने क्राउन की बात की और अगर आपने पहले ही कोई प्रोसेसेस लगवाई हुई हैं जो कि क्राउन है, ब्रिज है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो निकल गया तो आप अगर वो जिस व्हाटएवर कंडीशन में वो आपके पास है आपने उसको संभाल के रखना है।
1: अच्छा
0: जी, किसी कंडीशन में ऐसे होता है कि वही जो आपका क्राउन या ब्रिज बना हुआ है वो दोबारा भी लग सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है। ठीक है,
1: अच्छा,
0: तो उसकी फिटिंग चेक करते हैं, अगर फिटिंग सब कुछ नॉर्मल हो, क्योंकि अक्सर औकात जिस तरह की उसका शेप होती है क्राउन वैसे ही बाहर निकल आता है, तो उसको हम दोबारा से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि कोई पार्ट या कॉर्नर टूट गया वो हम फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। सारा जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, किस टाइप की इंजरी हुई है, किस टाइप का ट्रॉमा है दांत के साथ। अच्छा। अगर ऊपर वाले पार्ट में है तो फिलिंग से ठीक हो जाएगा, और अगर उसकी कुछ डीप लेयर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे दांत के अंदर डेंटिन होता है और जो उसकी नर्व सप्लाई होती है उसको हम पल्प कहते हैं
1: जी।
0: तो अगर जो है वो ट्रॉमा आपके पल्प तक पहुँच गया तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें काफ़ी हद तक रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो भी दांत की कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो बाज़ औक़ात दांतों के सिलसिले में ऐसा होता है कि स्टार्ट में ऐसा पेन उस तरह से नहीं होता
1: जी।
0: लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जो है वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है। इसमें अच्छा। कलर चेंजेस भी आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोग होते हैं उनको सेंसिटिविटी भी होती है, ठंडा गर्म स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा लगना, तो ये कुछ दिनों के बाद जो अपने सिम्टम्स हैं वो शो करता है।
1: इसमें डॉक्टर साहब आपने कलर चेंज की बात की, तो क्या वो जो ब्लैक सा हो जाता है?
0: जी जी बिल्कुल,
1: या और कोई?
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई इंजरी हुई तो उसके बाद जो उसका कलर चेंज होता है, इसका मतलब है कि उसकी जो नर्व और ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो बाज़ों का जो है वो दांत वाइट से पहले हल्का सा पिंक कलर का होता है और उसके अच्छा। बाद फिर वो ग्रे और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है, जो उस पल्प होता है, वो इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। जो वो नेक्रोसिस हो सकती है
1: जी।
0: जो कि शो करता है कि दांत जो है वो ऑलमोस्ट डेड है। तो ऐसी कंडीशंस में आपने कभी भी घर में खुद से ट्रीटमेंट नहीं करने, आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो उनको अच्छी तरह क्लिनिकल असेस करेंगे, और हमेशा एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे में चीज़ क्लियर होती है कि नीचे आया जो रूट है उसके सराउंडिंग्स, उसकी कंडीशन कैसी है। ये एज पे भी डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल एडल्ट एज है तो उसमें हम क्योंकि नीचे वाले दांत आ चुके होते हैं जो परमानेंट दांत होते हैं
1: जी।
0: तो फिर उसको हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चों में उसका ट्रीटमेंट होता है ना
1: जी।
0: क्योंकि वो मिल्की टीथ होते हैं और नीचे जो है परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा सेपरेट ट्रीटमेंट होता है।
1: तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि कोई भी ट्रामा है और ज़्यादा हो गया है, या उसमें पूरा जो उसका टीथ है वो इन्वॉल्व है दांत, तो उसमें रूट कैनाल करनी ज़रूरी होती है
0: निकालना पड़ेगा
1: जी।
0: इससे मैंने पहले कहा कि अगर दांत किसी ट्रॉमा में वो बाहर भी निकला था अपने सॉकेट से, तो बाज़ औक़ात वो जो दांत है वही अपनी अगर हम दोबारा लगा दिया जाए, अगर वो जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी क्लिनिक पहुंच जाए,
1: बिल्कुल
0: लेट ना करे, और उसने रूट को जो है जड़ है उसकी उसको साफ ही रखा हो, उससे ना क्लीन किया हो, तो बाज़ औक़ात जो है वही दांत दोबारा रीइम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा कभी इंजरी में दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ टाइम के बाद उसको स्प्लीन कर दिया जाता है, वो अपनी जो ग्रिप है पकड़ है वो दोबारा से पकड़ लेता है, तो वो डिफरेंट उसमें सिनेरियो आ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें रूट कैनाल की जाए। जैसे मैंने कहा कि जो अगर बच्चों के दांत हैं जो मिल्की टीथ होते हैं उनमें अगर इस तरह का कोई इशू हो जाए, अगर दांत बाहर निकला है, तो मिल्की जो दांत है जो डिसीडियस टीथ जिसे हम कहते हैं वो हम कभी भी वापस दोबारा नहीं लगाएंगे। ये जो दोबारा लगाने वाली बात है ये सिर्फ अडल्ट पेशेंट में होगी जो परमानेंट दांत होता है। दूध का दांत हम कभी भी दोबारा नहीं लगाते क्योंकि नीचे जो है वो एक परमानेंट दांत आ रहा होता है। ठीक है, तो हम उसमें कभी भी वो नहीं लगाते, इसलिए बच्चों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू अडल्ट का।
1: ठीक है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि वो जब दांत से लगाते हैं उसी सॉकेट में और वो ऐसे ही जैसे इम्प्लांट हो जाता है, तो क्या वो रूट समेत बाहर आ जाता है कि रूट जो है वो अंदर ही होती
0: है? ये ट्रॉमा पे डिपेंड करता है।
1: अच्छा।
0: बाजू का आधी रूट अंदर ही रह जाती है, बाकी बाहर आ जाता है, उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो परमानेंट दांत है तो वो फिर हम रूट को निकाल के तो इम्प्लांट जो एक सेपरेट ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: इन केस अगर कोई परमानेंट टूथ जो है वो पूरा निकला है तो उसको हम एज इट इज सॉकेट के अंदर दोबारा लगाते हैं, उसको रीइम्प्लांट किया जाता है। कई बाज़ुकात में जो टेम्परेरी स्प्लिंट होते हैं वो पहना दिया जाता है पेशेंट को, ताकि अच्छा। जो दांत अपनी जगह पे है वो उसी जगह पे कुछ अरसा रहे, ताकि अगर उसकी नेचुरली ग्रिप बन सकती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर उसको तारों के साथ कभी लगा दिया जाता है ताकि टाइम के साथ उसको असेस किया जाता है।
1: ठीक। अभी ये तो आपने बता दिया कि बच्चों में जैसे कि बहुत ज़्यादा एक पैनिक भी हो जाते हैं पेरेंट्स के दांत निकल गया है, और अगर मिल्की टीथ है आपने कहा कि मिल्क टीथ है तो वो अगर हैं तो फिर आप नहीं उसको
0: कर जी हैं। बिल्कुल जी। अगर मिल्की टीथ हैं और उनमें कोई ट्रॉमा हुआ है, वो दांत निकल आए, तो फिर हम ऐसा है कि उसको दोबारा से वो इम्प्लांट नहीं करते क्योंकि नीचे जो हमारा नेचुरल टूथ आ रहा होता है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। अगर हम वो लगाएंगे नीचे इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी जो नीचे वाला दांत है उसको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जो मिल्की टीथ होता है उसने वैसे भी टाइम के साथ निकल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एज क्या है बच्चे की, जब वो ट्रॉमा हुआ है उसके जो नीचे दांत आ रहा है उसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है।
1: अच्छा।
0: ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है और इसके लिए जो है वो पेरेंट्स को बच्चों को क्लिनिक लाना पड़ेगा, घर से ये खुद से वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ एक्सरसाइज करने पड़ते हैं उसमें ये चीजें क्लियर होती हैं कि नीचे कितनी डेवलपमेंट हुई है, जो नीचे परमानेंट दांत था और कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, तो ये क्लिनिकल सारा एग्जामिन किया जाता है।
1: ठीक है, इसमें ये सारी जो चीज़ें इसमें यही कि उसमें एक्सरे कराना और ये जो है मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब तो इसमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खुद से ही जो टीथ है बगैर किसी चोट के, ट्रामा भी नहीं है, फिर भी वो दांत गिर जाते हैं, जैसे कुछ एजिस पे जैसे आपने कहा डिपेंड करता है, तो वो क्या किस तरह से?
0: देखिए वो जो नेचुरली है वो डिफरेंट उस पर आ जाती हैं कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जांपल उनके मसूड़े कमज़ोर हैं किसी भी एज में हो सकता है, अगर कोई दांत उस तरह से साफ नहीं करता तो सबसे पहले पेरियोडोंटाइटिस होता है, जो मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं वो बेसिकली एक कवर है हड्डी का, हड्डी के अंदर हमारा दांत है, तो जैसे हम क्लीन नहीं करेंगे वहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएंगे, ऐसा ऐसा जो हमारी पकड़ है उस दांत की वो कम होने लग जाती है। तो जिसको भी मसूड़ों का मसला हो, गम्स का मसला हो, तो उनकी जो ग्रिप जैसे कम होगी तो वो दांत खुद से बाहर आ जाते हैं। ये मोस्टली उन एजेस में होता है, खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या उन्हें कोई भी मेडिकल रीजन हो, इशू हो, तो उनमें जो है दांत ऐसा ऐसा कमजोर हो जाते हैं, विद एज भी ये चीज जो है वो सामने आती है।
1: ठीक, तो इसमें भी फिर आप उसमें इम्प्लांट करते हैं या किस तरह से, जैसे पेशेंट आपके पास आए तो कोई एग्जांपल हमें दीजिए कि किस तरह के जो पेशेंट हैं वो इस तरह के जो ट्रामा हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
0: जरूर, सबसे पहले जो डेंटल ट्रीटमेंट है ये पेशेंट्स की एज
1: जी
0: ठीक है और उसकी जो लिविंग हैबिट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस के, ठीक है, और सबसे जो मेन है वो जो उसके मुंह के अंदर बोन है वो उसकी कंडीशन कैसी है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हेल्दी है, बाय एनी चांस उसका दांत जो है वो निकलना पड़ गया, अगर हमने उस पर इम्प्लांट करना है तो एक तो उसको मेडिकल कोई इशू नहीं होना चाहिए, सबसे जो आइडियल सिनेरियो होता है, और एक अच्छी वहाँ पे जो बोन है उसका मौजूद होना ज़रूरी है। जब वो होता है तो वहाँ पे हम इम्प्लांट कर सकते हैं। इम्प्लांट के लिए डिफरेंट टाइमलाइन होती है, कम से कम जब हम स्टार्ट करते हैं दांत निकालने के बाद एक इम्प्लांट जो स्क्रू होता है वो हम हड्डी के अंदर रखते हैं, उसके बाद 2 से 3 महीने उसका वेट करते हैं, जब तक उसकी पकड़ बन जाती है तो उसके बाद ऊपर उसका जो कवर होता है वो हम लगा देते हैं। तो ये तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम होता है, लेकिन ये हम ट्रॉमा के अंदर काउंट नहीं करेंगे। इन केस फॉर एग्जांपल अगर कोई हादसा होता है और दांत जो है बिल्कुल 2 हिस्सों में हो जाता है, या दांत गिर के निकल जाता है और वो मिलता नहीं है या वो दोबारा लग नहीं सकता, फिर उस सिनेरियो में हम इम्प्लांट करते हैं, या कोई भी फिक्स ब्रिज कर सकते हैं, जो भी पेशेंट की टाइप होती है उस पर डिपेंड करता है।
1: अच्छा ठीक, और ये जो ख़ासतौर पर जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया तो उसमें बहुत सारे जैसे गम्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इन्फेक्शन है वो हो जाती है, तो ये भी एक वैसे तो हो जाती है मगर ये कि इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: ठीक,
0: ये तो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं से आपका दांत निकला है किसी जगह से और आप वहाँ पे नहीं लगाते तो टाइम के साथ क्या होता है जो आपकी जो बोन होती है हड्डी होती है वो रिजॉल्व होने लग जाती है, वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है, जिसकी वजह से जो आपके बाकी दांत हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस बनती है वो बाकी दांतों में भी स्प्रेड कर जाती है।
1: ठीक, और कोई वजूहत हो सकती है जैसे कि हम बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी जो हैं वो या रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आप हमें बता सकते हैं?
0: जी, रिस्क फैक्टर खास तौर पे अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो जो हमारे चिल्ड्रंस आ जाते हैं जो कि बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा देखभाल उनकी करनी है, क्योंकि वो जब खास तौर पे स्कूल में होते हैं या वो वैसे प्ले ग्राउंड में जब खेल रहे होते हैं तो कोई भी किसी भी इंजरी की वजह से उनके दांतों को नुकसान हो सकता है, तो एक तो उनको थोड़ी सी एहतियात भी बतानी है, साथ साथ इंस्ट्रक्शन देनी है, और उनका जो खास तौर पे टोटलर्स हैं उनको आपने 24/7 जो वो देख के रखना है, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए भी पेरेंट्स आगे पीछे होते हैं तो वो कभी बेड से या कहीं से भी गिर सकते हैं, तो उनको वो ये चोट लग सकती है। और मोस्टली जो है ये इंजरीज जो है ये बच्चों में ही ज्यादा देखी जाती हैं। इसके बाद आता है हमारे

0: बस जो टीनेजर्स हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स इंजरी होती है और इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी जो फॉर एग्जांपल विद एज जो है वो कभी हो जाए उनसे गिरना हो जाए तो वो भी दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। या इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा होता है ऐसा और उसमें क्योंकि सबसे ज्यादा सीवियर इंजरीज होती हैं जिसमें आपका लिप इन्वॉल्व हो सकता है जी कोई भी टिश्यू जो है वो इंजरी हो सकती है उसकी।
1: सर डॉक्टर साहब जैसे कि ये ब्रेसिस लगाए जाते हैं वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस में हो जाती हैं वो उस पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या उसकी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है या क्या है या तो अक्सर जो ब्रैकेट्स हैं जैसे हमने पहले भी आपसे बात की थी कि वो टूट भी जाती हैं कभी वो बिल्कुल शार्प एजेस हो जाते हैं तो वो
0: जी ब्रेसिस में भी ऐसे इमरजेंसी हो सकती है जैसे आपने खुद बताया कि कोई ब्रैकेट टूट गया है या कोई वायर ब्रेक हो गया किसी भी रीज़न की वजह से क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डाइट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपने बहुत एहतियाती खाना खाना है तो अगर इन केस वो अगर उसको इग्नोर करें और फास्ट फूड खाए बर्गर या कोई भी इस तरह की सख्त चीज़ तो ब्रैकेट या वायर टूटने से शार्प एज जो होता है वो आपको लिप पे या टंग पे या चीक पे लग सकता है तो जितना प्रोलोंग होगा वहाँ पे वो ज़्यादा वहाँ पे मसला करेगा इसलिए जैसे ही आपको ऐसा कोई सिनेरियो सामने आए तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: ऊपर वाले हिस्से का फ्रैक्चर हुआ है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, और इसके अलावा अगर वो नीचे वाला जो रूट है उसको फ्रैक्चर किया तो उसका ज्यादा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। बाजू का जो है वो फ्रैक्चर जो है वो रूट के अंदर होता है, क्योंकि जो जड़ है वो हमारी हड्डी के अंदर है, तो वो जो मुंह के अंदर है वो नजर नहीं आएगा, इसलिए एक्सरे करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो जो सारी क्लियर पिक्चर है वो एक्सरे में पता चलेगी कि यहाँ से ये फ्रैक्चर है, क्योंकि ये जो है कभी कभी इनविजिबल होता है।
1: ठीक
0: है, मुंह के अंदर पेरेंट्स को नजर नहीं आता, कुछ दिनों के बाद या कुछ वीक्स के बाद जो बच्चा वो कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है या मुझे पेन हो रहा है,
1: अच्छा।
0: तो उसके जो सिम्टम्स है कुछ दिनों के बाद सामने आते हैं।
1: ठीक ठीक, इसमें डॉक्टर साहब जनरल हम बात कर रहे हैं, अगर जिसके कोई चोट लगी है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स या अलामत हो सकती हैं, कि स्वेलिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई या कुछ और क्या क्या हो सकता है?
0: इसके अलावा जो सबसे मेन है वो ठंडा गर्म लगता है,
1: सेंसिटिविटी
0: स्टार्ट हो जाती है
1: जी, ठीक।
0: इसके अलावा जो है पेन बहुत ज्यादा होता है।
1: अच्छा,
0: फ्रैक्चर की कुछ अलामत ऐसे भी होती है कि अगर कोई चीज वहाँ से कोई इंसान खाता है तो वहाँ पे अगर उसको पेन हो रही है, इट मींस कि वहाँ पे कोई ना कोई ट्रबल है जिसको डायग्नोज क्लिनिक जाके करवाना पड़ेगा। और इन केस अगर कोई फ्रैक्चर है तो उस केस में हमें फिर दांत को निकालना पड़ जाता है। और अगर कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जो कि रिस्टोरेबल हो सकता हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ एडहेसिव होते हैं वो हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राउन टूटता है, किसी का दांत का कोई भी हिस्सा टूटता है, उस हिस्से को जैसे मैंने पहले भी इसकी वजाहत की कि उसको संभाल के रखना चाहिए। कई दफा होता है कि वो जो दांत का हिस्सा होता है वो हम दोबारा से लगा सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आपको वहाँ से करवाना नहीं पड़ता। इनकेस अगर आपका वो पार्ट वहाँ से टूट जाता है और बहुत ही मिनिमल फ्रैक्चर हुआ है या ट्रॉमा हुआ है तो वो हम कंपोजिट फिलिंग होती है वो भी हम कर सकते हैं। और अगर ज्यादा कोई ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी है तो वो आ जाके फिर रूट कैनाल करनी पड़ती है, इन केस अगर जो ट्रॉमा है वो बहुत ज्यादा डीप है।
1: ठीक ठीक, इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि उसमें फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, ये जो हमारा दांत है उसके अंदर फ्रैक्चर होगा, या जैसे जाहिर है सॉकेट है, बोन है तो वो भी एक बोन है तो खुदा नास्ता वहाँ पर भी
0: जी, ये जो ट्रॉमा है ना ये उसकी डिपेंड करते है कि कितनी ये फोर्स के साथ हुआ है, ट्रॉमा की टाइप क्या है। कई कई ट्रॉमा में आपका जो पूरे मुंह की हड्डी है वो टूट जाती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं बाजूकात बहुत ज्यादा वो खतरनाक किस्म के होते हैं जिसमें आपका जो जबड़ा है वो टूट सकता है, यहाँ पे जो हड्डी होती है जो हम TMJ कहते हैं वो डिसलोकेट हो सकती है, इवन आपकी जो बाइट है वो बंद करना मुतासिर हो जाती है। कई कई ट्रॉमा में तो आपके जो वो हड्डी जैसे मैंने बोला यहाँ पे लॉक हो जाती है, आप मुंह नहीं खोल सकते
1: जी।
0: तो ये बहुत ज्यादा सवेर इंजरीज हो जाती हैं। और इस केस में जो आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है उसको दिखाना आपने लाजमी है।
1: ठीक ठीक, और ये कि वो तो अगर इमरजेंसी में गए हैं तो वो खुद ही रेफर कर देते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, वो टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है। और जैसे ये मैंने जो चीजें बताई हैं ये जो हमारे सुनने वाले ये घबराना चाहें कि ये बहुत ज्यादा सवेर है, लेकिन ये होता है खासतौर पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स में कोई बहुत सवेर इंजरी हो जाती है तो ये चीजें होती हैं, ये जो आपके दांत हैं वो बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं, खाली एक नहीं मल्टीपल टीथ, डिपेंड करता है कैसी आपको इंजरी हुई है। तो इस केस में वो जो है रेफर कर देते हैं कि आप जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है आप उसको जाके एक दफ़ा दिखा दें, क्योंकि वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सवेर केसेस में होता है जिसमें अक्सर आपके जो जॉज हैं जो उनकी सर्जरीज करनी पड़ती है, जब आप मुंह ज़्यादा ना खोल सकें या आपकी जो TMJ है यहाँ पे जो हड्डी है वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं।
1: ठीक ठीक, इसमें लोग सब बाज़ बच्चे बाज़ों का ऐसे होता है कि उनके जो मिल्क टीथ हैं वो शेड नहीं हो रहे होते ज़्यादा, तो क्या ये कभी कहीं चोट लगी होती है उस वजह से वो अंदर को प्रेस हो जाते हैं, या और क्या वजह हो सकती है?
0: अच्छा, ये डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री पे, अगर उन्हें कोई ऐसा कभी चोट लगी हो या कहीं पे टक्कर हो सकती है लगी हो सिर्फ उस जगह पे और सिर्फ उसी जगह पे दांत जो है वो निकल नहीं रहे अपने टाइम पे, बाकी जो दांत है वो अपने टाइम पे निकल भी रहे हैं और आ भी रहे हैं तो फिर उसको हम चेक करवाया जा सकते हैं। अदरवाइज जो आपने बात की दांत निकलने का और आने का, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, कुछ बच्चों में इसकी डिलेड इरप्शन होती है, कुछ बच्चे जो है उनमें दांत जल्दी गिर जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं, और कुछ में जो है वो लेट गिरते भी हैं और लेट आते भी हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये जो है थोड़ा सा वेरी करता रहता है।
1: इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस का ये समझा जाता है शायद बच्चे कहीं गिरे हैं और वो जो प्रेशर से वो जो टीथ हैं वो अंदर ही हो गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे।
0: बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हर वक्त बच्चे तो आपके सामने नहीं रहते, इस तरह का कभी भी कोई

0: डाइट्री
1: जी जी बिल्कुल ऐसा भी होता है,
0: हो सकते हैं
1: हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है अगर बिल्कुल
0: कुछ बिल्कुल 5 months में भी मतलब आते हैं.
1: एक्चुअली इसमें एक और टर्म होती है न्यूनेटल टीथ
0: जी.
1: फॉर एग्जांपल बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो उसके मुंह में तब भी दांत होता है. तो ये डिफरेंट कंडीशन होती है लेकिन मोस्टली जो है वो 6 months टू 1 year के अंदर जो है वो दांत आना स्टार्ट होते हैं.
0: ठीक है
1: जो आइडली है. और वरना अगर कोई कुछ सिनेरियोस में ऐसा भी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में 1 या 2 दांत होते हैं तो वो एक डिफरेंट केस आ जाता है. लेकिन ऐसा दूसरा से कोई भी परेशानी या टेंशन लेने वाली बात नहीं होती. अगर 1 साल तक भी दांत नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लें. लेकिन अगर 2 साल तक नहीं आ रहा फिर आप जाके चेक करवा लें, क्योंकि अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है तो फिर आपको असेसमेंट जरूरी है. आपने बिल्कुल 1 से 1.5 साल तक या 2 साल तक वेट करें, नहीं आता तो फिर आपने लाजमी चेक करवाना है. और अगर आ जाए तो वेल एंड गुड
0: जी. डॉक्टर साहब अपने डाइट की बात की कि मतलब डाइट जो है वो भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा मैं बताइएगा क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हैं माएँ उसमें शामिल हैं कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के जैसे 6 months का हो गया है और उसकी डाइट में मतलब डाइटरी क्या क्या हेल्पफुल डाइट हो सकती है.
1: जी बिल्कुल आपने बहुत अहम सवाल किया. इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है बच्चों के दांतों की हमने हिफाजत करनी है और वो सबसे पहले तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी आती है
0: जी.
1: क्योंकि जो बच्चे उनमें फीडर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा आदत होती है. और आजकल जो है वो ज़्यादा ट्रेंड ये है कि बल्कि शुरू से चलता आ रहा है कि फीडर्स के अंदर जो हम शुगर ऐड करते हैं
0: जी.
1: एक वो ऐड करते हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो रात को फीडर पीते पीते सो जाते हैं और जो वो फीडर है वो उनके मुँह के अंदर रहता है. इसका मतलब है जितनी देर वो मुंह के अंदर रहेगा वो शुगर जो है वो सारा एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ और वो जितना देर एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ उसका कॉन्टेक्ट रहेगा वो उतने ही दांतों को खराब करेंगे जिसे हम बोटल बेबीज केरी कहते हैं. ठीक है बेबी बोटल केरीज जो है ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है बच्चों में जो कि फीडर लेके सो जाते हैं और उनके दांतों पे वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होने लग जाते हैं. तो जितना एक्सपोजर होगा मीठे के साथ उतना जल्दी ही आपके दांत खराब होंगे. और कोशिश करें कि कोई भी मोटिवेशन दे के बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रशिंग की आदत डालें.
0: अच्छा
1: ब्रशिंग शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि किस टाइम से ब्रशिंग हमें स्टार्ट करनी है.
0: उससे पहले एक और क्वेश्चन है जैसे आपने कहा कि जो उसमें शुगर भी ऐड करते हैं पेरेंट्स तो फार्मूला मिल्क अगर दे रहे हैं तो क्या उसमें भी यूज करते हैं.
1: जी शुगर जो प्रिजर्वेटिव हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज में ही होते हैं. तो कोशिश करें कि जैसे ही बच्चा अपना जो डाइट है जो उसका लंच बनता है ब्रेकफास्ट जो भी बनता है जब पूरा हो जाए फीडर कंप्लीट हो जाए आप उसके मुंह से निकाल लें. रात को सोने से पहले अगर आपने दिया उसको जब भी आप फीड कर रहे हैं उसको जैसे ही कंप्लीट होता है आप निकाल के रख लें. ठीक है ये आपने ऐसा ऐसा उसकी जो हैबिट बनाएंगे वो डिवेलप होती रहेगी.
0: ठीक इसमें पूछना चाहूंगी जाहिर है माएं सुन रही हैं और जो कि कोई भी मिल्क दूध फार्मूला है तो उसमें भी ऐड कर दी जाती है एक्स्ट्रा जो शुगर है तो क्या बच्चों के लिए ये नुकसानदेह. तो आपने कहा कि उसके टीथ प्रॉब्लम है मगर क्या ये ज़रूरी है कि ऐड की जाए मतलब उसमें जो पेरेंट्स हैं या कोई नुकसान क्या हो सकता है. हाँ ये पूछना ये चाह रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जाती है शुगर तो क्या वो बच्चे की हेल्थ के लिए या उसके दांतों के लिए तो ऑलरेडी आपने बता दिया मगर क्या ये ज़रूरी है.
1: देखिए जो बच्चों की आदत है वो हम जैसे ही वो डेवलप करते रहेंगे वो वैसे बन जाएगी. अगर हम स्टार्ट से ही शुगर ऐड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में तो उनको उस चीज़ का टेस्ट पता ही नहीं चलेगा और वो यूज टू नहीं होंगे. तो कोशिश की जाए कि विदाउट जो है वो हम शुगर खासतौर पे मिल्क दें और इसके अलावा जितनी देर तक हो सकता है क्योंकि जैसे उनका एक्सपोजर मीठे के साथ होता है चॉकलेट्स के साथ या डिफरेंट चीज़ों के साथ तो वो उनको फिर उस चीज़ की आदत लग जाती है. लेकिन कोशिश ये की जाए कि स्टार्ट में बिल्कुल कोई भी स्वीटनर ऐड ना किया जाए. कोई भी शुगर किसी भी फॉर्म में हो वो अपना ऐड करें और वो बच्चा जो है उसी आदत में डल जाएगा
0: जी. और बिल्कुल आप जो जो कहा जा रहा है कि 1 साल तक बच्चे को सॉल्ट भी नहीं दें और शुगर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब वो भी नहीं दें. नेचुरल जो फ्रूट्स में है या कुछ है वो तो ठीक है ऐसा ही है
1: जी. बिल्कुल नेचुरल चीज़ें जितनी दी जाएँ वो दांतों के लिए अच्छा है तो और जितना मीठे से कम एक्सपोज करवाया जाए वो भी उसके लिए बेहतर है. क्वांटिटी की मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्वांटिटी जो है वो आप जितनी मर्जी रख लें जो एक्सपोजर टाइम है वो कम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक ही अगर आप मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो चॉकलेट है वो अगर आप एक टाइम में बच्चे को खिला देंगे वो इतना नुकसानदेह नहीं है कि अगर वो एक ही चॉकलेट बार बार हाफ हाफ करके दी जाए।

0: फॉर एग्जांपल वही जो चीज है वो तीन चार दफा डिफरेंट टाइम में देते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर एक ही टाइम पे मीठा कंज्यूम कर लिया जाए।
1: ठीक तो सब इसी से एक और बात जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो फ्लेवर्ड कोई भी जूसेस हैं फ्लेवर्ड ही होते हैं जो बाहर से जो मिलते हैं तो वो कितने किस हद तक जो है बच्चों को देने चाहिए
0: जो सीजनल फ्रूट होता है सीजनल फ्रूट होता है वो जो फ्रेश होता है वो ही हमेशा देना चाहिए जितने भी जूसेस होते हैं जो हमारे ग्रोसरी स्टोर में पड़े होते हैं ये इतने फायदेमंद नहीं होते हैं। ठीक है ये बच्चे जो हैं वो जितनी बुरी चीज़ होती है वो उतने इसके शौकीन हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जो आप घर में खुद से दे सकते हैं उससे अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। आप फ्रेश फ्रूट लेके आए जो भी सीजनल होता है उसका बच्चों को आदी बनाए कि वो ले सकें उसके अगर वो जूस पीते हैं तो जूस वेल एंड गुड है अगर नहीं तो आप उसको बाइट्स में डिफरेंट शेप्स में बना के अब तो मिल जाते हैं ताकि उनको वो उतना अट्रैक्ट करे और वो खा सकें।
1: ठीक ठीक जैलिसन जी बहुत अहम जो सवाल था आपकी तरफ से भी जाहिर है सबके जहनों में होता है ख़ासतौर पर जो माएँ हैं वो सुन रही हैं कि किस तरह से हमें करना है तो डॉक्टर ने बड़ा हमें आसान सा जो तरीका है वो बता दिया है तो यही बात के जो इजी एक वे है कि जूस है मैंगो जूस बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि क्योंकि मीठा होता है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं और उसमें हमें नहीं पता कि मैंगो शामिल है या नहीं है और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खुद अगर हम बनाएं किसी भी उसमें वे में मिल्क शेक में या जूस भी बनाया जा सकता है तो वो हमें बच्चे को देना है क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो सबसे अहम है जी। डॉक्टर साहब अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं और अगर ट्रीट ना किया जाए या इग्नोर कर दिया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
0: सबसे पहले तो स्केरी स्टार्ट होती हैं दांत को कीड़ा लगना और जैसे हम पहले बात कर रहे थे शायद वो हमारा जो सवाल है वो मिक्स हो गया
1: जी।
0: वो पूछना शायद अंदर हो गया कि दांत को जो ब्रशिंग है वो हमने कब से स्टार्ट करनी है
1: जी जी,
0: तो हो सकता है अगर कोई सुनने वाला हो तो उसके वो वेट कर रहा हो इसके जवाब का
1: जी।
0: तो ये है कि जब भी बच्चों के मुंह के अंदर दांत आना स्टार्ट हो जाए फॉर एग्जाम्पल एक भी दांत आ जाता है तो हमने ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने वेट नहीं करना 6 months का 1 year का या 2 year का कि और मजीद दांत आए या बच्चा जो है वो खुद से स्टार्ट करे ऐसा नहीं है। एक भी दांत आता है ऊपर नीचे कहीं भी तो आपने उसको ब्रशिंग स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है अब जैसे आपने कहा कि क्या इसका सबसे पहले स्टार्ट होता है तो केरी दांत को जो कीड़ा लगना है वो स्टार्ट हो जाता है।
1: ठीक है
0: क्योंकि अगर मीठा लगता है और उसको हम क्लीन नहीं करते तो ऐसा ऐसा वो दांत को बुढ़ना स्टार्ट कर देगा वो ऊपर से स्टार्ट करेगा वो अंदर डीप चला जाएगा और सबसे पहले जो वो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं ठंडा गर्म के। सबसे पहले आपको जो ठंडा गर्म के सिम्टम्स आएंगे और इसके अलावा अगर वो डीप जाता जाए और अगर आप ब्रशिंग हैबिट्स नहीं रखते तो वो फिर पेन में डेवलप हो जाता है और इसके ट्रीटमेंट भी जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है
1: जी।
0: अगर केरीज हैं और वो बहुत ही सुपरफिशियल है तो हम वो फिलिंग से ठीक कर लेते हैं अदरवाइज उसके डिफरेंट फिर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं।
1: ठीक ये बच्चों में सबकी हो सकता है इसमें डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि एक भी अगर दांत जो है वो आ जाता है तो ब्रशिंग स्टार्ट तो शुरू में तो बिल्कुल छोटे बहुत ही छोटे से दांत होते हैं तो फिर क्या करें हम?
0: देखें वो मैं इस चीज़ को समझता हूँ पेरेंट्स भी एग्री करेंगे कि बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं करवाने देता
1: जी।
0: ठीक है तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी फॉर एग्जांपल डिफरेंट टॉयज की शेप में ब्रशिंग आते हैं ऐसे आपने सॉफ्ट ब्रश लेके तो आप उसको यूज करें। आजकल तो वो छोटे से ब्रशेज आते हैं जो आप अपने फिंगर पे लगा सकते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं जो कि नॉन कंप्लायंट होते हैं आप उनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनको टॉयज की शेप में जो ब्रशेज होते हैं वो दिखा के ताकि वो अट्रैक्ट करें और उसको खुद से पसंद करें करना। तो आप डिफरेंट आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जो भी सूटेबल लगती है बच्चों में तो ये पेरेंट्स वो खुद कोई ना कोई वो नया तरीका अपना लेते हैं।
1: ठीक ठीक इसमें कोई पेस्ट वगैरह का टूथपेस्ट वो भी स्पेशल कोई होती है बच्चों के लिए या
0: बच्चों में फ्लेवर्ड टूथपेस्ट आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं जी। बच्चों में जो एक्सेसिव जिसमें फ्लोराइड होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी जैसे फ्लोराइड की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो हम बच्चों में नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे जब वो स्पिट नहीं कर पाते तो वो जो जब फ्लोराइड फॉलो करेंगे क्योंकि उनके परमानेंट दांत अभी बन रहे हैं तो वो फिर उनको अफेक्ट करेंगे और वो फ्लोरोसिस हो सकता है जिसमें फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो जो वाइट स्पॉट्स कभी आपने देखे होंगे कुछ लोगों में होते हैं तो वो उसकी वजह से होता है जो ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट होता है
1: जी। तो सब कुछ बच्चों में जैसे के जो दांत हैं जैसे ग्रे नहीं है मिल्ट्री थी हैं मगर उसमें स्पॉट्स होते हैं ग्रेश कुछ इस तरह से, क्या कोई डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं
0: जी? बिल्कुल, कैल्शियम की डिफरेंट विटामिंस अच्छा। की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने फ्लोराइड का बताया जो कि चौकी वाइट अपीयरेंस आ जाती है, ये जब बेबी डेवलप हो रहा होता है अगर फ्लोराइड कंटेंट किसी भी डाइट या किसी भी वजह से ज्यादा हो जाए तो उससे भी इफेक्ट होता है ये चीज।
1: ठीक, और फिर उसमें वेट करते हैं कि जो है मिल्टी जो है वो गिर जाएं या फिर आप कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये डिपेंड करता है कि उस जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का पानी कैसा है।
1: अच्छा।
0: पानी पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है क्योंकि अक्सर का जो है पानी में फ्लोराइड कंटेंट काफी ज्यादा होता है तो फिर वो ये चीज कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाती है। अगर जैसे ही पानी चेंज हो जाए तो अगर बच्चा है वो परमानेंट टीथ बन रहे हैं तो वो ठीक आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो मिल्की टीथ है उसमें ये स्पॉट्स आ रहे हैं तो आपके परमानेंट दांत में भी है, वो डिफरेंट हो सकते हैं।
1: ठीक ठीक, और परमानेंट टीथ जो है अक्सर वो पेरेंट्स जो हैं वो भी थोड़ा डिले कर देते हैं अगर पहले हैं कि बाद में ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट टीथ टेढ़े आ रहे हैं या कोई भी कंडीशन हो सकती है डिफरेंट आपको लग रहा है तो सारे दांतों को निकलने का आपने वेट नहीं करना क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है जिससे हम दांत सीधे करते हैं
1: जी।
0: वो एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जितना आप उसको अर्ली ट्रीट करवाएंगे उसके जो ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू लेट स्टेज में, क्योंकि अगर आप टीनेज गुजर जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले जैसे उतने नहीं रहते। तो एज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप किस टाइम पे चेक करवाते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए एक मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जैसे ही परमानेंट दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं एक आप रेगुलर जो चेकअप है ऑर्थोडोंटिस्ट को वो लाजमी करवाएं ताकि दांत को असेस किया जाए कि वो जो बच्चा है उसके कैसे आ रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस है उसको स्पेस मेंटेन करनी है हमने या कोई टेढ़ा है उसको अर्ली ट्रीट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है।
1: ठीक ठीक बिल्कुल, इसमें अगर हम बिल्कुल ये तमाम चीजें जो हैं हमें देखनी भी है और देख रहे भी होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर पेरेंट्स जो हैं बच्चों में ही ज़्यादातर इस तरह के ट्रामा और वो चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। इसमें डॉक्टर साहब कुछ रूल्स आपने मैं पहले भी एक बताए थे कि ब्रशिंग के क्या रूल्स हैं, और स्पेशली बच्चों में पूछना चाहूँगी कि कितनी देर के बाद या कितने टाइमिंग्स, आमतौर पर तो टाइमिंग्स की भी बात होती है तो क्या बच्चों में भी कोई ऐसी है स्पेसिफिकली कि कितनी देर तक आपने ब्रश करना है?
0: देखिए सबसे पहले तो मेन ये चीज़ है कि हम कितनी दफ़ा ब्रश किया जाए
1: जी,
0: कम से कम जो है वो दिन में दो दफ़ा होनी चाहिए ब्रशिंग।
1: ठीक है, ये हम आम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं।
0: ये एडल्ट्स की भी बात है और आप मतलब टोडलर्स को छोड़ के जो चिल्ड्रन छोटे हैं जो के बात सुन सकते हैं और जो के कर सकते हैं उनके लिए भी
1: ठीक है।
0: आइडली दो टाइम ब्रशिंग होनी चाहिए, एक दफ़ा रात सोने से पहले और सुबह के टाइम कर सकते हैं, नाश्ते से पहले भी नाश्ते के बाद, इसमें थोड़ी सी वो आ जाती है अपनी अपनी चॉइस, लेकिन एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को सोने से पहले लाजमी करना है।
1: आमतौर पर डॉक्टर ये कहा जाता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में अब नाश्ता करने के बाद जो है फिर वो ब्रश करें तो ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है।
0: बिल्कुल, ये डिबेट अभी तक चल रही है लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप ब्रश करें, वो बेशक नाश्ते से पहले करें या बाद में, लेकिन आप लाजमी करें। ठीक है,
1: ठीक है।
0: जैसे मैंने बताया आइडली दो दफ़ा होना चाहिए, रात को जब ब्रश कर लिया लेकिन उसके बाद कुछ खाना नहीं है। कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि वो स्नैक्स जो है वो रात को लाजमी लेते हैं, ठीक है, और ब्रश वो पहले कर चुके होते हैं, इसलिए जब आप ब्रशिंग कर लें तो उसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। यस, पानी पी सकते हैं लेकिन कोई भी आप जूस कोई भी स्नैक अगर लें तो उसके बाद दोबारा फिर ब्रशिंग करें।
1: अच्छा।
0: सोने से पहले आपने ब्रशिंग लाजमी करनी है लेकिन उसके बाद कुछ खाना नहीं है, क्योंकि
1: जी कुछ लोगों में हैबिट होती है कि सोते हुए वो जो है मिल्क दूध है वो कंज्यूम करते हैं, मतलब ज्यादा, तो ये याद है जो इसमें भी ब्रश फिर दोबारा लाजमी करें।
0: बच्चों में तो ये थोड़ा सा
1: बच्चों में नहीं, आम एडल्ट्स की बात करें, बच्चों में तो मेरा
0: अगर देखें वो
1: अवॉइड करना जरा मुश्किल
0: है। बिल्कुल ऐसी है, एडल्ट्स में भी होता है लेकिन वो अच्छी तरह रिंस कर लें, कुल्ली कर लें तो अच्छी बात है, और अगर कुछ स्वीट है या कुछ ऐसा लिया तो उसके बाद ब्रशिंग लाजमी कर लें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं करते तो उसका जो एक्सपोजर है वो पूरी रात वो दांत के साथ लगा रहेगा तो उसके रिजल्ट्स फिर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे।
1: ठीक है बिल्कुल, और इसमें जो है हम अगर जैसे आपसे पूछना चाहें कि ये तमाम जो

0: इमरजेंसीज हैं उसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। वैसे तो हम खुद भी गेस कर सकते हैं कि इन इमरजेंसी से कैसे बच रहे हैं, मगर हम आपसे पूछा चाहेंगे।
1: नहीं जरूर, सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप लगता है कि काफी अग्रेसिव चीज है, उसमें आप स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं। दांतों की जो प्रोटेक्शन होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अगर आप यूज कर लें तो एक तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनमें ज्यादा ये देखा जाता है, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो आपको 24/7 नजर रखनी ही पड़ेगी।
0: ठीक।
1: इसके अलावा जो थोड़े से बड़े हैं उनको आप समझाना पड़ेगा कि किसी भी चीज के साथ आपने कोई शार्प चीज है या जहाँ पे आपकी टक्कर हो सकती है वहां से आपने बच के रहना है। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाते हुए जो हमारी स्टील की अक्सर स्पून होता है, चम्मच होता है, अगर हम तेजी में खा रहे हैं अगर वो भी कभी जोर से लग जाए तो उससे भी दांत का जो है वो हिस्सा टूट सकता है। तो इंजरीज किसी भी किस्म की हो सकती है।
0: ठीक ठीक। और जैसे कि वो शार्प है जैसे ब्रेसिस हैं या कुछ, उनका खास ख्याल जो है वो रखना है। जी डॉक्टर, इसमें कोई जैसे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मैं आपसे पहले ही पूछेंगे क्या हो सकती हैं, खुदा ना हस्ता कोई अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो क्या वो हमारे दूसरे जिस्म पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, अगर नीचे हमारा परमानेंट दांत आ रहा है और जो ट्रॉमा हुआ है वो मिल्की टीथ पे हुआ है और इन्फेक्शन वहाँ पे आ गया है तो वो नीचे वाले दांत को 100% अफेक्ट करेगा, वो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करेगा, उसको नेक्रोज कर सकता है, उसको वहाँ से जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अफेक्ट कर सकता है। इसलिए असेस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मिल्की टीथ पे इंजरी हुई है और वो उसका ऑलमोस्ट गिरने का टाइम हो गया हुआ है तो अक्सर औकात वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती। तो ये एज और टाइम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
0: ठीक ठीक। इस तरह से आप जो सुन रहे हैं कि ये सारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है कि किस वक्त अगर चोट लगी है तो फौरन कैसे पहुँचना है, और स्पेशली जो सॉकेट वाली डॉक्टर साहब ने बात की वो बहुत अहम है कि हम अपने उसी टीथ को जो कि निकल चुका है उसे वापस उसी जगह पर जो है वो लगवा सकते हैं। और ये तो फिर डेंटिस्ट जो हैं इनका डॉक्टर साहब जैसे जो हमारे बिल्कुल फ्रंट लाइन पर होते हैं उन्हीं का काम है कि वो वापस वही खूबसूरत सा जो दांत है उसे हमें दे सकें। ये डॉक्टर साहब इसमें जो हाइजीनिक जो रूल्स होते हैं उस पर भी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
1: जी बिल्कुल, ये इनकी जो जैसे आपने बात की दांतों की मजबूती उसकी हाइजीन के साथ ही इफेक्ट करती है। जितना जो हमारा बोन स्ट्रॉन्ग होगी दांत उसके अंदर सॉकेट जो है वो उतना ही उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। और अगर फॉर एग्जांपल कोई माइनर ट्रॉमा हो जाता है कहीं पे टक्कर भी लग जाती है, अगर हमारे दांत मजबूत होंगे तो हम ट्रॉमा से बच सकते हैं। इनकेस अगर हमारे दांतों की जो कंडीशन ही बहुत बुरी है, वो ऑलरेडी जो है वो बस वहाँ पे दांतों के साथ वो हड्डी के अंदर अड़े हुए हैं और वो हल्का से भी कोई इंजरी होती है, कोई टक्कर होती है, कोई भी चीज लगती है तो वो गिर सकते हैं या हिल सकते हैं। तो दांतों का मजबूत होना, उनकी हाइजीन साफ होना, अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी, इसमें डॉक्टर थोड़ा सा डाइट का भी पूछना चाहूंगी आपसे कि कौन सी ऐसी डाइट है कि वो हेल्पफुल होती है कि कुछ बहुत दांत जो हमारे स्ट्रांग हो जाएं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है जैसे हम बोन्स की बात करते हैं कि ये डाइट लें या इस तरह से, तो इसमें भी कुछ ऐसा है?
1: जी बिल्कुल, डाइट तो हमारी ओवरऑल बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ना, क्योंकि हम डाइट अच्छी होगी तो हम अच्छा विदाउट जो है वो हॉस्पिटल और ये क्लिनिक्स के चक्कर से बच जाएंगे। इसमें आप एक तो सीजनल फ्रूट जो होते हैं फ्रेश फ्रूट होते हैं वो कोशिश करें उनको ले सकें। इसके अलावा कैल्शियम हो गए, विटामिन, ये आप किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ये आपको रेगुलर लेने चाहिए। इसके अलावा जो है आप ब्रशिंग जो है वो रेगुलर रखें, इससे आपका जो मेन चीज़ है वो दांतों को जो स्ट्रॉन्ग बनाती है वो आपकी ब्रशिंग है। जितना आप इसको साफ रखेंगे उतना ही आपका दांत स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और ये लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर नहीं तो सबसे पहले आपके दांत अफेक्ट होंगे।
0: जी डॉक्टर, तो आपने कैल्शियम की बात की तो इसमें कैल्शियम एक तो सप्लीमेंट है और दूसरी ये कि कैल्शियम डाइट से वो पता ही है सबको कि मिल्क जो है वो, मगर कुछ और सोर्सेज जो हैं वो भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी और क्या क्या हो सकती हैं जैसे बच्चों को देने के लिए, क्योंकि ये मुश्किल है।
1: जी जी बिल्कुल, अब तो डिफरेंट सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि जो नेचुरल चीज है हम उसी से कंज्यूम कर सके। सप्लीमेंट्स और ये चीजें तो ये बहुत सेकेंडरी चीज आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल हम नेचुरल चीज नहीं खा रहे, या खासतौर पर जो बच्चे हैं वो फ्रूट या खाना, तो बिल्कुल उनकी कोशिश होती है कि वो छोड़ दिया जाए, और बाकी जितने भी स्नैक्स और डिफरेंट चीजें जो उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, चॉकलेट्स हो गई या मतलब जिसका फायदा नहीं होता, वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तो उन केसेस में जो डिफरेंट, अब तो जेलीज की फॉर्म में विटामिंस आ जाते हैं जो कि बच्चे आराम से इजीली खा सकते हैं, अब वो दे सकते हैं। विटामिन सिरप दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स जो कि अब तो स्वीट्स होते हैं उनके अंदर, तो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, वो उनको इस तरह से बहुत ज़्यादा वो तंग नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें आप लाजमी करें, इनके हर तरह से आप स्ट्रेटजी बनाएं। अगर बच्चा चीज़ें कुछ नहीं खा रहा या फ्रूट्स नहीं ले रहा, हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहा, तो आप उसको चेंज करके डिफरेंट काइंड्स में आप उसको दे सकते हैं।
0: ठीक, आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे को सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम दोबारा सुन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल में और हर चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है, मगर आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि ये जो बिल्कुल ट्रामा होता है डेंटल और दांत जो हैं वो
1: मैसेज
0: आया हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक डेंटल ट्रामा था, तो मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक मैसेज दूंगा कि एक तो आपने कोशिश करनी है हिफाजत करें, और इन केस अगर खुदा ना खासा अगर ऐसा कोई इशू होता है, किसी इंजरी को फेस करना पड़ जाता है, तो आपने दांत को संभाल के रखना है उसको, और इसके अलावा उसको साफ करना है सलाइन के साथ और ठंडे दूध के साथ, या अपने मुंह के अंदर जो स्लाइवा है उसके अंदर आपने रखना है। और तीसरी चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपने टाइमिंग की, वो आपने 20 से 30 मिनट के अंदर अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, या कोई भी इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक है आपने वहां से रिजू करना है, उसको डिले नहीं करना कि आप उसको छोड़ दें या कोई भी चीज हो। इसके अलावा अगर आपको स्टार्ट में सिम्टम्स नहीं शो करें, फिर भी आप एक दो दिन के वक्फे के बाद एग्जामिन जाके करवाएं, वो उस केस में कि अगर दांत मुंह के बाहर नहीं निकला, इन केस अगर निकलता है तो फिर आपको उसी टाइम जाके चेक करवाना है।
0: ठीक, और बिल्कुल जो है आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और इमरजेंसी में बिल्कुल जरूर जाना है जो भी आपके पास इमरजेंसी है।
1: जी बिल्कुल, जैसे दांत अगर मुंह से निकलता है तो अब वो एक इमरजेंसी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें इसलिए क्योंकि जो आपका अपना दांत है वो भी दोबारा लग सकता है, ये सारा आपकी वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है।
0: जी ठीक, आपने सुना कि बहुत ही डिटेल में डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, और इसके साथ ही अपने दांतों की हिफाजत बहुत करनी है आपको, मगर इसके साथ ही हम प्रोग्राम हेल्थ गाइड से इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ रहे डॉक्टर मोहम्मद रेहाब खान जो कि डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, और फौजे शफीक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
2: At 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ملک کویت پر دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ریاست قطر نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں معیار زندگی کے لحاظ سے پہلی جبکہ عالمی سطح پر چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے. ریاست قطر کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے نو منتخب صدر نے ملاقات کی ہے. خلیج تعاون کونسل کی جنرل سیکریٹریٹ نے نمایاں کامیابیوں اور نوجوانوں کے لیے خصوصی اقدامات پر متعدد قطری نوجوانوں اور نوجوانوں کی سماجی مہم فضاۃ الصباب الادعم کو اعزاز سے نوازا ہے. اردن کے وزیر خارجہ سے فن لینڈ کی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں.

या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फवक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। विदारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आपके जहन में विदारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई

0: ओनली ऑन एफएम 107.
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107.
2: दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे फार्मूला 1 रेस के बारे में। या दोस्तों, फार्मूला 1 की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते बल्कि किसी ड्राइवर की ग्रेटनेस, कंसिस्टेंसी और बेमिसाल डोमिनेंस की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड माइकल शुमाकर के नाम है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन के 7 खिताब, 7 टाइटल्स। जर्मनी के माइकल शुमाकर ने अपने करियर में 7 मरतबा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ये वो माइलस्टोन था जिस तक पहुंचने वाले वो पहले ड्राइवर बने। उनकी चैंपियनशिप विक्ट्रीज 1994, 1995, सन 2000, सन 2001, सन 2002, सन 2003 और सन 2004 में आई। लेकिन दोस्तों, शुमाकर की कहानी सिर्फ 7 टाइटल्स की कहानी नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक स्पोर्ट्समैन को आप एनालाइज तब करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कितने मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने, कितने मरतबा वर्ल्ड टाइटल्स लिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस करके एनालाइज होती है। और यही बात है कि हर एक्सपर्ट्स देखते हैं कि ये खिलाड़ी या वो खिलाड़ी, एक्स वाई जेड खिलाड़ी कितने दिनों तक, कितने सालों तक उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने में कामयाब। और यहीं पर एक बात शुमाकर की हो रही है कि माइकल शुमाकर सिर्फ टाइटल्स के लिए नहीं थे बल्कि शुमाकर की जो कंसिस्टेंसी उसके बारे में आज भी लोग बताते हैं। ये एक ऐसे ड्राइवर की दास्तान है जिन्होंने फॉर्मूला 1 को अपनी स्पीड, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और रेस क्राफ्ट से एक नए लेवल तक पहुंचाया। 1994 का सीजन माइकल शुमाकर के करियर में एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे, सुन लीजिए। बेनेटन के साथ उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता। यह सिर्फ एक चैंपियनशिप नहीं थी, ये एक नए फॉर्मूला 1 सुपरस्टार के उभरने का ऐलान था, अनाउंसमेंट। माइकल शुमाकर ने अगले ही साल यानी 1995 में अपने टाइटल का दिफा किया और बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। सिर्फ 2 सालों में 2 टाइटल्स और माइकल शुमाकर ने साबित कर दिया कि उनकी कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी। 1996 में शुमाकर ने फरारी का हिस्सा बने। फरारी दुनिया की सबसे मशहूर फॉर्मूला 1 टीमों में से एक थी, लेकिन उस वक्त टीम चैंपियनशिप ड्रॉट का सामना कर रही थी, यानी उन्हें टाइटल हासिल ही नहीं हो पा रहे। माइकल शुमाकर के लिए एक नया चैलेंज था। उन्होंने फरारी को सिर्फ एक रेसिंग टीम के तौर पर नहीं देखा बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जिसे दोबारा फॉर्मूला 1 के टॉप पर ले जाना था। और फिर आता है सन 2000। माइकल शुमाकर ने फरारी के साथ अपना तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता और फरारी को भी एक नई गोल्डन एरा की तरफ ले गए। सन 2000 के बाद जो कुछ हुआ वो फॉर्मूला 1 की तारीख के सबसे डोमिनेंट चैप्टर्स में शुमार होता है। 5 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, यानी माइकल शुमाकर ने लगातार 5 साल फॉर्मूला 1 पर अपनी हुक्मरानी कायम रखी। लेकिन यहां पर ये बात कहना बहुत जरूरी होता है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये फॉर्मूला 1 की तारीख में एक ऐसा बेंचमार्क बन गया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आता था। सन 2000 से 2004 का दौर खास तौर पर माइकल शुमाकर के करियर का गोल्डन एरा माना जाता है। रेस आफ्टर रेस, सीजन आफ्टर सीजन वो कंसिस्टेंसी और स्पीड की मिसाल बनते गए। अच्छा, उनके ये 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड जो है कई सालों तक तन्हा उन्हीं के नाम रहा। दोस्तों, फॉर्मूला 1 फैंस के लिए ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की निशानी बन गए। शुमाकर ने मोटर स्पोर्ट की दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। उनका करियर हमें ये बताता है कि ग्रेटनेस सिर्फ एक रेस

जीतने से नहीं मिलती ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी से बनती है और ग्रेटनेस प्रेशर में परफॉर्म करने से बनती है इसके साथ-साथ ग्रेटनेस सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखने से बनती है और माइकल शूमाकर ने ये सब कुछ फार्मूला 1 के सबसे बड़े स्टेज पर करके दिखाया जैसे कि मैंने कहा कि 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप एक ऐसा रिकॉर्ड जो माइकल शूमाकर को फार्मूला 1 की तारीख के सबसे बड़े चैंपियंस में हमेशा के लिए शामिल करता है दोस्तों ये भी बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि माइकल शूमाकर सिर्फ एक चैंपियन नहीं थे वो एक एरा थे एक ऐसा ड्राइवर जिन्होंने स्पीड को डिसिप्लिन के साथ एग्रेशन को इंटेलिजेंस के साथ और टैलेंट को हार्ड वर्क के साथ जोड़ा और जब भी फॉर्मूला 1 की तारीख में ग्रेटनेस डोमिनेंस और चैंपियनशिप सक्सेस की मिसाल दी जाएगी एक नाम जरूर याद किया जाएगा माइकल शूमाकर 7 वर्ल्ड टाइटल्स एक बेमिसाल लेगेसी उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज की अपडेट में बहुत कुछ खास है, अगेन एआई से जुड़ी हुई बात मैं करूंगा, क्योंकि भाई एआई से कदम कदम मिला आईजा खुशी के गीत गाने के लिए एआई के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही डिमांड है। और इसलिए मैं आपको, स्पेशली उन लोगों को जो कंटेंट जनरेशन करने वाले हैं, इस साल से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं। तो मैं तीन आपको ऐसी बेहतरीन एआई वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे जाके आपका काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो नंबर वन पे एक जो वेबसाइट है इसका नाम है megin.ai। मैं स्पेल आउट कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है। megin.ai। अब इसे मेगिन पढ़ूं, मेजन पढ़ूं, मैं आपको बस स्पेल आउट कर देता हूं, बाकी आप देख लेना। megin.ai। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फोटोज और बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि उनके स्टाइल्स को देखते हुए वो टेम्पलेट्स की तरह आप उन्हें देख सकते हैं, और उनके नीचे होगा प्रॉम्प्ट। जब आप किसी फोटो पे या वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसके प्रॉम्प्ट को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, और फिर किसी और एआई पे जाके जिसपे आप वीडियो या इमेजेस जनरेट करते हैं, वहां पे जाके आप इस प्रॉम्प्ट को पुट इन कर सकते हैं, और उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू वांट टू चेंज इट। इफ यू डोंट वांट टू चेंज इट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी स्टोरी सुना रहा हूं तो मैं भी इसे यूज कर सकता हूं, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस आइडिया। तो बहुत काम का है, सिंपली कॉपी द प्रॉम्प्ट एंड यूज इट वेयर एवर यू वॉन्ट। इसके बाद अगली जरा एआई की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एआई है mindluster.com। mindluster.com, मैं स्पेल आउट कर देता हूं, MINDLUSTER, mindluster.com। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपके सामने लिखा आएगा बड़ा बड़ा मास्टर योर फ्यूचर। तो मास्टर योर फ्यूचर कैसे? यहां पर 300,000 से ज्यादा फ्री कोर्सेज हैं भाई, 300,000 से ज्यादा फ्री कोर्सेज। इसमें एमएस एक्सेल है, अंग्रेजी सीखनी है आपको, वेब डिजाइनिंग चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, फोटोशॉप है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोटो एडिटिंग है, आपको कुछ भी सीखना है, यहां पर 300,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। एंड यू नो व्हाट, ये लोग फ्री में वो भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, केले लो जी सर्टिफिकेट। लैंग्वेजेस हैं, कुछ भी है, आप यहाँ पे हर चीज सीख सकते हैं। इट इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल वे ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज एंड आई लव्ड इट। सो mindluster बहुत काम आएगा आपके। आप कहीं भी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, देर आर ऑडियो एंड ऑल्सो विजुअल्स, अगर आपको ऑडियो चाहिए, ऑडियो भी सुन सकते हैं, आपको विजुअल चाहिए साथ में तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्किल्स में आपको वीडियो देखना ही पड़ता है। बट बहुत काम का है, बहुत सिंपल है और आसान लैंग्वेज में इन लोगों को समझाया, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। सो mindluster.com। इसके बाद अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है वो है FRIV। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, जब FRIV.com पे आप जाएंगे तो यहां पर टाइम पास होता है। यहां पे जब आप खोलेंगे तो आपको लगातार जो डेस्कटॉप पे गेम्स होते हैं वो खेल सकते हैं आप, मतलब कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू टाइप दिस FRIV.com और आपके सामने बहुत सारे गेम्स आ जाएंगे, बस क्लिक करें, खेलना शुरू कर दें। भाई बढ़िया टाइम पास है, सही बता रहा हूं मैं। ऑफिस में चुपके से ट्राई करके देखना, मुझे ही बताना। ओके, ऑल द बेस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में जरा मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूं, मतलब खबरों में क्या कुक हो रहा है। ओके, तो अभी एक बात रिसेंटली सामने आई जिसमें एआई को लेकर एक डाउट शुरू होना अभी स्टार्ट हुआ है, और वो है कि साइबर अटैक्स जो है वो मेजर कंसर्न है, उससे क्या किया जाए। ओपन एआई ने पहले ही वॉर्न कर दिया कि भाई इंक्रीजिंगली अगर आप देखेंगे तो एआई ड्रिवन अटैक्स अभी बढ़ गए हैं, अलग अलग तरीके से अटैक कर रहे हैं हैकर्स, एंड मैलवेयर जो है वो फैला रहे हैं। तो आपको जो है किसी भी खामखा के एआई पे नहीं जाना है। मैं आपको जो एआई बताता हूँ इसलिए मैं पूरा देख दाख के बताता हूँ ताकि आपके काम आ सके। आई टेस्ट इट ऑन माई सेल्फ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मगर आपको कोई ऐसे ही एआई आपके स्क्रीन पे आता है, फीड में आता है, तो ऐसे अंधाधुन उस पर ना क्लिक करें। रादर इफ यू नो द नेम, अगर आपको नाम पता लग रहा है तो आप एक बार चेक कर लें, सर्च करें कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है, ये कितना काम करता है कितना नहीं करता है, और उसके बाद उस पर भरोसा करें। यहां पर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सीन है ही नहीं। आपको पहले इसको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इसे पूरी तरह से भरोसा करें. दैट इज माई ओनली एडवाइस टू यू. वरना आजकल जो है जैसे AI इंटेलिजेंट हो रहा है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके इंटेलिजेंस का फायदा भी उठा रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों. अब आप जो है बुरे वालों से बच के रहिए और अच्छे बने रहिए. वेरी सिंपल. सो दीज वर द टेक अपडेट्स. दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. दिल से देसी टेक अपडेट.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट.
0: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और आज हम एक और फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं. और आज के एपिसोड में जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं, और उम्मीद पूरी है कि इसके बारे में यानी कि इस फ्रॉड के बारे में कई लोगों ने नहीं सुना होगा या बहुत कम लोगों ने सुना होगा. और ऐसे भी फ्रॉड होते हैं, इस तरह से भी लोग स्कैम करना शुरू कर चुके हैं, ये आज आपको पता चलेगा. इसे कहते हैं ग्रैंड पेरेंट स्कैम. ये एक बेहद इमोशनल और खतरनाक धोखा है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों यानी कि ओल्डर एडल्ट्स के साथ होता है और उन्हीं को निशाना बनाता है. स्कैमर्स बुजुर्गों के अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए जो प्यार है फैमिली मेंबर्स के लिए बुजुर्गों का, उनके फिकर का गलत फायदा उठाते हैं. वो उन्हें अचानक कॉल करके ऐसी कहानी सुनाते हैं कि बुजुर्ग डर जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं. इस फ्रॉड को समझना और इससे बचने के सॉल्यूशंस को जानना बेहद जरूरी है हर उस शख्स के लिए जिसके घर में बुजुर्ग है, जिसके घर में वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल का चलन ये कुछ 20 सालों में 10 सालों में समझा है, पहचाना नहीं है सिर्फ समझा है. उनके जिंदगी में हमेशा से ये फोन नहीं था, उनके जिंदगी में हमेशा से ये सर्च इंजन नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था. तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के स्कैम को समझना. लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फ्रॉड होता कैसे है. दोस्तों इस स्कैम में एक फ्रॉडस्टर कॉल करता है और खुद को उनका ग्रैंड चाइल्ड बताता है या कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा उस बुजुर्ग के करीब में हो. वो रोते हुए या परेशान आवाज में कहता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में. मुसीबत कैसी भी हो सकती है, जैसे कि फेक इमरजेंसी की कोई कहानी. स्कैमर्स आम तौर पे कहते हैं कि उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो किसी दूसरे शहर में है और अरेस्ट हो गया है, या फिर हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, या दूसरी कोई कहानी. सोशल मीडिया स्क्रैपिंग जैसे कि कहानी को सच दिखाने के लिए फ्रॉडस्टर्स पहले से ही फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे असली नाम जो है वो ढूंढ चुके होते हैं. तो सच बताने के लिए उनके डिटेल्स भी आपसे ही ली जाती है. मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई सोशल मीडिया है और मैंने कोई स्टोरी डाली, तो एक स्कैमर मेरी स्टोरी चेक करेगा, उसको पता है कि मैं किस जगह पे हूँ, किस रेस्टोरेंट में

0: बैठा हूँ, कहाँ पर गया था, सारी स्टोरी डिटेल ली और फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल करता है। ये कॉल करने वाली डिटेल्स उसने बहुत पहले कहीं ना कहीं से जुटा ली होती है। यही होता है कि आपकी छोटी सी छोटी डिटेल भी जो आपके फुटप्रिंट्स हैं सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, वो बड़ी काम आती है। और जब स्कैमर मेरी सोशल मीडिया की स्टोरी देखेगा, उससे वहां से वो एक कहानी बना सकता है और फिर सोशल मीडिया स्क्रैपिंग कर सकता है। और असली नाम उसको पता है, दोस्तों के नाम उसको पता है, ट्रेवल प्लान्स जो है वो सारे चुरा लेता है हमारे इंटरनेट के फुटप्रिंट से। और फिर होता है सीक्रेट ट्रैप। वो बुजुर्गों से गिड़गिड़ा कर कहता है, प्लीज मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। और तुरंत वायर ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे भेजने की डिमांड करता है ताकि ट्रांजैक्शन ट्रेस ना हो सके। उसके अलावा अलग अलग मीन्स जो हैं ट्रांजैक्शन के, पैसे ट्रांसफर करने के, उसको भी वो आजमाता है कि अगर माँ बाप अलग पेमेंट ऑप्शन जानते हैं, पेमेंट करना जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल करवाते हुए वो फ्रॉड कर सके, वो जो फ्रॉडस्टर है, जो स्कैमर है, वो फ्रॉड कर सके। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने का तरीका है, इन तरीकों को आपको अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करना होता है। कई बार हमारा ये प्रोग्राम बुजुर्ग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर से ये डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा अपने फैमिली मेंबर को डायरेक्ट कॉल करना चाहिए, उन बुजुर्गों को जो इस तरह के स्कैम में फंस सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी कॉल आए बुजुर्गों के पास, तो तुरंत पैसे भेजने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कॉल को कट करें और अपने फैमिली मेंबर को फौरन पर्सनल नंबर पर कॉल करें। और उसके अलावा फैमिली के पासवर्ड को क्रिएट करें। अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अपने ही फैमिली में एक सीक्रेट पासवर्ड या कोड वर्ड तैयार करें। अगर सच में कोई फैमिली मेंबर किसी मुसीबत में होगा और किसी अनजान फोन से कॉल करेगा, तो वो उस पासवर्ड को बताएगा, उसके बाद ही किसी तरह का पेमेंट आगे बढ़ेगा। और कभी भी गिफ्ट कार्ड या वायर ट्रांसफर के जरिए पेमेंट ना करें। गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, वायर ट्रांसफर, ये कैश की तरह होते हैं, एक बार भेजने के बाद इन्हें वापस पाना नामुमकिन होता है। उसके अलावा लिमिट करें अपने सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग को। बुजुर्गों और बच्चों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट रखने चाहिए। अपने ट्रेवल प्लान्स, लोकेशन, फैमिली के रिश्ते, इन सब की जानकारी पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। और ये मैंने कई बार आपको आगाह किया है कि अपने फुटप्रिंट्स, अपने डिटेल्स इंटरनेट पे मत दीजिए, ताकि आपके साथ या आपके अपनों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो सके। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि इस तरह के एपिसोड से आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ सीख जरूर मिलेगी। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. दिल से देसी।
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर। दोस्तों, आज की दुनिया कैशलेस होती जा रही है। मोबाइल बैंकिंग, एप्पल पे, गूगल पे, ऑनलाइन शॉपिंग ने जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन चैलेंजिंग भी। कन्वीनियंस के साथ सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ गए हैं। सबसे पहले रूल हमें और आपको समझना है, वो ये कि अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना है और किसके साथ नहीं। बैंक कभी फोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगता। अगर कोई कॉल करके कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, OTP बताइए, फौरन कॉल डिस्कनेक्ट करें। ये बड़ा कॉमन स्कैम है। एक कस्टमर जो इस तरह के स्कैम का शिकार हो जाता है, वो अपनी अच्छी खासी मनी गवा देता है। और ऐसे कितने मसले, कस्टमर को मैसेज आया कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, और मैं ये तो उसने मुझे खुद बताया किस्सा। मैसेज में लिंक था, उसने डिटेल सेंटर की और कुछ मिनट में अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, भले से कोई भी ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन आपको या मैसेज आए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। वीक पासवर्ड क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो आसानी से लग देते हैं, या फिर बर्थडे, इस तरह की चीजें। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसमें चांसेस कम होते हैं कि आपके जो है वो अकाउंट को कोई हैक कर सके। हर अकाउंट का डिफरेंट पासवर्ड भी होना चाहिए। थर्ड स्टेप, 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यूज करना। पासवर्ड के साथ OTP भी रिक्वायर्ड होता है। अगर

पासवर्ड लीक हो जाए तो अकाउंट सिक्योर रहता है। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से ही यूज करें। चेक करें वेबसाइट https से स्टार्ट हो, S is safe and secure, known brand हो, customer reviews हो, secure payments हो, public Wi-Fi पर financial transactions avoid कीजिए, airport है, cafe है, public places के networks secure नहीं होते। और एक और practical habit, हर week bank statement check करें।

पेमेंट ने फाइनेंशियल वर्ल्ड को फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है, लेकिन डिजिटल कन्वीनियंस के साथ डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और आज का गोल्डन रूल ये है कि ट्रस्ट टेक्नोलॉजी बट वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन। जितनी अवेयरनेस होगी ना, उतने ही आपकी मनी और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर होगी। तो दोस्तों, यही कह सकती हूँ मैं कि डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। आज हम सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से बिल्स पे कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उतनी ही फास्ट फाइनेंशियल स्कैम्स और साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट तरीके से यूज करें। कभी भी अपना OTP, पिन या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक ना करें और अपने बैंक अकाउंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। छोटी छोटी एहतियात आपको बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचा सकती हैं। याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर उस यूजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसे यूज करता है। जितनी अवेयरनेस और विजिलेंस होगी, उतनी ही आपका पैसा और पर्सनल डेटा महफूज रहेगा। आज का मनी मैटर टेक अवे ये हो सकता है कि डिजिटल दुनिया में कन्वीनियंस का मजा लें, लेकिन हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना कभी ना भूलें। स्मार्ट यूजर्स ही सिक्योर यूजर्स होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो।

फिर ये फिर वो। देखिए ये इंसान की भी अपनी बैटरी होती है ना, अगर बैटरी मुसलसल इस्तेमाल और रिचार्ज ना हो तो फ़ोन भी बंद हो जाता है, तो इस सिलसिले में इंसान भी वैसे ही थक जाता है। तो आपने जो रूटीन वगैरह जो भी बनाना है इसमें कुछ वक्फे भी हो, काम भी हो, इस तरह जो है ना आप सही तौर पर एक रूहानी जो एक ज़रूरत होती है इसकी रूहानी तकाजे को भी आप मद्देनज़र रखिए, ठीक है। वैसे इस्लामी जाविये से कामयाब शेड्यूल कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगा आज तफसीली तौर पर। आजकल तो सामिन किराम हमने अपनी जो है ना रूटीन जो है और दिन को वर्क सेंटर्ड बना लिया है, यानी काम जहाँ तक है उस पर हम फोकस करते हैं, बाकी उसके गिर्द हमारी नमाज़ों को हम मुनज़्ज़म करते हैं। इस हद तक पहुंच गए कि हमारा ये तो एहसास होता है कि नमाज गोया के इंटरप्ट करता है हमें, दरमियान में नमाज रुकावट बनती है, इस तरह के एक एहसास भी शोर भी आता है। माद अल्लाह, अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए, हमें हमारी ईमान तरक्की नसीब फरमाए। देखें बात तो ये है कि हम एज़ इस्लाम का जो वो है, जो मोमिन का जो तसव्वुर है, इस्लाम तो ये देखना चाहता है कि भाई आप नमाज के गिर्द अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें, नमाज के गिर्द, कुरान के गिर्द, नेक आमाल के गिर्द अपने तमाम तर उमूर हयात को मुनज़्ज़म करें, ठीक है। तो यानी ये नहीं कि 9 बजे 12 बजे 3 बजे क्या करेंगे, आपने तो सही शेड्यूल अगर बनाना है, कामयाब शेड्यूल, तो रूटीन ये इस तरह होना चाहिए कि फजर के बाद क्या करें, ज़ुहर तक क्या किया जाए, असर तक क्या किया जाए, मगरिब तक क्या किया जाए, इशा के बाद क्या करें, ओके ये समझना होगा आपने। इससे पहले आज के इस प्रोग्राम से पहले मैंने इस तसव्वुर से अपने शेड्यूल को कभी सोचा नहीं, या अपने शेड्यूल को इस तरह नमाज के गिर्द मुनज़्ज़म नहीं किया। मुझे ये खला अपने दिलों में एक महसूस हो रहा था कि हाँ कुछ खला है, इस खला को कैसे पुर किया जाए। तंजीम हयात या तंजीम ज़िंदगी के हवाले से बाद में इस्लामी तसव्वुर से यानी इस सिलसिले में क्या रहनुमाई है, ठीक है। तो इस तलाश और जस्तजू में मैं स्टडी करता गया और मुझे बाद में ऐसा लगा कि हाँ इन सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। तो इस तरह आयत का एक हिस्सा है, यानी नमाज को जो है ना मोमिनीन के लिए नमाज को एज ए टाइम ये मुकर्रर किया गया है, यानी ये समझना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए ताकि पता लगे कि भाई हमारी जो ज़िंदगी निज़ाम हयात जो है ना ये टाइम और ये आवर बेस्ड नहीं है, ये आपने नमाज के हवाले से नमाज के गिर्द जब अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करेंगे तब आप महसूस करेंगे वो बरकत, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, मज़ीद और भी तफसीली गुफ्तगू होगी। स्टूडियो नंबर है 443-443-77 और मज़ीद जो है ना आप व्हाट्सएप वगैरह में भी हमारे साथ कुछ अपने मैसेज वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस सिलसिले में कुछ बताना है, यानी व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता होगा 666-221-07। जी हाँ, तो तंजीम हयात के तंजीम ज़िंदगी के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और हमने ये कहा कि बाज़ लोग की तसव्वुर उनके जहन में है कि भाई काम चल रहा था, नमाज का वक्त हो गया, अब तो ये दरमियान में रुकावट पैदा हो गई, इंटरप्शन आ गया। लेकिन हमने जो अप्रोच आपके सामने पेश किया है वो ये कि भाई गुफ्तगू का जाविया आप पलट दें, नमाज रिसेट है। दुनिया भर दिन भर आप दुनिया के प्रेशर में रहते हैं, ठीक है, डेडलाइंस, असाइनमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अजान आती है गोया ज़िंदगी कहती है हाँ कि अब ज़रा
रुक जाओ ठहर।

नहीं, ज़रा और भी नींद मुकम्मल कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं। नहीं, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, अचानक से देखते हैं 11 बज रहा है, फिर आजकल तो ये हालत है कभी कभार देखते हैं कि 1-2 बज रहा है दोपहर के। तो मूवी तौर पर यानी जब आवर बेस्ड आप चलते हैं ना, तो यानी इसमें क्या किस तरह की मुश्किलात का आपने सामना करना, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये हर कोई तस्लीम कर लेगा, लेकिन हाँ, अगर आप नमाज के हवाले से अपने इसको मुनज़म करते हैं तो आपको अपने वो फजर की अज़ान, फजर से पहले आप उठ जाएंगे, फजर की अज़ान पर उठेंगे, और इस तरह जो है ना आगे यानी आपकी निज़ाम हयात है वो इस तरह के ही होंगे कि जब बाद में जाके आपको ज़ुहर की अज़ान में यानी अब तक जागें या फिर आपकी जो भी ड्यूटीज़ वगैरह हैं इसको इस तरह मुनज़म करें ताकि आप आसानी से ज़ुहर की नमाज़ पढ़ सकें, और इस तरह जो है ना फिर अगले असर से पहले ही अगर आपने आराम करनी है तो वो आराम के लिए आपने जल्द जल्द जो है ना ड्यूटी से लौटते ही 1 बजे 1:30 बजे जैसे भी आप ड्यूटी से लौटते हैं तो साथ साथ जो है ना, या फिर अगर देर करके लौटते हैं तो भाई पहले असर की नमाज़ पढ़ लिए, फिर जो दूसरे उमूर हैं उसकी तरफ आप मुतवज्जे हो सकते हैं। तो इस तरह नमाज को हम जब नमाज के गिर्द मुनज़्ज़म होंगे तो हमारे आमाल में भी खैर और बरकत हो आएंगी। ठीक है, अच्छा, तो फजर के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो फजर से पहले आप अलार्म, एक है अलार्म के हवाले से अपने आप को ये जस्टिफाई करना, या फिर अलार्म के बिना पर चलना, अलार्म के मैयार पर चलना, क्लॉक आइडेंटिटी, और दूसरा वर्शिप आइडेंटिटी। इस्लाम आपको वर्शिप आइडेंटिटी देता है और ये कहता है कि भाई आपने फजर के साथ अपने नींद को, अपने आमाल को, अपने दीगर उमूर को मुनज़्ज़म करना है। अरब की एक खूबसूरत ये बात है, अरब में, खलीजी ममालिक में बिलखसूस, चूँकि यहाँ मेरी पैदाइश है और यहीं मैं पला बड़ा हूँ, तो ये तो कह सकता हूँ कि भाई यहाँ के बच्चों को भी आप देखेंगे कि माशाल्लाह से एक बड़ी तादाद है जो फजर में आ जाते हैं। लाइक इट्स यानी बहुत हैरत अंगेज़ बात है ना हमारे लिए, ताज्जुब ना, हम ताज्जुब में आ जाते हैं कि भाई इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे नींद से बेदार होते हैं और माशाल्लाह से मस्जिद में आ रहे होते हैं, दिलचस्पी के साथ नमाज में खड़े होते हैं। तो दरअसल ये आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म किया है उस पर वो डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि यहाँ जो कल्चर है, इशा के बाद ही मुत्तसिलन वो जो भी अगर आशा जिसे कहते हैं ना, रात के खाने को डिनर वगैरह जो भी है, तो वो आशाइया मुकम्मल करके साथ साथ जो है ना 9-10 बजे तक बस नींद में चले जाते हैं। तो यानी काफ़ी रात तक कभी कभार हो जाता होगा कोई आउटिंग की वजह से इधर उधर, उमूमी तौर पर उनकी आदत ये है, वो ज़्यादा देर नहीं जागते। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ है, सब कंटिनेंटल के ममालिक में आप देखेंगे कि लोग काफ़ी देर तक जागने के आदी हैं। तो यहाँ दरअसल ये कल्चरल जो फ़र्क आ गया, ये मैं तो इसको ये भी कहूँगा कि यहाँ इस्लाम के साथ यानी जो एक गैप है, एक स्पेस है, जो दूरी है, ये यानी इसकी वजह से है कि हम अपनी ज़िंदगी को नमाज के साथ मुनज़्ज़म नहीं करते। यहाँ का माशाल्लाह से आप देखेंगे कि स्कूल वगैरह के जो बच्चे होते हैं वो भी जल्दी उठ जाते हैं, और फजर के लिए काफ़ी फैमिलीज़ तो हैं, अरब फैमिलीज़ जितना मुझे पता है कि वो फजर में ही बच्चों को उठा देते हैं, बस फजर के बाद तैयार हो जाओ मुकम्मल, और स्कूल की तैयारी बस, फिर स्कूल चले जाना, या फिर दूसरे जो है ना वो ड्यूटी के लिए चले जाते हैं जो मर्द हजरात हैं। लेकिन हमारी जो फैमिलीज़ हैं भाई, माशाल्लाह से वो तो खराटे मार कर सो रहे होते हैं आखिर वक्त तक, 6 बजे उठते हैं।

0: हाँ जी ड्यूटी पर जाना है तो बच्चों को उठाओ, ये करो वो करो, बस देखिए फर्क है, फर्क है। फर्क कहाँ से शुरू हुआ? ये फर्क शुरू हुआ है उस ईशा के बाद वाली नींद से। आप कहाँ कब सोए? और आपके तसव्वुर, तसव्वुर हयात क्या, आपने फजर की कितनी अहमियत दी अपनी ज़िंदगी में, और अहमियत को अमली तौर पर कितना ना इसको आपने नाफिस किया है आपके इस तसव्वुर को। अगर हम ये दावा करते हैं कि भाई फजर की अपनी अहमियत है और फजर के गिर्द और नमाज के गिर्द हम अपने हयात को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर आप घर में वो माहौल तैयार करेंगे, बच्चे जल्दी सो जाएं, आप भी खुद जल्दी सोने के आदी हों, और फजर के वक्त आप उठते हैं तो और बच्चों को भी उठाते हैं और एक तरतीब एक माहौल है, तो फिर जाके ये एक वो जो हम कह सकते हैं कि भाई हम इस्लामी जो तसव्वुर हयात है हम इसको फॉलो कर रहे हैं। मज़ीद इस तरह जो है ना आगे हम जोहर की बात करें तो नमाज के बाद फजर के बाद, अच्छा फजर जोहर के बाद की बात बाद में करेंगे। फजर के हवाले से एक और एक बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपने सुना है कि अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसके सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तो आम तौर पर ये क्या होता है कि लोग बरकत के वक्त सो रहे होते हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं रहता, हालांकि वो बरकत का वक्त है। तो इस वजह से मेरे काफ़ी काफ़ी नहीं बाज़ दोस्त की आदत ये थी, ये है कि वो जो है ना किसी भी काम या कोई भी मंसूबा है तो वो फजर के बाद निकल जाते हैं उस मंसूबे के लिए। अब जैसे किसी ऑफिस में जाना है, कई सारे उमूर हैं, तो शुरू से उसकी प्लानिंग रहती है, रात से कह रहे मुझे तो ये काम है मुकम्मल करने हैं, बस फजर के बाद वो निकल जाते हैं भाई। वो जब तक मस्जिद में रहे मस्जिद में, उसके बाद खलास, यानी अपने उस काम के लिए निकल गए। अब वो ऑफिस जहाँ जा रहे हैं वो खुला या नहीं खुला, वो शायद 6:30 बजे या 7 बजे खुलेगा, लेकिन वो बस निकल जाते हैं। अब जिस एरिया में वो ऑफिस है उसके आसपास कहीं चले जाते हैं, इधर उधर थोड़ा भाईचारी भी हो जाती है, और फिर इस तरह जो है ना वो वक्त पर अव्वल वक्त में वो वहाँ मौजूद होते हैं और अपना काम मुकम्मल करके निकलते हैं। तो उनकी तरतीब मुझे बहुत पसंद आई कि नहीं सही है इस तरह के लोग जो भाई। वैसे तो हमारी हालत तो ये कि हम आखिरी हालत में आखिरी हालत में लड़खड़ाते हुए हम पहुँचते हैं 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे पहुँचते हैं, 2 बजे ऑफिस बंद होंगे, 2:30 बजे कहीं कोई गवर्नमेंट के इशू से कोई हमारे काम है उसको मुकम्मल करने के लिए। फिर लोग कह रहे थे अरे भाई पूरा दिन था, आप आखिरी वक्त में क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी ऐसे भी लोग हैं काफ़ी सारे, उनमें से मैं भी हूँ कि भाई काम को आखिरी वक्त में भागते दौड़ते हुए करना। अल्लाह अल्लाह मेरी हिदायत करे। और दरअसल बात यह है कि जब अव्वल वक्त में चीज़ों के करने के आदी होते हैं, अव्वल वक्त में यानी आप नमाज के साथ साथ जो है ना अपने अहवाल को मुनज़्ज़म करें, उमूर को मुनज़्ज़म करें, और अव्वल वक्त में करने की कोशिश करें, जिस तरह नमाज के हवाले से भी है कि नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ें, तो इसके साथ साथ जब अपने ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करेंगे तो इंशाल्लाह ख़ुद भी कामयाब होंगे, बरकत भी महसूस होगी, अल्लाह सुब्हानहु तआला रहम करम का भी मामला करेंगे बिइज़्निल्लाह तआला। और ये लिस्ट बड़े बड़े लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप इतना इंश्योर कर लेते हैं कि आपके बच्चे वक्त पर नमाज़ पढ़ लेते हैं, मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, आप ख़ुद भी मस्जिद के आदी हैं, और घर में भी वक्त पर इब्तदाए यानी अव्वल वक्त में इस तरह जो है ना लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपका घर का शेड्यूल मजबूत है। हाँ यहीं पर इस्लामी तसव्वुर हयात अमली तौर पर इसके नफाज के हवाले से आप इसको परख सकते हैं। आपको मैंने एक मेयार दे दिया, या हसरता हाय अफसोस, हमारी ज़िंदगी बहुत यानी सलफ़ सालहीन की ज़िंदगी से कहीं दूर है हमारी अपनी हाल अपने हाल व अहवाल, नमाज भी आखिर वक्त में, हर काम में हम पीछे पीछे रहते हैं। हालांकि हमारे जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, उनको आपने ऐसी तरबियत दी थी कि वो नेकियों में सबकत करने के लिए एक दूसरे से आगे भटकते थे, आगे यानी चलने की कोशिश करते थे, सिलसिले में मुसाबकत करते थे। और नमाज के हवाले से भी ये बात आई है कि भाई अगर कहते हैं कि अगर पता होता लोगों को इसमें क्या अजर है, तो यहाँ तक कि माजूर बंदा भी ऐसे लड़ खड़ाते हुए किसी दूसरे पर सहारा लेते हुए और इस तरह वो अव्वल सफ में आकर नमाज में बड़ी दिलचस्पी के साथ हाज़िर हो जाता। यार ये इसकी कीमत उसी को पता है जो इस दुनिया से गुज़र चुका हो, उसे ही पता है कि भाई मेरी जो है ना मेरा अमलनामा क्या है, मुझे एक नमाज जो मुझसे छूट गई थी इसकी कितनी कीमत है। अल्लाह सुबहानहु ताला हमें नेक अमाल की तरफ, नेक अमाल की सिमत कायम दायम रखें, और साथ साथ यानी ऐसे अमाल की तौफीक दें जो सदका जारिया बने हमारे लिए, इसमें नेक औलाद हैं, इसमें इल्म नाफे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी अमाल, हमारे जो भी उमूर हयात हैं, हम आज से जो हमें सुन रहे हैं ये अहद कर लें, दिल में पुख्ता इरादा कर लें कि भाई नमाज के गिर्द ही अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करनी है बिइज़्निल्लाहि तआला। और सामने कराम मज़ीद गुफ्तगू होगी शेड्यूल के हवाले से, कामयाब शेड्यूल क्या है, कौन सा कामयाब शेड्यूल है, या फिर कामयाब शेड्यूल कौन सा है, आपको क्या लगता है सिलसिले में, आपकी क्या राय है, हम ये भी सुनेंगे। 4434377 ये स्टूडियो का नंबर, रब्ता कर सकते हैं 11 बजे तक। मैं हूँ आपके साथ तलहा शफ़ ज़मान, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रब्ता करें,
2: आज ही रब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: दिल से देसी।
5: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
6: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
5: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: दोस्तों ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वज़ारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
8: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी
2: एहसास कि कुछ तो छूट गया है पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कदर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अब

सवाल ये है कि क्या हमारे मामलात सिर्फ नफा और नुकसान पर कायम हैं या उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक भी झलकते हैं। आज की सुन्नत हमें ये सिखाती है कि एक मुसलमान का किरदार उसके कारोबार और लेन देन में भी नुमाया होना चाहिए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि वो एक ऊंट पर सवार होकर जा रहे थे जो बहुत थक चुका था। उन्होंने इरादा किया कि उसे छोड़ दें। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से मेरे साथ जा मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की और ऊंट को मारा तो वो ऐसे चलने लगा कि इस तरह कभी ना चला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझे एक उकिया में बेच दो। मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, उसको मुझे फरोख्त कर दो। तो मैंने उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उकिया के अवज फरोख्त कर दिया और उस पर सवार होकर अपने अहल अयाल तक जाने का इस्तिस्ना कर लिया। जब मैं पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ऊंट लेकर हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उसकी कीमत अदा कर दी। फिर मैं वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे एक आदमी को भेजा और फरमाया, क्या तुमने ये समझा था कि मैंने तुमसे तुम्हारा ऊंट लेने के लिए भाव उताव किया था? अपना ऊंट भी ले लो और दिरहम भी, ये सब तुम्हारा है। इसे रिवायत किया है बुखारी और मुस्लिम ने। सामिकराम, वाकया ये है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक गज़वे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो एक ऊंट पर सवार थे जो लागर और कमजोर होने की वजह से चलने और लश्कर वालों की हमराही से कासिर था। यहाँ तक कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे छोड़ देने का इरादा कर लिया कि वो जहाँ चाहे चला जाए, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं रह गया था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सहाबा और उम्मत के साथ शफकत का एक मजहर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर और नातवां और अलग हो जाने वाले अफराद का ख्याल करते हुए लश्कर के पीछे पीछे चला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आ मिले, जो कि अपने लागर ऊंट पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, उनके ऊंट को मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पुरशफकत मार ने लागर और कमजोर ऊंट में ताकत भर दी, उससे मदद मिली और वो ऐसे चलने लगा जैसे वो कभी चला ही नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि लुत्फ और मेहरबानी के पैकर थे, इसलिए जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल बहलाने और उन्हें बातों में लगाने का फैसला किया ताकि सफर आसानी से कट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये ऊंट एक उकिया के अवज बेच दो। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के फजल को अपने पास रखना चाहते थे और उन्हें यह इल्म था कि उस ऊंट को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों न बेचने से उनके दीन में कोई कमी नहीं आनी है, क्योंकि ये नबी के वाजिब इताअत में दाखिल नहीं। दरअसल ये हुक्म ऐसा नहीं था कि उसकी पाबंदी जरूरी हो। उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दोबारा बेचने को कहा तो उन्होंने उसे एक उकिया के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच दिया और शर्त लगाई कि वह मदीने में मौजूद अपने अहले खाना तक उस पर सवार होकर जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शर्त कबूल कर ली। जब वो पहुंच गए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंट लेकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत अदा कर दी। जब वो वापस पलटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे एक शख्स को भेजा। वो वापस आए तो आपने उनसे फरमाया, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि मैंने तुम्हारे इस ऊँट को लेने की लालच में तुमसे खरीदो फरोख्त का मामला किया था? अपना ऊँट ले लो और दराहिम भी, दोनों तुम्हारे हैं। समीन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल व करम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और लुत्फ व मेहरबानी को देखा जाए तो ये कोई अनोखी बात महसूस नहीं होती। इस सिलसिले में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से बड़े बड़े वाकयात मनकूल हैं। समीन कराम, ये वाकया सिर्फ खरीदो फरोख्त का नहीं, इसमें बेशुमार अखलाकी तालीमात मौजूद हैं। पहली सुन्नत तो इसमें इस बात की है कि कमजोर लोगों का ख्याल रखना। आज अगर कोई साथी पीछे रह जाए, कोई बुजुर्ग आहिस्ता चल रहा हो, कोई कमज़ोर इंसान मदद चाहता हो तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आनी चाहिए। दूसरी सुन्नत है मामलात में नरमी इख्तियार करना। अक्के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सख्ती की न जबर किया बल्कि मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाई। फिर एक सुन्नत ये भी है कि शराइत पूरी करना, अगर कोई जायज़ शर्त हो तो उसे पूरा करना ईमान का हिस्सा है। फिर एक सुन्नत है एहसान करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ऊंट रख लेते क्योंकि सौदा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत भी वापस न ली और ऊंट भी वापस कर दिया। ये एहसान था और कुरान फरमाता है, हल जज़ा उल एहसानी इल्ला

एहसान है। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? अल्लाह ताला हमें भी अपने मामलात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अखलाक को हसीन बनाए, हमारे दिलों में सखावत पैदा फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानी का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअ सलामा।

0: 8888 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दोस्तों, दुनिया की सल्तनतें महदूद हैं मगर असल बादशाही अल्लाह की है। वो जमीनों का भी मालिक है, दिलों का भी मालिक, हालात का भी मालिक है। जब बंदा ये मानता है तो उसके दिल से मखलूक का खौफ कम हो जाता है। गोया वो इस दुआ का कायल है, ऐ हमारे रब, रब्बना या मालिक अल-मुल्क वल-मलकूत, ऐ बादशाहत और पूरी कायनात के मालिक, नऊज़ु बिका मिनल किब्र वल मुतकब्बिरीन, ऐ अल्लाह हम तकब्बुर से भी तेरी पनाह चाहते हैं और मुतकब्बिर लोगों के शर से भी। आप जानते हैं सामिन किराम, किब्र वो बीमारी है जिसमें इंसान खुद को बड़ा समझे और दूसरों को हकीर जाने, और इस कबीह वस्फ से मुतसिफ जो शख्स है उसे मुतकब्बिर कहते हैं। तो मुतकब्बिर इंसान दूसरों को तकलीफ देता है, इसलिए दुआ है, या अल्लाह हमारे दिल से तकब्बुर निकाल दे। इजअलना मिन असहलिल मुमिनीन अत्तैबीन, हमें नरम खो, आसान, भले और पाकीजा मोमिन बना दे। ऐसा मोमिन जो लोगों के लिए आसान हो, मुश्किल ना हो, जिसके पास बैठकर सुकून मिले, परेशानी नहीं। या रब, ऐ हमारे रब, इहदिनुफूसना वकीना शर्रहा, ऐ रब हमारे नफ्स को हिदायत दे और उसके शर से हमें बचा ले। और नफ्स के शर से बचाने का मतलब हम बार बार कहते आए हैं, और वो ये कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही होता है और वो है नफ्स अम्मारा। ये ख्वाहिश, गुरूर, हसद, गुस्सा, लालच सब उस नफ्स अम्मारा के हमले हैं। इसलिए ये दुआ की जा रही है, इजअलना इहदिनुफूसना वकीना शर्रहा। फिर आगे बंदा यूं कहता है, असलह नवायाना व आमालना, हमारी नियतें भी दुरुस्त कर दे और आमाल भी। क्योंकि बाज़ औक़ात अमल तो अच्छा होता है, नीयत खराब होती है। कभी नीयत अच्छी होती है मगर अमल कमजोर होता है। मोमिन को तो दोनों चाहिए, नेक नीयत भी, नेक अमल भी। और इस वजह से मोमिन हर वक्त इस बात पर परेशान रहता है कि कहीं शो ऑफ और दिखावा का काम तो मुझसे सादर नहीं हो रहा। नऊज़ु बिका मिन मज़ाहिरिर रिया वस्सुमअ, दिखावे और लोगों में नाम कमाने की ख्वाहिश से पनाह चाहते हैं। रिया यानी इबादत लोगों को दिखाने के लिए करना, और सुमा इसका मतलब है अच्छे काम इसलिए करना कि लोग सुने और तारीफ करें। और ये दिल की खतरनाक बीमारियां हैं। फिर रिया और सुमा से पनाह मांगते हुए बंदा मजीद आगे बढ़ता है, कहता है, ए अल्लाह, तेरी इबादत मेरे लिए मजा और खुशी का सबब बना दे। यानी नमाज बोझ न लगे, कुरान भारी न लगे, दुआ मुश्किल न हो, बल्कि ये सब आमाल दिल को राहत देने वाले बने। वल उन्स वर्रदा बिमर्दातिक, अपने रिजल्ट

0: कर देता है पॉजिटिविटी सबसे अहम है एक वक्त में एक काम दिमाग का असूल यही है हमारे ब्रेन को भी खुराक चाहिए और वो कोई जादुई चीज नहीं बल्कि बहुत ही आम सी غذائیں हैं जैसे फिश है वॉलनट है अंडे हैं इसी तरह से हल्दी है सोजिश को कम करती है और हमारा जो ब्रेन है उसे पुरसुकून रखती है बेरीज हैं याददाश्त बेहतर बनाते हैं और इसी तरह अब चलते हैं जो अमली राजों की तरफ हम जिससे जिंदगी बदल जाती है तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखिए दिमाग और आंखें दोनों ताजा हो जाएंगी एक वक्त में एक ही काम कीजिए 20-25 मिनट काम कीजिए और 5 मिनट आप वक्फा लीजिए रात को मोबाइल 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए यह दिमाग के लिए ऑक्सीजन है ज़हन पुरसुकून हो तो जिंदगी आसान हो जाती है तलिस्रस्त कामयाबी का राज जादू में नहीं है बल्कि सेहतमंद दिमाग साफ सोच और متوازن जिंदगी में है अपने ज़हन का ख्याल रखिए यही हमारी और आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल रूम है तो सेहत जिंदगी ज़हन रोशन और जिंदगी आसान हेल्थ फॉर ऑल
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी हेल्थ फॉर ऑल एफएम 107 दिल से देसी
2: वक्त रुका नहीं है वो तो नए रास्ते बना रहा है क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट सिंपल स्टाइल बिग इंपैक्ट पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान बनिए कल का चेहरा आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से एफएम 107 पर दिल से देसी देसी इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो यह रस्सी ये हबले मतीन है कुरान करीम आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहां तक कि वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुंच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो एफएम 107 पर स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए उन पर हमेशा नजर रखें खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है

0: ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा किराम ने कहा, आपको कहाँ दफन किया जाए? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उसी जगह जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। सामईन किराम, ज़रा उस वक्त का तसव्वुर कीजिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें सहाबा हर रोज़ देखते थे, उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, कुरान सीखते थे, उनसे अपने मसाइल लेकर जिनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे, जिनकी एक मुस्कुराहट उनके दिलों को खुश कर देती थी। अब वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो ये सहाबा इकराम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में गुजारे और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। आपके विसाल के बाद सहाबा इकराम के सामने ये सवाल पैदा हुआ कि अब तदफीन कहाँ हो? ये कोई मामूली फैसला नहीं था, ये अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का मामला था, इसलिए सहाबा अपनी तरफ से फैसला करने के बजाय नबवी रहनुमाई तलाश कर रहे थे। ऐसे मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए। उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी मकाम पर दफन किया जाए जहाँ आपका विसाल हुआ है। बाज़ रिवायात में उसकी वजाहत ये आई है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंबिया इकराम की तदफीन के मुतालिक ये मज़मून सुना था कि नबी को उसी जगह दफन किया जाता है जहाँ उसका इंतकाल होता है। चुनांचा फैसला हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के उसी हुजरे में सुपुर्द खाक किया जाएगा जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। सामईन किराम, ये वाक़िया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बड़ी फजीलत भी हमारे सामने लाता है। यहाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वो नबवी रहनुमाई मौजूद थी जिसकी उस नाजुक वक्त में ज़रूरत थी। इस वाक़े का एक नहायत अहम सबक ये है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शदीद तरीन गम में भी सुन्नत की रहनुमाई तलाश करते थे। यही एक मुसलमान की ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए। खुशी हो या गम, आसानी हो या मुश्किल, जिंदगी हो या मौत, हमें देखना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई क्या है। इस हदीस से हमें एक और खूबसूरत उसूल मिलता है, کہ جب کسی دینی مسئلے میں ہمیں علم نہ ہو تو اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شخص سے رجوع کرنا چاہیے جس کے پاس اس مسئلے کا علم ہو۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی کیا، مسئلہ سامنے آیا، نبوی تعلیم معلوم ہوئی اور اسے قبول کر لیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہاں ایک اور سبق قابل توجہ ہے کہ کسی مسئلے میں مختلف آراء سامنے آ جانا ہمیشہ بری بات نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جب صحیح دلیل سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لیا جائے۔ آج ہم معمولی مسائل میں اپنی رائے پر اڑ جاتے ہیں، حالانکہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ حق بات مانی جائے۔ تو سامعین اکرام، پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں، جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں، دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दोस्तों, आज की दुआ बंदे की आजिजी, नदामत, उम्मीद और अल्लाह की रहमत पर यकीन का हसीन इजहार है। इसका खुलासा हम कुछ यूं कह सकते हैं कि गुनाह के बाद अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब मोमिन से कोई गुनाह सादिर हो जाए तो वो दिल दिल में बेचैन हो जाता है, क्योंकि ईमान वाला गुनाह पर मुतमईन नहीं रह सकता। अब इस मोमिन के दिल की कैफियत ये होती है, इलाही ए मेरे अल्लाह, कैफा अफरहु वक़द असैतुक, मैं कैसे खुश रहूं जबकि मैंने तेरी नाफरमानी की है। वकैफा ला अफरहु वक़द अरफ्तुक, लेकिन मैं खुश क्यों ना हूं जबकि मैंने तुझे पहचान लिया है। गोया यहां साइल की नजर उम्मीद के दरवाजे की तरफ है। जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने रहमत का दरवाजा पा लिया है। वो जानता है कि अल्लाह माफ करने वाला, सुनने वाला और रहमत फरमाने वाला है। फिर वो मजीद कहता है, वकैफ अदउका वअना खातिअ, मैं तुझे कैसे पुकारूं जबकि मैं खुद खताकार हूं। यहां बंदा अपनी कमजोरियां मान रहा है, अपनी आजिजी को नुमाया कर रहा है। फिर कहता है, वकैफ ला अदउका वअंत करीम, और मैं तुझे क्यों ना पुकारूं जबकि तू बड़ा करीम मेहरबान है। चूंकि वो देखता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहित है, हर चीज को अपने हाथे में ले लेती है, इसी वजह से वो गड़गड़ा कर ये कहता है, इन कुंत ला तरहम इल्ला ताइईन फमन लिल आसीन, अगर तेरी रहमत सिर्फ नेक लोगों के लिए हो तो फिर गुनहगारों का कौन है मेरे मौला। यानी अल्लाह की रहमत तो सिर्फ कामिल लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो तौबा करके बार बार अपने रब की तरफ लौटते हैं उनके लिए भी है। मजीद इसी अंदाज में फिर वो कहता है, وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَنْ لِلْمُقَصِّرِينَ، अगर तू सिर्फ बेहतरीन अमल वालों को कबूल करे तो हम जैसे कमजोर लोगों का क्या होगा। यहाँ बंदे का इतराफ है कि हमारे आमाल कामिल नहीं, इसीलिए हम अमल से ज्यादा अल्लाह के फजल के मोहताज हैं। फिर वो कहता है, रब हसाइमून वफाजल काइमून वनजल मुखलिसून, रोजा रखने वाले कामयाब हुए, इबादत गुजार कामयाब हुए, इखलास वाले नजात पा गए। यानी तो सारे नेक लोग हैं, ये तो नजात पा गए, लेकिन हमारा क्या होगा। وَنَحْنُ عَبِيدُكَ الْمُذْنِبُونَ, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, فَرْحَمْنَا, हम पर रहम फरमा, وَجِدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَمِنَّتِكَ, अपने फजल और एहसान से हम पर करम फरमा। यानी हम अपने गुनाहों के बावजूद तेरे ही तरफ लौट कर आए हैं और तुझे ही से हमारी सब उम्मीदें वाबस्ता हैं, बस तू हम पर रहम फरमा। वग़फिर लना अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, हमारे साथ रहमत का मामला करते हुए हम सबको माफ कर दे। تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے امید رکھو, عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو, بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں, ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اے اللہ, اے انس و جن کے رب, اے تمام لوگوں کے رب, اللہم رب الناس, تو ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب پر, انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین.
2: نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء, روشنی بر روشنی, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
3: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی, ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
4: وقت رکا نہیں ہے, وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی, ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل, بگ امپیکٹ, پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن, اپنے آئیڈیاز کو دیجیے ایک نئی پہچان, بنیے کل کا چہرہ آج ہی. سنیے نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107 پر. دل سے دیسی.
5: ارے موسی جی, قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو, FM 107, دل سے دیسی.

0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, अच्छे रवैये के जवाब में अच्छा रवैया रखना नस्बतन आसान है, लेकिन जब मुखालफत और अजियत हो, दिल दुखाया जाए, तब भी जबान काबू में रहे, दिल में खैर खाही बाकी रहे और इंसान इंतकाम के बजाय रहमत का रास्ता इख्तियार करे, ये अखलाक की बहुत बुलंद मंजिल है। प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज के हलके में हम सुनेंगे एक हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे मिशन को सिर्फ चंद अल्फाज में बयान फरमाया है। इन्नी लम उबअथ लअनन वइन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह, मुशरिकीन के खिलाफ बद्दुआ फरमाइए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब इनायत फरमाया कि मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया है। सुन्नत किराम, इस हदीस की खूबसूरती को समझने के लिए ज़रा उस लम्हे पर गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मुखालिफीन के लिए बद्दुआ कीजिए, लेकिन जवाब क्या आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं बद्दुआ नहीं करूँगा और बात ख़त्म, बल्कि अपनी बेइज्जत का मिजाज बयान कर दिया। लम उबअथ लअनन, मुझे लानत करने वाला बनाकर भेजा नहीं गया है। फिर फरमाया हुआ इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया है। यहाँ नबवी अखलाक का एक गैर मामूली पहलू सामने आता है। हम अक्सर किसी शख्स की एक गलती, एक मुखालफत या एक तल्ख रवैये के बाद उसकी पूरी शख्सियत को उसी एक जाविये से देखना शुरू कर देते हैं। उसने मेरे खिलाफ बात की, अब ये बुरा इंसान है, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, अब उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ बद्दुआ है, वो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसके लिए खैर क्यों चाहूँ? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज हमें सिखाता है कि किसी की मौजूदा हालत को उसके आखिरी अंजाम का फैसला न बनाइए। जो आज हक से दूर है, मुमकिन है कल हक के करीब आ जाए। जो आज आपका मुखालिफ है, मुमकिन है कल उसका दिल बदल जाए। इसीलिए मोमिन लोगों की हलाकत से ज्यादा उनकी हिदायत और इस्लाह चाहता है। सबने किराम, आज इस हदीस को हम अपनी जबान के आईने में देखें। हम कितनी जल्दी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। किसी से नाराजी हुई तो बद्दुआ, किसी ने गलती की तो लानत, किसी की राय पसंद ना आई तो लानतान, और सोशल मीडिया पर तो बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के लिए भी इंतहाई सख्त अल्फाज लिख दिए जाते हैं जिन्हें हमने ज़िंदगी में कभी देखा तक नहीं, ये सिर्फ एक तकरीर ही सुनी उनकी, एक पोस्ट पसंद नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जबान बदल गई, एक दीनी मसले में इख्तलाफ हुआ, शख्सियत पर हमले शुरू। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा का एक तकाजा ये भी है कि हमारी जबान गाली, तान, तहकीर और लानत से पाक हो। सामने किराम, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज का खुलासा यही है कि दीनी मामलात में अपनी राय से पहले कुरान और सुन्नत की रहनुमाई तलाश करें। जिस मसले का इल्म न हो, अहले इल्म से पूछें। दलील सामने आ जाए तो अपनी राय छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस न करें। इख्तिलाफ को आना और दुश्मनी का मसला न बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के जरिए साबित करें।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107.
3: FM 107.
2: Dil se Desi.
4: Qatar National Health Strategy, Health for All. सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107.

0: दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, आज हम बहुत ही आसान और कुछ उसूल आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हमारे लिए बेहतरीन है। वो कैसे हम अपने आप को जो है सेहतमंद रख सकते हैं, जैसे कि खाने से पहले गर्म पानी पीना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करता है। इसी तरह रात 11 बजे से पहले सो जाना, उससे हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहते हैं। एक्टिव रहना यानी रोज़ाना 30 मिनट चलना, हमारे दिल दिमाग और जो बोन्स हैं हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं। रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट आप सनलाइट में रहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और मूड बेहतर होता चला जाता है। आहिस्ता खाइए और अच्छी तरह चबा कर खाइए, उससे हमारा जो हाजमा है हमारा डाइजेशन जो है वो बेहतर होता है और पेट के मसाइल कम से कम होते हैं। वॉक करते हुए मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए, इससे हमारे दिमाग को सुकून मिलता है और जहनी थकन कम हो जाती है। जिस्म को कुदरती तवानाई मिलती है, यानी खाली पेट आप फल खाइए तो और जिस्म हमारा साफ रहता है। रोज़ाना जो है 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए, तो इससे यह जिस्म को कुदरती तवानाई मिलती है और हमारा जिस्म जो है वो डिटॉक्स हो जाता है। और इसी तरह से सबसे अहम बात यह है कि आंतों की सेहत का ख्याल रखिए, इससे हमारा मूड, हमारी स्किन और हमारी इम्यूनिटी तीनों चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। तो लिसनर्स, छोटी छोटी आदत हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं और बेहतर सेहत भी हासिल कर सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
0: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
5: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
6: Assalamualaikum, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज की अपडेट में बहुत कुछ खास है, अगेन AI से जुड़ी हुई बात मैं करूंगा क्योंकि भाई AI से कदम कदम मिला।

इस साल से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं। तो मैं तीन आपको ऐसी बेहतरीन AI वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे जाके आपका काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो नंबर वन पे एक जो वेबसाइट है इसका नाम है megin.ai, मैं स्पेल आउट कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, megin.ai। अब इसे मेगिन पढ़ू मेजन पढ़ू, मैं आपको बस स्पेल आउट कर देता हूं, बाकी आप देख लेना, megin.ai। यहां जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फोटोज और बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि उनके स्टाइल्स को देखते हुए वो टेम्पलेट्स की तरह आप उन्हें देख सकते हैं, और उनके नीचे होगा प्रॉम्प्ट। जब आप किसी फोटो पे या वीडियो पे क्लिक करेंगे उसके प्रॉम्प्ट को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, और फिर किसी और AI पे जाके जिसपे आप वीडियो या इमेजेस जनरेट करते हैं वहां पे जाके आप इस प्रॉम्प्ट को पुट इन कर सकते हैं, और उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू वांट टू चेंज इट, इफ यू डोंट वांट टू चेंज इट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी स्टोरी सुना रहा हूँ तो मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस आइडिया। तो बहुत काम का है, सिंपली कॉपी द प्रॉम्प्ट एंड यूज इट वेयर एवर यू वॉन्ट। इसके बाद अगली जरा AI की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला AI है mindluster.com, mindluster.com, मैं स्पेल आउट कर देता हूं, MindLuster, mindluster.com। जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके सामने लिखा आएगा बड़ा बड़ा मास्टर योर फ्यूचर। तो मास्टर योर फ्यूचर कैसे? यहां पर 3 लाख से ज्यादा फ्री कोर्सेज हैं भाई, 3 लाख से ज्यादा फ्री कोर्सेज। इसमें MS Excel है, अंग्रेजी सीखनी है आपको, वेब डिजाइनिंग चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, फोटोशॉप है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोटो एडिटिंग है, आपको कुछ भी सीखना है, यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा कोर्सेज हैं। एंड यू नो व्हाट, ये लोग फ्री में वो भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, केलेलोजी सर्टिफिकेट, लैंग्वेजेस हैं, कुछ भी है, आप यहाँ पे हर चीज सीख सकते हैं। इट इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल वे ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज एंड आई लव्ड इट। सो माइंड लस्टर बहुत काम आएगा आपके, आप कहीं भी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, देर आर ऑडियो एंड ऑल्सो विजुअल्स, अगर आपको ऑडियो चाहिए, ऑडियो भी सुन सकते हैं, आपको विजुअल चाहिए साथ में तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्किल्स में आपको वीडियो देखना ही पड़ता है, बट बहुत काम का है, बहुत सिंपल है और आसान लैंग्वेज में इन लोगों ने समझाया, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। सो mindluster.com। इसके बाद अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है वो है फ्राइव या फ्रिव, FRIV। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, जब FRIV.com पे आप जाएंगे तो यहां पर टाइम पास होता है। यहां पे जब आप खोलेंगे तो आपको लगातार जो डेस्कटॉप पे गेम्स होते हैं वो खेल सकते हैं आप, मतलब कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू टाइप दिस FRIV.com और आपके सामने बहुत सारे गेम्स आ जाएंगे, बस क्लिक करें, खेलना शुरू कर दें। भाई बढ़िया टाइम पास है, सही बता रहा हूं मैं, ऑफिस में चुपके से ट्राई करके देखना, मुझे ही बताना। ओके, ऑल द बेस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में जरा मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूं, मतलब खबरों में क्या कुक हो रहा है। ओके, तो अभी एक बात रिसेंटली सामने आई जिसमें AI को लेकर एक डाउट शुरू होना अभी स्टार्ट हुआ है, और वो है कि साइबर अटैक्स जो है वो मेजर कंसर्न है, उससे क्या किया जाए। ओपन AI ने पहले वॉर्न कर दिया कि भाई इंक्रीजिंगली अगर आप देखेंगे तो AI ड्रिवन अटैक्स अभी बढ़ गए हैं, अलग अलग तरीके से अटैक कर रहे हैं, हैकर्स एंड मैलवेयर जो है वो फैला रहे हैं, तो आपको जो है किसी भी खाम खां के AI पे नहीं जाना है। मैं आपको जो AI बताता हूँ इसलिए मैं पूरा देख दाख के बताता हूँ ताकि आपके काम आ सके, आई टेस्ट इट ऑन माई सेल्फ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मगर आपको कोई ऐसे ही AI आपके स्क्रीन पे आता है, फीड में आता है, तो ऐसे अंधाधुन उस पर ना क्लिक करें, रादर इफ यू नो द नेम, अगर आपको नाम पता लग रहा है तो आप एक बार चेक कर लें, सर्च करेंगे भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है, ये कितना काम करता है कितना नहीं करता है, और उसके बाद उस पर भरोसा करें। यहां पर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सीन है ही नहीं, आपको पहले इसको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इसे पूरी तरह से भरोसा करें। दैट इज माई ओनली एडवाइस टू यू, वरना आजकल जो है जैसे AI इंटेलिजेंट हो रहा है वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके इंटेलिजेंस का फायदा भी उठा रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों। अब आप जो है
बुरे वालों से बच के रहिए और अच्छे बने रहिए. वेरी सिंपल. सो दीज वर द टेक अपडेट्स.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और आज हम एक और फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के एपिसोड में जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं, और उम्मीद पूरी है कि इसके बारे में यानी कि इस फ्रॉड के बारे में कई लोगों ने नहीं सुना होगा या बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और ऐसे भी फ्रॉड होते हैं, इस तरह से भी लोग स्कैम करना शुरू कर चुके हैं, ये आज आपको पता चलेगा। इसे कहते हैं ग्रैंड पेरेंट स्कैम। ये एक बेहद इमोशनल और खतरनाक धोखा है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों यानी कि ओल्डर एडल्ट्स के साथ होता है और उन्हीं को निशाना बनाता है। स्कैमर्स बुजुर्गों के अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए जो प्यार है फैमिली मेंबर्स के लिए बुजुर्गों का, उनके फिक्र का गलत फायदा उठाते हैं। वो उन्हें अचानक कॉल करके ऐसी कहानी सुनाते हैं कि बुजुर्ग डर जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं। इस फ्रॉड को समझना और इससे बचने के सॉल्यूशंस को जानना बेहद जरूरी है हर उस शख्स के लिए जिसके घर में बुजुर्ग है, जिसके घर में वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल का चलन ये कुछ 20 सालों में 10 सालों में समझा है, पहचाना नहीं है सिर्फ समझा है। उनके जिंदगी में हमेशा से ये फोन नहीं था, उनके जिंदगी में हमेशा से ये सर्च इंजन नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के स्कैम को समझना। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फ्रॉड होता कैसे है। दोस्तों, इस स्कैम में एक फ्रॉडस्टर कॉल करता है और खुद को उनका ग्रैंड चाइल्ड बताता है या कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा उस बुजुर्ग के करीब में हो। वो रोते हुए या परेशान आवाज में कहता है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में, मुसीबत कैसी भी हो सकती है, जैसे कि फेक इमरजेंसी की कोई कहानी। स्कैमर्स आम तौर पे कहते हैं कि उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो किसी दूसरे शहर में है और अरेस्ट हो गया है, या फिर हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, या दूसरी कोई कहानी, सोशल मीडिया स्क्रैपिंग। जैसे कि कहानी को सच दिखाने के लिए फ्रॉडस्टर्स पहले से ही फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे असली नाम जो है वो ढूंढ चुके होते हैं। तो सच बताने के लिए उनके डिटेल्स भी आपसे ही ली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई सोशल मीडिया है और मैंने कोई स्टोरी डाली, तो एक स्कैमर मेरी स्टोरी चेक करेगा, उसको पता है कि मैं किस जगह पे हूँ, किस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, कहाँ पर गया था, सारी स्टोरी डिटेल ली और फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल करता है। ये कॉल करने वाली डिटेल्स उसने बहुत पहले कहीं ना कहीं से जुटा ली होती है। यही होता है कि आपकी छोटी सी छोटी डिटेल भी जो आपके फुटप्रिंट्स हैं सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, वो बड़ी काम आती है। और जब स्कैमर मेरी सोशल मीडिया की स्टोरी देखेगा, उससे वहां से वो एक कहानी बना सकता है और फिर सोशल मीडिया स्क्रैपिंग कर सकता है। और असली नाम उसको पता है, दोस्तों के नाम उसको पता है, ट्रेवल प्लान्स जो है वो सारे चुरा लेता है हमारे इंटरनेट के फुटप्रिंट से, और फिर होता है सीक्रेट ट्रैप। वो बुजुर्गों से गिड़गिड़ा कर कहता है, प्लीज मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे, और तुरंत वायर ट्रांसफर, क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे भेजने की डिमांड करता है ताकि ट्रांजैक्शन ट्रेस ना हो सके। उसके अलावा अलग अलग मींस जो हैं ट्रांजैक्शन के, पैसे ट्रांसफर करने के, उसको भी वो आजमाता है कि अगर माँ बाप अलग पेमेंट ऑप्शन जानते हैं, पेमेंट करना जानते हैं, तो उसका इस्तेमाल करवाते हुए वो फ्रॉड कर सके, वो जो फ्रॉडस्टर है, जो स्कैमर है, वो फ्रॉड कर सके। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने का तरीका है, इन तरीकों को आपको अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करना होता है। कई बार हमारा ये प्रोग्राम बुजुर्ग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर से ये डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा अपने फैमिली मेंबर को डायरेक्ट कॉल करना चाहिए, उन बुजुर्गों को जो इस तरह के स्कैम में फंस सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी कॉल आए बुजुर्गों के पास, तो तुरंत पैसे भेजने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कॉल को कट करें और अपने फैमिली मेंबर को फौरन पर्सनल नंबर पर कॉल करें। और उसके अलावा फैमिली के पासवर्ड को क्रिएट करें। अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं अपने ही फैमिली में एक सीक्रेट पासवर्ड या कोड वर्ड तैयार करें। अगर सच में कोई फैमिली मेंबर किसी मुसीबत में होगा और किसी अनजान फोन से कॉल करेगा तो वो उस पासवर्ड को बताएगा, उसके बाद ही किसी तरह का पेमेंट आगे बढ़ेगा। और कभी भी गिफ्ट कार्ड या वायर ट्रांसफर के जरिए पेमेंट ना करें। गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, वायर ट्रांसफर ये कैश की तरह होते हैं, एक बार भेजने के बाद इन्हें वापस पाना नामुमकिन होता है। उसके अलावा लिमिट करें अपने सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग को। बुजुर्गों और बच्चों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट रखने चाहिए। अपने ट्रैवल प्लान्स, लोकेशन, फैमिली के रिश्ते, इन सब की जानकारी पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। और ये मैंने कई बार आपको आगाह किया है कि अपने फुटप्रिंट्स, अपने डिटेल्स इंटरनेट पे मत दीजिए, ताकि आपके साथ या आपके अपनों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो सके। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि इस तरह के एपिसोड से आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ सीख जरूर मिलेगी। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे फार्मूला 1 रेस के बारे में। जहां दोस्तों फार्मूला 1 की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते बल्कि किसी ड्राइवर की ग्रेटनेस, कंसिस्टेंसी और बेमिसाल डोमिनेंस की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड माइकल शुमाकर के नाम है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन के 7 खिताब, 7 टाइटल्स। जर्मनी के माइकल शुमाकर ने अपने करियर में 7 मरतबा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ये वो माइलस्टोन था जिस तक पहुंचने वाले वो पहले ड्राइवर बने। उनकी चैंपियनशिप विक्ट्रीज 1994, 1995, सन 2000, सन 2001, सन 2002, सन 2003 और सन 2004 में आई। लेकिन दोस्तों शुमाकर की कहानी सिर्फ 7 टाइटल्स की कहानी नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन को आप एनालाइज तब करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कितने मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने, कितने मरतबा वर्ल्ड टाइटल्स लिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस करके एनालाइज होती है। और यही बात है कि हर एक्सपर्ट्स देखते हैं कि ये खिलाड़ी या वो खिलाड़ी, एक्स वाई जेड खिलाड़ी कितने दिनों तक, कितने सालों तक उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने में कामयाब। और यहीं पर एक बात शुमाकर की हो रही है कि माइकल शुमाकर सिर्फ टाइटल्स के लिए नहीं थे बल्कि शुमाकर की जो कंसिस्टेंसी उसके बारे में आज भी लोग बताते हैं। ये एक ऐसे ड्राइवर की दास्तान है जिन्होंने फार्मूला 1 को अपनी स्पीड, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और रेस क्राफ्ट से एक नए लेवल तक पहुंचाया। 1994 का सीजन माइकल शुमाकर के करियर में एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे, सुन लीजिए। बेनेटन के साथ उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता। यह सिर्फ एक चैंपियनशिप नहीं थी, ये एक नए फॉर्मूला 1 सुपरस्टार के उभरने का ऐलान था, अनाउंसमेंट। माइकल शुमाकर ने अगले ही साल यानी 1995 में अपने टाइटल का दिफा किया और बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। सिर्फ 2 सालों में 2 टाइटल्स और माइकल शुमाकर ने साबित कर दिया कि उनकी कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी। 1996 में शुमाकर ने फरारी का हिस्सा बने। फरारी दुनिया की सबसे मशहूर फॉर्मूला 1 टीमों में से एक थी, लेकिन उस वक्त टीम चैंपियनशिप ड्रॉट का सामना कर रही थी, यानी उन्हें टाइटल हासिल ही नहीं हो पा रहे। माइकल शुमाकर के लिए एक नया चैलेंज था। उन्होंने फरारी को सिर्फ एक रेसिंग टीम के तौर पर नहीं देखा बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जिसे दोबारा फॉर्मूला 1 के टॉप पर ले जाना था। और फिर आता है सन 2000। माइकल शुमाकर ने फरारी के साथ अपना तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता और फरारी को भी एक नई गोल्डन एरा की तरफ ले गए। सन 2000 के बाद जो कुछ हुआ वो फॉर्मूला 1 की तारीख के सबसे डोमिनेंट चैप्टर्स में शुमार होता है। सो 5 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, यानी माइकल शुमाकर ने लगातार 5 साल फॉर्मूला 1

ताइवान पर अपनी हुक्मरानी कायम रखी। लेकिन यहाँ पर यह बात कहना बहुत ज़रूरी होता है कि यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह फॉर्मूला वन की तारीख में एक ऐसा बेंचमार्क बन गया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल नज़र आता था। तो सन 2000 से 2004 का दौर खास तौर पर माइकल शुमाकर के करियर का गोल्डन एरा माना जाता है। रेस आफ्टर रेस, सीजन आफ्टर सीजन, वो कंसिस्टेंसी और स्पीड की मिसाल बनते गए। अच्छा, उनके ये 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड जो है कई सालों तक तन्हा उन्हीं के नाम रहा। दोस्तों, फॉर्मूला वन फैंस के लिए ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की निशानी बन गए। शुमाकर ने मोटर स्पोर्ट की दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। उनका करियर हमें ये बताता है कि ग्रेटनेस सिर्फ एक रेस जीतने से नहीं मिलती, ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी से बनती है और ग्रेटनेस प्रेशर में परफॉर्म करने से बनती है। इसके साथ साथ ग्रेटनेस सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखने से बनती है और माइकल शुमाकर ने ये सब कुछ फॉर्मूला वन के सबसे बड़े स्टेज पर करके दिखाया। जैसे कि मैंने कहा कि 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक ऐसा रिकॉर्ड जो माइकल शुमाकर को फॉर्मूला वन की तारीख के सबसे बड़े चैंपियंस में हमेशा के लिए शामिल करता है। दोस्तों, ये भी बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि माइकल शुमाकर सिर्फ एक चैंपियन नहीं थे, वो एक एरा थे, एक ऐसा ड्राइवर जिन्होंने स्पीड को डिसिप्लिन के साथ, एग्रेशन को इंटेलिजेंस के साथ और टैलेंट को हार्ड वर्क के साथ जोड़ा। और जब भी फॉर्मूला वन की तारीख में ग्रेटनेस, डोमिनेंस और चैंपियनशिप सक्सेस की मिसाल दी जाएगी, एक नाम जरूर याद किया जाएगा, माइकल शुमाकर। 7 वर्ल्ड टाइटल्स, एक बेमिसाल लीगेसी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी सकाफत में मेहमान नवाजी सिर्फ एक दस्तूर नहीं बल्कि दिल की खुशी और अच्छे अखलाक का इजहार है। जब कोई मेहमान घर आता है तो उसका इस्तकबाल, मुस्कुराहट, सलाम और खुलूस के साथ किया जाता है। मेजबान की कोशिश होती है कि मेहमान अपने आप को आराम, इज्जत और अपनाइयत के माहौल में महसूस करे। कतरी मेहमान नवाजी का पहला कदम अच्छे अंदाज से मुलाकात है। मेहमान आए तो सलाम कहना, खैरियत पूछना और उन्हें खुशी से बैठने की जगह देना अहम समझा जाता है। ये छोटे छोटे रवैये मुलाकात का पहला असर बेहतर बनाते हैं। घर में मेहमान के लिए मजलिस या आरामदेह जगह का इंतजाम किया जाता है। मेजबान इस बात का ख्याल रखता है कि मेहमान को किसी किस्म की परेशानी ना हो। बैठक की मुनासबत, माहौल की सफाई और सुकून सब मिलकर मेहमान के लिए खुशगवार तजुर्बा पैदा करते हैं। कहवा और खजूर मेहमान नवाजी की मशहूर अलामत हैं। अरबिक कहवा आम तौर पर छोटे प्यालों में पेश किया जाता है। मेहमान को कहवा पेश करते हुए मेजबान उसकी पसंद और राहत का भी ख्याल रखता है। खजूर का मीठा जायका और कहवे की खुशबू मुलाकात को और दिलकश बना देती है। कहवा पेश करने का अमल एक बहुत ही सलीके से जुड़ा होता है। मेहमान को पहले कहवा देना, प्याले को मुनासिब अंदाज से पेश करना और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद पेशकश करना भी अच्छी मेज़बानी का हिस्सा है। मेहमान अगर मज़ीद

0: ये कहवा ना लेना चाहे तो प्याला हल्का सा हिला कर या अदब से मना कर सकता है। मेजबान का रवैया बेहतरीन मेहमान नवाजी सिर्फ खाने और मशरूब की कसरत का नाम नहीं, असल चीज मेजबान का रवैया होता है। खुश दिली से बात करना, मेहमान को तवज्जो देना और उसकी बात दिल लगा कर सुनना बहुत अहमियत रखता है। दावत के दौरान मेजबान अपने मेहमानों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करता है। अगर मेहमान पहली दफ़ा आया हो तो उसे माहौल से वाकिफ कराना, उसकी ज़रूरत पूछना भी उसने सलूक है। कतरी मेहमान नवाजी में सादगी को भी पसंद किया जाता है। कभी एक प्याला कहवा और चंद खजूरें भी बहुत खूबसूरत पेशकश बन सकती हैं। खुलूस के साथ पेश की जाने वाली छोटी सी चीज़ भी मेहमान के दिल में अपनी जगह बना लेती है। मेहमान नवाजी का खूबसूरत सफ़र उस वक्त मुकम्मल होता है जब मेहमान भी मेज़बान के अदब का लिहाज रखे। घर में दाखिल होने से पहले सलाम करना, वक्त का एहतराम करना और मेज़बान की मसरूफियत को समझना अच्छे रवैये की निशानी है। मेहमान को जो कुछ पेश किया जाए उसकी कदर करनी चाहिए। शुक्रिया अदा करना और मुस्कुराहट के साथ जवाब देना छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये दिलों में मोहब्बत बढ़ाती है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो नरमी से इनकार करना बेहतर होता है। किसी घर में मौजूद बुजुर्ग का एहतराम और बच्चों से शफकत भी मेहमान के अच्छे रवैये में शामिल है। गुफ्तगू के दौरान मोहतरम अल्फाज और नरमी का इस्तेमाल सबके लिए अच्छा माहौल पैदा करता है। कतर में खुशी के मौक़ों पर खानदान और दोस्त जमा होते हैं। ईद, शादियाँ और दूसरी खुशियों में दावत और मुलाकात का खास रंग होता है। ऐसी महफिलों में खाना शेयर करना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि खुशी और अपनाइत बांटने का एक तरीका भी है। खाना पेश करना भी इज्जत और तवज्जो का इजहार होता है। रिवायती पकवान, मिठाइयाँ, कहवा और खजूर महफिल को और पुरकशिश बनाते हैं। कुछ दावतें सादा होती हैं जबकि कुछ में ज़्यादा इंतज़ाम किया जाता है। दोनों सूरतों में असल अहमियत मेहमान के साथ मोहब्बत और हुस्न सलूक की होती है। ये रिवायत बच्चों को भी सीखने का मौका देती है। वो देखते हैं कि किस तरह सलाम किया जाता है, मेहमान का इस्तकबाल कैसे होता है और खाने का अदब क्या है। इस तरह मेहमान नवाजी सिर्फ बात नहीं रहती बल्कि अमल के जरिए नई नस्ल तक पहुंचती है। आज के जदीद कतर में जिंदगी के अंदाज जरूर बदले हैं लेकिन मेहमान की इज्जत, उसके ख्याल रखने का जज्बा अब भी कायम है। घर हो या किसी सकाफती मकाम की मुलाकात, नरमी, मुस्कुराहट और खुलूस हर जगह खूबसूरत असर पैदा करते हैं। कतरी मेहमान नवाजी हमें ये सिखाती है कि इंसानी रबते बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे मोहब्बत भरे रवैयों से मजबूत होते हैं। एक सलाम, एक प्याला कहवा और दिल से की गई खैरियत किसी भी मुलाकात को यादगार बना सकती है। तो लिस्टर्स, आज के कल्चर मूवमेंट हमें यही पैगाम देता है कि मेहमान को इज्जत देना असल में इंसानियत, शुक्रगुजारी और अपनाइत का इजहार है। ये खूबसूरत रवैया कतर की सकाफत का रोशन पहलू है जो हर मुलाकात को मोहब्बत और एहतराम से भर देती है। तो लिस्टर्स, आज के कल्चर मूवमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: ये हो ही नहीं सकता, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो, रिपोर्ट गलत हो, अकाउंट चेक करो। इंसान का दिमाग पहले लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर भाई, वो शायद वापस पलटे हों, रास्ते को देखा होगा, करीब की पहाड़ियों को देखा होगा, आसपास के बागात पहचाने होंगे, एक दूसरे से पूछा होगा हम कहाँ गए, क्या हमने गलत मोड़ लिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत ने उनके सामने खुद को वाजे कर दिया, रास्ता गलत नहीं था, मकाम वही था, जमीन वही थी, बाग भी वही था, बदली हुई चीज उनकी किस्मत थी। और फिर कुरान उनके दूसरे जुमले को महफूज करता है, बल नहनु महरूमून, अरे हम तो जाये नहीं, हम रास्ता नहीं भूले, हमें तो महरूम कर दिया गया है, या हम महरूम कर दिए गए हैं। लफ्ज है महरूमून, तो फसल गई, फल गए, दौलत गई, आने वाला मुनाफा गया, वो बाग जिसे वो यमन के बेहतरीन बागों में समझते थे, उनकी आंखों के सामने उजड़ी हुई जमीन बन चुका था।
0: और महरूम सिर्फ पैसा खोने का ही नाम नहीं, कभी आदमी के पास पैसा होता है लेकिन मोहब्बत से महरूम होता है, कभी पोजीशन होती है लेकिन इज्जत से महरूम होता है, कभी घर बड़ा होता है लेकिन सुकून से महरूम, और कभी इनकम बहुत होती है लेकिन बरकत से महरूम। इसलिए हमें दुआ सिर्फ ये नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह सुभान व तआला मुझे ज्यादा दे, दुआ ये भी होनी चाहिए कि या अल्लाह जो दे उसमें बरकत दे और मुझे उस नेमत का हक अदा करने वाला बना।
1: और जी सामने कराम, जो समझदार भाई की बात हम बार बार कह रहे थे, तो वो भाई अब उसी लम्हे बोलने लगता है जो शुरू से उन्हें समझा रहा था। अब कुरान ने औसतुहुम कहा है, अल्लाह फरमाता है قال اوسطهم انما قل لكم لو لا تسبحون, उनमें जो निस्बतन बेहतर और मुतवाजन सोच रखने वाला था उसने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते, यानी क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था, क्या मैंने नहीं कहा था कि अल्लाह को याद करो, उसका खौफ दिल में रखो, अपनी ख्वाहिश को आखिरी फैसला में समझो और अपने माल में जरूरतमंदों के हुकूक पामाल न करो।
0: बिल्कुल दरा भाई, मुझे यहाँ एक और सबक नजर आता है, कभी कभी सही एडवाइस हमें वक्त पर मिल जाती है लेकिन हम उसकी वैल्यू बाद में समझते हैं। जब वालदैन समझाते हैं, किसी सिंसियर दोस्त की बात बुरी लगती है या कोई कलीग हमें वॉर्न करता है तो हम फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर जब नुकसान हो जाता है तो याद आता है उसने तो पहले ही कहा था भाई। इसलिए जिंदगी में सिर्फ वो दोस्त मत ढूंढिए जो हर बात पर हाँ करें, वो शख्स भी कीमती है जो जरूरत पर आपसे कहे ये गलत है।
1: जी बिल्कुल सर भाई, और वाकई में अब पहली मर्तबा उन भाइयों की जबान बदलती है, जो जबान रात को मंसूबा बना रही थी वही जबान इतराफ कर रही है। उन्होंने कहा सुभान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। तो ये बहुत अहम मकाम है सर भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस्मत ने हमारे साथ बुरा किया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मालूम नहीं ये हादसा क्यों हुआ, उन्होंने इल्जाम किसी तीसरे पर नहीं डाला, एक लम्हा एक ऐसा आया कि उन्हें उसका शऊर हुआ, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, अरे हम ही तो गलत थे। तो यहीं से इस्लाह का दरवाजा खुलता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती का नाम ही न ले इस्लाह कहां से शुरू होगी।
0: बिल्कुल, और ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर कहते हैं सिचुएशन ही ऐसी थी, सब लोग कर रहे थे, मुझे मजबूर किया गया, या उसने पहले गलत किया था वगैरह वगैरह। लेकिन हीलिंग और रिफॉर्म तब शुरू होती है जब आदमी कह सके कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी। भाई अपोलॉजी में लेकिन को कम कर दीजिए और अकाउंटेबिलिटी में एक्सक्यूज को कम कर दीजिए। कभी एक सच्चा जुमला कि मैं गलत था रिश्ता भी बचा लेता है और इंसान का जमीर भी।
1: जी सामने कराम, शायद असहाबुल जन्ना की पूरी दास्तान को अगर हम एक मंजर में समेटने की कोशिश करें तो यूं कहा जा सकता है कि एक रात थी वो अमीर थे और गरीबों को महरूम करने का मंसूबा बना रहे थे, एक सुबह थी वो खुद कह रहे थे बल नहनु महरूमून, फिर एक लम्हा आया जब उनके दिल ने इतराफ किया सुभान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, और फिर वो एक दूसरे पर मलामत भी डालने लगे कि भाई तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी वजह से हुई, फ़क़बल बादुहुम अला बादिन या तलावमून, और फिर उम्मीद ने उन्हें अपने रब की तरफ मोड़ा, असा रब्बुना युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, नेमत से गुरूर तक, गुरूर से महरूमी तक, महरूमी से इतराफ़ तक, और इतराफ़ से रुजू इलल्लाह तक। ये है असहाबुल जन्ना की मुकम्मल दास्तान।
0: और तमाम सामान के लिए बस इतना ही कि आज हम अपनी जिंदगी

0: कि किसी एक नेमत को याद करें, पैसा, सेहत, फैमिली, जॉब, नॉलेज, वक्त वगैरह वगैरह, और खुद से ये पूछें कि मैं इस नेमत का शुक्र सिर्फ जबान से कर रहा हूँ या अपने अमल से भी। अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो शायद आज की कहानी ने अपना काम कर दिया।
1: बिल्कुल सौरभ भाई, इसी सोच के साथ हम इसे हल्के के अख्तिताम पर पहुंच चुके हैं और आज की नशिस्त को अगर हम समेटें तो आखिरी बात यही रहेगी कि हम इन वाकयात को हमारी ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि भाई ये माजी की दास्तान है और बस ख़त्म, नहीं, बल्कि कुरान आज के लिए भी हमारे लिए मुकम्मल दस्तूर हयात है। तो एक एक वाक़े को हम अपनी ज़िंदगी के जाविये से देखें। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों को पहचानने, उनका शुक्र अदा करने, अपने माल में मोहताजों का हक़ समझने, खैर की नसीहत कबूल करने और गलती हो जाए तो सच्चे दिल के साथ उसकी तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरवर भाई, सामिने कराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ रहे।
0: बिल्कुल सही तलब है, और आपका भी बहुत शुक्रिया, और तमाम लिसनर्स का, सुनने वालों का भी दिल से शुक्रिया कि वो इस सफ़र में हमारे साथ रहे। अल्लाह सुभानहू ताला हमें कुरान की कहानियों को सिर्फ सुनने की ही नहीं, उससे अपनी ज़िंदगी बदलने की भी तौफीक अता फरमाए।
1: आमीन या रब्बल आलमीन। तो सामने कराम, दोबारा मुलाकात होगी कसर कुरान के एक नए हल्के के साथ। तब तक के लिए सरवर और तलहा को दीजिए इजाजत। मासलामा।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और आवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम। पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107। ओनली ऑन FM
7: 107। नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन। एनी टाइम एनीवेयर।
8: यस, एनी टाइम एनीवेयर।
7: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107।
9: FM 107।
7: लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सामीन, अरबी जबान की कहावत है तौअल वलद बिल मदीह वल बिंत बिर रदीह, यानी लड़का तारीफ से मानता है और लड़की अर्रदीह यानी मोहब्बत भरी तवज्जो, नरमी और जज्बाती कुर्बत से। ये कहावत बिल्कुल अरबी और खलीजी सकाफत के दिल से निकलती है। अर्रदीह एक कदीम फ़न है, खुशी, मोहब्बत और इस्तकबाल का नगमा, यानी वो नगमा जो खवातीन ईद, शादियों और खुशी के मौके पर गाती हैं। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि दिल से दिल को जोड़ने का रिश्ता है। कहावत का मतलब है लड़कों से बात, तारीफ, इज्जत और नरम लहजे से की जाए तो वो खुल जाते हैं। लड़कियां मोहब्बत, नरमी और जज्बाती कुर्बत पाने से आपके दिल से जुड़ती हैं, और दोनों सूरतों में किसी बच्चे को सख्ती और डांट डपट से सीधा नहीं किया जा सकता बल्कि मोहब्बत और हुस्न सुलूक से। इसीलिए अरब एक और हिकमत कहते हैं, इज़ा कबर वलदुक खावह, जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसे दोस्त बना लो। دوستوں یہ کہاوت ہمیں والدین اور اساتذہ کی سب سے بنیادی ذمہ

0: ईमानदारी याद दिलाती है कि बच्चा दिल से मानेगा न कि डंडे से। तारीफ, प्यार और नरम मिजाजी हर दिल का दरवाजा खोल देती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और इसी हिकमत के लिए अरब कहते हैं طَوِّعِ الْوَلَدْ بِالْمَدِيحِ وَالْبِنْتِ بِالرَّدِيحِ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है सोसाइटी में सलाम और अमन फैलाना। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है। सलाम करना सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं बल्कि एक दुआ है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हम दूसरे के लिए अमन और रहमत की दुआ कर रहे होते हैं। ये छोटा सा अमल रिश्ते को मजबूत करता है और दिल में नरमी पैदा करता है। आज की दुनिया में जहाँ टेंशन और दूरियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ सलाम और अच्छा रवैया एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। हर मुलाकात को सलाम से शुरू करना एक सिंपल हैबिट है जो सोसाइटी को बेहतर बना सकती है। आज का अमल ये है कि हर मिलने वाले को सलाम करें और मुस्कुराहट के साथ बात करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल काम है, हमारे बस की बात नहीं। भाई, हम एक ही तो शख्स हैं, हम क्या ही कोई फर्क पड़ेगा अगर हम कुछ करेंगे तो। हमें लगता है कि ग्रीन लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने होंगे, लेकिन असल में ये बात मुझे नहीं लगता सच है भाई। देखिए, कभी कभी एक छोटा सा चैलेंज, एक छोटी सी आदत और एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। अब आप पूछेंगे क्या? तो भाई, ये किया जा सकता है कि एक हफ्ते के लिए प्लास्टिक बॉटल्स अवॉइड करना, घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कम करना या ग्रोसरी शॉपिंग को थोड़ा स्मार्ट बनाना। तो भाई क्यों ना आज के इको स्विच में हम बात कर लें ग्रीन लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, यानी छोटे छोटे चेंजेस जो हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स अपनाने में मदद करें। पहले तो एक काम करते हैं ना, प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। हम सब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं साथियों, हम सबका ये मामला है, हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये बात है, लेकिन अक्सर कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज होती है। देखिए, हमारी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हम कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देते हैं, पुरानी आदतें बदलना मुश्किल लगता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम शुरू कहाँ से करें। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कम होना चाहिए, लेकिन शॉपिंग के वक्त रियूजेबल बैग्स भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, लेकिन रूम से बाहर निकलते वक्त लाइट बंद करना भूल जाते हैं, एसी बंद नहीं करते। इसीलिए छोटे ग्रीन चैलेंजेस हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप बेहतर आदतें बनाने में, बिल्डअप करने में मदद करते हैं। तो भाई, इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इजी ग्रीन लाइफस्टाइल चैलेंजेस जो आप ट्राई कर सकते हैं बहुत इजीली। 7 डे प्लास्टिक फ्री चैलेंज। एक हफ्ते के लिए कोशिश करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम कम से कम यूज करें, रियूजेबल बॉटल, शॉपिंग बैग्स और कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एनर्जी सेविंग चैलेंज करें। एक हफ्ते के लिए अपने घर में एनर्जी चेक रूटीन बनाएं, रूम से निकलते वक्त लाइट्स बंद करें और अनयूज डिवाइसेस स्विच ऑफ करें प्रॉपरली। तीसरी चीज, फूड वेस्ट चैलेंज। देखिए, चैलेंज लें कि जितना खाना चाहिए उतना ही प्रिपेयर करना है, बचा हुआ खाना वेस्ट करने के बजाय प्रॉपरली स्टोर या रीयूज करना है। चौथी चीज ये कि नो अननेसेसरी शॉपिंग चैलेंज। अरे भाई, इसके ऊपर तो अच्छे अच्छे आके डगमगा जाते हैं। कुछ लोगों को ना शॉपिंग की आदत होती है, शॉपोहोलिक होते हैं, तो भाई उनके लिए ये बड़ा यूजफुल हो सकता है। कुछ दिन के लिए सिर्फ जरूरी चीजें खरीदने का चैलेंज लें, इससे पैसा भी बचता है और अननेसेसरी कंजम्पशन भी कम होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर टाइम चैलेंज। ये मेरा सबसे फेवरेट है। हर हफ्ते कुछ वक्त नेचर के करीब गुजारें, प्लांट्स की केयर करें, वॉकिंग करें या ग्रीनरी को अप्रिशिएट करें। नेचर के करीब रहना हमें एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है साथियों। अगर इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए तो दुनिया भर में बहुत से लोग ग्रीन चैलेंजेस के जरिए अपनी लाइफ इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज वेस्ट फ्री वीक ट्राई करती हैं, जहां वो ये सीखती हैं कि कितना कचरा कम किया जा सकता है। कुछ ऑफिसेज एनर्जी सेविंग चैलेंज ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां एम्प्लॉयज मिलकर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और कुछ स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए रिसाइकलिंग और प्लांटिंग चैलेंजेस भी रखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन चैलेंजेस का मकसद परफेक्ट बनाना नहीं होता इंसान को, बल्कि अपनी आदतों को बेहतर बनाना होता है। तो भाई लिसनर्स, इको स्विच, हमारा आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज आप एक छोटा सा ग्रीन चैलेंज चूज करेंगे और उसे कम से कम 7 दिन तक फॉलो करने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमें बताइए, अगर आपको सिर्फ एक ग्रीन चैलेंज चूज करना होता तो आप क्या चूज करते? प्लास्टिक कम करना, फूड वेस्ट कम करना या एनर्जी सेव करना? इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस एक छोटा स्टेप लेना जरूरी है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे सफा के साथ, छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद साथियों, आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर FM 107 पर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा भाई। ये वो प्रोग्राम है जहां हम बात करते हैं अपने एनवायरनमेंट की, अपने प्लैनेट की और उन छोटी छोटी चीजों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जिनका असर हम तक लिमिटेड नहीं रहता। साथियों, ये प्रोग्राम है जहां हम बात करते हैं अपने एनवायरनमेंट की, अपने प्लैनेट की और उन छोटी छोटी चीजों की जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जिनका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। आज हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो हमारी लाइफ का इतना नॉर्मल हिस्सा बन चुका है कि अक्सर हम उसे नोटिस भी नहीं करते। आप सुबह उठते हैं, पानी की बॉटल उठाते हैं, कॉफी लेते हैं, शॉपिंग करते हैं भाई, टेक अवे ऑर्डर करते हैं और इन सब के दरमियान प्लास्टिक किसी ना किसी फॉर्म में आपके साथ चल रहा होता है। देखिए भाई, कभी बॉटल की शक्ल में ऐसा होता है, कभी शॉपिंग बैग की सूरत में ऐसा होता है, कभी फूड कंटेनर्स, कभी स्ट्रॉ, तो कभी कॉफी कप की लिड और कभी कभी किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के रूप में ये हमारे साथ होता ही होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से बहुत सी चीजें हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट्स या आपके लिए कुछ घंटों के लिए ही होती हैं। हम इन्हें यूज करते हैं और फिर ये समझते हैं कि भाई कहानी खत्म, लेकिन साथियों असल में कहानी वहाँ खत्म नहीं होती, अक्सर औकात कहानी वहाँ से शुरू होती है।
0: टॉपिक ऑफ द डे,
2: आज का हमारा टॉपिक है द ग्लोबल जर्नी ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी वो प्लास्टिक आइटम्स जो एक बार या आप कह रहे हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं और फिर वेस्ट बिन में फेंक दिए जाते हैं। अच्छा जरा सोचिए ना, एक प्लास्टिक बॉटल हम कितनी देर में यूज करते हैं? थोड़ा सा टाइम लगता है ना, हो सकता है 10 मिनट, हो सकता है 20 मिनट, एक घंटा या एक दिन, लेकिन उस बॉटल का एनवायरमेंटल सफर हमारी यूज ड्यूरेशन से बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। तो भाई इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को समझने के लिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे डिटेल में बात की जाए। इमेजिन कीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ जाए, ठीक है, और दरवाजे पर वो खड़ा हो जाए आकर। मेहमान ये कहे कि भाई मैं बस 5 मिनट के लिए आया हूँ। आप खुशी से उन्हें अंदर बुलाते हैं, 5 मिनट गुजारते हैं, फिर एक घंटा, फिर एक दिन और फिर आपको ये पता है कि जनाब ने अपना सामान भी अनपैक कर दिया है और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो भाई सिंपल सी मिसाल ऐसी ही है सिंगल यूज प्लास्टिक की। देखिए भाई, सिंगल यूज प्लास्टिक भी कुछ ऐसे ही मेहमान की तरह होता है, हमें कहता है कि बस मैं बस

थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ, लेकिन एनवायरमेंट के लिए इसका फर्क बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन यहाँ की इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है साथियों। देखिए मैं, प्लास्टिक खुद हर सूरत में कोई बुरी चीज नहीं होता। मॉडर्न दुनिया में प्लास्टिक ने मेडिसिन, हेल्थ केयर, फूड सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हॉस्पिटल्स में जो हम स्टेराइल मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो इससे बनी हुई होती हैं, फूड पैकेजिंग तक। और प्लास्टिक कई सिचुएशंस में प्रोडक्ट को लाइटवेट, ड्यूरेबल और हाइजीनिक बनाता है। अच्छा, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ऐसे मटेरियल को जो कि बहुत ड्यूरेबल है सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए कन्वीनियंस के लिए यूज करके फौरन डिस्कार्ड कर देते हैं। यानी प्रॉब्लम सिर्फ मटेरियल नहीं बल्कि हाउ वी प्रोड्यूस इट, हाउ मच वी यूज इट, हाउ मच वी डिजाइन प्रोडक्ट्स और यूज के बाद हम उस मटेरियल के साथ क्या करते हैं, ये सब चीजें मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा, मजे की एक बात बताऊं, दुनिया में प्लास्टिक का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। यूएनईपी के मुताबिक दुनिया हर साल रफली 400 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अब जरा इस नंबर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। एक बॉटल को इमेजिन करना इजी होता है, 10 बॉटल्स भी इजी होता है, आप कह लें कि 100 बॉटल्स भी आसानी से आपके दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन जब बात हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स की हो ना, तो ह्यूमन ब्रेन के लिए इस क्वांटिटी को विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है साथियों। इसीलिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कभी कभी अजीब सी लगती हैं। हम प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पर बहुत छोटा सा देख रहे होते हैं, जबकि कलेक्टिव लेवल पर वो बहुत मैसिव होता है। और प्लास्टिक कंजम्पशन का एक और आप कह लें कि फैसिनेटिंग फैक्ट है कि दुनिया भर में रफली 1 मिलियन प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स हर मिनट परचेज हो रही होती हैं। जी हाँ, हर मिनट। जब आप और मैं इस वक्त सिर्फ कुछ सेंटेंसेस सुन रहे हैं ना, दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में लाखों प्लास्टिक बॉटल्स परचेज हो रही हैं। अब जरा एक मिनट को एक घंटे में कन्वर्ट कीजिए, फिर एक दिन में कन्वर्ट कीजिए, नंबर कितना ह्यूज हो जाता है, इतना ह्यूज कि इमेजिनेशन भी थक जाती है। और यही एनवायरमेंटल चेंज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम में से हर शख्स ये सोचता है कि भाई मेरी एक बॉटल से क्या ही फर्क पड़ेगा, और ऑनेस्टली एक बॉटल अकेले दुनिया नहीं बदल सकती, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन जब मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हर रोज वही डिसीजन रिपीट करते हैं, तो भाई छोटे छोटे इंडिविजुअल एक्शंस भी कलेक्टिवली एक ह्यूज एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्रिएट कर देते हैं ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि प्लास्टिक यूज होने के बाद होता क्या है। देखिए, हम बॉटल को डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर वो हमारी नजर से गुम हो जाती है। लेकिन भाई, मेरी नजर से गायब और एनवायरमेंट से गायब दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। आप किसी चीज को डस्टबिन में डालकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वेस्ट सिस्टम का सफर शुरू होता है। कुछ प्लास्टिक प्रॉपरली कलेक्टेड और रिसाइकल होती हैं, कुछ लैंडफिल्स तक चली जाती हैं, कुछ लिटर बन जाती हैं, कुछ प्लास्टिक ड्रेनेज सिस्टम्स, रिवर्स और वाटरवेज के थ्रू ओशंस तक पहुंच सकती हैं। और यहाँ प्लास्टिक की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली डिस्टर्बिंग भी। प्लास्टिक जब एनवायरमेंट में होता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक बॉटल, बैग या कंटेनर की शेप में ही रहे। सनलाइट, हीट वेव्स, फ्रिक्शन और दूसरे तीसरे जो एनवायरमेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो प्लास्टिक को प्रोग्रेसिवली छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। इनमें से बहुत से पार्टिकल्स को माइक्रोप्लास्टिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जब उनका साइज 5 मिलीमीटर से छोटा हो, यानी कि प्लास्टिक जरूरी नहीं कि एक दिन मैजिकली डिसअपीयर हो जाए, वो छोटा हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है और डिफरेंट एनवायरमेंट्स में एंटर कर सकता है। इस चीज को ना आप यूं समझने की कोशिश करेंगे जैसे कोई ओल्ड फोटोग्राफ की तरह समझने की कोशिश करें, कोई पुरानी तस्वीर। अगर आप एक तस्वीर को फाड़ दें तो भाई वो तस्वीर खत्म नहीं होती, वो सिर्फ मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड हो जाती है। प्लास्टिक के साथ एनवायरमेंटल प्रोसेस में कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है। एक लार्ज प्लास्टिक आइटम छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है और ये फ्रेगमेंट्स हवा, पानी, इकोसिस्टम, इन सब चीजों के थ्रू मूव कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने माइक्रोप्लास्टिक्स को कोस्टल एरिया से लेकर डीप मरीन

0: सेडिमेंट्स तक स्टडी किया है. यानी जो प्लास्टिक हमने कभी सिटी की स्ट्रीट पर देखी थी ना, उसकी स्टोरी ओशन के बॉटम तक भी पहुंच सकती है. और समंदर कोई मैजिकल डस्टबिन नहीं है साथियों. हम कभी कभी सबकॉन्शियसली ये समझते हैं कि भाई अगर प्लास्टिक पानी में चली जाए तो वेस्ट के साथ कहीं वो उसे लेकर गुम हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. लेकिन ओशन कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जहां हम गार्बेज डालकर उसे रिंस साइकिल चला दें. वंस प्लास्टिक एंटर्स द मरीन एनवायरनमेंट, उसे रिट्रीव करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाता है. कुछ डेब्रीज बीचेस पर मिल सकते हैं, कुछ फ्लोट होते हैं, कुछ सी बेड्स तक पहुंच सकते हैं और कुछ माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स की फॉर्म में इकोसिस्टम्स का हिस्सा बन सकते हैं. अच्छा, अगर एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन की बात की जाए ना, तो प्लास्टिक की स्टोरी सिर्फ वेस्ट बनने के बाद स्टार्ट नहीं होती. इसकी स्टोरी उस वक्त स्टार्ट होती है जब हम इसे बनाने का डिसीजन लेते हैं. देखिए, ट्रेडिशनल प्लास्टिक प्रोडक्शन का जो मेजर रॉ मटेरियल ना, वो फॉसिल फ्यूल से आता है, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस. यानी एक सिंपल प्लास्टिक बॉटल के पीछे एक पूरी इंडस्ट्रियल चेन चल रही होती है. रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, पैकेजिंग होती है, रिटेल कंजम्पशन और फिर डिस्पोजल. देखिए, हर स्टेट का अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट हो सकता है. प्लास्टिक की लाइफ साइकिल का क्लाइमेट चेंज के साथ भी कनेक्शन है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन और प्लास्टिक प्रोडक्शन ग्रीन हाउस गैस एमिशन जनरेट करते हैं ना. इसीलिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम डस्टबिन के बाद क्या करते हैं. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम पूरी जर्नी को देखें. इसे लाइफ साइकिल थिंकिंग कहा जा सकता है. यानी प्रोडक्ट को सिर्फ उस वक्त ना देखें जब वो हमारे हाथ में है, बल्कि ये भी सोचें कि वो कहां से आया, किस मटेरियल से बना, कितनी रिसोर्सेज यूज हुई, कितनी देर के लिए यूज होगा ये मटेरियल और उसे बाद में कहां जाना है. और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है साथियों, वो है द 3 R's, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. देखिए, रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसाइकलिंग ही कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता. अगर हम अननेसेसरी प्लास्टिक प्रोड्यूस करते रहें और फिर सिर्फ रिसाइकलिंग पर डिपेंड करें, तो हम प्रॉब्लम के सोर्स को इग्नोर कर रहे हैं. अगर किसी डिस्पोजेबल आइटम को अवॉइड किया जा सकता है, तो उसे अवॉइड करना वेस्ट मैनेजमेंट के, आप कह लेंगे, बड़े पैमाने पर क्लीन अप करना ही है ना, आप कह लेंगे पहला स्टेप है उसका. अगर किसी आइटम को रिपीटेडली यूज किया जा सकता है, तो रीयूज उस मटेरियल की लाइफ को एक्सटेंड करता है. और जब रीयूज पॉसिबल ना हो, तब रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है. साथियों, सस्टेनेबिलिटी को एक, आप कह लें कि बैंक अकाउंट की तरह समझिए. पैसे की बात होती है ना बैंक की, तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है. अगर हम रोज उस अकाउंट से पैसे निकालते रहें तो क्या होगा, यानी कि आप कभी डिपॉजिट ना करें उसके अंदर, तो एक दिन बैलेंस खत्म हो जाएगा ना. देखिए, प्लैनेट के रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड नहीं है. सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ यूज ही ना करें, ऐसा नहीं है. नो, इसका मतलब है कि हम आज की जरूरत पूरी करते हुए कल की जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेज, कुछ अच्छा हेल्दी इकोसिस्टम बचाएं ना. और गुड न्यूज ये है साथियों कि हर सॉल्यूशन जायंट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. देखिए, मैं सीधी सी बात है, कभी कभी एक रियूजेबल वाटर बॉटल से भी जर्नी स्टार्ट हो सकती है. एक रियूजेबल शॉपिंग बैग से, रिफिल करने की हैबिट से, अननेसेसरी डिस्पोजेबल कटलरी को रिफ्यूज करने से, पैकेजिंग को देखकर कॉन्शियस परचेज करने से, ये सब एक्शंस इंडिविजुअली छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब लाखों लोग इन्हें अडेप्ट करते हैं तो कलेक्टिव इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है. तो साथियों, आज के एपिसोड में हम प्लास्टिक को सिर्फ एक बॉटल की तरह नहीं देखेंगे, हम इसकी पूरी ग्लोबल जर्नी फॉलो करेंगे. हम जानेंगे कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन से कंजम्पशन और वेस्ट तक का सफर क्या है, दुनिया इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर रही है, ओशन में प्लास्टिक का क्या हो रहा है और साइंटिस्ट्स किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से प्लास्टिक को दोबारा वैल्यूएबल मटेरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्लास्टिक को कहां फेंकना है, आज का बिगर क्वेश्चन, ये आप कह लें कि बिगर पिक्चर ये है कि क्या हमें हर बार प्लास्टिक को यूज करना ही जरूरी है. और इस सवाल के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर.
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
0: साथियों, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी मॉडर्न लाइफ का ऑलमोस्ट इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर.

बन चुका है। हम इन्हें नोटिस ही नहीं करते क्योंकि ये हर जगह मौजूद है भाई। आप ग्रोसरी स्टोर चले जाएं, प्लास्टिक पैकेजिंग है, कॉफी शॉप जाएं, प्लास्टिक लिड है, टेक अवे रेस्टोरेंट जाएं, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करें, प्लास्टिक रैपिंग है, एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदें, उसके अंदर भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैकेजिंग प्लास्टिक की हो सकती है। यानी हम सिर्फ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे, कभी कभी हम प्लास्टिक पैकेजिंग भी प्रोडक्ट के साथ फ्री में घर लेकर आ रहे होते हैं। देखिए भाई, सिंगल यूज प्लास्टिक की अट्रैक्शन बहुत सिंपल सी है। ये लाइट वेट है, रिलेटिवली चीप है, वाटर रेजिस्टेंट है, फ्लेक्सिबल है और कन्वीनियंट है। अच्छा, इस कन्वीनियंस ने प्लास्टिक को इतना पॉपुलर बना दिया कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन कन्वीनियंस की एक हिडन कॉस्ट होती है। हम किसी चीज की वैल्यू अक्सर उस वक्त समझते हैं जब तक वो हमें यूजफुल लगती है। जैसे ही बॉटल खाली हुई, उसकी वैल्यू हमारे लिए जीरो हो जाती है। लेकिन मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी खत्म नहीं हुई भाई। यानी हमारे लिए प्रोडक्ट की लाइफ एंड हो गई है, लेकिन मटेरियल की लाइफ कंटिन्यू चलती रहती है। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रडिक्शन है। हम एक ऐसे मटेरियल को यूज कर रहे हैं जो ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस है, और उसे ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं जिनकी यूजफुलनेस सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक बहुत मजबूत स्टील ब्रिज बनाएं सिर्फ इसलिए कि कोई उस पर एक मिनट के लिए खड़ा हो सके और फिर ब्रिज को तोड़कर फेंक दें। प्लास्टिक का हर यूज ऑब्वियसली ऐसा एक्सट्रीम एग्जांपल नहीं है, लेकिन एनालॉगी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि ड्यूरेबिलिटी और डिस्पोजेबल कल्चर के दरमियान कितना इंटरेस्टिंग मिसमैच है। अच्छा, प्लास्टिक पोल्यूशन की स्टोरी को समझने के लिए ना एक और मिथ क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि एक प्लास्टिक बॉटल एग्जैक्टली 400 टू 500 साल तक जो है ना वो खत्म हो जाती है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन रेट डिफरेंट होती है, और कई केसेस में प्लास्टिक कम्प्लीटली डीकम्पोज होने के बजाय स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में जो है वो तब्दील हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए 500 ईयर्स को एक यूनिवर्सल काउंटडाउन क्लॉक समझना सिग्निफिकेंटली एक्यूरेट अप्रोच नहीं है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम ये समझें कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट में बहुत प्रेजिस्टेंट मटेरियल हो सकता है, और उसका ब्रेकडाउन का मतलब जरूरी नहीं कि वो हार्मलेसली डिसअपीयर हो जाए। अच्छा, अब अगर माइक्रोप्लास्टिक्स को देखा जाए ना, तो माइक्रोप्लास्टिक्स को आमतौर पर प्लास्टिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जो कि आप कह लें कि 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से आइडेंटिफाई करना भी कभी कभी डिफिकल्ट होता है। रिसर्च ने इन्हें ओशंस, सेडिमेंट्स, बीचेस, फ्रेश वाटर सिस्टम्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एनवायरमेंट में डॉक्यूमेंट किया है। अच्छा, मरीन एनिमल्स माइक्रो प्लास्टिक इंजेस्ट कर सकते हैं, और साइंटिस्ट इस बात को एक्टिवली स्टडी कर रहे हैं कि इकोसिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स पर डिफरेंट एक्सपोजर लेवल का क्या अफेक्ट हो सकता है। ह्यूमन हेल्थ के हवाले से भी रिसर्च रैपिडली इवॉल्व कर रही है, लेकिन हर पॉसिबल हेल्थ अफेक्ट के बारे में साइंस के पास अभी फिलहाल आंसर्स नहीं है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल कन्वर्जन का मतलब पैनिक क्रिएट करना नहीं, बल्कि एविडेंस को समझना और अननेसेसरी प्लास्टिक सॉल्यूशन के सोर्स को रिड्यूस करना है। और जब हम ओशन की बात करते हैं ना, तो एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि प्लास्टिक सिर्फ बीचेस का प्रॉब्लम नहीं है। नो, मरीन रिसर्चर्स ने रिमोट एरियाज और डीप सी एनवायरमेंट्स में भी प्लास्टिक डिब्रीज और माइक्रोप्लास्टिक स्टडी किए हैं। ओशंस का आप कह लें कि जो वसी साइज है ना, हमें ये इल्यूजन दे सकता है कि एक प्लास्टिक बॉटल उसमें कहीं खो जाएगी। लेकिन ओशन एक कनेक्टेड इकोसिस्टम है। पानी के जो करंट्स होते हैं, वाटर करंट्स मटेरियल्स को मूव करते हैं। मरीन एनिमल्स मुख्तलिफ पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। सेडिमेंट्स मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। यानी प्लास्टिक का जर्नी मैप बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो इसे आप एक सिटी के ट्रैफिक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। अगर एक रोड पर एक छोटी सी चीज गिर जाए, वो वहीं नहीं रहती, ट्रैफिक उसे मूव करता रहता है। हवा मूव कर देती है, लोग मूव कर देते हैं। ओशन में करंट्स और नेचुरल प्रोसेस भी मटेरियल्स को मूव करते हैं। इसीलिए प्लास्टिक पोल्यूशन को सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं समझा जाता, ये ट्रांस बाउंड्री इशू है। और यही रीजन है कि यूनाइटेड नेशंस लेवल पर ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी की नेगोशिएशंस इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक प्रोडक्शन और वेस्ट का स्केल इतना बड़ा है कि कंट्रीज को

0: को कलेक्टिवली सॉल्यूशंस डिस्कस करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में एक मेजर डिबेट ये रही है कि फ्यूचर एग्रीमेंट्स सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग को इम्प्रूव करें या प्लास्टिक की प्रोडक्शन और सर्टन प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट्स और केमिकल्स को भी एड्रेस करें। साथियों, कंट्रीज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, उनकी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज डिफरेंट हैं और वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटीज भी डिफरेंट हैं। इसीलिए ग्लोबल एग्रीमेंट बनाना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है साथियों, क्या सिर्फ रिसाइकलिंग से प्लास्टिक पोल्यूशन सॉल्व हो सकता है? आंसर है नॉट बाय इटसेल्फ, नो। रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर प्लास्टिक आइटम इकोनॉमिकली और टेक्निकली इजी टू रिसाइकल नहीं होता। कुछ पैकेजिंग मल्टीपल मटेरियल से बनी हुई होती हैं, कुछ आइटम्स कंटैमिनेटेड होते हैं, कलेक्शन सिस्टम्स हर कंट्री में सेम नहीं होते, सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और रिसाइकलिंग प्रोसेस के भी भाई अपने ही एनर्जी और रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स होते हैं। इसीलिए वेस्ट हायरार्की में प्रिवेंशन और रिडक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में हर रोज एक बकेट पानी लीक हो रहा है और आप हर शाम फ्लोर मॉप करते रहते हैं। आप कितने भी अच्छे मॉप मास्टर क्यों ना हो, अगर लीक बंद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। साथियों, रिसाइकलिंग और क्लीनअप कुछ हद तक मॉप की तरह है, जरूरी है, लेकिन सोर्स पर लीक को रोकना भी पावरफुल है। प्लास्टिक पोल्यूशन में सोर्स रिडक्शन उस लीक को बंद करने जैसा है। इसीलिए रियूजेबल प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एक रियूजेबल बॉटल को डजंस, हंड्रेड्स या आप कहें कि उससे भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मटेरियल, ड्यूरेबिलिटी और यूजर बिहेवियर। एक रियूजेबल शॉपिंग बैग भी मल्टीपल ट्रिप्स पर यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ भी सस्टेनेबिलिटी का मतलब ब्लाइंड कंजम्पशन नहीं। हर रियूजेबल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटली परफेक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। इसीलिए आइडियल अप्रोच है जो चीज ऑलरेडी है उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें, अननेसेसरी न्यू प्रोडक्ट्स खरीदने से बचें और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टाइम तक यूज करें। यानी सस्टेनेबिलिटी का मतलब हर चीज को ग्रीन लेबल देना नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी का मतलब बेटर डिसीजंस को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना है। और यही हमारे लिसनर्स के लिए प्रैक्टिकल लेसन भी है। अगली बार जब आपको ऑटोमेटिकली प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी या एक्स्ट्रा बैग ऑफर हो, एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो पोलाइटली डिक्लाइन करना एक सिंपल एक्शन है। अगर रिफिल अवेलेबल है तो रिफिल चूज करना एक सिंपल एक्शन है। अगर रीयूज बॉटल अवेलेबल है तो उसे कैरी करना एक सिंपल एक्शन है। और याद रखिए, सस्टेनेबिलिटी परफेक्शन का कॉम्पिटिशन नहीं। अगर आप कभी प्लास्टिक बॉटल यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एनवायरमेंटल फेलियर हैं। चेंज ग्रेजुअली आता है भाई, एक हैबिट ऐड होती है, फिर दूसरी, और फिर वो हैबिट लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। तो साथियों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि आपने सिंगल यूज प्लास्टिक कम करने के लिए अपनी लाइफ में कौन सी इको फ्रेंडली हैबिट अपनाई है? क्या आप रियूजेबल बॉटल यूज करते हैं? क्या शॉपिंग बैग कैरी करते हैं? क्या अननेसेसरी स्ट्रॉज या डिस्पोजेबल कटलरी अवॉइड करते हैं? हमें जरूर बताइएगा। चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका हैंडल है @FM107Qatar। चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22-107 पर।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: और अब साथियों, वक्त आ गया है हमारे ग्रीन फ्लैश का, जहां हम ये जानेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले तो भाई ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस प्लास्टिक्स ट्रेटी की बात करते हैं। देखिए, दुनिया के कंट्रीज एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस करे। ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक बॉर्डर्स को नहीं समझती। एक कंट्री में प्रोड्यूस हुआ प्लास्टिक वेस्ट रिवर्स और ओशन करंट्स के थ्रू दूसरे रीजन तक मूव कर सकता है। इसीलिए प्लास्टिक पोल्यूशन का सोल्यूशन भी सिर्फ नेशनल लेवल का नहीं हो सकता। देखिए, निगोशिएशंस में एक मेजर क्वेश्चन प्लास्टिक प्रोडक्शन का है। क्या दुनिया को सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट को बेटर मैनेज करना चाहिए या प्लास्टिक की अननेसेसरी प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करना चाहिए? ये डिबेट इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल डायमेंशंस रखती है। साथियों, देखिए, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ना एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में पैकेजिंग फूड सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी का रोल प्ले कर सकती हैं। और कई इंडस्ट्रीज प्लास्टिक के बगैर ऑपरेट करना मुश्किल समझती हैं। साथ ही एनवायरमेंटल प्रेशर भी एक रियल चीज है। इसी बैलेंस को निगोशिएट करना फिटी

0: प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, 2025 की नेगोशिएशंस अग्रीमेंट के बगैर एडजर्न हुई थी और 2026 में प्रोसेस को मूव फॉरवर्ड करने के लिए चिली के एम्बेसडर को चेयर इलेक्ट किया गया। इनफॉर्मल मीटिंग्स कंटिन्यू हुई हैं और नेक्स्ट सब्सटेंटिव नेगोशिएशंस का स्टेज 2027 में एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब है कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, दुनिया अभी आंसर की तरफ जा रही है। यूरोपियन यूनियन की पैकेजिंग रूल्स में सर्टिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक बेवरेज बॉटल्स और मेटल कंटेनर्स के लिए 2029 तक 90% सेपरेट कलेक्शन टारगेट रखा गया है और डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम को हाई कलेक्शन रेट्स अचीव करने के टूल्स में से एक माना जाता है। अच्छा, ये एग्जांपल हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। कभी कभी एनवायरमेंटल बिहेवियर को चेंज करने के लिए सिर्फ लोगों को लेक्चर देना इनफ नहीं होता, सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना होता है कि सस्टेनेबल चॉइस इजी, कन्वीनियंट और अट्रैक्टिव बन जाए। और यहाँ से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सस्टेनेबल लेसन मिलता है साथियों, नेचर में वेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड होता है। एक ऑर्गेनिज्म का वेस्ट अक्सर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्स बन सकता है। लीव्स, पत्ते गिरते हैं, डीकम्पोज होते हैं और सॉइल न्यूट्रिएंट्स का पार्ट बन जाते हैं देखिए, नेचुरल सिस्टम सर्कुलेटरी के प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करते हैं। मॉडर्न ह्यूमन इकोनॉमी ने कई एरियाज में लाइनर सिस्टम डेवलपमेंट कर लिए हैं। टेक, मेक, यूज, थ्रो। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी का ऑब्जेक्ट ना कुछ हद तक नेचर के इसी लेसन से इंस्पायरेशन लेना है। सोचिए, अगर हम फ्यूचर में ऐसा सिस्टम बना सकें जो प्लास्टिक बॉटल्स का मतलब वेस्ट नहीं बल्कि फ्यूचर रॉ मटेरियल हो, आप बॉटल रिटर्न करें, सिस्टम उसे कलेक्ट करे, सॉर्ट करे, प्रोसेस करे और उस मटेरियल को दोबारा न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। इस तरह भी वेस्ट को प्रॉब्लम की बजाय रिसोर्स के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन फिर वही गोल्डन रूल वापस आ जाता है भाई, बेस्ट वेस्ट वही है जो अननेसेसरी क्रिएट ही ना हो। टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प कर सकती है लेकिन टेक्नोलॉजी को कंजम्पशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। वीकली चैलेंज। तो साथियों, इस वीक हम एक सिंपल चैलेंज करेंगे और इसका नाम है 7 डेज सिंगल यूज प्लास्टिक चैलेंज। अगले 7 दिन तक आप सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करें, आप अपनी डेली रूटीन में कितनी अननेसेसरी सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नोटिस करना है और जहां पॉसिबल हो एक डिस्पोजेबल आइटम को अवॉइड या रिप्लेस करना है। आप रीयूज वाटर बॉटल कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए रीयूजेबल बैग्स रख सकते हैं, अगर रेस्टोरेंट या कैफे में डिस्पोजेबल कटलरी की जरूरत नहीं है तो उसे रिफ्यूज कर सकते हैं और अगर स्ट्रॉ की जरूरत नहीं है तो स्ट्रॉ को स्किप भी किया जा सकता है। अगर रिफिल अवेलेबल है तो रिफिल चॉइसेस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी रूटीन में एक कॉन्शियस पॉज इंट्रोड्यूस करें। जब आपको प्लास्टिक आइटम दिया जाए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है? हो सकता है पहले दिन आप सिर्फ एक आइटम अवॉइड करें, दूसरे दिन 2 अवॉइड हो सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता 3, 4, 5 और फिर वो लाइफस्टाइल बन जाए। सस्टेनेबिलिटी परफेक्शन का एग्जाम नहीं, ये हैबिट बिल्डिंग का प्रोसेस है। अगर आप 7 दिन के चैलेंज में ये अननेसेसरी चीजें अवॉइड कर सकते हैं तो आपने ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट चीज अचीव कर ली है, आपने अपनी कंजम्पशन को नोटिस करना शुरू कर दिया है। तो साथियों, आज हमने एक ऑर्डिनरी प्लास्टिक बॉटल को एक कम्प्लीटली डिफरेंट नजर से देखा। हमने उसे सिर्फ एक बॉटल नहीं समझा, हमने जाना कि उसकी स्टोरी रॉ मटेरियल से होती है, मैन्युफैक्चरिंग से गुजरती है, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल तक जाती है, फिर हमारे हाथ में आती है, कुछ मिनट इस्तेमाल होती है और फिर उसके बाद वेस्ट सिस्टम में एंटर कर जाती है और अगर सिस्टम उसे प्रॉपर्ली कलेक्ट और प्रोसेस ना करे तो वो एनवायरमेंट तक पहुंच सकती है, रिवर्स, कोस्ट लाइंस, ओशंस और सेडिमेंट्स तक। चलिए भाई, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला स्टेप डिस्पोजल नहीं, डिसीजन है। परचेज करने से पहले डिसीजन, यूज करने से पहले डिसीजन, रीयूज करने से पहले डिसीजन और जब रीयूज पॉसिबल ना हो तो करेक्ट डिस्पोजेबल का भी एक डिसीजन है। आज हमने ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस प्लास्टिक्स ट्रीटी नेगोशिएशंस की बात भी की। दुनिया के कंट्रीज के एक कॉमन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। हमने ओशंस के डीप एनवायरनमेंट तक प्लास्टिक पोल्यूशन के एविडेंसेस की बात की और हमने साइंस के उस एक्साइटिंग कॉर्नर में भी झांका जहां स्पेशली इंजीनियर्स एंजाइम्स पीईटी प्लास्टिक्स को उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में ब्रेक करने की पोटेंशियल ऑफर कर रहे हैं। आज का हमारा ये टॉपिक द ग्लोबल जर्नी ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए और याद रखिए, द फ्यूचर इज नॉट समवेयर वी आर गोइंग, द फ्यूचर इज समथिंग वी आर क्रिएटिंग। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। इंसान को जब कोई मकाम मिलता है, इज्जत मिलती है, इल्म दौलत या इख्तियार मिलता है, तो उसके साथ एक इम्तिहान भी शुरू हो जाता है कि क्या ये मकाम उसे लोगों से करीब करेगा या वो अपने आप को लोगों से बुलंद समझने लगेगा। अब्दुल्लाह इब्ने बुसर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बड़ा प्याला था जिसे अल-गर्रा कहा जाता था और उसे चार आदमी उठाया करते थे। चाश्त का वक्त हुआ, लोगों ने चाश्त की नमाज ही, फिर वो बड़ा बर्तन लाया गया जिसमें सरीर तैयार किया गया था। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। जब लोगों की तादाद ज्यादा हो गई और जगह तंग पड़ने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठ गए। एक अरबी ने हैरत से पूछा, ये कैसा बैठना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह जालनी अब्दन करीमन वलम यजालनी जब्बारन अनीता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू मिन हवालिहा वदाउ ज़रवतहा युबारक फीहा, यानी उसके किनारों से खाओ और दरमियान के ऊपरी हिस्से को छोड़ दो, तुम्हारे लिए उसमें बरकत रखी जाएगी। सामईन किराम, जरा मंजर को महसूस कीजिए। लोग एक ही बर्तन के गिर्द बैठे हुए हैं, तादाद बढ़ रही है, जगह कम पड़ रही है और उस मजलिस में सबसे ज्यादा मर्तबे वाला शख्स कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप ये नहीं फरमाते मेरे लिए जगह बनाओ, मेरे लिए अलग नशिस्त रखो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बैठने का अंदाज बदल लेते हैं ताकि दूसरों के लिए जगह बन जाए। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर कीजिए। आपने कहा, अब्दन करीमा, अल्लाह ने मुझे एक बाइज्जत बंदा बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन अनीदा, मुझे जब्बार और सरकश नहीं बनाया। तो ये बहुत खूबसूरत तवाजुन है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान तवाजु के नाम पर अपने इज्जत नफ्स ख़त्म कर दे। आप बावकार भी हो सकते हैं और बेक वक्त मुतवाजे भी। आप बड़े मनसब पर भी फायज हो सकते हैं और नरम मिजाज के हामिल भी। आप आलिम, उस्ताद, अफसर, सरबराह या किसी इदारे के जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मकाम आपके और दूसरे इंसानों के दरमियान दीवार बन जाए। आज के दौर में अक्सर इंसान जब तरक्की करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल बढ़ने लगता है, फिर बाज़ औक़ात प्रोटोकॉल के साथ फासला भी बढ़ जाता है। जो कल सबके साथ बैठता था आज अलग बैठता है, जो कल खुद काम कर लेता था आज छोटी से छोटी चीज के लिए दूसरे को आवाज देता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो पूरी इंसानियत में सबसे बुलंद था, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान ऐसे बैठते हैं कि एक आम अराबी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतकल्लुफी के साथ सवाल कर सकता है, ये कैसा बैठना है? तो सामईन किराम, यही क़यादत का नबवी अंदाज है कि मकाम बुलंद हो मगर इंसान लोगों से दूर ना हो। सामईन किराम, रूह परवर सुन्नत के हवाले से आज की जिस हदीस का हमने जिक्र किया है, इसका बहुत बड़ा एक अमली पहलू ये है कि अपने लिए जगह लेने के बजाय दूसरों के लिए जगह बनाइए। کسی مجلس میں ہیں اور کوئی نیا شخص آ گیا ذرا سمٹ جائیں کوئی بزرگ آ گئے ان کے لیے سہولت پیدا کریں دسترخوان پر لوگ زیادہ ہیں اپنی سہولت

0: थोड़ी कम कर लें, मैं कितना कंफर्टेबल हूं, इसके बजाय कभी ये भी देखिए कि मेरे साथ बैठा इंसान कितना कंफर्टेबल है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर खाने का एक अदब भी सिखाया, कुलू मिन हवालैहा, किनारों से खाओ। फिर फरमाया, दरमियान के बुलंद हिस्से को छोड़ दो ताकि खाने में बरकत हो। तो सामने इकराम, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज का खुलासा यही है कि दीनी मामलात में अपनी राय से पहले कुरान और सुन्नत की रहनुमाई तलाश करें। जिस मसले का इल्म ना हो, अहले इल्म से पूछें, दलील सामने आ जाए तो अपनी राय छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस न करें। इख्तिलाफ को आना और दुश्मनी का मसला न बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी के जरिए साबित करें।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठा की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। एनबीए की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये रिकॉर्ड्स किसी प्लेयर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, कंसिस्टेंसी और लॉन्गेविटी की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड बास्केटबॉल लेजेंड करीम अब्दुल जब्बार के नाम रहा। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड। 5 अप्रैल 1984 ये तारीख NBA की स्कोरिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन करीम अब्दुल जब्बार ने NBA में सबसे ज्यादा करियर पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनका करियर टोटल था 38,387 पॉइंट्स, एक ऐसा नंबर जो उस वक्त बास्केटबॉल की दुनिया में एक नया बेंचमार्क बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे सिर्फ स्कोरिंग एबिलिटी नहीं थी, इसके पीछे थी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर। थोड़ा पीछे चलते हैं और

एथलेटिक एबिलिटी, बास्केटबॉल इंटेलिजेंस और स्कोरिंग स्किल ने उन्हें NBA के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शामिल कर दिया और फिर उनका सिग्नेचर मूव, जी हाँ, स्काई हुक करीम अब्दुल जब्बार की पहचान बन गया। ये शॉट देखने में सिंपल लगता था लेकिन डिफेंडर्स के लिए इसे रोकना इंतहाई मुश्किल था। करीम अपनी हाइट और रीच का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बास्केट के करीब से एक हाई आर्किंग हुक शॉट लगाते थे। साल गुजरते गए लेकिन करीम की स्कोरिंग कंसिस्टेंसी कम नहीं हुई। वो हर सीजन अपनी टीम के लिए रिलायबल स्कोरिंग ऑप्शन रहे और यही उनके रिकॉर्ड की सबसे खास बात थी। 38,387 पॉइंट्स एक या दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन्स का नतीजा नहीं थे। दोस्तों, ये पॉइंट्स एक लंबी और कंसिस्टेंसी ब्रिलियंट करियर का नतीजा थे। करीम ने मिलवॉकी बक्स के साथ भी सक्सेस हासिल की और बाद में लॉस एंजलिस लेकर्स का हिस्सा बने। लेकर्स के साथ उनका करियर और भी लेजेंडरी बन गया। मैजिक जॉनसन के साथ उनकी पार्टनरशिप NBA हिस्ट्री की सबसे मशहूर जोड़ी में शुमार होती है। करीम ने अपने करियर में 6 NBA चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 6 NBA मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड्स भी हासिल किए, जो NBA हिस्ट्री में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इसके अलावा वो 19 मरतबा NBA ऑल स्टार सेलेक्ट हुए। ये नंबर्स बताते हैं कि करीम सिर्फ एक ग्रेट स्कोरर नहीं थे, वो अपने दौर के सबसे कंप्लीट और डोमिनेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक थे। दोस्तों, यहाँ पे बताना जरूरी होता है कि उनका ये स्कोरिंग रिकॉर्ड तकरीबन 29 साल तक कायम रहा, यानी 39 years। इस दौरान NBA में कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोरर्स आए लेकिन करीम अब्दुल जब्बार के रिकॉर्ड तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं था। फिर 2023 में एक और बास्केटबॉल लेजेंड ने करीम अब्दुल जब्बार का ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेब्रॉन जेम्स। मॉडर्न बास्केटबॉल में अगर कोई स्टार खिलाड़ी है तो लेब्रॉन जेम्स के बारे में लोग एग्जांपल देते हैं। तो लेब्रॉन जेम्स ने करीम अब्दुल जब्बार के 38,387 करियर पॉइंट्स के रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिया। 3 साल पहले की बात है ये। लेकिन रिकॉर्ड टूटने का मतलब ये नहीं कि करीम की अचीवमेंट की अहमियत कम हो गई, बल्कि इससे ये और साबित हुआ कि करीम का रिकॉर्ड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था दैट इट स्टूड फॉर 39 years। तकरीबन 4 decades तक NBA का स्कोरिंग बेंचमार्क रहना अपने आप में एक फेनोमिनल अचीवमेंट है। सो फाइनली, करीम अब्दुल जब्बार एक लेजेंडरी स्कोरर, एक 6-time NBA चैंपियन, 6-time MVP और एक आइकॉनिक स्काई हुक आर्टिस्ट, और एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने NBA की तारीख में 38,387 पॉइंट्स के साथ अपनी पहचान हमेशा के लिए अमर कर दी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, काफी कुछ है जो आज की दुनिया में चल रहा है। टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी भी हो रही है और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो एआई से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत भारी रकम अदा करनी पड़ रही है अगर वो एआई का हाथ पकड़ के आगे चलना चाहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग अभी 2026 में इस साल से शुरू करना चाहते हैं अपना कंटेंट जनरेशन, ऑनलाइन जाके कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूं आपको जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। यू वांट टू ट्रीट देम एज योर एप्स या फिर वेबसाइट, विच एवर वे यू वांट टू, पर ये बहुत मेन रहने वाली। तो शुरू करते हैं बहुत ही मेजर अपडेट से। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट है आपके लिए वो वेबसाइट जो आपको ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स देगी। जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं, क्योंकि वो मैच करने के लिए

0: एल्गोरिथम में बिठाने के लिए ये सब कुछ ही होता है, और कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स, कुछ BGM ऐसे होते हैं बैकग्राउंड स्कोर जो आप कहीं भी सुनते हैं और आपको लगता है यार मैं कैसे निकालूं, फिर आप अगड़म चिगड़म इधर उधर जाते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, चाहे वो इंट्रो साउंड हो, चाहे वो बीच में आपको ट्रांजिशन देना हो, या फिर ये तो नॉर्मल बताया मैंने, कैसा भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए हो आपके कंटेंट जन के लिए वो या आपको मिलेगा। अब वेबसाइट का नाम बता देता हूं, तो myinstance.com myinstance.com myinstance, तो उस पर जाइएगा। एंड दूसरी एक और वेबसाइट इससे जुड़ी हुई जिसका नाम है soundbible.com soundbible.com soundbible.com और myinstance.com। अब यहां जो है हमने साउंड को मैनेज कर लिया, साउंड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज होती है, अक्सर वीडियोस में देखते हैं और काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि यार ये कैसे किया होगा, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। वो आपने देखा है जो लाइक और फॉलो के बटन्स आते हैं बड़े क्रिएटिवली सामने आते हैं किसी वीडियो में, आप देखते हैं भाई ये बड़ा क्रिएटिव था। तो लाइक और फॉलो वाले जो बटन हैं अगर आप अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं डिफरेंट इन एनिमेशन के साथ, तो उसके लिए भी दो वेबसाइट में बता रहा हूं। नंबर वन इज Jitter Jitter Video, यहां पे भी आप जा सकते हैं। और दूसरी है videoeffects.com। अब यहां पे जाइए, सुकून से आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा यहां से। और तीसरी बात, अगर आपको स्टॉक इमेजेस चाहिए, वो इमेजेस जिन पे कोई कॉपीराइट ना लगाए, कोई आपको टोके टाके नहीं, और आपके कंटेंट जनरेशन में मदद मिले, तो इसके लिए भी दो वेबसाइट है। पहली है pixels.com pixels.com और दूसरी है pixabay.com pixabay.com pixabay.com। तो कॉपीराइट फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर वेबसाइट जो मैंने आज आपको बताई है, तो कंटेंट जनरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड यही सब आप यूज करेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द न्यूज दिस वीक। देखिए पूरे हफ्ते आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप कोई गैजेट खरीदने के लिए जा रहे हैं ऑनलाइन या फिर सामने से, तो आपने देखा है जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, स्पेशली वो हार्डवेयर जो AI के साथ साथ चल रहा होता है। रिपोर्टेडली अभी बताया गया है, NVIDIA की अगर बात करूं तो उन्होंने भी देखा कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुकी है, और उन्होंने भी नहीं बढ़ा दी है, 15% प्राइस इंक्रीज देखा गया है। जो AI सर्वर्स हैं लार्जली उनको जो पैसा देना पड़ रहा है वो है मेमोरी कॉस्ट। मेमोरी जो कॉस्ट जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी प्रेशर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल क्यों ना हो। एंड ये इंक्रीजिंगली नीड, जो इंक्रीज नीड है, बढ़ती हुई ज़रूरत है जो मेमोरी की है, मेमोरी की, इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स की शिपिंग में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग और प्राइस रेंज आप देख के सोच रहे हैं यार थोड़ा रुक जाता हूँ, कोई फायदा नहीं है, वो प्राइस और बढ़ जाएगा। इफ़ यू हैव सीन अभी रिसेंटली प्ले स्टेशन भी थोड़े से महंगे हुए हैं, सो ये बस हम उस एरा में जी रहे हैं, मान के रखिए, जहाँ पर आपको हार्डवेयर जो कि AI से जुड़ा हुआ है वो महंगा पड़ने वाला है। सो अभी मौका है भाई, ये गोल्ड वाला सिस्टम हो रहा है, अभी ले लो। हाँ ठीक है, एक और खबर आपको बता देता हूँ, वो है एप्पल से जुड़ी हुई। तो एप्पल एज अ कंपनी, उन्होंने काफी इनोवेशन तो नहीं किए रिसेंटली, बस थोड़ा डिजाइन इस बार बदला, विच इज गुड। अभी वो M6 जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेडलाइन में बार बार आ रहे हैं। रिपोर्ट से कहती है कि एप्पल ने जो है अनवील कर दिया है अपना M6 2mm चिप और साथ में M5 अल्ट्रा भी, पर M5 अल्ट्रा जो है वो एम्फेसाइज करता है AI परफॉर्मेंस पर। सो व्हाटएवर एप्पल इज डूइंग, I can only wish all the best। बाकी Apple के जब फोन्स पूरी तरह से सामने आ जाएंगे फॉर द रिव्यू, तो आपको उसका रिव्यू भी मिल ही जाएगा। मगर आपके पास कोई अपडेट है, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, हमें भी जरूर बताएगा। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक अपडेट, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM107, दिल से देसी।
2: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका इस फ्रॉड अवेयरनेस के नए एपिसोड में। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में, नए स्कैम के बारे में हर रोज हम बात करते हैं और आज भी एक ऐसे ही फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे साथ हो जाता है। हमारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है लेकिन ये स्कैमर्स नए तरीके ढूंढते हैं और इस नए जमाने में उनसे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में जो एक्चुअली में हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारे साथ ये फ्रॉड हो ही जाता है, लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है। ये है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, एक ऐसी चालाकी है जहां स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया एड्स के जरिए बड़े आम से भोले भाले बायर्स को फंसाते हैं। आजकल लोग इंटरनेट पर शॉपिंग करना बेहद पसंद करते हैं, खास तौर पे घर की फीमेल्स, और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके निकालते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए इसके तरीके और इसके बड़े सॉल्यूशन को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले लेकिन हमको समझना होगा कि ये फ्रॉड काम कैसे करता है। दोस्तों स्कैमर्स अक्सर बिल्कुल असली दिखने वाली नकली शॉपिंग वेबसाइट्स बनाते हैं। ये साइट्स फेमस ब्रांड्स के होते हैं, कॉपी होते हैं ताकि आपको शक ना हो। इम्पॉसिबल लो प्राइसेस इन वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट देखी थी और ये वेबसाइट वो थी जो हमारे घरों पे खाना डिलीवर करती है और ये वेबसाइट इतनी ज्यादा असली लग रही थी कि लोग अगर इस पर क्लिक करें तो समझ में साफ आता था कि ये बिल्कुल असली है। आप उसमें ऑर्डर डिटेल डालते हैं, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होता है, फिर आप पेमेंट अपनी डालते हैं, सारी डिटेल डालते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा हो जाता है और आपके घर खाना नहीं पहुंचता है। फिर आप सोचते हैं कि ये खाना मेरे घर पहुंचा क्यों नहीं, जरा कॉल करें। और जब कॉल पर जाते हैं, उस वेबसाइट की डिटेल्स जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि असल में कोई फोन नंबर, कोई हेल्पलाइन इस वेबसाइट में तो है ही नहीं, तो आप कॉल किसको करेंगे। तब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो नए जमाने के नए जो स्कैमर्स हैं, नए जो थीव्स हैं, वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको पता भी ना चले। ये वेबसाइट्स जो फेक होती हैं इनको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी हो तो इनको पकड़ना आसान भी होता है। और इसी तरह के सॉल्यूशंस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्रॉड होते कैसे हैं। इम्पॉसिबल दिखने वाले कम या कहें लो प्राइसेस में गुड्स का अवेलेबल होना, ये लोग पॉपुलर आइटम्स पर इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं जो सच होना नामुमकिन होता है। उसके अलावा सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अट्रैक्टिव एड्स दिखाना, उसके अलावा फेक वेबसाइट पर ऐसे डिटेल्स डालना कि आपको लगे कि ये सच है, उसके अलावा फिर होता है ट्रैप। जब आप ऐसी जगह से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये स्कैमर्स आपके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं बेचते आपको, या फिर आपको एक बेहद सस्ता नकली प्रोडक्ट जो है वो भेज देते हैं। इसके साथ ही वो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी चुरा लेते हैं ताकि बाद में आपके अकाउंट से पैसे निकाल सके। लेकिन इससे बचे कैसे, इनके 5 तरीके हैं इस तरह के फ्रॉड से बचने के, आसान। सबसे पहले पैडलॉक आइकॉन को चेक करें, हमेशा वेबसाइट के URL यानी कि एड्रेस बार में चेक करें कि वहां एक पैडलॉक यानी कि ताला का जो आइकन होता है ना, वो छोटे से लॉक का जो आइकन होता है, वो अवेलेबल है या नहीं है। इसका मतलब होता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। अगर ताला लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर है। उसके अलावा HTTPS ये शुरू होना जरूरी है। उसके अलावा वेबसाइट का URL इसको भी जरूर चेक करें। फिर रिसर्च अनफेमिलियर स्टोर्स फर्स्ट, अगर आप किसी बिल्कुल नए या अनजान ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, सोशल मीडिया पर रिसर्च करें, सर्च इंजन पर रिव्यूज पढ़ें। अगर बाकी लोगों ने उस साइट को फ्रॉड बताया तो वहां से दूर रहें। टू गुड टू बी ट्रू डील्स, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी तरह के स्कैम से बचने का। अगर कोई नया या अनवेरिफाइड स्टोर किसी 50,000 के फोन को सिर्फ 5,000 में दे रहा है तो लालच में बिल्कुल ना आए। ऐसे बड़े और अजीब डिस्काउंट हमेशा एक फ्रॉड ट्रैप होते हैं। उसके अलावा COD, नए या कम भरोसेमंद स्टोर्स पर कभी भी एडवांस ऑनलाइन पेमेंट ना करें, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। उसके अलावा एक और तरीका है बचने का, वो है अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई धोखा हुआ तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें और अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं ताकि आगे होने वाले स्कैम से भी आप बच सकें। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जो बहुत

0: होता है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड पर। उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा और आपके साथ इस तरह का स्कैम कभी नहीं होगा। सुनते रहे FM 107, मुलाकात होगी नए एपिसोड में जल्द ही। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्मार्ट मनी।
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर मेजर लाइफ गोल्स। देखिए, हर इंसान के कुछ बड़े गोल्स होते हैं, अपना घर, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, बिजनेस स्टार्ट करना, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ विशेष नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है गोल डिफाइन करना। 5 साल में हाउस डाउन पेमेंट्स या फिर 10 साल में बच्चे की यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 20 साल में रिटायरमेंट फंड। जब गोल क्लियर होते हैं तो प्लानिंग इजी हो जाती है। मिसाल के तौर पे फातिमा का गोल है 5 साल में 100,000 कतरी रियाल सेव करने का। अब 100,000 कतरी रियाल अगर आप 60 मंथ से डिवाइड करें तो मंथली लगभग, मेरी मैथ्स तो पुअर है, बट ऑन एन एवरेज मैं कह सकती हूँ 1667 सेव होंगे। अब टारगेट इस बंदी के पास क्लियर है। दूसरा स्टेप इन्फ्लेमेशन को समझने में मदद देता है। आज जो चीज 100 कतरी रियाल की है, हो सकता है 10 साल बाद 200 कतरी रियाल की या 150 कतरी रियाल की हो। इसीलिए फ्यूचर कॉस्ट को एस्टिमेट करना बड़ा जरूरी है। एजुकेशन प्लानिंग की एग्जांपल्स भी आपको देके मैं समझाना चाहूंगी कि दोस्तों, आज जो यूनिवर्सिटी की फीस 50,000 कतरी रियाल है, हो सकता है 10 साल बाद 75,000 कतरी रियाल हो या उससे ज्यादा। अगर पेरेंट्स पहले से प्लानिंग करते हैं तो बजट या बर्डन, बजट आपका बिगड़ता नहीं और बर्डन आपका कम हो जाता है। वहीं पर रिटायरमेंट प्लानिंग भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। हम अक्सर यूथ में ये बात देखते हैं कि वो इस बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन रिटायरमेंट ये तो आना ही है, और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर सैलरी अगर ना हो तो बड़ा मसला हो जाता है। अगर 30 साल की एज से हर मंथ 500 कतरी रियाल इन्वेस्ट किए जाए तो रिटायरमेंट तक सब्सटेंशियल फंड बन सकता है। वही हाउस परचेज के लिए भी प्लानिंग काफी मददगार साबित होती है। अचानक लोन लेने के बजाय डाउन पेमेंट्स या फंड बनाए जा सकते हैं। अब डाउन पेमेंट टारगेट्स भी आपको तय करने हैं, जैसे 200,000 कतरी रियाल, और सेविंग पीरियड्स आपका रखा आपने 8 इयर्स का। इस तरह से मंथली सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 2,2100 होगी। गोल मैनेजेबल लगने लगा ना। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। आपको पता होता है कि फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है, और आप उस तैयारी को समझ भी रहे हैं और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। मैं तो बस एक ही चीज कहूंगी कि याद रखिए, आपके जो गोल्स हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। उन्हें आप लिख लें, टाइमलाइन सेट कर लें, मंथली अमाउंट कैलकुलेट कर लें और प्रोग्रेस मॉनिटर करें। हर 6 महीने में रिव्यू करें। प्लानिंग ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक सबसे आसान प्रैक्टिकल रोड मैप है। बस इसकी शुरुआत आपको आज से करनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते

को पता है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के नाम से इस जगह पे होने वाला है और ये वेस्ट बे के बिजनेस हब में लोकेटेड है। इस ग्रैंड एग्जीबिशन की सबसे खास बात यह है कि ये पूरे वर्ल्ड के टॉप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, प्रोफेशनल कॉरपोरेट प्लानर्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स और रीजनल एंटरटेनमेंट सप्लायर्स को एक ही मैसिव रूफ के नीचे लेकर आता है। इसका मतलब टारगेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां हर बिजनेस तरक्की कर सके और जहां पर बिजनेस नेटवर्क को मजबूत किया जा सके और इवेंट्स इंडस्ट्री के फ्यूचर ट्रेंड्स को लोग समझ सके। तो अगर आप दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जाते हैं और आपका कोई बिजनेस है तो मुझे लगता है कि इस तरफ रुख आपको जरूर करना चाहिए। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो विजिट कतर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको मजीद जानकारी मिल जाएगी। इस एग्जीबिशन के अंदर विजिटर्स को बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। अलग अलग कंट्रीज से आए एग्जीबिटर्स अपने स्मार्ट इवेंट टेक्नोलॉजीज, हाईटेक लाइटिंग, साउंड इंजीनियरिंग सिस्टम्स, यूनिक डिजिटल स्टेज डिजाइंस और एडवांस्ड केटरिंग सॉल्यूशन का लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखने को मिलेगा आपको। मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े कॉरपोरेट प्लानर्स इस शो में इसलिए आते हैं ताकि वो अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स, हाई लेवल कॉन्फ्रेंसेस और बड़े फेस्टिवल्स के लिए नए वेंडर्स और ट्रस्टेड पार्टनर्स ढूंढ सके। इसके साथ ही ये इवेंट सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक हाइब्रिड कॉरपोरेट और कल्चरल शो भी है जहां ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे ट्रेडिशनल कतरी हॉस्पिटैलिटी और कल्चर को मॉडर्न बिजनेस इवेंट में ऐड किया जा सकता है। वेल, अब बात कर लेते हैं वीकेंड अट्रैक्शन की कि इस हफ्ते आप कहां पर जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ। जो फैमिलीज और टूरिस्ट इस वीकेंड पर कुछ प्रीमियम और रिलैक्सिंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते तो उनके लिए MIA बोले तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जाना एक परफेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये वर्ल्ड फेमस म्यूजियम अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है जिसे फेमस आर्किटेक्ट आयम बाई ने डिजाइन किया था। ये तो सबको अब तक पता ही चल गया होगा, जो यहाँ के रहने वाले उनको पता है लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये बताना जरूरी भी था। और ये दोहा कॉर्निश के एज पर एक अलग आइलैंड पर बना हुआ है। दोस्तों जो नए लोग हैं उनको यहाँ पर तो लाजमी जाना चाहिए। यहाँ से आपको तीन चीज दिखेगी, ऑब्वियसली MIA तो दिखेगा, MIA का पार्क लाजवाब है। लोग अगर वीकेंड कहीं एंजॉय करना चाहते हैं ना, फैमिलीज जिनके बच्चे भी हैं तो यहाँ जरूर जाते हैं। और उसके तीसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का दो वक्त का जो व्यू है ना वो गजब का है। सुबह मत जाइए लेकिन शाम को यार प्लीज 5, 5:30, 6 बजे जब सूरज ढल रहा हो तब जाइए। और शाम को यानी कि रात जब हो जाए, अंधेरा जब हो जाए, आप वहां 7, 7:30 तक रुके। वहां का व्यू बेहद खूबसूरत है इसलिए आपको यहां जरूर जाना चाहिए। उसके अलावा एक अलग आइलैंड पे बना है इस वीकेंड पर, म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन ने विजिटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड वीकेंड गैलरी टूर अरेंज किया है। ये गाइडेड टूर्स लोगों को एक हिस्टोरिकल जर्नी पर लेकर जाएगा जहां पर लोग लगभग 1400 साल पुरानी ग्लोबल इस्लामिक क्राफ्टमैनशिप और उसके रिच हेरिटेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जगह आपके लिए खूबसूरत और लाजमी दोनों है। म्यूजियम के अंदर बनी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी गैलरीज में 3 अलग अलग कंट्रीज जैसे कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कलेक्ट किए गए प्रीशियस हिस्टोरिकल ट्रेजर्स भी रखे गए हैं। विजिटर्स यहां पर हाथ से लिखी हुई एंशिएंट मैनुस्क्रिप्ट्स, पुराने जमाने के ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स, मिट्टी के इंट्रिकेट सेरेमिक्स, रेयर ग्लास वर्क, हैवी मेटल वर्क और हीरा जवाहरात, ये सारी चीजें देख सकते हैं करीब से। इवन वहां पर राजघरानों के बहुत पुराने जमाने के वेपन्स और ज्वेलरी दोनों रखे हुए हैं। आप करीब से देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि 1400 साल पहले इस्लामिक जो क्राफ्टमैनशिप थी वो कैसा था, वो रिच हेरिटेज कैसा था। साथ ही आपको बता दें ये टूर बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एडुकेशनल होने के साथ साथ काफी इंटरटेनिंग भी होने वाला है। तो इस जगह पर जाना तो आपकी मजबूरी होनी चाहिए मुझे लगता है। बाकी अब बात कर लेते हैं कुछ यू नो न्यू ओपनिंग्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कतर 2026 में हम नए ओपनिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। न्यू ओपनिंग्स में अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, न्यू ओपनिंग्स या रेस्टोरेंट वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कतर 2026 आपके लिए बेस्ट है। मशारिफ डाउनटाउन दोहा को दुनिया के सबसे पहले फुली सस्टेनेबल और स्मार्ट लाइफस्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स में गिना जाता है। दोस्तों इस हफ्ते मशारिफ डाउनटाउन में एक बिल्कुल नया इको कॉन्शियस डाइनिंग हब खोला गया है। ये एक हाई एंड प्रीमियम फूड जोन है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग लग्जरी डाइनिंग का मजा लेते हुए भी नेचर का ध्यान रख सके। इस डाइनिंग हब का सबसे मेन रूल और फिलॉसफी है जीरो वेस्ट ऑपरेशन।

यानी इस एरिया में चलने वाले सभी कैफेज और रेस्टोरेंट ने स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट रूल्स को फॉलो करने का प्रॉमिस किया है, ताकि फूड वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक और एक्सेस एनर्जी कंजप्शन को जीरो किया जा सके। यहाँ के शेफ्स का मेन फोकस ये है कि वो लोकल ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को मॉडर्न जीरो वेस्ट कुकिंग टेक्निक्स के साथ मिक्स करें। वो मिडिल ईस्ट के ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके नई और इनोवेटिव डिशेस तैयार करते हैं। तो इस सस्टेनेबिलिटी मॉडल को कम्प्लीटली रन करने के लिए इस हब ने एक स्ट्रिक्ट लोकली सोर्स्ड डाइनिंग फ्रेमवर्क बनाया है। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट बाहर के कंट्रीज से खाना या इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंपोर्ट करने से ट्रांसपोर्ट का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। इसके बदले ये रेस्टोरेंट डायरेक्टली कतर के लोकल ऑर्गेनिक फार्म्स, हाईटेक हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउसेस और लोकल फिश मार्केट से फ्रेश आइटम्स खरीदते हैं। इससे खाना बिल्कुल फ्रेश मिलता है और कतर की लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है। कितना बेहतरीन और कितना जबरदस्त इनिशिएटिव है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी डिटेल का भी ख्याल यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये तो बातें हो गई खास, यू नो, कतर में क्या कुछ नया हो रहा है, कौन से इवेंट्स हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कल्चरल म्यूजिक एक्सपीरियंस के बारे में भी। कतर में रहने वाले म्यूजिक लवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इवेंट आ रहा है। ये है पूनम फीचरिंग एमजी लाइव का ग्रैंड शो, जो कि फ्राइडे 4th ऑफ सितंबर 2026 को स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इस इवेंट का मेन अट्रैक्शन है साउथ इंडिया के मशहूर सिंगर एमजी श्री कुमार, जो अपनी बेहतरीन वॉइस में लाइव मलयालम मेलोडीज और ट्रेडिशनल गाने गाकर लोगों का दिल जीतने वाले हैं। उनके साथ ही स्टेज पर मोक्ष डांस ग्रुप का एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक डांस शोकेस भी देखने को मिलेगा, जो इस साल के ओनम सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा रंगीन बनाता है। अगर आपको केरला के रिच कल्चर, ट्रेडिशनल आर्ट और पूरे म्यूजिकल रिदिम का मजा लेना है भाई, तो ये कल्चरल म्यूजिक एक्सपीरियंस आपके लिए इस हफ्ते का सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो हमने कल्चरल म्यूजिक एक्सपीरियंस भी कवर कर लिया, लेकिन फैमिली इवेंट्स, 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में क्या खास है, ये भी सुनते जाइए। अगर आप इस वीकेंड अपनी फैमिली और बच्चों के साथ कुछ फन और इंटरेक्टिव करना चाहते हैं, तो 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम जाना एक परफेक्ट आइडिया है। इस म्यूजियम में बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सारे इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स लगाए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एडमिशन बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर एक बहुत ही एंगेजिंग एक्टिवेशन जोन बनाया गया है, जहां बच्चे खुद अलग अलग फिजिकल चैलेंजेस और गेम्स के जरिए अपने रॉ एजिलिटी, स्पीड और स्पोर्ट्स स्किल को लाइव टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप जाकर यू नो एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जीबिशन के बारे में, जो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर इस हफ्ते विजिटर्स के लिए स्पेशल और इंटरैक्टिव गैलरीज प्रेजेंट कर रहा है, और ये खूबसूरत म्यूजियम दुनिया के सबसे फेमस आर्किटेक्ट जीन नोवेल की बनाई हुई है, और ये डेजर्ट रोज बिल्डिंग के अंदर लोकेटेड है। इस टेम्परेरी शोकेस का मेन थीम कतर की हिस्ट्री और उसकी तस्वीर बदलने की कहानी को दिखाता है, तो यहाँ तो जाना बड़ा लाजमी है। और यू नो, अगर आपको बाकी इवेंट्स इतने अच्छे नहीं लगते, ये इवेंट आपको जरूर अच्छा लगेगा, यू नो, तो इस जगह पर भी जाना जरूरी है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के जो दीवाने हैं उनके लिए भी है, आप ये ना सोचे यार स्पोर्ट्स वालों के लिए कुछ है नहीं। कतर कप का सेमीफाइनल और दोहा बैंक स्टार्स लीग, फुटबॉल फैंस के लिए कतर में मैचेस का एक बहुत ही एक्साइटिंग स्केड्यूल जो है वो चल रहा है, जिसमें कतर कप और स्टार्स लीग दोनों शामिल है। 1 सितंबर को कतर कप के दो बड़े सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में अलसद स्पोर्ट्स क्लब का सामना अल गर्राफा स्पोर्ट्स क्लब से आइकॉनिक स्टेडियम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। वहीं सेमीफाइनल का दूसरा मैच अल शमाल स्पोर्ट्स क्लब और अल रैयान के बीच होगा, और ये हेड टू हेड मुकाबला जासिम बिन हमद स्टेडियम में होगा। इसके तुरंत बाद दोहा बैंक स्टार्स लीग के रेगुलर सीजन मैचेस ये भी शुरू होंगे, जिसमें 3 सितंबर को अल अहली और कतर स्पोर्ट्स क्लब का मैच होगा, और 5 सितंबर को अल रैयान और अल दुहेल का मैच होगा, और ये एक थ्रिलिंग और हाई वोल्टेज क्लैश देखने को मिलेगा। साथ ही अब दोस्तों बात कर लेते हैं कतर के यू नो फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर। अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में, कहरामा ने दोहा में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए नए हाई स्पीड सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशंस चालू किए हैं। इसी के साथ स्मार्ट सिटी की भी अपडेट अगर आप देखें, तो लुसेल सिटी ने रेसिडेंशियल

0: शॉवर में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए ह्यूमिडिटी बेस्ड ऑटोमेटेड कूलिंग स्मार्ट ग्रिड्स लगाए हैं। ये जबरदस्त इनिशिएटिव है। और फिर एडुकेशन इनिशिएटिव भी लिया गया है। एडुकेशन सिटी ने यूथ के लिए अरबिक लिटरेसी और हेरिटेज बचाने के लिए बिल अरबी वर्कशॉप्स भी शुरू किए हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट में भी चेंजेस देखने को मिला है। मवासलात ने म्यूजियम एरियाज में ट्रैफिक कम करने के लिए मेट्रो कनेक्टेड ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक शटल बस बढ़ा दी है। इसी के साथ स्टार्टअप अगर देखा जाए, स्टार्टअप का इकोसिस्टम कतर में जबरदस्त है। क्यूएसटीपी ने एरिड क्लाइमेट्स के लिए एआई वाटर रिसाइक्लिंग बनाने वाले एंटरप्रेन्योर्स को सीड फंडिंग और मेंटरशिप दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कतर के खूबसूरत या कतर के नेशनल विजन 2030 को लेकर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा तेजी से प्रमोट किया जा रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन बातों में से एक। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के अपडेट्स भी बड़ी जरूरी थी। और ये था पूरा कतर 2026 का ये खास शो, जहां पर आपको एक एक डिटेल मिलती है, चाहे वो इवेंट्स के बारे में हो, वीकेंड के कुछ खास जगह हो, या फिर मुशरिफ डाउनटाउन की वो लोकेशन या वो न्यू ओपनिंग्स जहां पर जीरो वेस्ट ऑपरेशंस के जरिए खास लोगों को लुभाया जा रहा है। एंड देन कतर में क्या कुछ हो रहा है, फैमिली इवेंट्स, एग्जीबिशन, कल्चरल म्यूजिक परफॉर्मेंसेज, और फिर हमने स्पोर्ट्स के मुतालिक भी बात किया। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी शो में, जिसका नाम होने वाला है कतर 2026। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJA फॉर अमिता के साथ AI अनलॉक्ड पर, एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI अनलॉक्ड RJA फॉर अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
3: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले

0: मानता है तो उसकी बार बार तो आदमी वजह नहीं दे सकता।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर इंशाल्लाह आप सब्र करेंगे और जो उनकी नफरत है उसको आप अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो इस पर आपको जरूर सवाब मिलेगा इंशाल्लाह।
0: जी मेरा ये सवाल था, इंशाल्लाह मैं डरता था कि ये नफरत है, गुनाह नहीं मिलता, मैंने कसूर किया भी नहीं है।
1: नहीं नहीं इंशाल्लाह, बाकी इस ताल्लुक से हम शेख साहब के पास भी जाएंगे प्रोग्राम के आखिर में जब हमारे जवाब का सिलसिला शुरू होगा तो फिर उस पर भी आप समाप्त कर लीजिएगा कि शेख साहब क्या फरमा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह फिक, जज़ाकुमुल्लाह। सामीन, ये सवालात का सिलसिला हमारा चालू है और इस सवालात के सिलसिले में मुतअद्दिद सवालात हमारे पास आ रहे हैं और अगर आप अपने सवालात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा रابطہ नंबर है 443-443-77 और इस नंबर पर आप رابطہ कीजिए और अपने सवालात हम तक पहुंचाइए। शरियाई दीनी जितने सवालात आपके हैं आप इस पर पूछ सकते हैं। सामीन, हमारा एक सिलसिला टेलीफोन आ रहा है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं आगे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है भाई। आपका नाम?
2: मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है।
1: जी इसहाक भाई,
2: और मेरा ये सवाल है, मेरे पास कंपनी का पैसा था 3,000 रियाल।
1: अच्छा, कंपनी का 3,000 रियाल था आपके पास?
2: एक बार हाँ, कंपनी ने 2-3 बार बोला था कि पैसा रिटर्न दे दो वरना मैं फाइन देगा।
1: जी,
2: तो मेरे पास उसका मेरा सैलरी भी उसके साथ बनता था, तकरीबन 2500 सैलरी बनता था।
1: जी,
2: तो उन लोगों ने सैलरी में 200 रियाल काट दिया।
1: अच्छा, आपने वापस नहीं किया उसकी वजह से?
2: उसकी वजह से उन लोगों ने पूरा सैलरी काट दिया और 200 रियाल भी काट दिया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो अभी
1: हेलो,
2: तकरीबन कंपनी की तरफ से मुझे तकरीबन 180 रियाल मिला है, कंपनी को मालूम नहीं है।
1: जी,
2: क्या ये पैसा मैं काट सकता हूँ या नहीं काट सकता हूँ?
1: आपके पास कंपनी का 3,000 रियाल था और आपने कंपनी को वापस नहीं किया।
2: जी,
1: तो कंपनी ने आपकी तनख्वाह काट ली।
2: जी,
1: और 200 रियाल भी काट लिया एक्स्ट्रा।
2: जी जी,
1: और अब इस वक्त आपके पास 180 रियाल आए तो आप वो 200 के बदले में 180 रियाल रखना चाहते हैं?
2: जी जी।
1: अच्छा अच्छा, इस पर हम शेख साहब से इंशाल्लाह बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, इस पर इंशाल्लाह शेख साहब से हम जरूर बात करेंगे। जी समीन, हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं किसी ना किसी मौजू पर और हमारा एक कई हफ्तों से बल्कि आप महीना भी हो चुका होगा, हमारी एक सीरीज़ चल रही है अख़लाक़ हसना पर और अख़लाक़ हसना को लेकर हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की है। गुज़श्ता हलक़े में हमने सब्र पर बात की थी, सब्र की अहमियत क्या है और सब्र करने पर क्या क्या फ़वाद हैं, क्या क्या बशारतें अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से हमें दी गई हैं, इसी तरह बेसब्री पर जो वईदें आई हैं उसको भी हमने थोड़ा बहुत कवर किया था। सामीन, ये जो हम आपके सामने मुख्तलिफ़ मौजूआत पर बात करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ बातें आपके सामने आ जाएं और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके शामिल हो जाए। इसी वजह से हम ऐसे अनामीन का इंतखाब करते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होता है, जो एक मुसलमान के अंदर होने चाहिए। बहरहाल वो उन सिफ़ात में से बहुत सारी सिफ़ात ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, जो बहुत मामूली सिफ़त हैं लेकिन उसका सवाब और उसका अजर अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अजीम है। तो सामीन, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे मौज़ू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ भी इस اس موضوع کا تعلق بھی ہماری زندگی کے ہر لمحے

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: गोपाल को उन्होंने गजल का शेर कहा और अपनी शायरी की इस सल्तनत मोहब्बत के नाम कर दी। उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे गजलों का शहर दिया, मैं सल्तनत को मोहब्बत के नाम करता हूँ। उनकी शायरी एक बार फिर राग से उठी, जैसे कोई फूल दिया जलाकर खिल जाता है। उनका ये शेर तो जैसे जिंदगी का सबक है, जो दिया जैसा जला नहीं उसका कोई फूल खिला नहीं। बशीर बदर की शायरी का जादू उनकी सादगी में है। वो बड़े मुश्किल लफ्जों का सहारा नहीं लेते। उनके शेरों में एक ऐसी जबां है जो सीधा दिल तक जाती है। गजल ने उन्हें चुना, उन्होंने गजल को नहीं, ये उन्होंने खुद कहा था। लेकिन शायरी में ना तो पुराने रिवाज हैं और ना ही बनावटी अंदाज। वो इंसान के जज्बात को दो मिसरों में समेट देते हैं और हर मिसरा एक नई तस्वीर बन जाता है। उनके शेरों में मोहब्बत का दर्द है, जिंदगी का राज है और इंसान की फितरत का नूर है। देखिए उनका ये शेर, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस शेर में नफरत और बर्बादी के खिलाफ एक ऐसी आवाज है जो दिल को छू लेती है, वो भी बिना किसी गुस्से के। और फिर ये सुनिए,
1: अगर इजाजत हो तो एक झूठ बोलूं, मुझे दुनिया से नफरत हो गई है। ये एक शेर नहीं बल्कि एक दर्द भरी पुकार है जो इंसान की उदासी को बयां करती है। उनकी शायरी में मोहब्बत, दोस्ती और वफा का दर्द भी है। प्यार से, दोस्ती से, वफा से चोट लगती है, बिखरता हुआ फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है। बशीर बद्र के शेरों का सफर अलीगढ़ से शुरू हुआ और दुनिया भर में फैल गया। उन्होंने 18,000 से ज्यादा अशार लिखे, 7 से ज्यादा उर्दू शायरी के मजमुए और 1 हिंदी में भी। उनकी किताबों में आसमान, उम्र गुजरने लगी और कुलियत बशीर बद्र शामिल हैं। उन्होंने 2 तनकीदी किताबें भी लिखी, आजादी के बाद उर्दू गजल का तनकीदी मुताला और 20वीं सदी में गजल। उनकी गजलों का एक मजमुआ देवनागरी में उजाले अपनी यादों के नाम से छपा और गुजराती स्क्रिप्ट में भी उनके काम का तर्जुमा हुआ। उनकी शायरी इंग्लिश और फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हुई। 1999 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और बाद में पद्मश्री से भी नवाजा गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने उन्हें 4 बार और बिहार उर्दू अकेडमी ने 1 बार सम्मानित किया। उनका एक मजमुआ जिसमें 69 गजलें थी उनके अदबी सफर का सबसे रोशन सितारा है। पाकिस्तान में भी उनकी कुल्लियत बशीर बद्र छपी जो उनकी शोहरत का एक और सबूत है।
2: लेकिन जिंदगी के सफर में दुख भी साथ रहे। भोपाल में उनके ये दिन याददाश्त की खराबी के साथ गुजर रहे हैं। 2018 में जब वो टीवी पर आखिरी बार दिखे तो डिमेंशिया से लड़ रहे थे और अपने मशहूर शेरों को भी याद न कर सके। लेकिन उनकी शायरी आज भी जिंदा है। उनका ये शेर आज भी हर दिल में गूंजता है। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। उनके बेटे नुसरत बद्र, जो संजय लीला भंसाली की फिल्में जैसे देवदास और सांवरिया के लिए गीत लिखते थे, पिछले महीने मुंबई में गुजर गए। नुसरत ने एक बार बताया था कि जब उन्होंने दिलीप कुमार से ऑटोग्राफ मांगा तो दिलीप साहब ने उनके नोटबुक में बशीर बद्र का ये शेर लिख दिया, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एक और वाकया है जो फिल्मी दुनिया से जुड़ा है। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने जश्न रेख्ता में बताया कि जब मेरठ के दंगों में बशीर बद्र के अनपब्लिश शेरों का नुकसान हुआ तो उन्होंने उनकी 90% गजलें याद से लिखकर वापस दी। विशाल भारद्वाज को कॉलेज के दिनों में बशीर बद्र के घर जाना और उनके शेरों को सुनना उनकी एक आदत थी। उनकी शायरी फिल्म डेढ़ इश्किया के डायलॉग्स में भी गूंजती है। बशीर बद्र ने एक बार कहा था, अखबारों की सच्ची तस्वीरों के पीछे जिंदगी बहुत मुख्तलिफ, खूबसूरत और असली है। उन्होंने जिंदगी के हर रंग को अपनी शायरी में समेट लिया। एक और शेर देखें, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और ये मुझसे हट के खुश रहते हो,

0: मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो।
1: उनकी शायरी में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की आवाज है और उदासी के साथ एक उम्मीद भी। एक बार उन्होंने पार्टीशन पे लिखा था तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट के वक्त कोड भी किया, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बदर के शेरों में एक ऐसा जहां है जहां मोहब्बत, दर्द और इंसानी जज्बात एक साथ मिलते हैं। वो कहते हैं, शायरी वो आवाज है जो कायनात दिल के जरिए बोलती है और ये आवाज उनके शेरों में आज भी गूंजती है। उनका एक शेर जो आज भी जिंदगी का फलसफा है, चंद लोगों को जिंदगी के सफर में कभी ना कभी किसी से मोहब्बत जरूर होती है। ये मोहब्बत ही है जिसने बशीर बदर को अमर कर दिया। उनकी शायरी आज भी हर महफिल में गूंजती है, हर दिल में बसेरा करती है और हर लम्हा जिंदा रहती है। तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली।
2: आप सुन रहे हैं महफिले शायरी, महफिले शायरी सिर्फ FM 107 पर, 107 पर।
1: जी, तो अभी हमने बशीर बदर के बारे में तफसील से सुना, उनकी जिंदगी को जाना, उनको थोड़ा पहचाना, और अब हम उस जगह पे आ गए हैं, उस मकाम पे आ गए हैं अपने शो के, जहाँ पे हम करते हैं आपस में बैदबाजी का मुकाबला।
3: जी हाँ, ये
1: पहला शेर आज कौन पढ़ने वाला है?
3: मुकाबले की शुरुआत कौन कर रहा है भाई?
4: चलो मैं कर लेती हूँ।
1: अच्छा, ये मुकाबला माशाल्लाह हमारा जो है वो पूरा पूरा हो जाता है ना।
3: चलिए आज आज पहले जो हमारे खिलाड़ी हैं सीम शुरू करेंगे। सीम, चलिए इरशाद।
4: तो उनका बहुत ही फेमस शेर है, उससे ही मैं शुरू करना चाहूंगी, जिस पे महविश ने अभी खत्म की थी उनकी कहानी।
1: अच्छा,
4: तो मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? पहले पढ़ने का यही फायदा होता है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: हो जाए।
1: क्या बात। अच्छा, इस शेर से तो आपने बल्कि आगाज किया था, आपने खुद को ही कॉपी किया है।
3: तो देखिए, मेरे हिस्से में आजकल नोन ये और हे आ रहा है बहुत। क्या चेहरे वाले थी मैं विशाल, मैंने लोग भी आपको
1: बोलिए। मैं आपके हिस्से में सुनना चाह रही हूँ, आप क्या पढ़ेंगे?
3: देखिए, अब मैं हर शेर से पहले ये लगा दूंगा मैं कल ये। फिर तो अर्ज किया है, ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसुओं से हरा कर।
1: बहुत खूब, मतलब बहार का इंतजार करने के लिए बंदे को इतना रोना पड़े, क्या बात है। बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, कहत पड़ा हुआ,
4: बाढ़ आ जाएगी।
3: तो अब बारी है महविश आपकी।
4: ये आप पे भी आया।
1: अच्छा, ये मुझ पे भी आया है, ठीक है। तो अभी जो है बात की है खिजा की, बहार की
3: जी।
1: तो बहार में खिलते हैं फूल,
4: खिला दीजिए
1: जहन में, मैं वही आ गया, मैं वही खिला देती। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं। ओए होए होए, स्ट्रगलिंग शेर है ये, बहुत
3: स्ट्रगल हो गया
1: है ना। ये वो लोग हैं मतलब जिनकी ना वो किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं और लोग कहते हैं भाई कितना आगे चला गया, उनको ये नहीं पता होता कि कितनी मुसाफतें गुजारी।
3: और दूसरे तरीके से भी है ना ये, अरे तुम्हारा दर्द छोड़ो यार, हमारा तानी है, ये वाला सीन है। चलिए फिर असीम, वापस आपकी बारी।
4: तो फिर अलिफ से फिर मैं आ जाती हूँ
1: जी।
3: आप हर शायरी से पहले ना ये लगा दो, आप
4: ये लगा दो। नहीं ये नहीं, इस बार अलिफ है,
3: अलिफ
1: अलिफ, अलिफ लगाने हैं।
4: तो कांटों की बात की है तो थोड़ा और जख्मी कर देते हैं अगले शेर से।
1: इरशाद,
4: अभी राह में कोई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा, अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो।
3: आमीन आमीन,
1: क्या बात है, दुआ करो बिल्कुल।
3: अच्छा तो दुआ करो,
4: करो
3: ठीक है फिर।
4: तो अब कुछ नया आया है इस बार कबीर पे, तो वाओ से शेर सुनाइए।
3: तो वाओ सही शेर सुनाइए।
4: आई एम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू।
3: जब तो मैंने आज वाओ सही शेर सुनाया।

0: यहाँ पर आप इतना अपने कांटों की बात कर ली, इन्होंने भी बात कर ली, आप जरा देखिए इतना तीखा आ रहा है आप दोनों की तरफ।
1: सही सही, वाह होना चाहिए।
0: हाँ तो अर्ज क्या है?
1: इरशाद,
0: वो जिनके जिक्र से रगों में दौड़ती थी बिजलियां, वो जिनके जिक्र से रगों में दौड़ती थी बिजलियां, उन्हीं का हाथ हमने छू के देखा कितना सर्द है। इससे आगे कहाँ जाएगा?
1: क्या बात है,
0: सर्द
1: सर्द तो यहाँ भी हो रहा है, एसी बहुत तेज चल रहा है। हाँ
0: सर्द है,
1: है यानी ये पे खत्म, ये पे ठीक है। तो नहवेश ये से शुरू करिए, ये से शुरू करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ जैसे अभी कबीर बोल रहा था और फिर कि कोई भी शेर आया उस पे ये लगा दो, तो मैं यही करूँ या कुछ और करूँ? चले खैर मैं कुछ शेर सोचती हूँ। इरशाद नहीं बोलते आप लोग? यारो नए मौसम ने ये एहसान किए हैं, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते।
2: है भूल ही जाना चाहिए एक सीजन,
0: ठीक है नहीं आते
1: तो ये लगा देती हूँ ये अगेन,
0: जो मैंने कहा था देखिए सब सही हो रहा है अभी।
1: हाँ यही ना भाई, यही करना पड़ेगा,
2: यही करेंगे अब।
0: इरशाद,
2: ये परिंदे भी खेतों के मजदूर हैं, ये परिंदे भी खेतों के मजदूर हैं, ये परिंदे भी खेतों के मजदूर हैं, लौट के अपने घर शाम तक जाएंगे।
1: क्या बात,
0: परिंदे शिफ्ट है, शिफ्ट है।
1: हाँ, परिंदों की शिफ्ट है, वो मुझे वो भी याद आ रहा है जो शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं।
0: हाँ, फिट हो जाता
1: हूँ ना, हम भी शाम को ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो आपको भूला नहीं कहा जाएगा।
0: आज पता नहीं ऐसा हो रहा है ना कि जो भी मेरे हिस्से में आ रहा है ना काफी, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव में खतरनाक, तो आज एक फिर से अब मेरे हिस्से में खतरनाक आया क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ जो भेजा।
1: ये से ही शुरुआत कर,
0: ये से ही शुरुआत,
1: ये में खेलना है हम लोग सब। बिल्कुल,
0: तो अर्ज क्या है? ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गजल पढ़ना, ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गजल पढ़ना, तितली की कहानी है फूलों की।
1: क्या बात है, बागो बहार हो, ये क्या बात है। अच्छा जी,
2: तो ये से ही खत्म कर रहे हैं हम आज, और अब बहुत हैवी हार्ट के साथ में हम लोग बैठे हैं तो कुछ रोमांटिक हो जाए,
0: क्योंकि क्लाइमेक्स हो ना थोड़ा सा, सब आखिरी पिक्चर की ठीक हो जाता तो वैसे ही लगना चाहिए।
1: अच्छा वैसे आज बशीर बद्र की तो शायरी है, मुझे इससे अंदाजा ये हो रहा है कि नेचर के ना वो बहुत ही दिलदादा इंसान थे, है ना, और खजां सब आ रही है। अब जो शेर मैं लेकर आ रही हूँ ना, इसमें जो है वो क्या है, आपने जैसे कहा कि कुछ रोमांटिक हो रहा है और कुछ मतलब इसमें रंगों का भी और कुछ इस तरह का जिक्र है, तो उस पे हम खत्म करते हैं।
0: इरशाद, इरशाद,
1: ये जाफरानी पुल ओवर उसी का हिस्सा है।
2: उफ, क्या कहा?
1: ये जाफरानी पुल ओवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा जो पहने तो दूसरा ही लगे।
2: क्या बात है,
1: दिल जी क्लाइमेक्स है ना,
0: क्लाइमेक्स
1: ऐसे यही रो भर गई हुई कबीर, किसी की
2: हैप्पी एंडिंग हो।
1: बिल्कुल दिल, बिल्कुल,
2: चले मुबारक हो।
1: चले नहीं तो इसके साथ इख्तिताम होता है,
0: उसी के साथ जो है दस्तखत कर देते हैं तीनों अपने अपने, क्योंकि अभी हम साइन ऑफ करने चाह रहे हैं, पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर लोग पहुंचें और वहां पे उनके पसंदीदा शायर, उनके आशार जो भी पोस्ट करना चाहें, और ये स्पेशली जब आप ये शो सुन रही हैं, अगर स्टोरी बनाएं तो स्टोरी पे जरूर हमें लगाएं। और FM 107 कतर इस नाम से हमारे तमाम पेजेस हैं, हर जगह आप मौजूद हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कबीर और सीन तुम लोगों को पता ही है कि अक्सर जो मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर फूल पत्ते बने हुए होते हैं, तो आज जो बशीर बदर का मतलब सिलसिला हुआ है उसमें इतने फूल पत्ते और ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग हमें फूल पत्तों के साथ सजा के उनके अशार भेज सकते हैं। बिल्कुल,
2: हमारा व्हाट्सएप फूलों से बाहर कर दीजिए।
1: बिल्कुल जी, 666-22-107 ये है हमारा वो नंबर जिसपे आपने फूल बिखेरने हैं और हमें मैसेजेस अपने जरूर करने हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे एक और अजीम शायर के साथ मुलाकात होनी है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने से वाबस्ता लोगों का भी ख्याल रखिएगा। हम तीनों को इजाजत दीजिए महफिल शायरी से,
2: अल्लाह हाफिज़।
1: चमा बुझा दे
0: जी, बिल्कुल,
1: अल्लाह हाफिज़।
2: अल्लाह हाफिज़।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
7: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI

0: AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाएं। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: वेलकम वेलकम वेलकम अस्सलाम वालेकुम. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और इस हफ्ते का ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टॉप 10.

0: मैं लेकर आई हूँ। तो जनाब कैसे हैं आप? आई होप कि एंटायर वीक आपका बड़ा कमाल का गया होगा। वेले इस हफ्ते से हर हफ्ते स्पेशल प्लेलिस्ट होगी और प्लेलिस्ट ऐसी होगी जहां पर हम सारे म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स को कंसिडर करेंगे और वहां के टॉप चार्ट्स आपकी राहों में लेके आएंगे। लेकिन एक चीज और है, एंड दैट इज अ ट्विस्ट, कि अगर हमारे लिसनर्स यानी कि आप किसी गाने को पसंद कर रहे हैं, किसी ट्रेंडिंग गाने को पसंद कर रहे हैं और हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि अमिता देखो ये गाना हमें लगता है कि आपके टॉप 10 की लिस्ट में होना चाहिए, उसे भी हम कंसिडर करेंगे। तो ये खास हम खास प्लेलिस्ट जो होगी टॉप 10 की, ये निहायत ही पर्सनल होगी बट ऑल्सो कंसिडरिंग द एंटायर ट्रेंड्स। सो 666-22-107, 666-22-107 ये नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। इसमें अपने नाम के साथ अपनी फीलिंग्स गानों से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं कि ये गाना हमारी लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए, एंड डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट। वैसे जनाब जब हम म्यूजिक की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं रही, ये एक एक्सपीरियंस बन चुकी है। और आज के इस सफर में हम सिर्फ गाने नहीं प्ले करेंगे बल्कि उन साउंड ट्रैक्स को डाइसेक्ट करेंगे जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सो 2026 का ये दौर जहां म्यूजिक पहले से कहीं ज्यादा इमर्सिव और ग्लोबल हो गया है, आपके AI क्यूरेटेड प्लेलिस्ट से लेकर सोशल फीड्स तक हर तरफ बस इन्हीं धुनों का हमें शोर सुनाई दे रहा है। तो बस अपने हेडफोन्स लगा लीजिए या अगर स्पीकर पे सुनना है तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि तैयार होना पड़ेगा आपको। इस वक्त हम आपके लिए प्ले करने वाले एक से बढ़कर एक हिट नंबर्स इन आवर टॉप 10 शो, जहां पर गाने तो होंगे लेकिन इन गानों के पीछे की स्टोरीज भी होंगी जो आपके दिल को छू जाएंगी। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ। तो हमारा गाना नंबर 10 कौन सा है जिस पर हम स्टिक होने वाले हैं? इट इज स्टक ऑन यू बाय हार्डी संधु, जिसे कंपोज किया है कुंवर मेहरा, रोहित पांडे, भारत समत खान ने लिखा है, कुंवर मेहरा, रोहित पांडे, रोहित सिंह ने। यस, ये अगर हम हार्डी संधु की बात करें तो ये सिर्फ एक पंजाबी पॉप स्टार नहीं रहे बल्कि ग्लोबल फैशन पॉप आइकन बन चुके हैं। अगर उनका नया ट्रैक स्टक ऑन यू चार्ट्स पर तहलका नहीं मचाता ना, तो आपको शायद ये पता नहीं चल पाता। आपको बताना चाहेंगे कि इसका म्यूजिक वीडियो इंडिया का पहला ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि शूटिंग के वक्त कोई ट्रेडिशनल कैमरा नहीं था बल्कि 100 सेंसर्स ने हार्डी के हर मूव को 3D में कैप्चर किया है ताकि बैकग्राउंड उनके रिदम के साथ बदल सके। और म्यूजिकली इसमें एक रेयर एनालॉग मॉग सिंथ यूज हुआ है 1970s का, yes, जो इसे वो वार्म फजी बेस देता है जिसे सुनकर हमें मजा आता है। वेल, हार्डी ने इसके ब्रिज के लिए 3 महीने टोक्यो में स्ट्रीट जैज सीखा। तो ये जनाब सिर्फ गाना नहीं है, ये एक टेक्निकल मावल है। सो गाना नंबर 10 आपकी राहों में आ रहा है, स्टक ऑन यू बाय हार्डी संधु। तो कहीं नहीं जाना है, बने रहना है FM 107 टॉप 10 सुनते हुए अपनी ए फॉर अमिता के साथ। स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

0: हाँ जी, स्टक ऑन यू पर स्टिक तो नहीं हो गए है कि नहीं. वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. और अब आगे बढ़ते चलते हमारे टॉप 10 की प्लेलिस्ट में गाना नंबर 9 एंड 8 की बारी आ चुकी है. सो गाना नंबर 9 कौन सा है, कहो तो प्रेम की तानू का.
1: कहो तो अपना बनाओ, कहो तो इश्क निभाओ.
0: तो कहो तो का म्यूजिक कंपोज किया है अंकुर आर पाठक ने, लिखा है सचिन उर्फ तोश ने और गाया है अरमान मलिक ने. और जो बैकग्राउंड में कव्वाली चलती है ना, दैट इज अल्तमाश फरीदी. उफ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. हाँ, बल्कि न्यू एज का इंडी पॉप वर्जन है. वेल, प्रेम की तानू उनका गाना. ये जो कहो तो मिनिमलिज्म की एक खूबसूरत मिसाल है जनाब. इस गाने में जो आप रेन ड्रॉप्स की आवाज सुनते हैं ना, ओहो, वो कोई डिजिटल बीट नहीं है. प्रेम ने अपनी मुन्नार के एक सोलो ट्रिप पर एक टीन के छत पर गिरती बारिश को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था. भाई ये किस्सा सुनकर मुझे रेट्रो एरा के जो हमारे फेमस म्यूजिशियन रहे हैं, या यू कहें म्यूजिक कंपोजर रहे, आरडी दा आरडी बर्मन, उनकी याद आ गई. क्योंकि वो भी जब म्यूजिक अपना बनाते थे तो इसी तरह की रॉ चीजों का इस्तेमाल करते थे. वेल, ये पर्टिकुलर ट्रैक डॉल्बी एटमॉस 12.0 में मिक्स किया गया ताकि जब आप इसे सुने तो ऐसा लगे जैसे प्रेम आपके कान में लिरिक्स गुनगुना रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, इस 2026 के AI ऑटो ट्यून के जमाने में प्रेम ने गाने को बिल्कुल रॉ रखा है. नो फिल्टर्स, जस्ट प्योर सोल. सो यस, गाना नंबर 9 जो हम सुनेंगे, दैट इज कहो तो. उसके बाद गाना नंबर 8 आएगा. देखो, हमारी कतर में बारिश कम होती है लेकिन बारिश का एहसास, बारिश का फील तो लिया जा ही सकता है. बरसात लग दी है, ब्यूटिफुल ट्रैक बाय दर्शन रावल एंड सिमरन चौधरी.
2: चलती हवा अब तो कुछ खास लगदी है, दिल नू पल पल तेरी ही प्यास लगदी.
0: जिसे कंपोज किया है दर्शन रावल ने, लिखा है यंग वीर ने और म्यूजिक अरेंज किया है, प्रोड्यूस किया है मीर देसाई ने. हाँ, ये जो गाना है, मतलब आई शुड से दर्शन रावल का बेहतरीन मास्टरपीस है और मॉनसून एंथम है, स्पेशली उन जगहों के लिए जहाँ पर नॉन स्टॉप बारिश होती है. पहले इस गाने के नॉस्टैल्जिया को कैप्चर करने के लिए दर्शन ने 1950s का एक विंटेज जर्मन माइक्रोफोन यूज किया जो कभी बॉलीवुड के गोल्डन एरा में यूज होता था. इसमें सितार और सेलो का एक रेयर फ्यूजन है जो पॉप म्यूजिक में हमें कम ही सुनने को मिलता है. और मजे की बात, यू नो व्हाट, कि इसके लिरिक्स दर्शन ने नहीं लिखे, खैर वो तो हमने गेस कर लिया, बल्कि उनके एक फैन ने सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट जीत कर लिखे थे. वाओ, वीडियो की शूटिंग मेघालय में असली तूफान के बीच हुई, कोई सीजीआई रेन नहीं थी, इसीलिए दर्शन इतने ड्रेंज्ड, इतने भीगे हुए और सोलफुल लग रहे थे. वैसे एक चीज तो देखी जाए कि जब टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया आगे बढ़ते जाती है और कुछ रॉ हम देखते हैं तो दिल हमारा बड़ा खुश हो जाता है कि नहीं. तो आप गिराहों में आ रहा है गाना नंबर 9 and 8. इंजॉय कीजिए और फिर हम अपनी प्लेलिस्ट पर, टॉप 10 की प्लेलिस्ट पर आगे बढ़ेंगे. तो कहीं ना जाए, बने रहे एफएम 107 पर, दिल से देसी.
3: एफएम 107 टॉप 10 नंबर 9.

हाँ जनाब, तो कैसे लगे आपको ये ब्यूटीफुल ट्रैक्स? आई एम श्योर आपने जरूर इंजॉय किया होगा. देखो टॉप 10 की प्लेलिस्ट बड़ी शानदार होती है एंड आई शुड से इनमें से गाने आप चूज करके अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा भी बना सकते हैं. फिलहाल आगे हमारी प्लेलिस्ट में बढ़ने का वक्त आ चुका है. सो गाना नंबर 7 कौन सा है? दैट इज गुरु रंधावा की मर्जी. हाँ जी.

0: रंधावा का ये ब्यूटीफुल ट्रैक मर्जी, जिसे लिखा है गुरजीत गिल ने, कंपोज भी गुरजीत गिल ने किया एंड जे एस एल सिंह ने. यस, इन दोनों का ग्रेट कॉम्बिनेशन है. और हमारे गुरु रंधावा की बात करें तो उनका ये ग्लोबल बेबी है मर्जी, एक लैटिन पंजाबी फ्यूजन है जो चंडीगढ़ और सैन वॉन को जोड़ता है. गुरु ने इसके लिए पोर्टो रिको के एक ग्रैमी विनर प्रोड्यूसर के साथ कोलैब किया. कोरस में जो तालियों की गूंज आप सुन सकते हैं ना, वो दुबई के एक होटल के मार्बल हॉलवे में गुरु और उनकी टीम ने लाइव रिकॉर्ड किया था. वाओ, इसमें चेरिंगाओ नाम का एक छोटा एंडियन इंस्ट्रूमेंट बजाया गया है जो इसे एक डेजर्ट पॉप वाइब देता है. और वीडियो भाई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है. कस्टम मेड आउटफिट्स जो लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ अपना रंग बदलते हैं. टॉक अबाउट फ्यूचरिस्टिक फैशन है कि नहीं जनाब, इट्स रियली अमेजिंग. और इसके बाद नंबर 6 पर है बोहे बारिया. भाई आदित्य रिखारी का ये ब्रांड न्यू सॉन्ग, मतलब बोहे बारिया हमने कई बार सुना होगा, बट व्हेन यू लिसन टू दिस वर्जन दिल खुश हो जाता है. इसे कंपोज किया है रोचक कोहली ने और लिखा है कुमार ने. ये गाना एक पुरानी याद को नए अंदाज में पेश करता है. आदित्य रिखारी ने एक क्लासिक फोक मेलोडी को 2026 का सिंथ वेव हिट बना दिया है बोहे बारिया. इसमें AI एनहांस्ड वोकल लेयरिंग का कमाल है जो आपको सुनाई देगा. वो कोई जो बैकग्राउंड में 50 एक लोग सुनाई देते हैं ना, वो 50 लोग नहीं है बल्कि सिर्फ आदित्य की आवाज है जिसे अलग अलग पिच पर लेयर किया गया है. उन्होंने ढोल को रिप्लेस किया है 80s के लिनड्रम मशीन से. तभी तो ये गाना आपकी दादी और आपके जेंजी भाई दोनों को पसंद आ रहा है. इनफैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें सो हेरिटेज को रील्स के लिए ये फिलहाल नंबर 1 ट्रेंडिंग सॉन्ग है. सो यस, आपकी राहों में आने वाला है गाना नंबर 7 एंड गाना नंबर 6. सो बी प्रिपेयर्ड, एंजॉय करें, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 7.

10 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर गाना नंबर 5 विच इज एफ्रो बॉलीवुड. एंड यस, इसे किसने गाया है? इट्स ट्विन स्ट्रिंग्स. So Afro Bollywood, vocals synth bass पर है मानव, electric guitar सागर का है, keyboard साहिल के है, percussions मोहित डीन के है. Well जनाब, गाना number 5 Afro Bollywood यू कहे तो music के scientist Twin Strings का एक fantastic सा track है. भाई बैंड ने लगोज नाइजीरिया जाकर वहां के लोकल कोरा और कोलंबी प्लेयर्स के साथ इसे रिकॉर्ड किया है. इसका स्ट्रक्चर पॉली रिदमिक है जो अफ्रीकन म्यूजिक में तो कॉमन है पर बॉलीवुड पॉप के लिए एकदम नया है. भले इस गाने में कोई ट्रेडिशनल हुक या लिरिक्स नहीं है, सिर्फ वोकल चांस और ग्रूव है. ये साबित करता है कि 2026 में वायरल होने के लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक रूह को सुकून देने वाली धुन चाहिए होती है. And now gana number 4, that is Ve Junoon. Oof, Awarapan 2, jise compose kiya hai, arrange kiya hai Mithun ne, likha hai Saeed Qadri ne aur gaya hai.

माने ये जनाब ये गाना वो कहते हैं ना सोलफुल ट्रैक है और आवारापन की लेगेसी को संभाले हुआ है. क्या बात है, ये ट्रैक सूफी रॉक की बाउंड्रीज को पुश करता है. इसका इंट्रो अगर हम सुनते हैं तो वो हॉन्टेड साउंड, गिटारिस्ट ने इलेक्ट्रिक गिटार पर वायलिन बो का इस्तेमाल किया है. लिरिक्स 13th सेंचुरी के रूमी की पोइट्री से इंस्पायर है जिसे मॉडर्न उर्दू में ढाल दिया गया है. रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में अंधेरा करके सिर्फ मोमबत्तियां यूं कहें कैंडल्स जलाई गई थी ताकि सिंगर उस जुनून उस मैडनेस को महसूस कर सके. ट्रूली अ डार्क हॉर्स ऑन द चार्ट्स. सो यस वे जुनून, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक जो आपकी राहों में आएगा गाना नंबर 4 बनके.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
2: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से डीसी।
3: दोस्तों ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
4: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो। FM 107 दिल से देसी।

Wow, what a beautiful, soulful track, huh? इस गाने का म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने, गाया है अरिजीत सिंह ने और लिखा है रश्मि विराग ने. Oof, what a beautiful song. ये आवारापन, इस ट्रैक ने न जाने कितनों के जो कहते हैं ना दिलों को जोड़ा है या कुछ टूटे हुए दिलों को थोड़ी सी तसल्ली दी है. ओफ वेल, प्रोड्यूसर्स ने 2007 की ओरिजिनल मास्टर टेप्स निकाली, वोकल्स को डिजिटली आइसोलेट किया और उसे 2026 के मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ ब्लेंड कर दिया. वेल, ध्यान से सुनिए, सेकेंड वर्स के पीछे एक हार्ट बीट की साउंड है, वो एक्टर की असली हार्ट बीट है जो एक इमोशनल सीन के वक्त रिकॉर्ड की गई थी. ये एक 4D ऑडियो एक्सपीरियंस है जो हमारे गुजरे हुए कल और आने वाले कल को जोड़ता है. क्या बात है. सो दिस इज अ सॉन्ग जिसे आप डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ाकर सुनेंगे ही सुनेंगे. ये आवारापन. एंड देन कम्स गाना नंबर 2 जो कि है टॉक्सिक फिल्म का तबाही. ओ हो, वोकल एंड कॉम्पोजिशन विशाल मिश्रा के और बोल है राज

0: Well, Yash ki movie Toxic ka ek phenomenon song hai jo har ek musical platform par super duper hit hua tha. Well, Prague ke 60 piece live orchestra ne ise record kiya hai. Sound engineers ne janbujhkar degradation filters use kiye hai taki audio thoda corroded aur industrial lage. Hai ki nahi? Filmon ki theme ki tarah gritty na sound kare. Well, middle mein jo heavy metal riff hai, uff, kaha ja raha hai ki wo kisi world famous rock star ne बजाया था पर उनका नाम हिडन रखा गया है वेल कन्नड़ ओरिजिन क्रॉसओवर फिल्म्स में इससे ज्यादा बेस ड्रॉप फ्रीक्वेंसी पहले कभी भी नहीं सुनाई दी ओ हो हो सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो कि आप एंजॉय करने वाले हैं सो गाना नंबर 3 एंड 2 आपकी राहों में आएगा और उसके बाद गाना नंबर 1 कौन सा हो सकता है गाइस कोई गेसेस है तो जरूर हमें मैसेज करें 6622107 6622107 पर एंड लेट्स सी कि आपके गेसेस कितने सही होते ठीक है और अभी के लिए क्या करना है बने रहना है FM 107 पर दिल से देसी
1: FM 107 Top 10 Number 3

क्या कहना, अब ये वो वक्त है जब दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और सुनने को मिलता है गाना नंबर वन. सो यस, हमारे टॉप टेन चार्ट्स का गाना नंबर वन कौन सा है? दैट इज

0: Wow, what a catchy music, huh? प्रीतम का म्यूजिक है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है, और महमूद, राघव, चैतन्य, रुआ के, और इन सब ने मिलकर जो इस गाने को खूबसूरत बनाया है. वाओ, आई रियली रियली लव दिस गाना. वेल, ये गाना माशूका उफ हर किसी के दिल पर राज कर रहा है. इस गाने का हुक एक AI एल्गोरिथम ने डिजाइन किया था, ये ढूंढने के लिए कि पिछले 20 साल का सबसे ईयर वॉर्म फ्रेंडली मेलोडी कौन सा है. पर उसमें जान फूकी है हमारी वर्ल्ड क्लास फीमेल वोकलिस्ट ने. ओहो, वेल, वीडियो इबीजा में व्हाइट मून फेस्टिवल के दौरान शूट किया गया था. वहां की एनर्जी, वहां के स्मार्ट फैशन आउटफिट्स, जो बीट्स के साथ पैटर्न बदलते हैं, माशूका सिर्फ एक गाना नहीं, ये 2026 का कल्चरल हिट है. तो गाना नंबर वन अब आपको फुल वॉल्यूम पर एंजॉय करना है. और आज का हमारा जो ये ब्यूटीफुल सा टॉप 10 का सफर यही खत्म होता है. ये पहला एपिसोड था आपकी ए फॉर अमिता के साथ, और उसके बाद अगले एपिसोड में हमारे अगले शो पर हम देखते हैं कि प्लेलिस्ट में कौन से फेर बदल होते हैं. तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे. 6622107 पर इस नंबर के जरिए आप हमसे कंटिन्यूसली जुड़ सकते हैं, अपने दिल की बातें हमसे शेयर कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि कोई ट्रेंडिंग गाना हमारे टॉप 10 प्लेलिस्ट का हिस्सा बने, तो वो भी हमें बता सकते हैं, है कि नहीं. और हाँ, मीनवाइल क्या करना है, FM 107 के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. सो एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे, अपना खूब सारा ख्याल रखें, और जाते जाते ये कहना बनता है हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 1.

0: हम चले नहीं कहीं से, कट्टर को छोड़ के नहीं गए थे, हम घर पे ही बैठे हुए थे।
1: अच्छा, तो आज के जमाने के हिसाब से अगर बात करूं, मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, पर जैसे दुनिया जो है अभी सीख रही है नई नई चीजें, लोग एआई सीख रहे हैं, फलाना सीख रहे हैं, अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं, आर यू डूइंग समथिंग
0: आउट ऑफ द बॉक्स इफ यू आस्क मी? यस, मैंने अरबी सीखा था, जैसे सीखा था क्लास में अच्छा था, जैसे क्लास से बाहर आ गई सब गई।
1: अच्छा, ओके, पर उसके अलावा ये सीखने का मन नहीं किया कि चलो ठीक है दुनिया सीख रही है तो मैं चलो इस राह पे चल पड़ूं?
0: चैट जीपीटी है ना भैया, फिर ये क्या जरूरी था, चैट जीपीटी सब काम कर देते हैं।
1: ओके, तो अरबी बोलने का मौका नहीं मिला इसलिए छूट गई, या खुद ही छोड़ दी, या फिर कैजुअली सीखी थी, व्हाट हैपेंड टू इट? क्योंकि लैंग्वेज सीखने के बाद तो कुछ तो जहन में रहता है ना।
0: एक था कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, ठीक है, सारे इंटरव्यूज मुझे क्या बोलते हैं रिजेक्ट किए थे, रिजेक्ट इसीलिए किए थे क्योंकि मुझे अरबी नहीं आता, ठीक है, ओके, दैट रीजन वाज रीजनेबल, और कोई मौका नहीं है उन लोगों को मुझे रिजेक्ट करने के लिए, करके मैंने कोशिश किया अरबी सीखने के लिए। सर मैंने कितना 900 पे किया था, मैंने 3 महीने का कोर्स लिया था, उन लोग बोले थे कि 30 दिन में अरबी आता है, 30 दिन भैया जाने दो, 30 दिन नहीं 3 महीने मैंने लिया था। लेकिन बात यह है आपको बोलने के लिए लोग चाहिए, लाइक बात करने के लिए, तो गया भैया हमारा 900 भी गया।
1: अच्छा ठीक है, ये जो हॉबीज होते हैं इंसान की ना, वो साल दर साल बदलती हैं या पुरानी हॉबीज बढ़ जाती हैं। आप यू आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट, तो मैंने देखा रिसेंटली यू गिव एन इंटरव्यू एज वेल, तो आर्टिस्ट्री कैसी चल रही है जरा ये बता दो।
0: हाँ, अभी मेरा नया मीडियम सीखा है, वाटर कलर मीडियम शुरू किया, तो वो बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल के लिए। बात ये होती है ना, घूम फिरा के बस।
1: अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैंने देखा कि तुमने लाइव पेंटिंग भी शुरू करी है, इससे पहले मैंने देखी नहीं थी, रिसेंटली मैंने देखी, तो ये लाइव पेंटिंग का कीड़ा कहाँ से आया, कोई किसी ने इंस्पायर किया, क्या हुआ?
0: इंस्पायर पैसे कमाने के चक्कर में मैंने क्या क्या नहीं किया कबीर, बस पूछो मत, मैं सोची ये करूंगी, मैं सोची वो करूंगी, बस ये था कि साइंस ग्रेजुएट बनूंगी तो रॉकेट भी उड़ा दूंगी, बस वो बाकी है मेरा जिंदगी में।
1: बट फिर भी लाइव पेंटिंग कहाँ से?
0: कबीर ये सब बाद में, पहले मुझे भी एक मौका दे दो कि मैं भी पूछूं, आपकी जिंदगी में क्या हुआ था एक साल में, आपको एक साल में, मतलब एक साल में एक क्षण, एक मिनट, एक मिली मिनट भी नहीं लगा कि हम वाणी से मिले? कभी बोलते हो रमजान पे मिले, कभी बोलते हो बकरीद को मिले, रमजान गई बकरीद आई, बकरीद गई रमजान आई, फिर रमजान आने वाला है, लेकिन आपको तो कौन सा ईद का चांद बन गए, मेरी हिंदी सुधर गई कभी,
1: इसे कहते हैं एक्सपोजे, तो मेरी ही बात इन्होंने कर दी, बट ऑनेस्टली काफी टाइट रहा है पूरा एक साल, अब जाके थोड़ा लुक वुक चेंज किया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस जागा है, काफी कुछ चीजें हो रही है मेरी जिंदगी में, एंड वो जो तुमने पेंटिंग बनी थी वो भी काफी इंस्पायरिंग लगी मुझे, लगा यार लड़की जो है काफी साल में बदली है, दैट इज द रीजन व्हाई मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार बात की जाए।
0: याद आया अब एक साल में क्या किया, हाँ बीच में अब मैं इंडियन लोगों के साथ छोड़ के मैं उगांडन लोगों से फ्रेंडशिप करना सीखा, ठीक है रहने दो, मेरी हिंदी गई, मेरी इंग्लिश गई, मेरी अरबी तो आ नहीं रही थी, चलो मैंने सोचा चलो इन लोगों से बात कर लूँ, इनका कुछ सीख लूँ, ठीक है, उन लोगों को लगा कि मैं अच्छी हूँ, और लाइक अच्छी मतलब दिखने की बात नहीं कर रहे थे, लाइक सोल से अच्छी हूँ, सोल ओके कबीर प्लीज मेक द पॉइंट योर ऑनर, तो सोल से अच्छी हूँ, तो उन लोगों ने मुझे मूवी का चांस दिया था।
1: बट सिंस यू वर्कड ऑन इट यार, बहुत बढ़िया बात है, तो वो जो ये युगांडा के लोग थे, तुमने क्या सीखा युगांडा के बारे में अपार्ट फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स?

0: related to the culture, it goes more here. But mostly my paintings are like about the female. So it's completely opposite. But the thing is, like, when I displayed my artwork, I have displayed in a women's organization last time. So it has touched many of the people there. Like, who is the guest of honor is Qatar Falconeri. He also came. He, like, the art really impressed him. Like, it really touched his soul. I told him, like, I'm not a trained artist, but still he said that, like, that art and her eyes really touched him. So that's where it really satisfies me. Like, I'm not earning money from it, but the thing is, like, when people can feel it, I feel happy for it so far.
1: Right.
0: But this kabhi na kabhi ho jayega yaar. Kabhi le lo na do teen painting, aap se hi shuru kar dete hain. Aap ek kalakar ko kyun aage nahi badhne dete?
2: Kya baat hai, kya
3: पर कलाकार जी, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ऑनेस्टली ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग जो लेमेन हैं बेचारे, वो जानना चाहते हैं. जैसे पेंटिंग होती, तो तुमने एक जॉनर पकड़ लिया कि मैं जो हूँ, आई विल डू इट फॉर द वुमेन, मैं कल्चर और वुमेन के हिसाब से ये बनाती चले जाऊँगी, राइट. बट ये दूसरा जॉनर टच करने का कभी सोचा है कि चलो कुछ और? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें. एक बंदा है, आई डोंट नो द सरनेम, लेकिन जोसेफ नाम से कोई है एक बंदा, और वो क्या करता है, वो बहुत टाइम से आर्ट वर्क बना रहा है, सिर्फ वो सिर्फ समुद्र का. मतलब उसके हर पेंटिंग में समुद्र नजर आएगा, रेत नजर आएगी, बड़े बड़े जहाज नजर आएंगे. एंड ही डिड इट कॉन्स्टेंटली, और उसने फिर जाके थोड़ा बहुत चेंज करना शुरू किया, एंड ही डिड इट फॉर 15-20 years. और तुम्हारा क्या सीन है, लाइक आर यू प्लानिंग टू शिफ्ट टू समथिंग, कुछ अलग जॉनर तुम्हें अच्छा लगा है रिसेंटली, कुछ अलग बनाने की कोशिश है तुम्हारी कि नहीं?
0: नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं, और 10 साल चलने दो, 10 साल के बाद सोचेंगे कि कुछ चेंज आ जाए इंशाल्लाह.
3: तो ऐसा होता है कि तुम फ्रेम देखती हो किसी मूवी का या कुछ देखती हो, लगता है कि यार ये मुझे पेंट पे उतरना है, और कैसे इंस्पिरेशन मिलती है? लाइक डू यू वॉच मूवीज एज वेल, या फिर अपने मन से जो आता है बनाने का, या कोई चीज देख के इंस्पिरेशन आती है?
0: अपने मन से जो आती है वही बनाती हूँ मैं फिलहाल के लिए.
4: हर प्रोफेशनल शख्स मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
5: चले तो कट ही जाएगा सफर,
4: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर.
6: दोहा वाले कबीर के साथ,
7: दोहा वाले कबीर के साथ.
3: ये जो लाइव पेंटिंग वाला सेशन है यहाँ पर कतर में, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं. यू आर द सेकंड वन जिसको मैंने करते हुए देखा है, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, बट इन आर कम्युनिटी एज मतलब जो देसी कम्युनिटी है उसमें दो लोग हैं. तो इस पे कभी सोचा नहीं कि इसको कैपिटलाइज करूँ? तो ये तो बहुत ज्यादा चल सकता है, लोग तो भाग भाग के आते हैं ऐसी लाइव पेंटिंग्स बनवाने के लिए.
0: हाँ, यहाँ पे वो है ना, लाइक एजुकेशन सिटी में मताफ है, वहाँ पे आपको फ्री सेशंस मिलते हैं. लाइक मास्टर इस्माइल हजम है, तो एवरी संडे एंड ट्यूजडे यू हैव फ्री आर्ट सेशंस देयर फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स. सो जितने भी आप सुन रहे हैं, जिसको भी आर्ट का पसंद है, तो सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस्माइल हजम के क्लासेस प्लीज अटेंड करिए. वहाँ पर आपका फ्री लाइव सेशंस है, लाइक फ्री पोर्ट्रेट आर्ट क्लास सेशंस है. इट्स नॉट द बेसिक, लाइक हाँ सर वहाँ पे बैठ के आपको पेंसिल पकड़ा के सिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है. बट आपको रेगुलरली आना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी इम्प्रूव. लाइक आई हैव सीन माई सेल्फ इम्प्रूविंग अ लॉट, माई सेल्फ एंड अलॉन्ग विद द को आर्टिस्ट. लाइक दे ऑल्सो करेक्ट यू, दे ऑल्सो ट्रेन यू, दे ऑल्सो गाइड यू, लाइक दिस कैन बी डन, दैट कैन बी डन, काइंड ऑफ थिंग. एंड लाइक अगर सोचे तो लाइक इंडिया में आई डोंट नो लाइक वी हैव दिस काइंड ऑफ लर्निंग और नॉट, बट इट्स वेरी गुड दैट कतर हैज मेनी गुड ऑप्शंस, एस्पेशली इस म्यूजियम्स में, ये सब जगह ना दे मोस्टली प्रोवाइड आर्ट, लाइक वेर यू कैन, दे प्रोवाइड द सेशंस टू लर्न एंड दे हैव फ्री एग्जीबिशंस टू अटेंड. इट्स वेरी नाइस हियर.
3: और अब तुम क्योंकि लाइव पेंटिंग करती हो, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बैठ के लाइव पोर्ट्रेट बनाते हैं ना लोगों के, तो मैं उससे जुड़ा हुआ कह रहा हूँ कि वो तो कैपिटलाइज हो जाता है ना, लाइक पीपल एक्चुअली पे के भैया हमारी जो है लाइव तस्वीर बना दो. तो तुमने नहीं सोचा कि यार ये बहुत बढ़िया कमर्शियल है, मैं अपनी पेंटिंग बनाती रहूँ और साथ साथ मैं ये भी कर लूँ, इससे पैसा ही बन जाएगा? ये नहीं आया ख्याल कभी?
0: वो बना रही ना मैं कभी कभी, बीच बीच में इवेंट्स जब आते हैं तो उसमें कर लूंगी मैं.
3: ओके तो अब मुझे ये जाना है, तुमने ये सारी चीजें तो कवर कर ली. देखो हम लोग जो है जो पेंटिंग तक तो पहुंचे नहीं, ड्राइंग हमारी बनती है, तो हम लोग वो तीन पहाड़ बनाते हैं, दो चिड़िया बनाते हैं, एक झरना निकल रहा होता है और एक झोपड़ी लगा लेते, या एक सन, सॉरी भूल गया था मैं, सन और एक झोपड़ी लगी होती. तो तुमने कभी सोचा नहीं कि इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बना के देखूं? यार ये कोशिश करो हमारे लिए बनाओ, हम कुछ उसमें अलग करना चाहते हैं, सब लोग सेम बनाते हैं.
0: I also did this drawing. Honestly, I did this drawing in my book. In the हमारे पेंट होता था ना कबीर, MS पेंट में, उसमें भी मैंने बनाया था. आपने बनाया कि नहीं?
3: इतना अच्छा हाथ नहीं है कि उसमें मैं कंप्यूटर पर जाके बनाऊं, हाथ से बननी रही है वो, वहां पे माउस के क्लिक से कहां से बन जाएगी. बट यार वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि वो लोग जानना चाहेंगे कि इसका कोई दूसरा अच्छा वर्जन है कि नहीं, क्योंकि हम सबकी वाली पेंटिंग एकदम सेम से नजर आती है. सो दैट्स व्हाई. अच्छा एडिंग टू दिस, ये हॉबीज जो आपकी चल रही है आर्टिस्ट्री वाली, इसके अलावा कुछ और शौक है? मूवीज देखने का, घूमने फिरने का क्लियरली है, कुछ और ऐसा है जो? हाँ
0: कबीर सच बोलू या झूठ बोलू ये बताओ.
3: अदालत सच जानना चाहती है, बताओ.
0: अदालत सच जानना चाहती है. मुझे ना लाइक हॉबीज बहुत सारे है, लाइक आई एम वेरी आउटगोइंग पर्सन, तो मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती हूँ. मुझे रेडियो आरजे बनने का बहुत शौक है, बहुत लाइक बचपन से वो शौक था. पता नहीं जिंदगी में कभी ना कभी पूरी हो जाएगी शायद. आपका मैनेजर साहब अगर सुन रहे होंगे तो कबीर के साथ बाजू में एक छोटा सा चेयर डाल दियो, नहीं तो मैं खुद अपना चेयर ला लूंगी, उसमें कोई बात नहीं भाई. लाइक लास्ट टाइम आपके लोग ने पानी नहीं दिया था, फिर भी हमने बुरा नहीं माने थे. अगर आपके लोग कुर्सी भी नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुद अपना कुर्सी लेके आके आपके पास बैठेंगे. बस थोड़ा सा इंटर्नशिप वाली सैलरी भी दे देंगे तो भी चलेगा, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट हॉबी आई हैव. सेकेंड दूसरा मॉडलिंग है, वो भी करती हूँ, पता नहीं क्यों करूंगी. सुबह सुबह जाऊंगी, उठूंगी, फोटोग्राफर भैया भी बिचारा सुबह सुबह आता है, कहीं पहाड़ में कभी रेत में फोटो निकालेंगे, वो भी पैसे वाली बात नहीं है, बस कर रही हूँ, वो भी हॉबी है. फिर नेक्स्ट हॉबी क्या होती है? ड्राइविंग. लाइक ड्राइविंग बहुत अच्छा करती हूँ फिलहाल के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. वो भी अच्छा लगता है, हाँ वो भी एक पैशन है. फिर कभी कभी बोर लगती है ना तो जाके मैं भूत की मूवीज देखती हूँ.
3: वेरी गुड, वेरी गुड.
0: और हर बार मैं कबीर से पूछती हूँ कि कबीर भूत मूवी चले, लेकिन हर बार ये भैया जो होता है ना तो ये लाइक ऑफ हो जाता है, यार सैटर्न जुपिटर में रहते हैं, पता नहीं, लाइक ही जस्ट डिसअपीयर्ड, लाइक पता नहीं चलता है. अब कबीर का जो नया रूप जो आया है, लाइक हेयर कट जो बदला था, उस बदलाव में मैं चाहे सोच सकती हूँ कि उस बदलाव बस रूप में भी नहीं.

0: चलेगा कबीर चुके, स्प्लिट कर लेंगे।
1: इतनी लगातार हिंदी में बोला तुमने, इसके लिए मैं ताली देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया भाई,
0: बहुत बड़ा तालिया, मैं कुछ तालियां ले लूंगी
1: अच्छा तो आप ये बताओ, क्योंकि तुमने इतना बात करी है, तुमने बोला कि तुम्हारी पेंटिंग अराउंड विमेन, तो कोई ऐसी विमेन फिगर जो तुम देखती हो, ऐसी पर्सनालिटी के तुम उनको उनसे इंस्पायर होती हो, यू वांट टू बी लाइक हर, एनीबॉडी फ्रॉम एनी फील्ड, ऐसा कोई है तो बताओ।
0: बस दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन आज आपने जो पूछा था। सो आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय माय मदर, आई कैन से दैट। लाइक बचपन से मैंने उनको देखा था। माय मम इज द ब्रेडविनर ऑफ द फैमिली, सो She was the only one role model for me. Like, उसको बहुत सारे, like, हमारे पुराने घर में

0: बट कोशिश करती है कि वो सब कुछ करे माँ के रूप में, लाइक बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए. लाइक शी वॉज टोटली बिजी इन दैट, आई कैन रियली अंडरस्टैंड. राइट नाउ जो जो जिस जगह में मैं हूँ अब, तो मुझे भी लगता है कि मैं अपनी माँ से कम हूँ, बट मेरी माँ ने खुद कर लिया. लाइक शी रियली डिड इट वेरी इजीली. लाइक जो भी प्रोवाइडिंग हमें देना था सब कुछ, तो मुझे लगता है मैं भी कर सकती हूँ. तो मुझे ना लाइक ये सारे जो भी आते हैं आफत,
1: आफत
0: या आफत इज राइट वर्ड राइट कभी आफत स्टॉर्म जो भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ ने कर लिया तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर लूंगी टाइप.
2: यार वेरी नाइस यार, दैट इज सो स्वीट. एंड अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी को बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे,
1: सब अम्मी को,
2: सारी तमाम माओं को. अच्छा तो since you talked about your mom and bless her heart, सब कुछ बहुत सारी दुआएं उनके लिए. ये आज की तारीख में तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी ज्यादा बातें करते हैं, तो women as a woman yourself, कितना कुछ बदला है इन इन सालों में? Like क्या मुश्किल और क्या आसान हुई हैं चीजें? What do you think is easy now and what do you think is a little difficult अभी भी?
1: If you ask me that, like as a woman, so my personality, मैं जो जिस घर में पली बड़ी हुई थी, मेरे को सब कुछ था करने के लिए, but बात ये है कि we are always in a small family. Like in India, you don't have most exposure. Being a girl, being a woman, like ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये मत करो, वो मत करो, वो हर time है, अभी भी है. अभी भी हम वैसे ही करते हैं हमारे बच्चों के साथ. तो मैंने भी वैसे ही पली बड़ी हुई थी, तो मेरे जिंदगी में ऐसा था कि

0: it's not one day work, but the thing is like it would be much better agar aapke saath acche family ho ya acche bande hai saath mein, and if you grow up together all together, then it will make more empowering for a woman actually, because women are by birth they are meant to be strong, like we are wired strong. I believe that, like kuch bhi aafat aa jaye, like aisa lagta hai ki ha theek hai kar lenge, it's okay type. Like if you talk about the menstrual cycle, or if you talk about the birthing, if you talk about work right now, like examana hua karta tha, like wherein women are not allowed to work, but now being on a menstrual cycle they are going, they are working and they are taking care of their families. It's very nice, like in a way, like it's very great that being a woman, I'm so blessed being a woman. I don't know how it is to be a man. बोल सकते हो कभी?
1: नहीं नहीं, मैं सच में मुझे ये तुम्हारी जो है ना, इतने टाइम से अभी लोग भी जान रहे हैं दैट यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और तुम्हारी दो साइड बैक टू बैक लोगों को सुनाई दे रही है, एक सेंसिटिव साइड है, एक ह्यूमरस साइड है, एक आर्टिस्टिक साइड है, सो विच इज रियली कूल टू नो. बट अब एक थोड़ा सा फंड डालते हैं, रियली वॉन्ट टू नो वन, ये वंस एंड फॉर ऑल एक जो बहस चलती हुई आ रही है जिसके बारे में बात करते हैं, बहस ये कि वुमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी है आपकी?
0: This is absolutely wrong, I believe. But yes, I also agree sometimes. But I don't know, like when I am driving, I am so perfect. I feel I am good at it. Like I use my indicators properly. I drive my thing properly, everything. But I, कभी कभी मैं देखती हूँ ना बंदा, कभी right जाना होता है, भाई सब left का signal डाल के जाता है. भैया अगर वही लड़की करती तो वो आगे सामने रोक देता है और एक अचानक वाला look देता है, मैडम जी आपने क्या कर दिया, ये सब बोल के वो चला जाता है.
1: नहीं पर लास्टली थैंक यू सो मच वानी, वंस अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से तुम हो, एंड ऑलवेज बीन, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर एंड बीइंग यू. और ये जो हमेशा बात करता हूँ तो मुझे हमेशा वो दो साइड्स दिखती हैं कोलाइड होती हुई. आई नो यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बट वो जो बाकी चीजें समझ में आती हैं वो बहुत बहुत सेंसिबल लगती है. सो कुडोज टू दैट, एंड आई विश यू ऑल द लक, ऑल द प्रेयर्स फॉर यू. और तुम हिंदी भी सीखो, और जो अरबी सीखी है उसे थोड़ा ब्रश अप करो. That's all I want to say.
0: Kalash, min for luck.
1: Thank you so much. So, ye
0: thank you so much, Kabir. Always, like, you are always there when in need. ठीक है, हम रोना अलग, अकेले ही रो लिए, कोई बात नहीं, आपने टिश्यू तक देने के लिए नहीं आए थे, इट्स ओके. और हमारा जो पैर टूट गया था आपने बोला संतरे ले आएंगे, संतरा भी नहीं आए, सेब भी नहीं आए, इट्स ओके, कोई बात नहीं. और हम अब चल भी पा रहे थे और अब हम दौड़ने भी लगे रहे थे, बेबी स्टेप से लेके दौड़ना भी शुरू किए थे, आप अभी भी नहीं आए थे मिलने के लिए, कोई बात नहीं.
1: नहीं भाई देखो,
0: जिंदगी कभी नहीं रुकेगी, कभी आगे चलती रहेगी.
1: वाह बाबा जी, वाह बाबा जी, वाह.
0: मैं बस यही कहना चाह रही हूँ सभी दर्शकों को, दर्शक नहीं होते ना, श्रोतों को बोलते क्या, सुनने वालों को,
1: लिसनर्स बोल दो यार तुम.
0: लिसनर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं?
1: मुझे श्रोता कह रही हूँ, श्रोतागण कह रही हो क्या तुम? बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगी. हाँ बताओ, सामाइन बोल दो, सामाइन बोल दो,
0: सामाइन लोगों को, सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी किसी भी, ये कबीर, अमीर, सगीर, इन सब के लिए नहीं रुकती है, बस जिंदगी आगे जाती रहती है, सबका आगे जाना चाहिए, सबको गुड लक, गुड

0: और जितने भी आरजे बनने के लिए वोट नंबर वन दबाए.
1: ठीक है, ठीक है. ऑन दैट वेरी नोट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस शो में है. जो भी मैसेज करना चाहते हैं वाणी के लिए 666-221-07 ये नंबर है. एंड वी बोथ आर साइनिंग ऑफ. आप सब अपना ख्याल रखें क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मसलाम,
0: खुदा हाफिज.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी।

जिंदगी को आसान तो बनाया है लेकिन चैलेंजिंग भी। कन्वीनियंस के साथ सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ गए हैं। सबसे पहले रूल हमें और आपको समझना है वो ये कि अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना है और किसके साथ नहीं। बैंक कभी फोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगता। अगर कोई कॉल करके कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, OTP बताइए, फौरन कॉल डिस्कनेक्ट करें। ये बड़ा कॉमन स्कैम है। एक कस्टमर जो इस तरह के स्कैम का शिकार हो जाता है वो अपनी अच्छी खासी मनी गवा देता है। और ऐसे कितने मसले, एक कस्टमर को मैसेज आया कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है और मैं ये तो उसने मुझे खुद बताया किस्सा। मैसेज में लिंक था, उसने डिटेल सेंटर की और कुछ मिनट में अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, भले से कोई भी ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन आपको या मैसेज आए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। वीक पासवर्ड क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो आसानी से लग देते हैं, या फिर बर्थडे, इस तरह की चीजें। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उसमें चांसेस कम होते हैं कि आपके जो है वो अकाउंट को कोई हैक कर सके। हर अकाउंट का डिफरेंट पासवर्ड भी होना चाहिए। थर्ड स्टेप, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना। पासवर्ड के साथ OTP भी रिक्वायर्ड होता है। अगर पासवर्ड लीक हो जाए तो अकाउंट सिक्योर रहता है। या ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स ही यूज करें। चेक करें वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट हो, S is safe and secure, नोन ब्रांड हो, कस्टमर रिव्यूज हो, सिक्योर पेमेंट्स हो। पब्लिक वाईफाई पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अवॉइड कीजिए। एयरपोर्ट है, कैफे है, पब्लिक प्लेसेस के नेटवर्क्स सिक्योर नहीं होते। और एक और प्रैक्टिकल हैबिट, हर वीक बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहिए। अगर कोई अननोन ट्रांजेक्शन नजर आए तो फौरन बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए। इससे आप जो हैं वो अपने आप को सिक्योर कर पाते हैं। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट ने फाइनेंशियल वर्ल्ड को फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है, लेकिन डिजिटल कन्वीनियंस के साथ डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। और आज का गोल्डन रूल ये है कि ट्रस्ट टेक्नोलॉजी बट वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन। जितनी अवेयरनेस होगी ना, उतने ही आपकी मनी और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर होगी। तो दोस्तों, यही कह सकती हूँ मैं कि डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया है। आज हम सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से बिल्स पे कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उतनी ही फास्ट फाइनेंशियल स्कैम्स और साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट तरीके से यूज करें। कभी भी अपना OTP, पिन या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक ना करें और अपने बैंक अकाउंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। छोटी छोटी एहतियात आपको बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचा सकती हैं। याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर उस यूजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसे यूज करता है। जितनी अवेयरनेस और विजिलेंस होगी, उतनी ही आपका पैसा और पर्सनल डेटा महफूज रहेगा। आज का मनी मैटर टेक अवे ये हो सकता है कि डिजिटल दुनिया में कन्वीनियंस का मजा लें, लेकिन हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना और अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना कभी ना भूलें। स्मार्ट यूजर्स ही सिक्योर यूजर्स होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.

7 presents Tech Update. Tech Update. अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। और आज के अपडेट में बहुत कुछ खास है, अगेन एआई से जुड़ी हुई बात मैं करूंगा क्योंकि भाई एआई से कदम कदम मिला आइजा खुशी के गीत गाने के लिए एआई के साथ जुड़ना पड़ेगा क्योंकि यही डिमांड है। और इसलिए मैं आपको स्पेशली उन लोगों को जो कंटेंट जनरेशन करने वाले हैं, इस साल से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं। तो मैं तीन आपको ऐसी बेहतरीन एआई वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे जाके आपका काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो नंबर वन पे एक जो वेबसाइट है इसका नाम है megan.ai। मैं स्पेल आउट कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है। megan.ai। अब इसे मेगिन पढ़ूं मेजन पढ़ूं, मैं आपको बस स्पेल आउट कर देता हूं, बाकी आप देख लेना। megan.ai। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फोटोज और बहुत सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि उनके स्टाइल्स को देखते हुए वो टेम्पलेट्स की तरह आप उन्हें देख सकते हैं, और उनके नीचे होगा प्रॉम्प्ट। जब आप किसी फोटो पे या वीडियो पे क्लिक करेंगे उसके प्रॉम्प्ट को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, और फिर किसी और एआई पे जाके जिस पे आप वीडियो या इमेजेस जनरेट करते हैं वहां पे जाके आप इस प्रॉम्प्ट को पुट इन कर सकते हैं, और उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू वांट टू चेंज इट। इफ यू डोंट वांट टू चेंज इट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी स्टोरी सुना रहा हूँ तो मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस आइडिया। तो बहुत काम का है, सिंपली कॉपी द प्रॉम्प्ट एंड यूज इट वेयर एवर यू वॉन्ट। इसके बाद अगली जरा एआई की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एआई है mindluster.com, mindluster

0: mindlustre.com, मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, MINDLUSTER mindlustre.com। जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके सामने लिखा आएगा बड़ा बड़ा मास्टर योर फ्यूचर। तो मास्टर योर फ्यूचर कैसे, यहाँ पर 300,000 से ज्यादा फ्री कोर्सेज हैं भाई, 300,000 से ज्यादा फ्री कोर्सेज। इसमें एमएस एक्सेल है, अंग्रेजी सीखनी है आपको, वेब डिजाइनिंग चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, फोटोशॉप है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोटो एडिटिंग है, आपको कुछ भी सीखना है, यहाँ पर 300,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। एंड यू नो व्हाट, ये लोग फ्री में वो भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, केलेलोजी सर्टिफिकेट, लैंग्वेजेस हैं, कुछ भी है, आप यहाँ पे हर चीज सीख सकते हैं। इट इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल वे ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज एंड आई लव्ड इट। सो माइंड लस्टर बहुत काम आएगा आपके, आप कहीं भी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, देर आर ऑडियो एंड ऑल्सो विजुअल्स, अगर आपको ऑडियो ऑडियो चाहिए, ऑडियो भी सुन सकते हैं, आपको विजुअल चाहिए साथ में तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्किल्स में आपको वीडियो देखना ही पड़ता है, बट बहुत काम का है, बहुत सिंपल है और आसान लैंग्वेज में इन लोगों को समझाया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। सो mindlustre.com। इसके बाद अगली तरफ बढ़ते हैं, अगला जो है वो है फ्राइव या फ्रिव, FRIV। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, जब FRIV.com पे आप जाएंगे तो यहां पर टाइम पास होता है, यहां पे जब आप खोलेंगे तो आपको लगातार जो डेस्कटॉप पे गेम्स होते हैं वो खेल सकते हैं आप, मतलब कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू टाइप दिस FRIV.com और आपके सामने बहुत सारे गेम्स आ जाएंगे, बस क्लिक करें, खेलना शुरू कर दें भाई, बढ़िया टाइम पास है, सही बता रहा हूं मैं। ऑफिस में चुपके से ट्राई करके देखना, मुझे ही बताना, ओके, ऑल द बेस्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में जरा मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ, मतलब खबरों में क्या कुक हो रहा है। ओके, तो अभी एक बात रिसेंटली सामने आई जिसमें एआई को लेकर एक डाउट शुरू होना अभी स्टार्ट हुआ है, और वो है कि साइबर अटैक्स जो है वो मेजर कंसर्न है, उससे क्या किया जाए। ओपन एआई ने पहले वार्न कर दिया कि भाई इंक्रीजिंगली अगर आप देखेंगे तो एआई ड्रिवन अटैक्स अभी बढ़ गए हैं, अलग अलग तरीके से अटैक कर रहे हैं, हैकर्स एंड मैलवेयर जो है वो फैला रहे हैं, तो आपको जो है किसी भी खामखां के एआई पे नहीं जाना है। मैं आपको जो एआई बताता हूँ इसलिए मैं पूरा देख दाग के बताता हूँ ताकि आपके काम आ सके, आई टेस्ट इट ऑन माई सेल्फ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मगर आपको कोई ऐसे ही एआई आपके स्क्रीन पे आता है, फीड में आता है, तो ऐसे अंधाधुन उस पर ना क्लिक करें, रादर इफ यू नो द नेम, अगर आपको नाम पता लग रहा है तो आप एक बार चेक कर लें, सर्च करके भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है, ये कितना काम करता है कितना नहीं करता है, और उसके बाद उस पर भरोसा करें। यहां पर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सीन है ही नहीं, आपको पहले इसको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इसे पूरी तरह से भरोसा करें। दैट इज माई ओनली एडवाइस टू यू, वरना आजकल जो है जैसे एआई इंटेलिजेंट हो रहा है वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके इंटेलिजेंस का फायदा भी उठा रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों। अब आप जो है बुरे वालों से बच के रहिए और अच्छे बने रहिए, वेरी सिंपल। सो दीज वर द टेक अपडेट्स, दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आपका। मैं हूं फजील और ये शो, ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का। दोस्तों नए जमाने के नए फ्रॉड हर गुजरते हुए रोज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कई बार आप बहुत होशियार हो जाते हैं और आपको पता है कि जमाने में और जगह जगह पे या हमारे दोस्तों को, हमारे यारों को किस तरह से स्कैम किया जा रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह का स्कैम होता है। और आप ऐसे में जब होशियार हो जाते हैं तो स्कैमर्स भी होशियार हो जाते हैं। वो नए तरीके ढूंढते हैं आपको स्कैम करने का, आपके साथ फ्रॉड करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का। और आज इसी तरह के एक फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये है टेक सपोर्ट स्कैम, एक ऐसा धोखा जहां स्कैमर्स आपको डराकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं और आपके पैसे चुराते हैं। आजकल ये फ्रॉड बहुत कॉमन हो गया है और इससे बचना सबके लिए बेहद जरूरी है। कैसे होता है ये स्कैम? अक्सर एक सडन और डरावने पॉपअप मैसेज से शुरू होता है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होता है। इसमें लिखा होता है कि आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो गया है या आपका सिस्टम डेंजरस वायरस से स्लो पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन फोन नंबर दिया जाता है और तुरंत कॉल करने को कहा जाता है। जब आप उस नंबर पर कॉल करते हैं तो एक फेक टेक्नीशियन आपसे बात करता है कॉल पे रहते हुए और आपको डराता है। वो आपसे कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूवर के जरिए

0: ऐसे तरीके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे इनमें से सिर्फ चार ऐसे तरीकों के बारे में कि इन चार तरीकों को अगर आपने अपना लिया तो ऐसे स्कैम से आप बच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन और बचाव है, कभी भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉपअप किया हुआ मैसेज है जिसमें फोन नंबर है उस पे कॉल ना करें। इवन कई बार आपको ये स्कैमर्स अलग तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, फोन के जरिए भी ये आपसे स्कैम कर सकते हैं, तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपको पता है कि कैसे इन स्कैमर से टैकल करना है। आपने फोन किया, हो सकता है कि आपका फोन करना ही ये कोई एक स्कैम हो, तो कभी भी नंबर पे कॉल ना करें। अगर स्क्रीन पर ऐसा कोई वायरस या एरर पॉपअप आए और उसमें कॉल करने को कहा जाए तो उस नंबर पर कभी कॉल ना करें। रियल टेक कंपनीज जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो कभी भी आपको इस तरह से कॉल करके आपकी परेशानी को हल करना या आपको कॉल करने के लिए फोर्स नहीं करती हैं। उसके अलावा उस ब्राउजर को फौरन बंद करें। ऐसे पॉपअप्स आने पर तुरंत अपना वेब ब्राउजर क्लोज कर दें। अगर ब्राउजर फ्रीज हो जाए तो ऑल्ट F4 दबाएं या टास्क मैनेजर से उसे फोर्स क्लोज करें। उसके अलावा कभी भी किसी अनजान शख्स को रिमोट एक्सेस अपने कंप्यूटर का ना दें। किसी भी अनजान इंसान को अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तभी दें जब वो आपका कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय हो, आपका कलीग हो, आपका दोस्त हो, ऐसे लोग जो सच में टेक को जानते हों, कंप्यूटर को जानते हों और आपकी कंपनी में काम कर रहे हों। उसके अलावा हमेशा ऑफिशियल सपोर्ट का इस्तेमाल करें। अपने जो कलीग हैं, जो टेक्नीशियन आपके ऑफिसेज में हैं, उनसे राब्ता करें। अगर आपको सच में कंप्यूटर में कोई दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही कस्टमर केयर नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मदद लें। एक बार फिर से, कभी भी किसी को कॉल ना करें, जो पॉपअप हुआ मैसेज है उसे क्लोज करें, उसके अलावा किसी को रिमोट एक्सेस ना दें और ऑफिशियल सपोर्ट का हमेशा इस्तेमाल करें। इन तरीकों से आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बच सकते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों अगले एपिसोड में इसी तरह के नए जमाने के नए फ्रॉड पर बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, पहचान। सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और इस हफ्ते मेरी पहचान में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके ये गर्मियों के दिन भी बड़े मजे के जा रहे होंगे। वेल, आज मेरी पहचान में क्या बातचीत होने वाली है, चलिए आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, सोचिए कि एक आम सा वीकडे है, ठीक है, हमारी जो दोहा की धूप है वो बाहर भी बिल्कुल उतनी ही शार्प है जितनी हमको अंदर से दिख रही है। अब कुछ जगह पर हल्का फुल्का ट्रैफिक है और आप अपने घर के ठंडे कमरे में ना बैठी हैं, लेकिन इस ठंडक के बावजूद आपके अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रही हैं अपने इस पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस की। ये परफॉर्मेंस क्या है? ये परफॉर्मेंस किसी स्टेज पर नहीं होनी है, किसी थिएटर में नहीं होनी है। इसके ऑडियंस सिर्फ दो लोग हैं जो हजारों मील दूर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, आपका फोन बजता है, स्क्रीन पर मम्मी या पापा का नाम चमक रहा होता है, लेकिन एक्सेप्ट का बटन दबाने से पहले आप एक क्विक मेंटल चेक करती हैं। आप शीशे में अपनी थकी हुई आंखों को देखती हैं और उन्हें थोड़ा सा ना साफ करती हैं। माथे पर जो पसीना होता है या थकान होती है उसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करती हैं। कैमरे का एंगल ऐसे सेट करती हैं कि पीछे जो अनपेड बिल्स का ढेर पड़ा है वो नजर ना आए। वो बिखरे हुए कपड़े, वो अधूरा काम, सब कैमरे के फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। और फिर आप अपने बच्चों की तरफ मुड़ती हैं और धीरे से मगर सख्ती से कहती हैं, प्लीज सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे एक्ट करो जैसे तुम दुनिया के सबसे खुश बच्चे हो। हाँ, नो फाइटिंग। वैसे ये डायलॉग हर घर का कुछ अलग लेवल का आता है। कई बार तो धमकियां मिलती है पेरेंट्स की, वो भी बहुत तेज, की दादा दादी का कॉल है या नाना नानी का कॉल है, बिल्कुल मस्ती नहीं चाहिए वरना फिर देखना है कि नहीं। फिर आप वो बटन स्वाइप करती है, स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखता है, वही उम्मीद से भरी आंखें, वही फिकर। आप अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट लाती हैं जो शायद आपने पिछले 4 दिनों में ना महसूस भी नहीं की होती है। और फिर आप वो 4 लफ्ज कहती हैं जो हम जो अपने घरों से दूर होते हैं जिंदगी के सबसे महंगे अल्फाज हैं, कि सब ठीक है मम्मी, सब ठीक है पापा, है कि नहीं? सब ठीक है क्या? एवरीथिंग इज फाइन क्या? सब वाकई में ठीक है? ये 4 शब्द कहने के लिए कितनी हिम्मत लगती है ना, ये सिर्फ एक परदेसी ही समझ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम अपने देश से दूर होते हैं, अपने घरों से भी दूर होते हैं, तो दूर होने के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और स्पेशली जब हम फैमिली वाले होते हैं तब तो बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपने चैलेंजेस गिनाएंगे तो हमारे पेरेंट्स की फिकर बढ़ जाएगी। हाँ, आप उन्हें नहीं बताना चाहते कि आज ऑफिस में बॉस ने क्या कहा। आप उन्हें बिल्कुल नहीं बताती कि महीने का रेंट कितना बढ़ गया है और आपकी नींदें उड़ गई हैं, है कि नहीं? आप ये भी नहीं बताती कि पिछले 3 दिनों से आपको माइग्रेन हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें बिल्कुल टेंशन या दुख नहीं देना चाहती। वेल, हम एक ऐसी जनरेशन बन गए ना जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। हम इस गोल्डन केज यानी सोने के पिंजरे में बैठे तो हैं जहां बाहर से सब कुछ चमक धमक रहा है, मगर अंदर थोड़ी सी ना खामोशी वो बढ़ती जा रही है। हम खुशी या यूं कहें हैप्पीनेस परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो मॉम डैड हैं वो सुकून से जी सके या सुकून से सो सके, ताकि उन्हें लगे कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, खुश मिजाज है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस मिसाल को बनाए रखने के लिए हम हर रोज अपनी थकान का सौदा करते हैं। सो ब्यूटिफुल लेडीज, कभी सोचा है आपने कि जब वो कॉल कट जाती है, जब वो मोबाइल की स्क्रीन काली हो जाती है और आप उस अंधेरे स्क्रीन में अपना ही चेहरा देखती हैं, तब क्या महसूस करती है? एक अजीब सा खौफ दिमाग में आता है ना। उन्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, उन्हें सच्चाई से दूर रखने के चक्कर में, क्या आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जहां से अब कोई अंदर नहीं आ सकता? क्या उन्हें सुकून देते देते आपने खुद को तन्हा या यूं कहें अलोन कर लिया है। देखो आज मेरी पहचान में हम बात इसी के बारे में करने वाले हैं, इस परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बनते जा रहा है कि नहीं। तो चलो फिर कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर और अपनी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। मेरी पहचान में इस वक्त आज की सोच पर हम एक चर्चा करने वाले हैं। आज की सोच एक ऐसे बोझ के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम सब ने ना बड़ा प्राइडली या यूं कहें गर्व के साथ उठाया हुआ है। इस बोझ का नाम बड़ा खूबसूरत है, हम इसे कहते हैं द बर्डन ऑफ पीस, यानी सुकून का वो बोझ जो हमने अपने कंधों पर अपने दिल पर लगा रखा है। सुकून, ये लफ्ज सुनने में कितना हल्का लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका हो, लेकिन हम इस सुकून के बारे में जब सोचते हैं तो हमको बड़ा भारी लगता है कि नहीं? ये वो सुकून है जो हम अपने माँ बाप को देना चाहते हैं, उनके हिस्से का चैन हम खरीदना चाहते हैं अपने सच्चाई की कीमत देकर। देखो, ये ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने मम्मी पापा से कभी कभी अपना दर्द छुपाएं तो उसमें गलत है, लेकिन जब ये आदत बन जाए तो ये बहुत गलत है। समझ रहे हैं? हम सोचते हैं कि अगर हमने सच बता दिया या अगर हमने कह दिया कि मम्मी मैं थक गई हूँ या पापा मुझे अब नींद नहीं आ रही या मुझे सोने दो या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका सुकून छिन जाएगा। और उनका सुकून बचाने के लिए हम हर रोज अपने अंदर एक नया झूठ पालते हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इस सुकून की बुनियाद झूठ पर रखी है? वो सुकून असली में है भी या नहीं? हमारी तहजीब में, हमारी परवरिश में एक बात कोट कोट कर भरी जाती है, और ये एक अच्छी बात है। कैसे? एक अच्छी बेटी या एक जिम्मेदार बेटा वही होता है जो अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना आने दे। हम पर उनकी उम्मीदों का एक अजीम शान या यूं कहें एक ग्रैंड बोझ होता है। हमें याद दिलाया जाता है कि शायद हम खुद को याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जमीन बेची थी हमें पढ़ाने के लिए या हमारे किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। कैसे मम्मी ने अपने गहने गिरवी रखे थे कि भाई अगर किसी जगह जा रहे हैं, विदेश यात्रा में जा रहे हैं जहां हमें पढ़ाई करनी है, तो उसकी टिकट कर ले। कहीं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हम पर लगा दी होती है, बताए जरा। और बस यही से शुरू होता है वो सक्सेस स्टोरी बनने का दबाव। हमें लगता है कि हम कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। हमें लगता है कि अगर हमने बताया कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, काफ़ी तंग चल रही है या हम मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो हम उन्हें ब्रेक कर देंगे। हम उनकी कुर्बानियों को इंसल्ट नहीं कर सकते, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते, हम उन्हें ये जता देंगे कि उनका फैसला गलत था। लेकिन जनाब, क्या सच में वो इतने कमजोर हैं या हमने उन्हें कमजोर समझ लिया है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर सोचिए इसके बारे में। मेरी बात आज बहुत गौर से सुनिएगा। उनका सुकून बचाने की इस कोशिश में आप एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप अपनी रूह का कत्ल भी कर रहे हैं। हाँ जी, जब आप उनके सामने जो झूठी मोटी मुस्कान रखते हैं ना, वो सही नहीं है। हाँ, जब आप हर मुश्किल को हंस कर टाल देते हैं तो पता है क्या होता है? आप धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यू बिकम इमोशनली इनविजिबल। आप फिजिकली तो उनसे हजारों मील दूर हैं ही, मगर अब आपने अपने आप को और उनके बीच एक ऐसा पर्दा गिरा लिया है जिसे कोई पार ही नहीं कर सकता। आप उनके लिए सिर्फ एक सक्सेस सिंबल बनकर रह जाते हैं, एक ऐसी फोटो जो उनके ड्राइंग रूम में लगी है और जिसे वो सबको गर्व से दिखाते हैं। लेकिन उस फोटो के पीछे जो इंसान है, जो लड़की है, जो रात को

सो नहीं पाती, जो लड़का है, जो ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान है, उसे उनका कोई रिश्ता नहीं है क्या? आपने उन्हें सुकून तो दे दिया, मगर उनसे उनका बच्चा छीन लिया। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्या ये सौदा सही है? क्या एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे की कामयाबी उसकी खुशी से ज्यादा अहम हो सकती है? शायद नहीं। हमें लगता है कि ऑनेस्टी यानी सच्चाई एक बोझ है जो हम उन पर डाल देंगे, मगर सच तो ये है कि ऑनेस्टी कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत सा ब्रिज है, एक पुल है जो आप उन तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं। सोचिए, जब आप उन्हें बताते हैं कि आप परेशान हैं, तो आप उन्हें एक मौका देते हैं, वो फिर से माँ बाप बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो आज भी आपके काम आ सकते हैं। उनका तजुर्बा, उनकी हिकमत, उनकी दुआएं, वो सब आपके लिए रास्ता खोलने लगती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी उस परफेक्ट तस्वीर से उन्हें रूबरू करवाएंगे, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। कम ऑन, वो उस परफॉर्मेंस से इश्क कर रहे हैं जो आप हर रोज उनके लिए स्टेज पर दिखाते हैं, वीडियो कॉल्स पर दिखाते हैं। रिश्ते परफेक्शन से नहीं, वल्नरेबिलिटी से मजबूत होते हैं। जब तक आप उन्हें अपने जख्म नहीं दिखाएंगे ना, वो उन पर मरहम कैसे लगाएंगे? कभी सोचा है आपने? तो आज हमारा मेरी पहचान शो का ग्रैंड फिनाले है, इस सीजन का ग्रैंड फिनाले, और मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ। सक्सेस स्टोरी बनाना बंद कीजिए, एक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। कतर एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ मौके हैं, यहाँ तरक्की है, मगर यहाँ कभी कभी जब हम अपनी चीजों में जूझ जाते हैं, तो हम अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर इसे मत दबाइए, अपने घर वालों को अपने असली रंग दिखाइए। उनसे क्या होगा? उन्हें बताएंगे कि आप थके हैं, आपको रोना आ रहा है, या आपको उनके खाने की याद आ रही है। ये जो दूरी है ना रिश्तों की, वो कम होते नजर आएगी। याद रखिए, आपके माँ बाप ने आपको इस दुनिया में इसीलिए नहीं भेजा था कि आप एक गोल्डन रोबोट बन जाए जो सिर्फ पैसे और अच्छी खबरें ही सुनाते रहे। उन्होंने आपको इसीलिए भेजा ताकि आप अपनी जिंदगी बना सकें, और जिंदगी तभी बनती है जब उसमें सच हो। अपने माँ बाप को ये हक दीजिए कि वो आपकी तकलीफ में आपका साथ दे सके। उन्हें अपने बर्डन ऑफ पीस से आजाद कीजिए, और खुद को इस परफॉर्मेंस से भी कि हाँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बेटी हूँ, या मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बहू हूँ, और मैं सब कुछ परफेक्ट ही बताऊंगी। नहीं, आपके अपनों को अपना दर्द दिखाइए। तो चलो, फिर कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, और अपनी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। वेल, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो रोज वीडियो कॉल्स पर कहीं ना कहीं हम कर ही देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परफॉर्मेंस की कीमत आपकी बॉडी को भी चुकानी पड़ती है? क्योंकि मेंटल फटीग के साथ जब ये जो मास्क हमने लगाया होता है अपने चेहरे पे और उतरता है तो फिजिकल फटीग भी हो जाती है, और फिर क्या होता है, मेडिकल मास्क लगाने पड़ते हैं, यानी कि मेडिकल के चक्कर लगने लगते हैं। सोचिए, आप एक 30 मिनट की कॉल पर है, आपकी आवाज थोड़ी हाई पिच्ड हो जाती है, हाँ मम्मी सब बहुत मजे में चल रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं, आपका चेहरा एक मुस्कुराहट जैसे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, उफ। लेकिन ब्यूटीफुल लेडीज, साइंस कहती है कि जब आपका मन दुखी हो और आपका चेहरा झूठी मुस्कुराहट दिखाए ना, तो आपका ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। आपका बदन जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कॉल खत्म होते ही आपको बिल्कुल एकदम थकान सी महसूस होती है, आपके गले में एक ड्राइनेस आ जाती है, आपके कंधे एकदम कान तक चढ़ जाते हैं और आप टेंस हो जाते हैं कि ओ हो, अब मैं क्या ही करूं। सो ये हमारे जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो भी थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। आपका ब्रेन लगातार स्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहा है, क्योंकि उसे नकाब पहनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आप अपने माँ बाप को तो धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन आप अपने डीएनए को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है साइलेंट होना। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी थकान दिखा दी तो हम कमजोर हो गए। हम इतने खूबसूरत शहर में हैं, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में हैं, जहां हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर सक्सेस के साथ हमें थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया तो क्या वो बताना गलत है? हाँ, ये जो मास्क फटीग है ना, धीरे धीरे आपको अंदर से ना खोखला कर देगी। जब आप हर रोज एक झूठी पहचान के लिए जीते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप भूल जाते हैं कि असली आप कौन है, आपकी असली पहचान क्या है। आपके और आपके अपनों के बीच एक ऐसा गैप पैदा हो जाता है जिसे भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आगे आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। तो आज हमारे मेरी पहचान के ग्रैंड फिनाले में मैं चाहती हूँ कि जब आप कहें कि एवरीथिंग इज फाइन, तो वाकई में सब कुछ फाइन रहे, ना कि अंदर से आप टूटा हुआ महसूस करें, है कि नहीं। वेल, कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ जो डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि द मिरर साय, यानी कि पहला ऐसा टूल है जिसको कहते हैं द मिरर साय। और मैं चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ भी हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं या घर में हैं, मेरे साथ ये चीज़ कर लो। क्या, अगली बार जब वो फैमिली का कॉल आए तो एक्सेप्ट करने से पहले शीशे के सामने ना खड़े हो जाओ, दो मिनट के लिए फोन को साइड में रख के अपने आप को देखो, उन आंखों में देखो कि थकी हुई हैं या फिर आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा रेस्ट करना है, क्या हो क्या रहा है, अपने आप को पहले थोड़ा ऑब्जर्व करो और एक बहुत गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि आपका जो स्टमक है वो फूल जाए, और फिर उसे अपने मुंह से जोर से हा की आवाज करते हुए बाहर निकालो, फिर से इसे करो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी हल्के रिलैक्स मोड में जाती है। अपने जबड़े को लूज छोड़ो और शीशे में देखकर खुद से कहो, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ काफी हूँ। ये साय आपके नर्वस सिस्टम को बताता है कि सेफ्टी है। ये आपके मास्क को थोड़ा ढीला कर देता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तभी आप दूसरों के सामने थोड़ा सा सच रखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ये आपका अपने आप से एक वादा है कि मैंने कम से कम अपने लिए इनविजिबल होना तो छोड़ दिया है कि नहीं। मतलब जो है जैसे हैं वैसे हम अपने अपनों के साथ हैं। अब आते हैं उस कॉल पर। मैं जानती हूँ कि आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहते, दिस आई नो वेरी वेल, ये सेम हाल हमारा भी है। उन्हें क्योंकि कभी कभी कुछ जो पेरेंट्स हैं वो हार्ट पेशेंट होते हैं, जैसे कि मेरे फादर भी हार्ट पेशेंट हैं, और इस डर के चक्कर में कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए, मैं समझती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें भी उनको पहले नहीं बताती थी, इसीलिए हर चीज़ छुपाना ज़रूरी लगने लगा। लेकिन 100% झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें द ट्रूथ सैंडविच का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड और बीच में फिलिंग्स होती हैं, आपको भी वही करना है। पहली लेयर गुड न्यूज़, अपने पेरेंट्स को जब भी कॉल करते हो या उनका कॉल आता है तो मम्मी आज बच्चों का रिजल्ट आया है, वो बहुत खुश है। स्टार्ट विथ अ गुड न्यूज़। बीच के लेयर में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाओ अपना, लेकिन मम्मी सच बताऊं तो इस हफ्ते मैं थोड़ा ओवरवेल्म महसूस कर रही हूं, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी थकान हो गई है। यू हैव टू टेल, है ना, आपको रियल होना पड़ेगा। और आखिरी लेयर जो होगी वो एक पॉजिटिव नोट पर एंड होगी। बस आज जल्दी सोने की कोशिश करूंगी, कल तक थोड़ा सा बेहतर लगेगा, आप बस दुआ कीजिए। यू नो, पता है इससे क्या होता है, इससे आपका प्रेशर वेल्व जो है वो खुल जाता है। आपने उन्हें क्राइसिस में नहीं डाला, मगर उन्हें अपनी हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया। इससे उन्हें एक मौका मिलता है फिर से माँ बाप बनने का। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को, उनके बेटे को आज भी उनकी ज़रूरत है, उनकी तसल्ली की, उनके कंफर्ट की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि उनकी दुआएं आज भी आपके लिए शील्ड की तरह काम कर रही हैं। लेट देम बी पेरेंट्स अगेन। उन्हें उनके इस हक से ना महरूम मत कीजिए। तो आप समझे ये ट्रुथ सैंडविच कैसे इस्तेमाल करना है? आपको लगेगा कि आपने अपने दिल का जो बोझ है ना थोड़ा सा उनके साथ शेयर कर लिया है, पर उन पर डाला नहीं है। जिंदगी जो है एवरीथिंग इज फाइन के बोर्ड को लगाने के लिए नहीं होती है, जिंदगी तो उन रिश्तों को निभाने के लिए होती है जहाँ हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्टेड हो, या यूं कहें वैसे ही कबूल हो। पर मैं हूँ अमिता आपके साथ और मेरी पहचान में आज हमारी ये बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम वंस अगेन, आप सुन रहे हैं एफएम 107 पर मेरी पहचान आपकी अमिता के साथ। अब हम उस खास सेगमेंट पर कदम रखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं छुपी हुई मैं। आज की छुपी हुई कोई एक औरत नहीं है, वो हम सब हैं जो इस वक्त कतर की चमकती सड़कों पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। सोचिए, आप अभी अभी सुपरमार्केट से निकली हैं, हाथ में भरे हुए बैग्स हैं, बच्चे शायद पीछे की सीट पर सो गए हैं। आप अपने गाड़ी के एसी को फुल करती हैं बाहर की गर्मी से बचने के लिए, लेकिन जैसे ही आप गियर डालती हैं, अचानक आपकी आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर एक और आप वहां सुपरमार्केट की पार्किंग में अपनी शाइनी एसयूवी में बैठकर रोने लगती हैं। क्यों? आपको खुद नहीं पता, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, किसी ने बुरा भी नहीं कहा है, मगर वो जो अंदर से एक हैवीनेस हो रहा है ना, वो फट जाता है। आप स्टेयरिंग व्हील पर सर रख लेती हैं और दो मिनट बाद अपना चेहरा साफ करती हैं, थोड़ा सा पाउडर लगाती हैं, लाली लगाती हैं, अपने आप को सही करती हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी, कॉल आ जाएगी। ओ हो, यही पे तो आके दुनिया अटक जाती है। और ये है वो छुपी हुई मैं जो हर रोज अपने दर्द को बैक सीट पर बैठा कर ड्राइव कर रही होती है। या फिर सोचिए, आप मुशरिफ डाउनटाउन के किसी बहुत ही एस्थेटिक और खूबसूरत कैफे में बैठी हैं, आपके हाथ में एक महंगा सा कॉफी का कप है और चारों तरफ लोग स्टाइलिश कपड़ों में हसीन बातें कर रहे हैं। आप कतर के सबसे पॉश इलाके में सबसे बेहतरीन माहौल में कॉफी पीने के लिए बैठी हैं, लेकिन उस भीड़ में बैठकर भी ना आपको अचानक लगता है कि एक फ्रॉड है। क्यों? आपको लगता है कि ये लग्जरी आपके चारों तरफ है, ये आपकी नहीं है, आप इसमें फिट नहीं बैठ रही हैं। उफ, लोग आपके डिजाइनर बैग देख रहे हैं, आपकी स्माइल देख रहे हैं, मगर आपका दुख नहीं देख पा रहे। उफ, आपको लगता है कि आप एक घोस्ट की तरह अपनी ही जिंदगी में घूम रही हैं। डिनर पार्टीज हो, स्कूल इवेंट्स हो, या दोस्तों के साथ ब्रंच हो, आप वहां होती ही नहीं है। आपने एक ऐसा मास्क पहन लिया होता है जो बड़ा भारी होता है कि नहीं? और आप सोचती हैं कि अगर आपने बता दिया कि आपका दिल बहुत दुखी है या किसी पेन से आप गुजर रही हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि इसके पास तो सब कुछ है, फिर ये दुखी क्यों है कि नहीं? ये सवाल जनाब सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना कि पॉइजन है, कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कंप्लेन करने का कोई हक ही नहीं है। कतर में हमें हर फैसिलिटी मिली है, सेफ स्ट्रीट्स हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ है, और यही कंफर्ट हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारे अपने भी स्ट्रगल्स हैं और उनका जिक्र हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ इतने अच्छे से रह रहे हैं और अगर हमने बता दिया कि भाई देखो हमारे काम के चक्कर में है या किसी भी चक्कर में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है या हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं, तो फिर हमें लोग कहेंगे कि हम बहुत ही अनग्रेटफुल हैं या ना शुक्रे हैं। इसलिए आप द स्ट्रॉन्ग वन बन जाते हैं, फैमिली की एंकर, बच्चों की सुपर मॉम, हस्बैंड की सुपर सिस्टम, ओफ, और माँ बाप का सक्सेस सिंबल। आप थक गई हैं, लगता नहीं है थोड़ा बहुत कि आप ये स्ट्रॉन्ग वन का जो टैग है ना, धो धो कर पहन लेती हैं, है कि नहीं? आपको डर लगता है कि अगर आपने एक छोटा सा क्रैक भी दिखा दिया तो ये जो परफेक्शन की जिंदगी है ये बिखर जाएगी। लेकिन याद रखिए, जो हीरा होता है ना, डायमंड, भी ये स्ट्रेस से ही बनता है, ये सच है, मगर एक हीरे को भी चमकने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। तो अंधेरे में हीरा भी सिर्फ एक काला पत्थर ही लगता है। So you don't have to be unbreakable. आपका टूटना, आपका रोना, आपका कमजोर महसूस करना आपको इंसान बनाता है, कमजोर नहीं। इसे जरूर याद रखें, बिकॉज यही आजकल के ट्रेंड में होते जा रहा है। अब जैसे जैसे हम इस सीजन के आखिरी मोड़ पर आ गए हैं, तो हमारी बात उतनी ही गहरी हो गई है। आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी गुजारिश करना चाहती हूँ। आज वक्त आ गया है कि आप अपने परिवार की खुशियों के डायरेक्टर के ओहदे से रिजाइन कर दें और इस इस्तीफे को देने के बाद थोड़ा सुकून में आए। बहुत हो गया सीन डायरेक्ट करना, बहुत हो गया कैमरा एंगल सेट करना ताकि सब बिल्कुल हंसता खेलता दिखाई दे, बहुत हो गया स्क्रिप्ट एडिट करना कि भाई मैं तो दुखी नहीं हूँ, ये लाइन मुझे नहीं कहनी। स्टॉप डायरेक्टिंग द मूवी ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए बस उनकी बेटी बन जाए, बस उनका बेटा बन जाए। आपके माँ बाप ना जो कि कतर से दूर हैं, वो बहुत अच्छा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें अच्छी खबर के साथ अपना स्ट्रगल भी बताएं। उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि उनकी बेटी कैसी है अभी असलियत में। उन्हें ये जानने का हक है कि उसके बुरे दिन भी होते हैं। पता है जब आप उनसे अपने दुख दर्द शेयर करते हैं तो आप उन्हें जिंदा महसूस कराते हैं। हाँ जी, मैंने बहुत गहरी लाइन इस वक्त आपके सामने रख दी है, जिंदा महसूस कराते हैं। उन्हें लगता है कि वो आज भी आपका साया बन सकते हैं। उन्हें बताइए कि आपको आज भी अपनी माँ की आवाज की उतनी ही जरूरत है जितनी बचपन में चोट लगने पर होती थी। वही वल्नरेबिलिटी, वही रियलिटी और वही आप है कि नहीं। देखिए जनाब, आज ये जो मुद्दा था ना परफॉर्मेंस का, ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये काम कर ही रहे होते हैं और मैंने तो किया है, तो मैंने कहा कि चलो जो चीज मेरा एक्सपीरियंस है वो शायद औरों का भी एक्सपीरियंस हो और आज आपसे शेयर करना बनता है। तो कुछ बातें हैं जिसका जिक्र आपसे करना जरूरी है कि मैं ये नहीं कहती कि आज ही कॉल करके सब कुछ बोल दीजिए, ठीक है, बस अगली बार जब घर कॉल करें तो 10% ज्यादा थोड़ा सच बोलें और सच्चे होने की कोशिश करें। अगर उन्होंने पूछा कैसे हो तो सब ठीक है कहने के बजाय कहिए कि मम्मी सब ठीक है मगर आज थोड़ा मन उदास है। मतलब बातों में उन्हें जताएं कि जो आपके साथ हो रहा है, बस इतना ही। सिर्फ 10% या 10% अगर आप सच बोलेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आप वो 10% सच बोलने पर आपका जो बोझ है ना वो 90% यानी 90% तक हल्का हो जाता है। एक साथ रोया गाया या एक आंसू उस झूठी मुस्कुराहट से कहीं ज्यादा हीलिंग होता है। रिश्तों में ना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एहसास की जरूरत होती है। आज से ये परफॉर्मेंस बंद कर दो और असलियत शुरू कर दो। तो ब्यूटीफुल लेडीज, मेरी पहचान का ये पहला सीजन आज खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दिल से हमारा साथ दिया और अपनी गाड़ियों के या अपने घरों के रेडियो में रेडियो सेट्स के जरिए मुझे सुना आपकी अमिता को। तो मेरी पहचान ये खासम खास शो जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए, बस याद रखिए कि आपके

और आपको हमारा शो मेरी पहचान कैसा लगा, कुछ कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, सो 666-22-107 666-22-107 पर आप शेयर कर सकते हैं, या FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी अपने दिल की बात कह सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी अमिता को भी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले सीजन में। तब तक के लिए क्या करना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपनी पहचान को कभी नहीं गंवाना है। और इसी के साथ अब मुझे दे दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं? वो कौन से काम हैं जो एक शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं? जानना चाहोगे?
2: जानना चाहो।
1: अपने मैदाने अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का सीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम, इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालने। सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: कहा जाता है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। हाँ जनाब, ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत देती है, बहुत ताकत देती है कि जो हमारा मन है यानी कि हमारा जो माइंड है वो मास्टर माइंड है। मतलब वो एक ऐसा खजाने का बॉक्स है कि अगर वहां हमने ये सोच लिया कि हमें जीत हासिल करनी है तो दुनिया में कोई हमें जीतने से रोक नहीं सकता, लेकिन डिसीजन हमें लेना होता है कि नहीं? बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लेकर आई हूँ आपके लिए अनटोल्ड स्टोरीज। और आज जनाब हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा प्लानेट, हमारा एनवायरनमेंट और वो बेजुबान साथी जो इस धरती को हमारे साथ शेयर करते हैं। कभी कभी इनकी लाचारी देखकर हमें ये भी लगता है कि काश हम इनके लिए कुछ कर सकते। वेल, इस मुद्दे पर तो हमने हमेशा सोचा है, लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो सिर्फ सोचती ही नहीं बल्कि एक्चुअली वो काम भी करती है। वो जमीन पर उतर कर चैलेंज फेस करती है और एक रियल डिफरेंस क्रिएट करती है। तो मैं बात कर रही हूँ बहुत ही कमाल की शख्सियत डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम की।
4: आई एम डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम,
3: जो कि फाउंडर है अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन की। ये एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे डेडिकेशन के साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनिमल वेलफेयर और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। चाहे वो मुश्किल में फंसे जानवरों को रेस्क्यू करना हो, उनके राइट्स के लिए आवाज उठाना हो, या फिर हम सबको एनवायरमेंट के प्रति कॉन्शियस बनाने के लिए अवेयरनेस फैलाना हो, डॉक्टर सरिता और उनकी टीम हमेशा इन कामों को करने में आगे रहती है। उनका पैशन, उनकी हिम्मत और उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस हर एक लिविंग बीइंग के लिए ट्रूली रिमार्केबल है। तो शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर इस थॉट की, इस अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई, कौन सा वो एक इंसिडेंट था जिसे देखकर डॉक्टर सरिता को लगा कि मुझे कुछ करना होगा। बस कुछ ही देर में बताएंगे, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का और एफएम 107 पर मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज अनटोल्ड स्टोरीज में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम की तो कैसे उनके दिल में ये वाइल्ड लाइफ को लेकर ख्याल आया कि भाई वाइल्ड लाइफ को इस एंटायर एनवायरनमेंट को सेव करना है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है कंजर्व करना उन्हें प्रोटेक्ट करना है तो इंसिडेंट्स कुछ ऐसा हुआ वो मई का महीना था मतलब बिल्कुल झुलसा देने वाली दोपहर इतना तेज सूरज बिल्कुल सर पर वो जो गर्मी होती है ना मध्य प्रदेश जो कि इंडिया का एक बड़ा ही कमाल का स्टेट है वहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व है और उस जंगल में तेजी से जैसे लग रहा था कि आग बरस रही हो इतनी तेज गर्मी थी वहां पर डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम गई हुई थी और आम तौर पर देखा जाए तो जंगल बड़े हरे भरे होते हैं जो हरी भरी रहने वाली झाड़ियां थी वो भी सूख गई थी और बेजान सी लग रही थी तभी उनकी नजर पड़ी एक यंग टाइग्रेस पर एक जवान शेरनी वो शेरनी क्या कर रही थी वो शेरनी किसी का शिकार नहीं कर रही थी लेकिन खुद की जान बचाने के लिए एक छोटे से गड्ढे में भरे हुए पानी को पीने की कोशिश कर रही थी कोशिश करते करते जब डॉक्टर सुब्रमण्यम ने देखा उनको कि वो बहुत स्ट्रगल कर रही है तो फिर अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो उस गड्ढे में ही बैठ गई किसी तरह एडजस्ट करके उनकी आंखों में उस सूखे बेजान जंगल में सर्वाइव करने का स्ट्रगल साफ दिख रहा था ये देख कर डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम का दिल दहल गया वो कहती है कि उस शेरनी को इस अवस्था में या इस फेज में देखकर स्थिति में देखकर वो बहुत परेशान हुई और जब उन्होंने देखा कि उसके पास पानी पीने को नहीं है तो उन्हें लगा कि ये कितनी मजबूर स्थिति है
2: Once when we were in Kanha National Park, which is a tiger sanctuary in Madhya Pradesh, I saw a young tigress come to a small puddle in the summer month. It was May. And okay. I realized that all she had was that puddle to drink water. And tigers like to soak themselves in water. I think drinking water was the most basic need for doing wildlife conservation. If I can ensure that the animals have water in the forest and don't need to travel towards human settlements, especially in summer, then I have mitigated a lot of human-wildlife conflict situation that happens. See, many people feel that if there's a river flowing, why are you giving water? There are many small animals which can't come to the river. They can't travel long distances, whether it's birds, small birds or smaller, lesser animals, they can't reach the water body, which is a perennial one. So we try and provide different water bodies in smaller sources for them.
1: वैसे वो कहते हैं ना कि हम गर्मियों में अपने घर के बाहर पंछियों के लिए चिड़ियों के लिए कटोरी में पानी रख देते हैं या फिर एक नांद होती है या गमला होता है या कोई बर्तन होता है जिसमें हम पानी रखते हैं ताकि जितने भी पंछी हैं वो उड़ते उड़ते आके पानी वगैरह पी के जा सके लेकिन उन जंगलों का क्या जहाँ पर पानी की कमी के बड़े इश्यूज हैं सीरियसली सोचने वाला विषय था उस शेरनी का दर्द एक्चुअली डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम महसूस कर सकती थी उनकी वो खामोश पुकार जो उन्हें कह रही थी कि अब एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की जरूरत है और इसका असली एहसास उन्हें उस वक्त हुआ और वो कहती हैं कि ये जो टाइग्रेस वाला सीन था ये कोई ऐसा ही सीन नहीं था बट ये वो मोमेंट था जहां पर मुझे अर्जेंट कॉल टू एक्शन लेना था एक तरीका बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी को रिस्टोर करने का तो फिर क्या हुआ फिर डॉक्टर सरिता और उनके हस्बैंड डॉक्टर पीवी सुब्रमण्यम दोनों ने डिसाइड किया जो कि सीजन्ड डेंटल सर्जन्स हैं कि अब हम वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करेंगे एंड दे बिकेम वाइल्ड लाइफ क्रुसेडर्स हाँ जनाब और उन्होंने 2017 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन की शुरुआत की
3: For the last two decades and more, we have traveled the length and breadth of the jungles of India, just Sarita and I and our cameras. Every photograph that we take brings us closer to nature.
2: Soon we started realizing the hardships faced by our wildlife.
3: How long do you think someone can go without water? A day? 2 days? These animals actually go without water for days on end.
2: That's when it hurt me the most and I decided to do something about it.
3: We set up an NGO. It's called the Earth Brigade Foundation. We use photographs to raise funds. Through these funds, we have started installing solar-operated pumps in the forest to provide drinking water for wildlife.
1: जहां पर उनका ये विजन था कि हम वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे और फिर इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन की शुरुआत की और वो था सोलर वाटर पंप्स। तो मिस्टर एंड मिसेस सुब्रमण्यम ने लगभग 170 सोलर वाटर पंप्स के इंस्टॉलेशन किए 25 जंगलों में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो कि इंडिया के 7 स्टेट्स में फैले हुए हैं, जिनमें से 13 टाइगर रिजर्व्स थे, जैसे कि बांदीपुर का टाइगर रिजर्व, कर्नाटका, फिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये मुंबई बेस्ड कपल जो है ये हमेशा से वाइल्ड लाइफ से काफ़ी फैसिनेटेड रहे हैं और डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम का कहना है कि मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा से ही बड़े शौकीन बर्ड वॉचर्स रहे हैं। हम देश भर में कोने कोने में बहुत ट्रैवल करते हैं।
3: For the last two decades and more, we have traveled the length and breadth of the jungles of India, just Sarita and I and our cameras. Every photograph that we take brings us closer to nature.
1: हम वाइल्ड लाइफ और उनके रहने की जगह को सपोर्ट करने के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन

0: मुझे ये क्लियर हो गया है कि मुझे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक रियल इम्पैक्ट लाने की जरूरत है. सीधे वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट की मदद करके वो जिंदगी की खुशियां जीना चाहती हैं. वैसे आम तौर पर एनजीओस की बात करें तो वो अवेयरनेस बढ़ाने का कम्युनिटी में काम करते हैं, और उम्मीद की जाती है कि जानकर जब लोग मिलजुल कर रहने वाली जनता जो है वो वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए काम करेगी तो सब कुछ बेहतर होगा. हालांकि डॉक्टर सुब्रमण्यम का मानना है कि ये जो अप्रोच है ये कई दशक पुरानी है और आज की दुनिया में ना थोड़ा सा आउटडेटेड लगती है. उनका मानना है कि हम में से बहुत से लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं. कैसे? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो हार्मफुल एक्टिविटीज में लग जाते हैं, जैसे कि जानवरों को नुकसान पहुंचाना, वाइल्ड लाइफ के जो लॉज हैं उनको तोड़ देना, जंगलों में आग लगाना, जिसके कई सारे रेपरकशंस होते हैं जिसकी वजह से जो रियल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है. इसीलिए अगर वाकई में कुछ बदलाव लाना है तो डायरेक्ट अप्रोच रखना जरूरी है. कान्हा टाइगर रिजर्व में जब उन्हें एक टाइग्रेस दिखी तो उनका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर एंड मिसेस यानी कि डॉक्टर सरिता एंड डॉक्टर पीवी सुब्रमण्यम दोनों ने मिलकर पानी की कमी का एहसास किया और उसके बाद इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया. रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने का एम रखा कि अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ को सेव किया जा सकता है.
1: बिकॉज आई रियलाइज आवर डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल टैंकर्स फॉर प्रोवाइडिंग वाटर वाज वेरी हाई, सो आई वांटेड टू यूज a more sustainable, resourceful way of providing and consistent way of providing water to the wildlife beyond the human dependence, where unless and until the tanker came, filled water in small water holes, it was not achieving enough. So that's where the solar pump sets helped.
0: And solar powered pumps provide karke jo jungle ke andar bore wells ya saal bhar pani rehne wali water bodies mein duboye jate hain. सोलार एनर्जी से पानी निकाला जाता है और अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के लिए अलग अलग वाटर बॉडीज तक पहुंचाया जाता है. इससे ये इंश्योर होता है कि अलग अलग जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही पानी मिल पाए. अब ये जो प्रोसेस था जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था, काफी कठिन था, जिसके लिए दूर दराज और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी और अक्सर चैलेंजिंग कंडीशंस में इनको काम करना पड़ता था. हर इंस्टॉलेशन सिर्फ बोरवेल में पंप लगाना नहीं था, कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि मगर मच्छों से भरे वाटर बॉडीज में या किसी झरने की सीधी ढलान के नीचे भी काम करना पड़ता था. बाप रे बाप. इसमें डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शामिल थी ताकि पानी मल्टीपल वाटर बॉडीज तक पहुंचे, जिससे कई तरह के स्पीशीज को फायदा मिल सके. फिर चाहे वो हर बार दिखने वाले हिरन हो या फिर एक्सक्लूसिव टाइगर्स हो. तो देखा जनाब कि डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम और उनके हस्बैंड दोनों ने मिलकर जो ये मेहनत का काम किया इतना आसान नहीं था. एंड डेफिनेटली इस चैलेंजिंग पार्ट को भी पूरा करते हुए जब वो आगे आई तो फिर क्या हुआ, चलिए आपसे शेयर करेंगे कुछ ही देर में. कहीं ना जाए, बने रहे हमारे साथ सुनते हुए अनटोल्ड स्टोरीज सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन बहुत-बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज अनटोल्ड स्टोरीज में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम की जो कि बड़ी कमाल की शख्सियत हैं और अभी तक हमने जाना कि कैसे इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक कमाल की शुरुआत की जहां पर वाइल्ड लाइफ को इन्होंने प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का बेड़ा उठाया बल डॉक्टर सरिता बताती हैं कि सिर्फ प्यास से फौरन राहत मिलने के अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन आया इन सब के एफर्ट से वो कमाल का था
2: इन द फॉरेस्ट वाइल It is true that there are many, contrary to popular perception, there are many parts of our forest which are either seasonally dry or are inherently dry. They are arid patches in the forest itself. There are many, many parts which don't have of a forest which don't have a perennial water source. You know, so the dependence earlier would be for these animals to migrate from, let's say, the area where there is no water. To in search of water, go to another part. So another part of the forest or another forest completely, which is why, again, in my effort to mitigate animal human-animal conflict, that I provide the solar pump sets.
1: अब जब ये solar water pumps install हुए, तो इनके चलते जो हरियाली थी आसपास में जंगल के इलाके में वो बढ़ने लगी, जिसके चलते जो शाकाहारी जानवर थे, यानी कि herbivores, वो भी attract हुए. और उनके कारण जो शिकारी जानवर थे यानी कि प्रीडेटर पॉपुलेशन उन्हें भी सपोर्ट मिला तो ये सब जो हो रहा था ये उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही हो रहा था उनकी टेरिटरीज के अंदर हो रहा था कि कहीं बाहर जाने की इन जानवरों को जरूरत नहीं पड़ी और ये डेवलपमेंट देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जो नेचर है जो प्रकृति है वो सब्र से इंतजार कर रही

0: थी एक मददगार हाथ का जो बैलेंस को वापस ठीक कर दे। इतना ही इंस्पायरिंग इन सोलर इंस्टॉलेशंस का रिपल इफेक्ट भी है। लोकल स्टेक होल्डर्स को भी इस काम से काफी फायदा होता है क्योंकि कई वाटर लाइंस एंटी पोचिंग आउटपोस्ट तक पहुंचाई जाती है, जिससे फॉरेस्ट गार्ड को पानी के लिए हफ्ते में की जाने वाली ट्रैक्स जो होती है ना, उससे छुटकारा मिल जाता है और वो वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा, उनकी सेफ गार्डिंग पर पूरा फोकस कर पाते हैं। वैसे ये जो इनोवेशन हुआ, ये सिर्फ इकोलॉजिकल ही नहीं था, इसका मकसद इंसानों और जानवरों के बीच के झगड़े को कम करना था, जो कि हमेशा बनी रहने वाली रियलिटी है, जो कम्युनिटीज और वाइल्ड स्पीशीज दोनों के लिए खतरा थी। वेल, डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम इसमें कहती हैं कि सोलार पंप्स इंस्टॉल करके रिजर्व्स के अलग अलग जोन्स में लगातार पानी प्रोवाइड किया जा सकता था, जिससे ये इंश्योर हो गया कि जानवरों को पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों में भटकना ना पड़े। वाओ, वेरी वेल सेड। इनफैक्ट पहले डीजल पीने वाले, शोर मचाने वाले वाटर टैंकर्स इन यहाँ पर इन रिजर्व्स में जाते थे, अब वो चुप हो गए हैं। हाँ, अब इन रिजर्व्स के ऊपर का जो आसमान भी है ना, वो भी थोड़ा सांस लेता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, बिकॉज कार्बन इमिशन से भी राहत मिल गई है। वाह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी खुश हो गए हैं कि उनकी महंगे और पॉल्यूशन फैलाने वाले तरीकों पर जो निर्भरता है वो कम हो गई है और वो बेहतर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के तरीके एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। वेल, कॉरपोरेशन से, CSR एक्टिविटीज से और दान देने वालों से रेज किए गए जो फंड्स हैं, उनकी मदद से डॉक्टर सरिता और उनकी टीम आगे का रास्ता बनाते जा रहे हैं। हाँ जी, और वो मेंशन करती है कि एक फॉरेस्ट एरिया में एक सोलार पावर्ड वाटर पंप को सपोर्ट करने में उन्हें लगभग 5,00,000 रुपए का खर्चा आता है। वैसे दूर दराज और अक्सर पहुंच से बाहर इलाकों में काम करने के चैलेंजेस के बावजूद, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम, मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर सुब्रमण्यम, ये जो कपल है, इन्होंने लगातार क्लीन एनर्जी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के सीमलेस इंटीग्रेशन की वकालत, या यूं कहें एडवोकेसी की है, और आगे भी करते रहेंगे। वेल, इनके एफर्ट्स को लेकर इनको कई सारे अवार्ड्स मिले, कई सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें से एक इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के ऑलिव क्राउन अवार्ड्स थे, जहां पर उन्हें ग्रीन एनजीओ ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया और टाइम्स नाउ अमेजिंग इंडियन अवार्ड एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में भी शामिल था। और इन सारी चीजों के चलते एक बात जो डॉक्टर सरिता कहती है कि कंजर्वेशन सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, जमीन का फ्यूचर थामने वाले हाथ बहुत सारे हैं। जब आम नागरिक, या यूं कहें आम सिटीजन, हल्के से लेकिन लगातार कुदरत की देन के रखवाले बन जाते हैं, तब चेंज मेकर्स पैदा होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक शख्स अपनी आवाज उठाए और वो कोई इनिशिएटिव ले, तो डेफिनेटली उस अच्छे इनिशिएटिव में और भी कई अच्छे लोग जुड़ जाते हैं।
1: Every exhibition we held, every photograph that was picked up by our donor, all the donations that came to our NGO, it's a testament to the fact that photography can be used as a tool for change.
2: I'm sure there are many of you out there who are as committed. And Yes Bank Natural Capital Awards 2018 supports the same.
1: If preservation, restoration and growth of our natural capital is your priority, then kindly apply for the awards.
2: Submit your best photographs and these awards will help take this cause to millions of people.
0: So ye thi kahani Dr. Sarita Subramanyam ki, jinhone wild life mein ek revolution laya aur puri koshish ki ki unhe conserve kiya ja sake, preserve kiya ja sake, protect किया जा सके। सो आज की अनटोल्ड स्टोरी आपको कैसी लगी, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जहन में भी कोई फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हैं, तो 666-22-107 हमारा नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और शो के बाद आप हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़कर, और अपनी आरजी अमिता को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी अनटोल्ड स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है, कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट. पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही. सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर दिल से देसी.
2: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और दुश्मन भी ऐसा जिसे हम नहीं देख सकते। कुरान में अल्लाह सुबहानहु ताला ने फरमाया, इन्नहु यराकुम हुवा वकबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, यानी वो और उसका लश्कर हमें देखते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि उसके शर से हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाए। सूरतुल मुमिनून में इस दुआ का जिक्र आया है, रब्बि अऊजु बिका मिन हमजातिश शयातीन واعوذ بك ربي ان يحضرون ربي اعوذ بك اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں من همزات الشياطين شیطان کے وسوسوں سے واعوذ بك ربي ان يحضرون اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے کسی بھی کام میں شامل نہ ہوں کھانے کے وقت इबादत के वक्त नींद के वक्त हर हाल में वो हमारे साथ शामिल ना हो। सामीन, इस दुआ के कई अहम असबाक हैं जिनमें एक सबक यह है कि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह

0: के हाथ में है। कोई और हमें शैतान से नहीं बचा सकता। शैतान इंसान का मुसलसल दुश्मन है जो हर हाल और हर मौके पर उसको बहकाने की कोशिश करता है। और जब बंदा इस दुआ को अपनी आदत बना ले तो हर शर से महफूज और हर खैर के करीब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस शख्स के लिए जो नींद से घबरा उठे उसके लिए इस दुआ की तलकीन की है, أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون। तो ये आखिरी जो जुमला वही है जिसका जिक्र हमने आज किया है। तो सिर्फ आज की दुआ में हम उसी जुज का जिक्र करेंगे, رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون। तो समीन ये थी हमारी आज की दुआ, इंशाल्लाह कल मजीद एक नई दुआ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मा सलामा।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti।
2: क्या आपने सोचा है कभी कि छोटी छोटी जो डेली हैबिट होती है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने में मदद करती है। हेल्थ कोई बहुत बड़ा रिजोल्यूशन नहीं होता है कि चलो नया साल स्टार्ट हो चुका है, इस साल से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। जिस मोमेंट भी आपको लगता है कि नाउ इज द हाई टाइम, आपको तुरंत अपनी हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट करना होगा। एंड ये सब चीजें छोटी छोटी डेली हैबिट से बनती है। जैसे कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं? ओके, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि 4 से 6 लीटर पिए, पर मैं हमेशा ये जरूर कहूंगी कि जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जब जब आपका शरीर पानी मांगता है आपको तब तब पानी पीना चाहिए। और उसका भी एक तरीका होता है, पानी को एक साथ अपने गले में नहीं डालना है बल्कि सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीना है। और बस इस साल आपको यही सारे छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेने हैं कि सबसे पहली चीज आपको पानी ढेर सारा पीना है क्योंकि इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ये मैंने खुद के लाइफ में भी नोटिस किया है। सेकेंडली, कभी भी अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, माइग्रेन हो रहा है या लाइफ में और कोई भी टेंशन है, तो बस ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीदिंग आपको अच्छे से करनी है। वो जैकी श्रॉफ का एक डायलॉग था, आपने सुना ही होगा, सांस लो, सांस लेना मत छोड़ो। सो अपनी ब्रेथ को काउंट कीजिए कि क्या आप सही में प्रॉपरली सांस ले रहे हैं। इस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या मेरी आवाज कहीं भी सुन रहे हैं तो एक बार जोर से सांस ले, ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट, यू विल फील बेटर। आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना होगा। आप लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कितना भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आपकी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। दिन भर में 18 घंटों का काम करके हम अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि बाकी के बचे हुए 6 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमें आराम करना चाहिए। तभी नए सेल्स बनेंगे, तभी दिमाग अच्छे से चलेगा। और अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है इज बिकॉज आपकी स्लीप साइकिल पुअर है। मेक श्योर करे कि आप एक स्ट्रेच में एटलीस्ट 6 घंटा सो पाए। एंड ये टाइम भी मैनेजेबल हो सकता है इफ यू रियली वॉन्ट टू डू इट। अगर किसी की नाइट ड्यूटी है तो वो डे टाइम पे आर्स कंप्लीट करे। अगर कोई डे टाइम पे अपनी ड्यूटी करता है तो वो अपने नाइट आर्स कंप्लीट करे। एंड जितने भी न्यू मॉम्स है, आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम्स, बट अगर आपके साथ आपके घर वाले रहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल होता है वो आपकी बॉडी को रेस्ट करने दे, सो दैट जब भी आप अपने बेबी को दोबारा उठाए उसी एनर्जी उसी चार्म के साथ उठाए विद ऑल द हैप्पीनेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर कीजिए कि आप रोज 10 मिनट का वॉक कर रहे हैं फॉर डाइजेशन। इससे सिर्फ आपका खाना ही नहीं पचेगा बल्कि आपका मूड और फोकस दोनों इंप्रूव होगा।
1: योर हेल्थ मैटर ओनली ऑन FM 107।

0: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी सकाफत में मेहमान नवाजी सिर्फ एक दस्तूर नहीं बल्कि दिल की खुशी और अच्छे अखलाक का इजहार है। जब कोई मेहमान घर आता है तो उसका इस्तकबाल, मुस्कुराहट, सलाम और खुलूस के साथ किया जाता है। मेजबान की कोशिश होती है कि मेहमान अपने आप को आराम, इज्जत और अपनाइत के माहौल में महसूस करे। कतरी मेहमान नवाजी का पहला कदम अच्छे अंदाज से मुलाकात है। मेहमान आए तो सलाम कहना, खैरियत पूछना और उन्हें खुशी से बैठने की जगह देना अहम समझा जाता है। ये छोटे छोटे रवैये मुलाकात का पहला असर बेहतर बनाते हैं। घर में मेहमान के लिए मजलिस या आराम दे जगह का इंतजाम किया जाता है। मेजबान इस बात का ख्याल रखता है कि मेहमान को किसी किस्म की परेशानी ना हो। बैठक की मुनासबत, माहौल की सफाई और सुकून सब मिलकर मेहमान के लिए खुशगवार तजुर्बा पैदा करते हैं। कहवा और खजूर मेहमान नवाजी की मशहूर अलामत हैं। अरबिक कहवा आम तौर पर छोटे प्यालों में पेश किया जाता है। मेहमान को कहवा पेश करते हुए मेजबान उसकी पसंद और राहत का भी ख्याल रखता है। खजूर का मीठा जायका और कहवे की खुशबू मुलाकात को और दिलकश बना देती है। कहवा पेश करने का अमल एक बहुत ही सलीके से जुड़ा होता है। मेहमान को पहले कहवा देना, प्याले को मुनासिब अंदाज से पेश करना और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद पेशकश करना भी अच्छी मेज़बानी का हिस्सा है। मेहमान अगर मज़ीद कहवा ना लेना चाहे तो प्याला हल्का सा हिला कर या अदब से मना कर सकता है। मेज़बान का रवैया बेहतरीन मेहमान नवाजी सिर्फ खाने और मशरूब की कसरत का नाम नहीं, असल चीज मेजबान का रवैया होता है। खुश दिली से बात करना, मेहमान को तवज्जो देना और उसकी बात दिल लगा कर सुनना बहुत अहमियत रखता है। दावत के दौरान मेजबान अपने मेहमानों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करता है। अगर मेहमान पहली दफ़ा आया हो तो उसे माहौल से वाकिफ कराना, उसकी ज़रूरत पूछना भी हुस्न सुलूक है। कतरी मेहमान नवाजी में सादगी को भी पसंद किया जाता है। कभी एक प्याला कहवा और चंद खजूरें भी बहुत खूबसूरत पेशकश बन सकती हैं। खुलूस के साथ पेश की जाने वाली छोटी सी चीज़ भी मेहमान के दिल में अपनी जगह बना लेती है। मेहमान नवाजी का खूबसूरत सफ़र उस वक्त मुकम्मल होता है जब मेहमान भी मेज़बान के अदब का लिहाज रखे। घर में दाखिल होने से पहले सलाम करना, वक्त का एहतराम करना और मेज़बान की मसरूफियत को समझना अच्छे रवैये की निशानी है। मेहमान को जो कुछ पेश किया जाए उसकी कदर करनी चाहिए। शुक्रिया अदा करना और मुस्कुराहट के साथ जवाब देना छोटी बात लग सकती है लेकिन ये दिलों में मोहब्बत बढ़ाती है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो नरमी से इनकार करना बेहतर होता है। किसी घर में मौजूद बुजुर्ग का एहतराम और बच्चों से शफकत भी मेहमान के अच्छे रवैये में शामिल है। गुफ्तगू के दौरान मोहतरम अल्फाज और नरमी का इस्तेमाल सबके लिए अच्छा माहौल पैदा करता है। कतर में खुशी के मौकों पर खानदान और दोस्त जमा होते हैं। ईद, शादियाँ और दूसरी खुशियों में दावत और मुलाकात का खास रंग होता है। ऐसी महफिलों में खाना शेयर करना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि खुशी और अपनाइत बांटने का एक तरीका भी है। खाना पेश करना भी इज्जत और तवज्जो का इजहार होता है। रिवायती पकवान, मिठाइयाँ, कहवा और खजूर महफिल को और पुरकशिश बनाते हैं। कुछ दावतें सादा होती हैं जबकि कुछ में ज़्यादा इंतज़ाम किया जाता है। दोनों सूरतों में असल अहमियत मेहमान के साथ मोहब्बत और हुस्न सलूक की होती है। ये रिवायत बच्चों को भी सीखने का मौका देती है। वो देखते हैं कि किस तरह सलाम किया जाता है, मेहमान का इस्तकबाल कैसे होता है और खाने का अदब क्या है। इस तरह मेहमान नवाजी सिर्फ बात नहीं रहती बल्कि अमल के जरिए नई नस्ल तक पहुंचती है। आज के जदीद कतर में जिंदगी के अंदाज जरूर बदले हैं लेकिन मेहमान की इज्जत, उसके ख्याल रखने का जज्बा अब भी कायम है। घर हो या किसी सकाफती मकाम की मुलाकात नरमी मुस्कुराहट और खुलूस हर जगह खूबसूरत असर पैदा करते हैं। कतरी मेहमान नवाजी हमें ये सिखाती है कि इंसानी रबते बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे मोहब्बत भरे रुपयों से मजबूत होते हैं। एक सलाम, एक पहला कहवा और दिल से की गई खैरियत किसी भी मुलाकात को यादगार बना सकती है। तो लिस्टर्स, आज के कल्चर मोमेंट हमें यही पैगाम देता है कि मेहमान को इज्जत देना असल में इंसानियत, शुक्रगुजारी और अपनाइयत का इजहार है। ये खूबसूरत रवैया कतर की सकाफत का रोशन पहलू है जो हर मुलाकात को मोहब्बत और एहतराम से भर देती है। तो लिस्टर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे फार्मूला 1 रेस के बारे में। जहां दोस्तों फार्मूला 1 की तारीख में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं होते बल्कि किसी ड्राइवर की ग्रेटनेस, कंसिस्टेंसी और बेमिसाल डोमिनेंस की कहानी बयां करते हैं। ऐसा ही एक अजीम रिकॉर्ड माइकल शुमाकर के नाम है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन के 7 खिताब, 7 टाइटल्स। जर्मनी के माइकल शुमाकर ने अपने करियर में 7 मरतबा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ये वो माइलस्टोन था जिस तक पहुंचने वाले वो पहले ड्राइवर बने। उनकी चैंपियनशिप विक्ट्रीज 1994, 1995, सन 2000, सन 2001, सन 2002, सन 2003 और सन 2004 में आई। लेकिन दोस्तों शुमाकर की कहानी सिर्फ 7 टाइटल्स की कहानी नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन को आप एनालाइज तब करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कितने मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बने, कितने मरतबा वर्ल्ड टाइटल्स लिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस करके एनालाइज होती है। और यही बात है कि हर एक्सपर्ट्स देखते हैं कि ये खिलाड़ी या वो खिलाड़ी, एक्स वाई जेड खिलाड़ी कितने दिनों तक, कितने सालों तक उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने में कामयाब। और यहीं पर एक बात शुमाकर की हो रही है कि माइकल शुमाकर सिर्फ टाइटल्स के लिए नहीं थे बल्कि शुमाकर की जो कंसिस्टेंसी उसके बारे में आज भी लोग बताते हैं। ये एक ऐसे ड्राइवर की दास्तान है जिन्होंने फार्मूला 1 को अपनी स्पीड, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और रेस क्राफ्ट से एक नए लेवल तक पहुंचाया। 1994 का सीजन माइकल शुमाकर के करियर में एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे, सुन लीजिए। बेनेटन के साथ उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता। यह सिर्फ एक चैंपियनशिप नहीं थी, ये एक नए फॉर्मूला 1 सुपरस्टार के उभरने का ऐलान था, अनाउंसमेंट। माइकल शुमाकर ने अगले ही साल यानी 1995 में अपने टाइटल का दिफा किया और बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। सिर्फ 2 सालों में 2 टाइटल्स और माइकल शुमाकर ने साबित कर दिया कि उनकी कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी। 1996 में शुमाकर ने फरारी का हिस्सा बने। फरारी दुनिया की सबसे मशहूर फॉर्मूला 1 टीमों में से एक थी, लेकिन उस वक्त टीम चैंपियनशिप ड्रॉट का सामना कर रही थी, यानी उन्हें टाइटल हासिल ही नहीं हो पाए। माइकल शुमाकर के लिए एक नया चैलेंज था। उन्होंने फरारी को सिर्फ एक रेसिंग टीम के तौर पर नहीं देखा बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जिसे दोबारा फॉर्मूला 1 के टॉप पर ले जाना था। और फिर आता है सन 2000। माइकल शुमाकर ने फरारी के साथ अपना तीसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता और फरारी को भी एक नई गोल्डन एरा की तरफ ले गए। सन 2000 के बाद जो कुछ हुआ वो फॉर्मूला 1 की तारीख के सबसे डोमिनेंट चैप्टर्स में शुमार होता है। सो 5 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, यानी माइकल शुमाकर ने लगातार 5 साल फॉर्मूला 1 पर अपनी हुक्मरानी कायम रखी। लेकिन यहां पर ये बात कहना बहुत जरूरी होता है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये फॉर्मूला 1 की तारीख में एक ऐसा बेंचमार्क बन गया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल नजर आता था। सो सन 2000 से 2004 का दौर खास तौर पर माइकल शुमाकर के करियर का गोल्डन एरा माना जाता है। रेस आफ्टर रेस, सीजन आफ्टर सीजन वो कंसिस्टेंसी और स्पीड की मिसाल बनते गए। अच्छा, उनके ये 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड जो है कई सालों तक तन्हा उन्हीं के नाम रहा। दोस्तों फॉर्मूला 1 फैंस के लिए ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की निशानी बन गए। शुमाकर ने मोटर स्पोर्ट की दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। उनका करियर हमें ये बताता है कि ग्रेटनेस सिर्फ एक रेस जीतने से नहीं मिलती, ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी से बनती है और ग्रेटनेस प्रेशर में परफॉर्म करने से बनती है। इसके साथ साथ ग्रेटनेस सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखने से बनती है। और माइकल शुमाकर ने ये सब कुछ फॉर्मूला 1 के सबसे बड़े स्टेज पर करके दिखाया। जैसे कि मैंने कहा कि 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक ऐसा रिकॉर्ड जो माइकल शुमाकर को फॉर्मूला 1 की तारीख के सबसे बड़े चैंपियंस में हमेशा के लिए शामिल करता है। दोस्तों
ये भी बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि माइकल शूमाकर सिर्फ एक चैंपियन नहीं थे, वो एक एरा थे, एक ऐसा ड्राइवर जिन्होंने स्पीड को डिसिप्लिन के साथ, एग्रेशन को इंटेलिजेंस के साथ और टैलेंट को हार्ड वर्क के साथ जोड़ा। और जब भी फॉर्मूला वन की तारीख में ग्रेटनेस, डोमिनेंस और चैंपियनशिप सक्सेस की मिसाल दी जाएगी, एक नाम जरूर याद किया जाएगा, माइकल शूमाकर। 7 वर्ल्ड टाइटल्स, एक बेमिसाल लीगेसी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

FM 107 से आप पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की हामिला ऊंटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे और जब जानें जिस्मों से जोड़ दी जाएंगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस कसूर में मारी गई और जब आमाल नामे खोले जाएंगे और जब आसमान का पर्दा हटा दिया जाएगा और जब जहन्नुम दहकाई जाएगी और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी, उस वक्त हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। बस नहीं, मैं कसम खाता हूं पलटने वाले और छुप जाने वाले तारों की और रात की जबकि वो रुखसत हुई और सुबह की जबकि उसने सांस लिया। ये फिल वाक़े एक बुजुर्ग पैगंबर का कौल है जो बड़ी तवानाई रखता है। अर्श वाले के हां बुलंद मर्तबा है, वहां उसका हुक्म माना जाता है, वो बाएतमाद है। और ए अहले मक्का, तुम्हारा रफीक मजनून नहीं है। उसने उस पैगंबर को रोशन उफक पर देखा है और वो गैब के इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के मामले में बखील नहीं है। और ये किसी शैतान मर्दूद का कौल नहीं है। फिर तुम लोग किधर चले जा रहे हो? ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहता हो। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे।

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود

وهو